0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के कार्यक्रम स्वररंजनी में ऋतिक अधलेखा का राग अहीर भैरव में गायन। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। सुबह के 6 बजने को हैं, आप समाचार होंगे। पहले हिंदी में, उसके बाद आप अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आतंकवाद के दोहरे मापदंड के लिए कोई स्थान नहीं है। उन्होंने किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन के सभी सदस्य देशों से आतंकवादियों को उपलब्ध होने वाली आर्थिक सहायता, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनागाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को बढ़ावा देते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन के घोषणा पत्र में भारत की प्राथमिकताओं को प्रमुखता से शामिल किया गया है।
2: शंघाई सहयोग संगठन के बिश्केक घोषणा पत्र में संवाद को आगे बढ़ाने के लिए एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना को दोहराया गया है। एससीओ सदस्य देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड स्वीकार नहीं है। सदस्य देशों ने आतंकवाद से निपटने के लिए समन्वित प्रयासों का भी आह्वान किया है, जिसमें आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही भी शामिल है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में केंद्र और राज्यों को एक साथ लाकर महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए साझा जिम्मेदारी को बढ़ावा देना और ये सुनिश्चित करना है कि विचार विमर्श से शासन और सेवा वितरण के मापने योग्य सुधार हो सकें। सर्वोच्च न्यायालय ने 20 से 25 जुलाई के बीच देश भर में नीट पेपर लीक मुद्दे पर छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी सभी प्राथमिकियों को रद्द करने और इन मामलों में आगे जाँच नहीं करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने कल केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और असम की ओर से दायर याचिकाओं में बताई गई प्राथमिकियां भी रद्द कर दी और राज्यों को कोई नई प्राथमिकी दर्ज नहीं करने को कहा। हालांकि न्यायालय ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन में शामिल संगीन आपराधिक मामले वाले 2873 लोगों के खिलाफ जाँच जारी रखने की अनुमति दी है। सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के शनिवार को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को रद्द करने की घोषणा का स्वागत किया है। नई दिल्ली में कल केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता युवाओं की प्रगति और विकास है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की समीक्षा की। कल नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में चिन्हित 100 जिलों में योजना में तेजी लाने, योजनाओं के बीच समन्वय को मजबूत करने और किसानों के लिए जिला स्तरीय प्रदर्शन में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया। सरकार ने चीनी व्यापारियों के लिए भंडार रखने की सीमा 4000 क्विंटल से घटाकर 2000 क्विंटल कर दी है। ये नियम 15 सितंबर से अगले महीने 30 नवंबर तक प्रभावी रहेगा। नई भंडारण सीमा का उद्देश्य जमाखोरी पर अंकुश लगाना, चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना और कीमतों में स्थिरता लाना है। नई समय सीमा के अंतर्गत कोई भी व्यापारी चीनी के भंडार को प्राप्ति की तारीख से 30 दिन से अधिक समय तक नहीं रख सकता और देश भर में किसी भी समय और किसी भी स्थान पर 2000 क्विंटल से अधिक चीनी का भंडार नहीं रख सकता। सरकार ने प्याज के मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए कांदा एक्सप्रेस और सड़क परिवहन के माध्यम से बफर स्टॉक की सुनियोजित और लक्षित आपूर्ति शुरू कर दी है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 30 से अधिक ट्रकों की व्यवस्था के साथ 19 शहरों में खुदरा हस्तक्षेप प्रयासों का विस्तार किया जा रहा है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। इस दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और आपसी हित के सभी क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनकी ये यात्रा भारत बेल्जियम के बीच आपसी साझेदारी को सुदृढ़ करने का महत्वपूर्ण अवसर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: गणपति।
1: वंदना में आइए सुनिए अनुराधा पौडवाल की आवाज में ये भक्ति गीत।

0: आइए अब सुनते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी के जीवन चरित को हमारे कार्यक्रम चिंतन में। चिंतन की ये प्रस्तुति आज जो आधारित है बंकिम चंद्र चटर्जी के जीवन चरित पर।
1: आज हम बात करेंगे उस महान लेखक, विचारक और राष्ट्रभक्त की, जिनकी कलम ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई ऊर्जा दी। जी हाँ, हम बातें कर रहे हैं बंकिम चंद्र चटर्जी की। भारत के इतिहास में कई ऐसे महान लोग हुए हैं जिनकी लेखनी तलवार से भी ज्यादा शक्तिशाली साबित हुई। बंकिम चंद्र चटर्जी उन्हीं में से एक थे। उनका जन्म 27 जून 1838 को पश्चिम बंगाल के नैहाटी में हुआ था। उनके पिता यादव चंद्र चटर्जी एक सरकारी अधिकारी थे। बचपन से ही बंकिम चंद्र पढ़ाई में बहुत तेज थे और साहित्य में उनकी गहरी रुचि थी। उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से पढ़ाई की और वे भारत के पहले ग्रेजुएट्स में शामिल थे। बाद में उन्होंने ब्रिटिश सरकार में डिप्टी मजिस्ट्रेट के रूप में काम किया, लेकिन उनकी असली पहचान सरकारी नौकरी नहीं बल्कि उनकी लेखनी बनी। सरकारी नौकरी करते हुए भी बंकिम चंद्र का मन साहित्य में ही बसता था। उन्होंने महसूस किया कि भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है और लोगों में देशभक्ति की भावना जगाना बहुत जरूरी है। उस समय भारत में अंग्रेजों का शासन था और लोगों के मन में डर और निराशा थी। बंकिम चंद्र ने तय किया कि वे अपनी कहानियों और उपन्यासों के जरिए लोगों के दिलों में देशभक्ति की आग जलाएंगे। उन्होंने कई प्रसिद्ध उपन्यास लिखे, जैसे दुर्गेश नंदिनी, कृष्णकांत का वसियतनामा, लेकिन इन सब में सबसे प्रसिद्ध बना उनका उपन्यास आनंदमठ। आनंदमठ और क्रांति की शुरुआत। 1882 में प्रकाशित उपन्यास आनंदमठ सिर्फ एक कहानी नहीं थी बल्कि ये एक क्रांति थी। इस उपन्यास में उन्होंने सन्यासियों के एक समूह की कहानी लिखी जो देश को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए संघर्ष करते हैं। इस कहानी ने पूरे भारत में देशभक्ति की लहर पैदा कर दी और इसी उपन्यास में जन्म हुआ उस गीत का जिसने आजादी की लड़ाई को एक नई दिशा दी। जी हां श्रोताओं, वो महान गीत था वंदे मातरम। बंकिम चंद्र ने इस गीत को मातृभूमि के प्रति प्रेम और सम्मान के रूप में लिखा था। वंदे मातरम का अर्थ है मां, मैं तुम्हें नमन करता हूं। यह गीत जल्द ही स्वतंत्रता सेनानियों की आवाज बन गया। जब भी स्वतंत्रता सेनानी आंदोलन करते, जेल जाते या अंग्रेजों का सामना करते, वे वंदे मातरम गाते थे। ये गीत लोगों में साहस, जोश और देशभक्ति भर देता था। इस गीत और उनकी लेखनी से अंग्रेज सरकार काफी डर गई थी, क्योंकि उन्हें पता था कि तलवार से ज्यादा खतरनाक है जागरूक जनता। वंदे मातरम को कई जगहों पर गाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, लेकिन देशभक्तों ने इसे गाना बंद नहीं किया। ये गीत आजादी की पहचान बन चुका था। बंकिम चंद्र सिर्फ लेखक ही नहीं थे बल्कि वे एक महान विचारक और राष्ट्रभक्त भी थे। वे मानते थे कि देश की ताकत उनके लोगों में होती है। अगर लोग जाग जाएं, तो कोई भी ताकत देश को गुलाम नहीं बना सकती। उनकी रचनाओं में तीन बातें हमेशा दिखाई देती हैं, देशभक्ति, संस्कृति और परंपरा और आत्मसम्मान। उन्होंने भारतीयों को अपनी संस्कृति पर गर्व करना सिखाया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, अरविंद घोष और अन्य कई स्वतंत्रता सेनानी बंकिम चंद्र की रचनाओं से प्रेरित थे। वंदे मातरम स्वतंत्रता आंदोलन का नारा बन गया। यह गीत सुनते ही लोगों के दिलों में आजादी की ज्वाला जल उठती थी और आज भी जब भी ये गीत बजता है तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 8 अप्रैल 1894 को बंकिम चंद्र चटर्जी इस दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है। उनकी कलम ने जो आग जलाई थी वो 1947 में भारत की आजादी बनकर सामने आई। जब हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं तो उसमें उनकी लेखनी का भी एक बड़ा योगदान है। बंकिम चंद्र चटर्जी हमें ये सिखाते हैं कि एक कलम भी देश बदल सकती है। उन्होंने हमें सिखाया देशभक्ति सिर्फ युद्ध में नहीं विचारों में भी होती है। आइए कार्यक्रम समाप्त करने से पहले हम सब मिलकर कहें वंदे मातरम।
0: आइए सुनते हैं अब रामचरितमानस में अयोध्या कांड का भाग 36।

केवट से निहोरा करके श्री रामचंद्र पत्नी सीता तथा भाई लक्ष्मण सहित गंगा पार तो उतर गए, किंतु केवट को उतराई देने की उनकी कोई युक्ति सफल नहीं हुई। श्री राम ने स्नान कर पार्थिव पूजा की तथा सीता ने गंगा से हाथ जोड़ अपना मनोरथ पूरा करने की प्रार्थना की। माँ गंगा को रघुवीर की प्रियतमा की महिमा ज्ञात थी, फिर भी उनकी विनती सुनकर भागीरथी ने कहा, हे सीते, तुम अपने प्राणनाथ तथा देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी, तुम्हारे सारे मनोरथ पूरे होंगे और तुम्हारा यश संपूर्ण जगत में छाएगा। उधर श्री रामचंद्र ने केवट को भक्ति का वरदान देकर विदा करना चाहा, तो निषाद राज ने दो चार दिनों तक उनके साथ रहकर उनके चरणों की सेवा करने की अनुमति चाही। भक्त वत्सल भक्त की प्रार्थना कैसे न मानते। सीता लक्ष्मण सहित उन्होंने श्री गणेश तथा शिवजी का स्मरण किया तथा माँ गंगा को सिर नवा निषाद राज को साथ लेकर वन की ओर चले।

0: प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना सह द्वैपाक्षिकसम्बन्धानां समग्रपरिदृश्यस्य परस्परहितसम्बद्धानां क्षेत्रीयवैश्विकविषयाणां च विषये द्विपक्षीयवार्तां करिष्यति। प्रधानमन्त्री डी वेवर भारत यूरोपीय संघयोः मुक्त वाणिज्य सन्धेः सन्दर्भे आयोजितं व्यावसायिक कार्यक्रममपि सम्बोधयिष्यति। सः मुम्बई नगरमपि गमिष्यति, यत्र हीरक क्षेत्रस्य पत्तन व्यवस्थायाः परिवहन आपूर्ति व्यवस्थायाश्च प्रतिनिधिभिः सह विचार विनिमयं करिष्यति। विदेश मन्त्रालयस्य अनुसारं एषा यात्रा भारत बेल्जियम देशयोः सहभागितां सुदृढीकर्तुं महत्वपूर्णमवसरं प्रदास्यति। सममेव व्यापार विनियोगयोः रक्षायाः सुरक्षायाश्च प्रौद्योगिक्याः नवीकरणीयोर्जायाः सम्पर्कस्य अथ प्रतिजनसम्बन्धानां च क्षेत्रेषु पारस्परिकहितस्य सहयोगमपि वर्धिष्यते। नेपालस्य प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहः उक्तवान् यत् गतसप्ताहे तिब्बत क्षेत्रात् भोटेकोशी नद्याः मार्गेण रसुवा प्रदेशं प्रविष्टः विनाशकारी जलाप्लावः वायुमण्डल परिवर्तनस्य परिणामः अस्ति। नेपालदेशे सहसा आगतस्य विनाशकारिणः जलाप्लावस्य कारणेन मृतानां संख्या 85,000+ पर्यन्तं वर्धिता अस्ति। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर पुनः लोगों से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने, सोने की अनावश्यक खरीद और विदेशों में शादी ब्याह करने से बचने का आह्वान किया है। एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने तथा स्वदेशी उत्पादों के उपयोग पर अधिक बल देने की आवश्यकता जताई।
2: स्वदेशी का मंत्र वोकल फॉर लोकल, विदेशों की यात्राएं अगर घूमने फिरने जाते हैं तो नहीं करना चाहिए। शादी ब्याह विदेशों में करते हैं, नहीं करना चाहिए। मेड इन इंडिया के मंत्र को जीना चाहिए और जरूरत न हो तो सोना भी नहीं खरीदना चाहिए। हम जितना ज्यादा स्वदेशी पर बल देंगे, जितना आत्मनिर्भर पर बल देंगे, मुझे पक्का विश्वास है जब आजादी के 100 साल होंगे, हम हमारी युवा पीढ़ी को विकसित भारत सुप्रत करेंगे।
1: श्री मोदी ने कहा कि देश के युवा जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं उससे उनके सपने साकार होंगे। उन्होंने नागरिकों से देश की प्रगति में योगदान जारी रखने का आह्वान करते हुए कहा कि सरकार की नीतियां और इरादे सही हैं। देश में कच्चे तेल के बाद सोना ही ऐसी दूसरी वस्तु है जिसका सर्वाधिक आयात किया जाता है। सोने की थोक मात्रा में खरीद बंद करने से देश के कुल आयात बिल में भारी कमी आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में केंद्र और राज्यों को एक साथ लाकर महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए साझा जिम्मेदारी को बढ़ावा देना और ये सुनिश्चित करना है कि विचार विमर्श से शासन और सेवा वितरण में मापने योग्य सुधार हो सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आतंकवाद के दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में सभी सदस्य देशों से आतंकवादियों को उपलब्ध होने वाली आर्थिक सहायता, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया। सरकार ने चीनी व्यापारियों के लिए भंडार रखने की सीमा 4000 क्विंटल से घटाकर 2000 क्विंटल कर दी है। ये नियम 15 सितंबर से 30 नवंबर तक प्रभावी रहेगा। नई भंडारण सीमा का उद्देश्य जमाखोरी पर अंकुश लगाना, चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना और कीमतों में स्थिरता लाना है। चीनी भंडारण की नई समय सीमा के अंतर्गत कोई भी व्यापारी स्टॉक को प्राप्ति की तारीख से 30 दिन से अधिक समय तक नहीं रख सकता है और देश भर में किसी भी समय और किसी भी स्थान पर 2000 क्विंटल से अधिक चीनी का भंडार नहीं रख सकता। सरकार ने प्याज के मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए कांदा एक्सप्रेस और सड़क परिवहन के माध्यम से बफर स्टॉक की सुनियोजित और लक्षित आपूर्ति शुरू कर दी है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 30 से अधिक ट्रकों की व्यवस्था के साथ 19 शहरों में खुदरा हस्तक्षेप प्रयासों का विस्तार किया गया है। मंत्रालय ने बताया कि नासिक से कांदा एक्सप्रेस से 450 मीट्रिक टन प्याज दिल्ली पहुंचा और इसे वाराणसी, लखनऊ, चंडीगढ़, अमृतसर तथा दिल्ली NCR में वितरित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने 20 से 25 जुलाई के बीच देश भर में नीट पेपर लीक मुद्दे पर छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी सभी प्राथमिकी को रद्द करने और इन मामलों में आगे जांच नहीं करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने कल केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और असम की ओर से दायर याचिकाओं में बताई गई प्राथमिकियां भी रद्द कर दी गई और राज्यों को कोई नई प्राथमिकी दर्ज नहीं करने को कहा है। हालांकि न्यायालय ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन में शामिल संगीन आपराधिक मामले वाले 2873 लोगों के विरुद्ध जांच जारी रखने की अनुमति दी है। सरकार ने कांग्रेस जनता पार्टी CJP के शनिवार को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को रद्द करने की घोषणा का स्वागत किया है। नई दिल्ली में कल केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता युवाओं की प्रगति और विकास है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और आपसी हितों के सभी क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उनकी ये यात्रा भारत बेल्जियम के बीच आपसी साझेदारी को सुदृढ़ करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। भारत के शटलर लक्ष्य सेन, किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा आज ग्वांगडोंग प्रांत के शेंजेन में आयोजित चाइना मास्टर सुपर 750 बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत करेंगे। शीर्ष वरीयता प्राप्त सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी भी पुरुष युगल में खेलते नजर आएंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi has renewed his call to embrace Swadeshi goods and avoid unnecessary purchase of gold and destination weddings abroad. In a video message, the Prime Minister asked Indians to shun leisure trips abroad, avoid getting married overseas, and refrain from buying gold unless necessary.
2: स्वदेशी का मंत्र वोकल फॉर लोकल, विदेशों की यात्राएं अगर घूमने फिरने जाते हैं तो नहीं करना चाहिए। शादी ब्याह विदेशों में करते हैं, नहीं करना चाहिए। मेड इन इंडिया के मंत्र को जीना चाहिए और जरूरत न हो तो सोना भी नहीं खरीदना चाहिए। हम जितना ज्यादा स्वदेशी पर बल देंगे, जितना आत्मनिर्भर पर बल देंगे, मुझे पक्का विश्वास है जब आजादी के 100 साल होंगे, हम हमारी युवा पीढ़ी को विकसित भारत सुप्रत करेंगे। हमारी युवा पीढ़ी के सपनों को हम आज अपने परिश्रम से साकार करके रहेंगे और इसलिए आइए देशवासी, हम पुरुषार्थ में कोई कमी न रखे। हमारी नीति सही है, हमारी नीयत साफ है और 140 करोड़ देशवासियों की शक्ति आज एकजुट होकर के देश को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है।
3: Mr. Modi congratulated the country on recording 7.8% economic growth and spoke of the need to promote self-reliance and give greater emphasis to Swadeshi products. The Prime Minister said India is progressing rapidly despite global uncertainty, wars, crises and disruptions to supply chains. Taking a swipe at his critics, he said some people within the country, drowned in an atmosphere of despair, are spreading the lies all around. Mr. Modi said the country's youth will see their dreams being realized through the hard work being put in today. He also called on citizens to continue contributing to the country's progress, saying the government's policies and intentions are right. Prime Minister Narendra Modi will address the valedictory session of the Ministry of Jal Shakti's departmental summit in New Delhi today. The two-day departmental summit, which commenced yesterday, is the first in a series of departmental summits envisioned by the Prime Minister to strengthen the spirit of Team India and deepen cooperative federalism. Prime Minister Narendra Modi has called upon member countries of the Shanghai Cooperation Organization, SCO, to dismantle the entire ecosystem of terrorist financing, recruitment, radicalization and safe havens. Addressing the 26th SCO summit in Bishkek yesterday, the Prime Minister said there can be no place for double standards on terrorism. Secretary West in the Ministry of External Affairs, Sibi George, said in a media briefing that the Prime Minister expressed concern with the ongoing conflicts in different parts of the world. The government has reduced the stock holding limit for sugar dealers from 4,000 quintals to 2,000 quintals effective from the 15th of this month till 30th of November this year. The new stock limit is aimed to curb hoarding and speculative trading, protect consumer interest.

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेग 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7:10 और 12 सेकेंड हो चुके हैं। समय है भजन पर आधारित कार्यक्रम संगीतिका, जिसमें आप सुनेंगे नीलम पांडे के गाए हुए भजन।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संगीतिका, और अब समय है आपके अपने मन पसंद कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग का। फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग में आज मैं मनीषा आपका स्वागत करती हूँ। सूरज की किरणें करती हैं अभिनंदन, महक उठा है ये सारा नंदन। तो आइए आगाज करते हैं भक्ति भरे इस गीत से अपने कार्यक्रम की।

इस प्रार्थना के शब्दों के साथ हमारे गीतों भरी गुड मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है। और साथियों, आज आपके इस सफ़र में मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त मनीषा। और आज के दिन की सुबह की ताजगी में एक बात आपसे कहना चाहती हूँ कि ओस की बूंदों ने फूलों को सहलाया है। देखिए ना, देखिए ना, एक नया सवेरा फिर से मुस्कुराया है। तो आशा से भरे एक गीत से हम अपने आज के इस सवेरे का अभिनंदन करते हैं और सुनते हैं इस मधुर संगीत को।

हर नया दिन जीवन में एक नई शुरुआत और नए अवसर लेकर आता है, जैसे कि आज की सुबह आई है हमारे जीवन में। हम पिछली सारी बातों को भूलकर, गिले शिकवे भूलकर, अपनी असफलताओं को भूलकर अपना बेहतर और सबसे बेहतर देने की जब कोशिश करते हैं तो जिंदगी की खुशियां हमें गले लगाती ही हैं। तो सुबह के राग में संगीत का स्वर मिलाने की कोशिश है हमारा ये कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग। दिन भर की व्यवस्थाओं के लिए ऊर्जावान होने का सबसे नायाब तरीका गीत संगीत, सकारात्मकता और मन में बस आशा का संचार, और हमारा मन खुद ही दर्पण बन जाए हमारी खुशियों का।

सच है, मन दर्पण होता है और मन में जो होता है वो हमारे चेहरे पे खुद ब खुद आ जाता है। इसलिए सुबह की ताजगी हमारे चेहरे पर जब आती है, खुशियों भरी सारी वानगी हमारे जीवन से जुड़ जाती है। तो साथियों, आप सभी के लिए गीतों भरी गुड मॉर्निंग में इन खूबसूरत गीतों को सुनाने का हमारा सिर्फ यही उद्देश्य है कि आपके जीवन में वो ताजगी, वो स्फूर्ति और वो पॉजिटिविटी हो जिससे आप पूरे दिन भर के हर कामकाज को सफलतापूर्वक कर जाएं। और यही उम्मीद है हमें कि आप हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने जीवन में सही और अच्छी दिशा की ओर आगे बढ़ते रहेंगे, सुनते रहेंगे आपके साथ आपका अपना कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग। और आपसे बस यही कहूंगी प्रकृति की एक उल्लास के बारे में कि ओस की बूंदों ने फूलों को सहलाया है, देखिए ना देखिए ना, ये नया सवेरा फिर से आया है।

गीतों भरी गुड मॉर्निंग। और गीतों भरी गुड मॉर्निंग में हम प्रकृति के उन सारे उल्लास को अपने जीवन में समेटने की कोशिश कर रहे हैं, जिनकी बदौलत हम अपनी इस सुबह को ताज़ा करके आगे बढ़ेंगे पूरे दिन भर की स्फूर्ति के लिए। और हर सुबह अपनी नई क्षमता, नई ऊर्जा का आगाज़ करती है, ये हम जानते हैं। हमारी प्रकृति हमारे लिए रोज़ ऐसे अवसर लाती है। जो बीत गया उसे छोड़कर आगे को बढ़ना है, थामना है नए अवसर, नई संभावनाओं को, और करते रहना है नई कोशिशों को।

हाँ, नज़ारे बदलते रहेंगे लेकिन हम मिलते रहेंगे। अपनी गीतों भरी गुड मॉर्निंग के साथ आपके लिए लेकर आएंगे आशा और विश्वास से भरे हुए गीत। प्रकृति के इन सुंदर उपमानों के साथ आपको लेकर चलेंगे उन विचारों, उन ख्यालों में जहाँ पूरे दिन भर की ताजगी और स्फूर्ति उन गीतों से आप ले सकें। तो ऐसा ही एक प्यारा सा गीत आपके लिए।

जी तो वेरी गुड मॉर्निंग में आपके लिए एक बात कहती कहना चाहती हूँ कि खुदा करे ना धूप ढले आपके चेहरे की ताउम्र जिंदगी में कभी शाम ना हो। तो ये तो एक रस्म जहाँ है जो अदा होती है, वरना सूरज की कहाँ साल गिरा होती है। तो आपके जीवन में ऐसे ही सूरज जगमगाता रहे इन्हीं भावनाओं के साथ आज गीतों भरी गुड मॉर्निंग से मनीषा को दीजिए इजाजत और सुनिए ये अंतिम प्रस्तुति।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेग 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे, पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत ताज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से स्वदेशी उत्पादों को अपनाने और सोने की अनावश्यक खरीद तथा विदेश में विवाह आयोजन से बचने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सरकार ने चीनी के भंडारण सीमा 4000 क्विंटल से घटाकर 2000 क्विंटल की। अमेरिका ने ईरान के अंदर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के ठिकानों पर फिर हमले किए। बंदर अब्बास और हॉर्मुज में धमाकों की आवाज सुनी गई। भारतीय फोरेंसिक टीम ने नेपाल में बाढ़ के पीड़ितों के पहचान के लिए DNA जांच शुरू की। और बैडमिंटन में भारत के लक्ष्य सेन, किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा आज शेंजेन में चाइना मास्टर्स सुपर 750 में अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर लोगों से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने, सोने की अनावश्यक खरीद और विदेशों में शादी ब्याह करने से बचने का आह्वान किया है। एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि देश के युवा आज जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं उससे उनके सपने साकार होंगे।
2: स्वदेशी का मंत्र वोकल फॉर लोकल, विदेशों की यात्राएं अगर घूमने फिरने जाते हैं तो नहीं करना चाहिए। शादी ब्याह विदेशों में करते हैं, नहीं करना चाहिए। मेड इन इंडिया के मंत्र को जीना चाहिए और जरूरत न हो तो सोना भी नहीं खरीदना चाहिए। हम जितना ज्यादा स्वदेशी पर बल देंगे, जितना आत्मनिर्भर पर बल देंगे, मुझे पक्का विश्वास है जब आजादी के 100 साल होंगे हम हमारी युवा पीढ़ी को विकसित भारत सुप्रत करेंगे।
1: श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता, युद्धों, संकटों और आपूर्ति श्रृंखलाओं में बाधाओं के बावजूद भारत तीव्र गति से प्रगति कर रहा है।
2: 7.8% ग्रोथ, देश खुशियों से भर गया है। लेकिन देशवासियों को मैं बधाई देता हूँ उनके संकल्प शक्ति के लिए, उनके पुरुषार्थ के लिए। एक सामूहिक शक्ति का एक प्रतिबिंब है। दुनिया युद्ध में डूबी हुई है, चारों तरफ युद्ध की खबरें आ रही, विश्व संकटों से घिरा हुआ है, सप्लाई चेन पूरी तरह डिस्टर्ब है। 2020 में कोविड काल से लेकर अब तक कहीं पर भी स्थिरता नजर नहीं आ रही, उसके बावजूद भी भारत तेज गति से प्रगति कर रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने तथा स्वदेशी उत्पादों के उपयोग पर अधिक बल देने की आवश्यकता बताई।
2: भारत के भीतर भी निराशा की गर्त में डूबे हुए लोग, झूठ की गुंज, चारों तरफ निराशा फैलाने में लगे हुए, इन सारी चीजों को पार करते हुए, उन सभी बातों को चीर करके देश ने 7.8% ग्रोथ हासिल किया है। हमें इस गति को बनाए रखना, हमें बढ़ना भी है और इसके लिए आत्मनिर्भर भारत बनना बहुत जरूरी है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में केंद्र और राज्यों को एक साथ लाकर महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए साझा जिम्मेदारी को बढ़ावा देना और ये सुनिश्चित करना है कि विचार विमर्श से शासन और सेवा वितरण में व्यापक सुधार हो सके। सरकार ने चीनी व्यापारियों के लिए भंडार रखने की सीमा 4000 क्विंटल से घटाकर 2000 क्विंटल कर दी है। ये नियम 15 सितंबर से 30 नवंबर तक प्रभावी रहेगा। एक रिपोर्ट।
3: संशोधित प्रावधानों के तहत कोई भी चीनी व्यापारी किसी भी भंडार को प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों से अधिक समय तक नहीं रख सकता है। चीनी व्यापारी देश भर में किसी भी समय और किसी भी स्थान पर 2000 क्विंटल से अधिक चीनी का भंडार नहीं रख सकता है। हालांकि कोलकाता और उसके आसपास के महानगरीय क्षेत्रों के विशिष्ट बाजार आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भंडार रखने की सीमा 4000 क्विंटल ही रहेगी। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि कोलकाता उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से चीनी खरीदता है और उत्तर पूर्वी क्षेत्र सहित देश के पूर्वी हिस्से को इसकी आपूर्ति करता है। इसलिए कोलकाता और उसके आसपास के महानगरीय क्षेत्रों के लिए 4000 क्विंटल की मौजूदा सीमा को बरकरार रखा गया है। भानु के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने प्याज के मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए कांदा एक्सप्रेस और सड़क परिवहन के माध्यम से बफर स्टॉक की सुनियोजित और लक्षित आपूर्ति शुरू कर दी है। उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 30 से अधिक ट्रकों की व्यवस्था के साथ 19 शहरों में खुदरा हस्तक्षेप प्रयासों का विस्तार किया गया है। एक रिपोर्ट।
4: नासिक से कांदा एक्सप्रेस से 450 मीट्रिक टन प्याज दिल्ली पहुंचा और इसे वाराणसी, लखनऊ, चंडीगढ़, अमृतसर तथा दिल्ली एनसीआर में वितरित किया गया है। 840 मीट्रिक टन प्याज कल चेन्नई पहुंचा और इसे तमिलनाडु के विभिन्न जिलों में वितरित किया जाना है। मंत्रालय ने बताया कि मौजूदा बाजार स्थितियों और मूल्य रुझानों के आधार पर लगभग 1000 मीट्रिक टन प्याज सड़क मार्ग से प्रमुख उपभोग केंद्र तक पहुंचाया जा रहा है। मंत्रालय ने सूचित किया कि लगभग 3400 प्याज उत्पादक को 210 करोड़ रुपए का सीधा भुगतान किया जा चुका है। मंत्रालय ने बताया कि बफर स्टॉक से प्याज जारी करने से बाजार में उपलब्धता में सुधार हुआ है और बिक्री शुरू होने के अगले दिन से कीमतों में गिरावट आई है। समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
6: Update rahe, aage rahe. expert@airnewshindi और Instagram पर AIR News Alerts को फॉलो करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका ने ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC को निशाना बनाकर नए सिरे से आक्रमण शुरू कर दिए हैं। ईरानी मीडिया के अनुसार बंदर अब्बास, होर्मोज, असालवे, जीरोफ्ट, केशन द्वीप सहित कई इलाकों में धमाकों की आवाज सुनी गई। वहीं अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि उनकी ओर से ईरानी सेना को निशाना बनाकर किए गए हमले पूरे हो चुके हैं। इस दौरान वायु रक्षा क्षेत्रों, बारूदी सुरंगों की क्षमता वाली जगहों और संचार संबंधी केंद्रों सहित कई प्रमुख स्थानों को निशाना बनाया गया। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमरीकी हमले में कोहिस्ताक शहर में एक शादी समारोह के दौरान एक घर को भी निशाना बनाया गया, जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई और 50 से अधिक लोग घायल हो गए। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में चेतावनी दी है कि ईरान की ओर से इस हमले के जवाब में किसी भी प्रकार की कार्रवाई का और भी कड़ा जवाब दिया जाएगा। नेपाल में 19 सदस्यीय भारतीय फोरेंसिक दल ने फोरेंसिक विशेषज्ञों के साथ मिलकर बाढ़ से प्रभावित लोगों की पहचान में सहायता के लिए DNA के नमूनों की जांच शुरू कर दी है। नेपाल में आई बाढ़ में जानमाल का भारी नुकसान हुआ है और बड़ी संख्या में लोग लापता हो गए हैं। नेपाल पुलिस ने बताया कि कल शाम तक 1068 शव बरामद किए गए, जिनमें से 400 शवों के केवल आंशिक अवशेष ही मिले, जिससे पहचान प्रक्रिया जटिल हो गई। बाढ़ के बाद मृतकों की संख्या लगातार बढ़ रही है, इसीलिए अधिकारियों ने पहचान के प्रयासों में सहायता के लिए कई लावारिस शवों से DNA नमूने एकत्र किए हैं। चितवन जिले में अब तक सबसे अधिक शव बरामद हुए हैं। पहचान के लिए DNA नमूने एकत्र करने के बाद अधिकारियों ने नदी किनारों पर खुले स्थानों में सैकड़ों शवों को दफना दिया है। नेपाल में आई त्रासदी के बाद बिहार के सीमावर्ती जिलों में भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि भागलपुर में नदी का जलस्तर बढ़ने और कटाव के कारण स्थिति गंभीर बनी हुई है।
7: गंगा के तेज कटाव के चलते नवगछिया प्रखंड में वर्षों पुराने दुर्गा मंदिर, हनुमान मंदिर और करीब 500 मीटर लंबा जमींदारी बांध गंगा में समा गया है। प्रभावित इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि गंगा की धारा में अप्रत्याशित बदलाव से कटाव गंभीर हो रहा है।
8: भागलपुर में खरीक ब्लॉक का शंकरपुर गाँव है, वहाँ पे गंगा की धारा कुछ बदलने की प्रवृत्ति हो रही है। यह बात सही है की स्थिति वहाँ पर जो है उससे थोड़ा खतरा बना हुआ है, लेकिन हमारे सभी वरीय पदाधिकारी गए हुए हैं।
7: इधर सारण, वैशाली, बेगूसराय, बक्सर, जहानाबाद, नवादा और औरंगाबाद में प्रमुख नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी से कई स्थानों पर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: वहीं छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में तेज बारिश का अनुमान लगाया है। विभाग के अनुसार आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, कर्नाटक और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में छिटपुट बारिश की संभावना है, जबकि कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में तेज बारिश हो सकती है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज छत्तीसगढ़ के रायपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के तीसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। इस दीक्षांत समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर, सुपर स्पेशलिटी डॉक्टरेट और स्वास्थ्य विज्ञान कार्यक्रमों से उत्तीर्ण छात्रों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और आपसी हितों के सभी क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत और अमेरिका महत्वपूर्ण खनिजों के विषय में और अधिक मिलकर काम करने के लिए सहमत हो गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट के बीच हुई बैठक के बाद इस पर सहमति बनी। इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच लंबे समय से चली आ रही आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। भारत के शटलर लक्ष्य सेन, किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा आज ग्वांगडोंग प्रांत के शेंजेन में आयोजित चाइना मास्टर्स सुपर 750 बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत करेंगे। शीर्ष वरीयता प्राप्त सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी भी पुरुष युगल में खेलते नजर आएंगे। इससे पहले भारत की उन्नति हुड्डा कल टूर्नामेंट से बाहर हो गयी। हुड्डा महिला एकल के पहले दौर में दक्षिण कोरिया के विश्व नंबर 12 किम गांग यून से सीधे गेम में 10-21, 18-21 से हार गयी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अफगानिस्तान के साथ 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। कप्तान श्रेयस अय्यर होंगे, उपकप्तान तिलक वर्मा को बनाया गया है। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी भी टीम का हिस्सा हैं। 13 सितंबर को पहला मैच खेला जाएगा, दूसरा मैच 15 सितंबर को, सीरीज का अंतिम मैच 17 सितंबर को खेला जाएगा। तीनों मैच नई दिल्ली में खेले जाएंगे।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी @AIRNews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
9: धन्यवाद फरहत। वैश्विक चुनौतियों के बीच विकास की गति जारी रखने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने दिया स्वदेशी का मंत्र, एक बार फिर से सोना खरीदारी और विदेश भ्रमण से दूर रहने को कहा। दैनिक जागरण सहित सभी अखबारों की सुर्खी है। नदियों का जलस्तर बढ़ने के बीच नेपाल में बाढ़ की चेतावनी, जनसत्ता की खबर है। अमर उजाला ने वहां की तस्वीरें प्रकाशित करते हुए लिखा है, नेपाल में जल प्रलय। पत्र ने दक्षिण पश्चिम मानसून के सक्रिय होने का समाचार भी दिया है। मौसम का कहर, उत्तराखंड में 11 की मौत, 19 राज्यों में भारी बारिश के आसार। छत पर मुफ्त सोलर पैनल लगाएगी सरकार, औसत बिजली खपत 400 यूनिट होने पर मिलेगा फायदा, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। दिल्ली में घर बैठे ही मोबाइल से संपत्ति की रजिस्ट्री करा सकेंगे, हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है, रजिस्ट्री होते हुए दस्तावेज खरीदार के डिजी लॉकर पहुंच जाएंगे। एआई ने बढ़ा दी वेबसाइटों की मुश्किलें, गूगल सर्च नहीं, यूजर्स सीधे एआई से पूछ रहे हैं सवाल, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। जनसत्ता ने नादिया में जन्माष्टमी के त्यौहार से पहले भगवान कृष्ण की मूर्ति को अंतिम रूप देते हुए कलाकार की मनमोहक तस्वीर प्रकाशित की है। डिब्बा बंद भोजन का आंत का कैंसर भी बढ़ा रहा है। एम्स के अनुसार हर तीसरे व्यक्ति को गैस्ट्रो की परेशानी, खराब खानपान और जीवन शैली वजह है, हिंदुस्तान में है।

0: पेट को स्वस्थ रखने के लिए पानी का अधिक सेवन और फाइबर युक्त भोजन लेने की दी सलाह।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से स्वदेशी उत्पादों को अपनाने और सोने की अनावश्यक खरीद तथा विदेश में विवाह आयोजन से बचने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सरकार ने चीनी के

0: लोगों की आवाज़ सुनी गई। भारतीय फोरेंसिक टीम ने नेपाल में बाढ़ के पीड़ितों की पहचान के लिए डीएनए जांच शुरू की। और बैडमिंटन में भारत के लक्ष्य सेन, किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा आज शेंजेन में चाइना मास्टर सुपर 750 में अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिन्यूज कॉल टू एम्ब्रेस स्वदेशी गुड्स एंड अवॉइड अननेसेसरी परचेज ऑफ गोल्ड एंड डेस्टिनेशन वेडिंग्स अब्रॉड। Prime Minister to address valedictory session of departmental summit of Jal Shakti Ministry in New Delhi today. Government reduces stock holding limit of sugar from 4 to 2,000 quintals. US begins fresh strikes on IRGC targets inside Iran, explosions heard in Bandar Abbas and Hormuz. Indian forensic team begins DNA analysis to identify flash flood victims in Nepal. And India's leading shuttlers Lakshya Sen, Kidambi Srikanth and Tanvi Sharma to begin their campaigns at China Master Super 750 in Shenzhen today. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has renewed his call to embrace Swadeshi goods and avoid unnecessary purchase of gold and destination weddings abroad. In a video message, the Prime Minister asked Indians to shun leisure trips abroad, avoid getting married overseas, and refrain from buying gold unless necessary.
2: स्वदेशी का मंत्र वोकल फॉर लोकल, विदेशों की यात्राएं अगर घूमने फिरने जाते हैं तो नहीं करना चाहिए। शादी ब्याह विदेशों में करते हैं, नहीं करना चाहिए। मेड इन इंडिया के मंत्र को जीना चाहिए और जरूरत न हो तो सोना भी नहीं खरीदना चाहिए। हम जितना ज्यादा स्वदेशी पर बल देंगे, जितना आत्मनिर्भर पर बल देंगे, मुझे पक्का विश्वास है जब आजादी के 100 साल होंगे, हम हमारी युवा पीढ़ी को विकसित भारत सुप्रत करेंगे।
1: मिस्टर मोदी कंग्रेचुलेटेड द कंट्री ऑन रिकॉर्डिंग 7.8% इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्पोक ऑफ द नीड टू प्रमोट सेल्फ रिलायंस एंड गिव ग्रेटर एम्फेसिस टू स्वदेशी प्रोडक्ट्स। The Prime Minister said, India is progressing rapidly despite global uncertainty, wars, crises and disruptions to supply chains.
2: देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। 7.8% ग्रोथ, देश खुशियों से भर गया है। लेकिन देशवासियों को मैं बधाई देता हूँ उनके संकल्प शक्ति के लिए, उनके पुरुषार्थ के लिए। एक सामूहिक शक्ति का एक प्रतिबिंब है। दुनिया युद्ध में डूबी हुई है, चारों तरफ युद्ध की खबरें आ रही, विश्व संकटों से घिरा हुआ है, सप्लाई चेन पूरी तरह डिस्टर्ब है। 2020 में कोविड काल से लेकर अब तक कहीं पर भी स्थिरता नजर नहीं आ रही, उसके बावजूद भी भारत तेज गति से प्रगति कर रहा है।
1: Taking a swipe at his critics, he said some people within the country drowned in an atmosphere of despair are spreading the lies all around.
2: भारत के भीतर भी निराशा की गर्त में डूबे हुए लोग, झूठ की गुंज, चारों तरफ निराशा फैलाने में लगे हुए, इन सारी चीजों को पार करते हुए, उन सभी बातों को चीर करके देश ने 7.8% ग्रोथ हासिल किया है। हमें इस गति को बनाए रखना, हमें बढ़ना भी है और इसके लिए आत्मनिर्भर भारत बनना बहुत जरूरी है।
1: Prime Minister Narendra Modi will address the valedictory session of the Ministry of Jal Shakti's departmental summit in New Delhi today. The two-day departmental summit, which commenced yesterday, is the first in a series of departmental summits envisioned by the Prime Minister to strengthen the spirit of Team India and deepen cooperative federalism. The summit brings together the centre and states to deliberate on critical sectoral priorities and evolve time-bound action plans. The government has reduced the stock holding limit for sugar dealers from 4,000 quintals to 2,000 quintals, effective from 15th of this month till 30th of November this year. Our correspondent reports that the new stock limit is aimed to curb hoarding and speculative trading, protect consumer interest by ensuring adequate availability and price stability.
3: Currently, a stock holding limit of 4,000 quintals on sugar dealers across the country is effective from 1st of the last month. Under the amended provisions, a sugar dealer shall not hold any stock for a period

0: किया गया था। दिल्ली से शिवांग मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
1: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन रायपुर के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स के तीसरे जलसे तकसीम असनाद में शिरकत के लिए आज रायपुर का दौरा करेंगे। ये तकरीब इस इदारे की तालीमी सफर में एक अहम संग मील होगी, जिसमें मुमताज शख्सियतों की मौजूदगी में तलबा को डिग्रियां तफीस की जाएंगी। अमरीका ने ईरान के अंदर सिपाही पासदारान इनकलाब IRGC के ठिकानों पर ताज़ा हमले शुरू कर दिए हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक बंदर अब्बास, हुरमुस, जिरोफ्ट, जजीरा, कोनार्का, चाबहार और लावान में धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंट कॉम ने कहा है कि इसने ईरान के फौजी ठिकानों के खिलाफ हमलों का एक मरहला मुकम्मल कर लिया है, जिनमें फिजाई दिफाई तनसीबात, बारूदी सुरंगें बिछाने की सलाहियतें और मौसलाती मराकज समेत दीगर ठिकाने शामिल थे। इसके जवाब में ईरान के सिपाही पासदारान इनकलाब IRGC ने उर्दुन में वाकई अमरीकी फौजी कैंप टितिन पर हमला करने का दावा किया। 19 अरकान पर मुश्तमिल एक भारतीय फॉरेंसिक टीम ने फॉरेंसिक माहिरीन के साथ नेपाल में हालिया अचानक सैलाब से मुतासरा लोगों की शिनाख्त में मदद की खातिर DNA सैंपल्स की जांच शुरू कर दी है। भारतीय सफारतखाना ने बताया कि इस टीम ने काठमांडू वादी के खुमलटार इलाके में नेपाल पुलिस सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी और नेशनल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में तजजिए का काम शुरू किया है। भारतीय फोरेंसिक टीम की तैनाती हालिया अचानक आने वाले सैलाब के बाद नेपाल की मदद की खातिर जारी कोशिशों का हिस्सा है। नेपाल के वजीर आजम बालेंद्र शाह ने कहा है कि पिछले हफ्ते तिब्बत से भोटेकोशी दरिया के रास्ते रसुआ में दाखिल होने वाला तबाहकुन सैलाब आबोहवा की तब्दीली के बाईस आया। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने हिमालयी खित्ते के दर्जे हरारत में 1.8 डिग्री इजाफे का हवाला दिया। भारत और अमेरिका ने वजीर खजाना निर्मला सीतारमन और अमेरिका के वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट के दरमियान मीटिंग के बाद अहम मादनियात पर करीबी तालमेल के साथ काम करने पर इत्तेफाक किया। बेल्जियम के वजीर आजम बार्ट डी वेवर आज से भारत के 3 रोजा दौरे पर रहेंगे। अपने दौरे के दौरान वो वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ दो तरफा तालुकात के तमाम पहलुओं और बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई व आलमी उमूर पर बातचीत करेंगे। महकमे मौसमियात IMD ने आज छत्तीसगढ़, मशरकी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ मकामात पर शदीद से बहुत शदीद बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बैडमिंटन में भारत के सरकर्दा खिलाड़ी लक्ष्य सेन, किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा आज चीन के ग्वांगडोंग सूबे के शेनजेन में शुरू होने वाले चाइना मास्टर्स सुपर 750 टूर्नामेंट में अपनी मुहिम का आगाज करेंगे। आला दर्जे के खिलाड़ी सत्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी भी मर्दों के डबल्स मुकाबले में खेलते नजर आएंगे। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर।
2: शुक्रिया फैसल। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने शंघाई तआवुन तंजीम के सरबराह इजलास से मुतालिक खबरों को शह सुर्खियों में जगह दी है। रोजनामा इनकलाब ने बिश्केक में शंघाई तआवुन तंजीम के 26वें सरबराह इजलास के इनेकाद से मुतालिक खबर को नुमाया तौर पर शाये करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस बयान को नुमाया किया है कि दुनिया को दहशतगर्दी के नेटवर्क के खिलाफ मुत्तहिद होना होगा। वजीर आजम मोदी के इस तबसरे को भी आज के अखबारात ने अहमियत के साथ शाये किया है कि आलमी बहरान के दौरान मुल्क की GDP में 7.8% का इजाफा हुआ, ये शहरियों की मेहनत का नतीजा है। गोवा दिल्ली फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग की खबर को इनकलाब और प्रताप समेत कई दीगर अखबारात ने अहमियत के साथ शाये किया है।
1: आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर स्वदेशी मसनूआत अपनाने और गैर जरूरी तौर पर सोना खरीदने और बैरून मुल्क शादियों की तकरीबात मुनाकिद करने से गुरेज करने की अपील की है। वजीर आजम आज नई दिल्ली में जल शक्ति की वजारत के महकमा जाती इजलास के अख्तितामी सेशन से खिताब करेंगे। हुकूमत ने चीनी के जखीरे की हद 4000 क्विंटल से कम करके 2000 क्विंटल कर दी है। अमेरिका ने ईरान के अंदर सिपाही पासदारान इनकलाब IRGC के ठिकानों पर नए हमले शुरू किए। बंदर अब्बास और हुरमुज में धमाकों की आवाजें सुनी गई। भारत की फोरेंसिक टीम ने नेपाल में अचानक आने वाले सैलाब के महरुकीन की शनाख्त के लिए डीएनए जांच शुरू कर दिया है। और भारत के सरकर्दा बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन, किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा आज शेंजेन में मुनाकिदा चाइना मास्टर्स सुपर 750 टूर्नामेंट में अपनी मुहिम का आगाज करेंगे। इसके साथ ही यह खबरनामा खत्म हुआ।
0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। प्रस्तुत है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा। अजय पी झा से सुनेंगे आप गिटार वादन, राग होगा नट भैरव।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेग 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, साइंस

0: अभी आप सुन रहे थे पंजाबी प्रोग्राम मिट्टी दी महक। स्टूडियो की घड़ी में 10 बजने को हैं। अब से कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में केंद्र और राज्यों को एक साथ लाकर महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए साझा जिम्मेदारी को बढ़ावा देना और ये सुनिश्चित करना है कि विचार विमर्श से शासन और सेवा वितरण में मापने योग्य सुधार हो सकें। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर लोगों से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने, सोने की अनावश्यक खरीद और विदेशों में शादी ब्याह समारोह आयोजित करने से बचने का आह्वान किया है। एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि देश के युवा आज जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं उससे उनके सपने साकार होंगे।
1: स्वदेशी का मंत्र वोकल फॉर लोकल, विदेशों की यात्राएं अगर घूमने फिरने जाते हैं तो नहीं करना चाहिए, शादी ब्याह विदेशों में करते हैं नहीं करना चाहिए, मेड इन इंडिया के मंत्र को जीना चाहिए और जरूरत न हो तो सोना भी नहीं खरीदना चाहिए। हम जितना ज्यादा स्वदेशी पर बल देंगे, जितना आत्मनिर्भर पर बल देंगे, मुझे पक्का विश्वास है जब आजादी के 100 साल होंगे हम हमारी युवा पीढ़ी को विकसित भारत सुप्रत करेंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता, युद्धों, संकटों और आपूर्ति श्रृंखलाओं में बाधाओं के बावजूद देश तीव्र गति से प्रगति कर रहा है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने तथा स्वदेशी उत्पादों के उपयोग पर अधिक बल देने की आवश्यकता जतलाई। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और आपसी हितों के सभी क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज छत्तीसगढ़ के रायपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के 3रे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर, सुपर स्पेशलिटी, डॉक्टरेट और स्वास्थ्य विज्ञान कार्यक्रमों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएगी। सरकार ने प्याज के मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए कांदा एक्सप्रेस और सड़क परिवहन के माध्यम से बफर स्टॉक की सुनियोजित और लक्षित आपूर्ति शुरू कर दी है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि व्यापक उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 30 से अधिक ट्रकों की तैनाती के साथ 19 शहरों में खुदरा हस्तक्षेप प्रयासों का विस्तार किया गया है। मंत्रालय ने बताया कि नासिक से कांदा एक्सप्रेस से 450 मीट्रिक टन प्याज दिल्ली पहुंच गई है और बाद में इसे वाराणसी, लखनऊ, चंडीगढ़, अमृतसर और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में वितरित किया गया है। मंत्रालय ने कहा कि 840 मीट्रिक टन प्याज कल चेन्नई पहुंची और इसे तमिलनाडु के विभिन्न जिलों में वितरित किया जाना है। सरकार ने चीनी व्यापारियों के लिए भंडार रखने की सीमा 4000 क्विंटल से घटाकर 2000 क्विंटल कर दी है। ये नियम इस महीने की 15 तारीख से इस वर्ष 30 नवंबर तक प्रभावी रहेगा। हालांकि कोलकाता और उसके आसपास के महानगरीय क्षेत्रों की विशिष्ट बाजार आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भंडार रखने की सीमा 4000 क्विंटल ही रहेगी। नेपाल में आई त्रासदी के बाद बिहार के सीमावर्ती जिलों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। भागलपुर में नदी का जलस्तर बढ़ने और कटाव के कारण स्थिति गंभीर बनी हुई है। उधर नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1000 से अधिक हो गई है। प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव अभियान जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और झारखंड में कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी आज तेज बारिश का अनुमान है। और खेलों में भारत के शटलर लक्ष्य सेन, किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा आज चीन के ग्वांगडोंग प्रांत के शेंजेन में आयोजित चाइना मास्टर्स सुपर 750 बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत करेंगे। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अफगानिस्तान के साथ 3 मैचों की T20 श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की है। 13 सितंबर को इस श्रृंखला का पहला मैच नई दिल्ली में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेनू कटारिया। Prime Minister Narendra Modi has renewed his call to embrace Swadeshi goods and avoid unnecessary purchase of gold and destination weddings abroad. In a video message, the Prime Minister asked Indians to shun leisure trips abroad, avoid getting married overseas and refrain from buying gold unless necessary. Mr. Modi congratulated the country on recording 7.8% economic growth and spoke of the need to promote self-reliance and give greater emphasis to Swadeshi products. The Prime Minister said India is progressing rapidly despite global uncertainty, wars, crises and disruptions to supply chains.
1: देशवासियों को बहुत बहुत बधाई 7.8% ग्रोथ देश खुशियों से भर गया है लेकिन देशवासियों को मैं बधाई देता हूं उनके संकल्प शक्ति के लिए उनके पुरुषार्थ के लिए एक सामूहिक शक्ति का एक प्रतिबिंब है दुनिया युद्ध में डूबी हुई है चारों तरफ युद्ध की खबरें आ रही विश्व संकटों से घिरा हुआ है सप्लाई चेन पूरी तरह डिस्टर्ब है 2020 में कोविड काल से लेकर अब तक कहीं पर भी स्थिरता नजर नहीं आ रही उसके बावजूद भी भारत तेज गति से प्रगति कर रहा है
2: Taking a swipe at his critics, he said some people within the country, drowned in an atmosphere of despair, are spreading the lies all around. The government has reduced the stock holding limit for sugar dealers from 4,000 quintals to 2,000 quintals, effective from the 15th of this month till the 30th of November this year. Our correspondent reports that the new stock limit is aimed to curb hoarding and speculative trading, protect consumer interest by ensuring adequate availability and price stability. Vice President C.P. Radhakrishnan will visit Raipur today to attend third convocation of All India Institute of Medical Sciences, AIIMS, Raipur. The convocation will mark a significant milestone in the institute's academic journey, with degrees being conferred on graduating students from undergraduate, postgraduate, super speciality, doctoral and allied health sciences programs in the presence of distinguished dignitaries. A 19-member Indian forensic team has begun analyzing DNA samples alongside forensic experts to assist in identifying people affected by the recent flash floods in Nepal. Indian Embassy said that the team commenced the analysis at the Nepal Police Central Forensic Science Laboratory and the National Forensic Science Laboratory in the Humaltar area of Kathmandu Valley. The Indian experts are working with their counterparts to speed up the processing of DNA samples collected from flood-affected areas and help establish the identities of victims and missing persons. The deployment of Indian forensic team is part of ongoing efforts to support Nepal in the aftermath of the recent flash floods, which caused significant loss of life and left several people unaccounted for. India continues to extend all possible assistance to Nepal in the ongoing rescue and relief efforts. The fifth Indian aircraft carrying relief and rescue assistance has departed for Nepal today. In a social media post, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said that the aircraft is carrying an 11-member rescue team equipped with specialized equipment along with 5.5 tons of essential medicines. India and the World Bank Group have discussed about expanding their partnership beyond traditional lending with a sharper focus on infrastructure finance, digital public infrastructure, tourism and the mobilization of private capital. Finance Minister Nirmala Sitharaman met World Bank Group President Ajay Banga on the sidelines of the G20 Finance Ministers and Central Bank Governors meeting in Asheville, U.S. U.S. has begun fresh strikes on Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC, targets inside Iran. Iranian media reported that explosions were heard in Bandar Abbas, Hormuz, Asalueh, Zeroft, Kishim Island, Konark, Jabahar, Jask, Sirik and Lavan. The U.S. Central Command, CENTCOM, said it completed the wave of strikes against Iranian military targets, which included air defense sites, mine-laying capabilities and communication sites, among others. And in badminton, Indians' leading shuttlers Lakshya Sen, Kidambi Srikanth and Tanvi Sharma will begin their campaigns today at the China Masters Super 750 in Shenzhen, Guangdong Province. And that is the end of this news bulletin.

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी पसंद।

जी हाँ दोस्तों, ये अभी गीत जो आप सुन रहे थे था आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद, और आपकी पसंद कार्यक्रम को लेकर हाजिर हूँ मैं आज आपके साथ, आपकी दोस्त शोभा शर्मा। तो स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार, और स्वागत है आप सभी का हम आपके अपने कार्यक्रम में। जी हाँ, आपकी पसंद आपका ही कार्यक्रम है, क्योंकि आपके पसंद के हम गीत जो सुनवाते हैं और हमारे श्रोताओं की पसंद होती भी लाजवाब है। तभी तो कार्यक्रम इतना हसीन बनता है और इतना प्यारा बनता है, और बहुत से श्रोता हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं। तो बिल्कुल हमें मैसेजेस पढ़ने की बहुत ज़्यादा जल्दी है, और जो नए श्रोता है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो उसके लिए भी हम अपना ईमेल आईडी बता देते हैं। हमारा ईमेल आईडी है IP Radio।

गाना सुना पर्दा हटा दो तो यूँ कह लो कि हमारी जो ये प्रोग्राम है इससे भी पर्दा उठ चुका है। और प्रोग्राम में बहुत सारे गीत जो हमारे श्रोताओं ने भेजे हैं अपनी पसंद के, वो हम बिल्कुल सुनवाने वाले हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम होता है जहाँ गीतों का चुनाव हमारा नहीं आपका होता है, और आपके मैसेजेस ही इस कार्यक्रम को खास बनाते हैं। और जब हमारे पास आप ये मैसेजेस भेजते हैं तो हमें लगता है कि एक जिस संगीत के ज़रिए ना हमसे जुड़ने वाले दोस्तों का एक बहुत बड़ा सा परिवार बन गया है और वो हमारे साथ है। तो बिल्कुल अब मैसेजेस भी पढ़ लेते हैं और फिर गीत भी होंगे जो आप भेजेंगे। चलिए, ये मैसेज हमें आया है किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास और आशा देवी का, और ये हमारे साथ जुड़े हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेरा जहां, आज़ाद नगर, लक्सर, हरिद्वार, उत्तराखंड से। व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़े हैं भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, देवेंदु भूषण, संस्कृति और पौरुष। और ये मैसेज हमें आया है उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश जी का, और बहुत ही प्यारे गीत की इन्होंने फरमाइश की है। बिल्कुल हम आपके गीत को ज़रूर सुनवाएंगे, और वाकई में छोटा हमारे को बहुत अच्छा लगता है जब आप अच्छे अच्छे गीत भेजते हैं और हमें भी सुनाने का और सुनने का मौका मिलता है। बिल्कुल, तो अगला जो मैसेज है उसे हम ले लेते हैं। ये मैसेज हमें आया है कलनौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा का, और अगला जो संदेश है वो संदेश हमें आया है, ये संदेश हम पढ़ चुके हैं, तो चलिए अगले और रुख करते हैं। ये है यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खडसे और विनोद खडसे का मैसेज, और अगला जो है ये संदेश है जय जिनेन्द्र श्रोता संघ परभनी महाराष्ट्र से रुपेश संघई, महेश संघई, प्रज्ञेश संघई और प्रितेश संघई का, और इनके पूरे संघई परिवार की ओर से ये हमें संदेश आया है। और तो चलिए अब सबकी पसंद पर हम सुन लेते हैं ये गीत।

बहुत ही प्यारा गीत मेरा साया फिल्म से, वाकई में लता आशा भोसले की आवाज़ और ये फिल्म भी काफ़ी हिट रही है, और साधना जी की तो एक्टिंग की क्या बात कहें। चलिए मैसेजेस की ओर भी रुख कर लेते हैं, गीत आते हैं तो हमें बिल्कुल उनकी याद भी आती है, और आज तो साधना जी की जयंती भी है। चलिए ये मैसेज आया है हमें कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से, ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय का। और अगला संदेश ले लेते हैं, ये संदेश हमें आया है जिला पीतल नगरी ग्राम दूलापुर उत्तर प्रदेश से, मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह की ओर से। और अगला जो संदेश हमें मिला है वो है बंजारा नागपुर महाराष्ट्र से, अनिल कोले, छाया और छाया जी का, और ये लिखते हैं धन्यवाद इनको शामिल करने के लिए। दोस्तों हम भी आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ते हैं। चलिए अगला मैसेज ले लेते हैं, ये आया है कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से, रवि कुमार, राहुल और रंजीत कौर, जय प्रकाश, राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशबद सिंह राहुल का। ये संदेश हमें आया है एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से, नारायण खर्चे और ललिता, गणेश, कार्तिक, संजना, परिका, साथ में इनके हैं स्वाति प्रयाग चौधरी, कुमारी लड्डू, देविका चौधरी, और लिख रहे हैं कि हमें किसी भी गीत में शामिल कीजिए। तो दोस्त आपका संदेश शामिल ज़रूर हमने किया है, आपके बिना कैसे हम कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए अगला मैसेज ले लेते हैं, ये हमें आया है बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से, तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन का, और इनके साथ चंडीगढ़ से जुड़े हैं राहुल खुराना, रचित खुराना, केशु खुराना, और ये लिखते हैं कि किसी भी सॉन्ग में हमें शामिल कर लें। तो आगे जो मैसेज हमें मिला है ये आया है नगर निगम वार्ड 28 नाज मंजिल महसौल सीतामढ़ी से, अकरम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अकरम, वसीम अकरम, रुबीना वसीम, आरिश वसीम, नदीम अकरम, शमीम अकरम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा, और इनके साथ हैं कलेर बिहार से मोहम्मद आसिफ खान और निकहत परवीन। चलिए आप सबकी पसंद पर सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

हमारा दिल लूटा, और आपके जो मैसेज है उसने हमारा दिल लूटा। वाकई में इतने सारे संदेश हमें आ गए हैं तो हम तो बस बहुत खुश हैं, एक एक करके सारे पढ़ डालेंगे ऐसे लग रहा है। तो जी हाँ बिल्कुल, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ कार्यक्रम आपकी पसंद में, और आज आपके साथ हूँ मैं आपकी दोस्त शोभा शर्मा। तो एक बार से फिर नमस्कार दोस्तों, चलिए मैसेज ले लेते हैं। ये मैसेज हमें आया है ऊपरकोट मोहल्ला चौखंटी बुलंदशहर से, मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शहनवास अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अब्बान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य की ओर से। और ये हमारे साथ जुड़े हैं भोपालगढ़ राजस्थान से, धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार जी। और अगला संदेश हमें आया है चंडीगढ़ सिटी से, सतीश अनेजा और विमला अनेजा का। और ये संदेश अगला ले लेते हैं, अलिंका डबरवाली से है बसंत सिंह और राजकुमार कुलदीप गांधी जी। और ये संदेश हमें आया सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से, टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप का। और इनके साथ हैं कालका से हमारे साथ जुड़े शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज जी। मुल्लांपुर दाखा से जुड़े हैं हमारे साथ राजेश जैन, बिट्टू जैन, संजीव जैन और गोटना जैन जी। बंजारा नागपुर महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े हैं अनिल, छाया, प्रियांश जी। और ये अगला जो संदेश है ये हमें आया है स्टेशन रोड जमशेदपुर से, हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, तमन्ना भाटिया का। ये लिख रहे हैं कि पूरे परिवार के साथ ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है। तो दोस्त बहुत अच्छी बात है, हमें भी अच्छा लगता है जब आप हमारे साथ जुड़ते हैं। चलिए अगला संदेश ले लेते हैं, ये आया है, ये हमें आया है संदेश बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से, ममता मारकंडे, संजय और बेबी किट्टू का। और ये हमारे साथ जुड़े हैं सतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से, हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखेलाल वर्मा जी। और अगला जो संदेश हमें आया है ये हमें आया है ख्याल बाज़ार पानीपत से, नरेश मल्होत्रा, नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो, कोयल मल्होत्रा, पापा जी, नानक चंद मल्होत्रा। और इनके साथ हैं शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू भाविक सिक्का जी। और अगला संदेश ले लेते हैं, ये हमें आया है बघेरा दुर्ग से, संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव, नामदेव समर्थ, नामदेव शौर्य, नामदेव। और अगला जो संदेश हमें आया है ये है लेवाई छत्तीसगढ़ से, गुलाब दास माणिकपुरी, राजा दास माणिकपुरी और रानी माणिकपुरी का। लिख रहे हैं कि हमें कार्यक्रम में गीत अच्छे लग रहे हैं। तो दोस्त ये आप ही सभी दोस्तों के पसंद के गीत हैं, तो वाकई लाजवाब तो होंगे ना। और अगला संदेश ले लेते हैं, ये हमें आया है जी हाँ, ये हमारे पास संदेश आया है टैगोर गार्डन नई दिल्ली से, रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा का। और इन्होंने कहा कि नैनो वाली ने सॉन्ग इन्हें बहुत पसंद आया। तो दोस्त बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सबकी जो श्रोता है उन्होंने हमें भेजा था इतना प्यारा संगीत, वो भी हम सुनवाने वाले हैं। चलिए थोड़े से मैसेजेस और ले लेते हैं दो तीन, और फिर उसके बाद आप सबकी पसंद के गीत सुनवाते हैं। ये संदेश हमें आया राजू अग्रवाल, केशव दक्ष, चौधरी वास, हिसार से। और अगला संदेश हमें आया है, ये संदेश हमें आया है

जी हाँ, बहुत से संदेश बार बार आते हैं तो हमें उन्हें हटाना ही पड़ता है। तो अगला संदेश ले लेते हैं। ये आया है पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक जी का। और गंज डंडवारा से मैसा जुड़े हैं शमशुल कमर राही, शाहीन, फातिमा, अदनान खान, अनु खान जी। आदर्श नगर मलौत पंजाब से मैसा जुड़े हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, निवान शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा और शाइना शर्मा जी। तो चलिए आप सबकी पसंद पर सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद, और आज आपके साथ हूं मैं, आपकी दोस्त शुभा शर्मा। जी हाँ, आपके मैसेजेस बिल्कुल कतार में हैं और उन्हें हम ले लेते हैं अपने इस कार्यक्रम में। यही तो हम करते हैं, आपके साथ जुड़ते हैं आपके मैसेजेस के ज़रिए। बिल्कुल, ये अगला जो मैसेज हमें आया है कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से। रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी और बेबी बॉय हिमाक्ष का, और हमारे साथ जुड़े हैं एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कागड़ा, पविता बोट, निखिल कागड़ा और तन्वी पोट जी। और अगला जो संदेश हमें आया है यह है जय जिनेन्द्र श्रोता संघ परभनी महाराष्ट्र से, रुपेश संघई, महेश संघई, प्रज्ञेश संघई और प्रितेश संघई का। और ये मैसेज हमें आया है, ये लिख रहे हैं कि संदेश ज़्यादा नहीं होते, कुछ साथी बार बार ही मैसेज भेजते हैं और हमें भी बार बार ही करना पड़ता है, नहीं तो हमारा मैसेज नहीं पढ़ा जा सकता। तो दोस्त, ऐसी कोई बात नहीं है, हम उन मैसेजेस को छोड़ देते हैं। ये मैसेज हमें आया राजू अग्रवाल, पंकज निर्मला का चौधरीवास से। और अगला जो संदेश हमें आया है ये हमें आया है ग्राम बा पोस्ट मुंगीसापुर कानपुर देहात से, रामेश्वर कठेरिया, उमा कांति कठेरिया, कमलेश कठेरिया और इनके पुत्र वधु निशा कठेरिया का, पर प्रज्ञा कठेरिया, प्रतिमा कठेरिया, बेबू वेद बाबू कठेरिया, समस्त कठेरिया परिवार की ओर से इन्होंने हमें संदेश भेजा है, लिखा है कि हमें ये कार्यक्रम बहुत पसंद है। तो दोस्त, शुक्रिया आपको इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए, हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं अपना आपका। और अगला जो संदेश हमें आया है शांतिनगर सोनीपत से है सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी और सिमरन मुखी का ना। और ये लिख रहे हैं कि एक प्यारा से इन्होंने गीत भेजा है, वो सुनाइए। बिल्कुल ज़रूर, हम कोशिश करेंगे आपके संगीत को बिल्कुल क्यों करके बैठे सुनवाएंगे। अगला संदेश ले लेते हैं, यह है जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकैस्ट्रो, जोजी डिकैस्ट्रो, पॉल डिकैस्ट्रो, विलिस डिकैस्ट्रो का। और ये हमारे साथ जुड़े हैं गाँव जाखोद से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार खटक, कुमारी पूजा खटक जी।

अगला संदेश हमारे को आया है दाऊद सराय सहारनपुर से, अनवर सावरी, शन्नो सावरी, मुदस्सिर सावरी, मुजक्कर सावरी और ज़रीफ़ अंसारी का, और ये हमारे साथ जुड़े हैं संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल साहिनी, और ये हैं पिंगावाला चौक, गोरैया, जालंधर, पंजाब से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगला संदेश हमें आया तरंगी से, भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीत वर्मा और रुद्र वर्मा का, और ये हमारे साथ जुड़े हैं वीरगाम गुजरात से, अजीत भवसार, प्रमिला भवसार, भावेश कुमार भवसार और सन्नी भवसार जी, और ये हमारे साथ जुड़े हैं रजक मोहम्मद, समीम बेगम, इमरान खान, हनुमानगढ़ राजस्थान से, ऑक्सीजन पार्क, राहुल नगर, अमरावती से ये मैसेज हमें आया सिद्धार्थ गोंडाने और अर्चना प्रणय, प्रसिद्धि हीरामन शिंदे जी का, और ये संदेश हमें आया पांडर कवड़ा से, अनिल बुरांडे, उषा बुरांडे, अनुश्री बुरांडे, धनश्री बुरांडे का, और हमारे साथ जुड़े हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से छन्नूलाल श्रीवास, अनीता पुष्पा श्रीवास, अंजू योगिता श्रीवास, रज्जन साहू, हेमंत नामदेव, धर्मदास बाधवानी जी, और अगला जो संदेश है वो हमें आया है जिला खरगोन सनावत मध्य प्रदेश से, मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान का, भाई राजकुमार बुडाना, और इनके साथ जुड़े हैं सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, रितु, मुकेश, जगताप जी। तो चलिए आप सबकी पसंद पर सुनते हैं ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे हमराज फिल्म का ये गीत आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाज़ में, और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद। और आपके मैसेजेस अब हम जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। ये संदेश हमें आया है गांव फरासी जिला हिसार से, राजकुमार डुड्डी, प्रमोद कुमार डुड्डी, पुष्पेंद्र कुमार डुड्डी जी का। और ये हमारे साथ जुड़े हैं छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा जी। और ये हमारे साथ जुड़े हैं रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से, लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी जी। और ये संदेश हमें आया है मॉडल टाउन करनाल से, सुधीर, नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति का, किरण ठाकुर, जो जग्गी दुआ जी, जग्गी और जग्गी दुआ जी का संदेश है। ये लिख रहे हैं कि इन्हें प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, तो शुक्रिया दोस्त। अगला जो संदेश हमें आया है झज्जर हरियाणा से, बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया और रजत भाटिया और मयंक भाटिया का। और ये संदेश हमें आया है दिव्यांशु यादव, संजय ढिंगिया, अनिल जैन, राधा नामदेव और दर्शन भाई का, मेरठ कैंट से। ये मैं संदेश, और इनके साथ दिग्दर्शन और कविता गौर जी भी हैं। अगला जो संदेश है ये हमें आया है, ये संदेश हम ले चुके हैं, चलिए अगला संदेश लेते हैं। ये हमें संदेश आया है वडिंगखेड़ा पंजाब से, मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा का। और हमारे साथ जुड़े हैं हमारे श्रोता मलयाना सरधना मेरठ से, अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवियम जैन और सरधना मेरठ से है हमारे साथ जुड़े आदि जैन, अंश जैन, भव्य जैन जी। और अगला संदेश हमें आया है देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी पूजा तामुरिया, राधिका और प्रभा देवी तामुरिया और साथ में हैं इनके पोते मास्टर अल कबीर जी। ये हमें संदेश आया है कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से। तो चलिए आप सबकी पसंद पर सुनते हैं ये गीत।

बहुत ही प्यारा गीत, हमारे श्रोताओं की पसंद है ही लाजवाब, नया गीत हमने सुना। और संदेश लेते हैं, ये संदेश हमें आया है दिलावर खान साहब, मोहतरमा हसीन बानो, एलिजे नायब और लड्डू का। ये है रघुवीर नगर दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए। और अगला संदेश हमें आया है, ये संदेश हमें आया है, जी हाँ दोस्त, संदेशों को हम आगे बढ़ाते हैं क्योंकि कई संदेश तो हम बार बार ही ले नहीं सकते ना, तो चलिए ये अगला संदेश ले लेते हैं। ये हमें आया है बीबी राणा का, नेहरू विहार दिल्ली से। और अगला जो संदेश है वो हमें आया है सैयद मसरूर साइना हसन अक्सादीप का, नाज़िया आफिया इब्राहिम सद्दाम का, गांव कुमार हेड़ा सहारनपुर से। और हमारे साथ जुड़े हैं, ये है छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा जी। तो दोस्त संदेश तो बहुत सारे होते हैं और हमने कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा संदेश आप

के लिए जाएं, पर अब वक्त भी हो चला है। जल्दी से और संदेश ले लेते हैं और फिर हम आपसे इजाज़त भी चाहेंगे। ये संदेश आया हमें राजू अग्रवाल, केशव प्रियांशी, चौधरी वास, हिसार से। और अगला संदेश हमें ये आया है, ये संदेश भी हो चुका है तो अगला संदेश ले लेते हैं जल्दी से। ये हमें आया है मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन का। और बहुत सारे संदेश हम ले चुके हैं, पर अब वक्त जो है वो हमें इशारा कर रहा है कि हम आपसे चाहें ये इजाज़त लेंगे विदा, क्योंकि बिल्कुल घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार दोस्तों, और फिर मिलेंगे कार्यक्रम के साथ। और वाकई में हम बहुत प्यार करते हैं आपसे और आप भी हमसे करते हैं। कुछ ऐसे ही जज्बातों भरा ये गीत बिल्कुल आपके लिए छोड़े जा रही हूँ। कार्यक्रम आपकी पसंद ने, तो मुझे यानी शुभा शर्मा को आप दीजिए इजाज़त। नमस्कार, और बिल्कुल इस गीत को ज़रूर सुनिए।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी पसंद, और आइए अब सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में केंद्र और राज्यों को एक साथ लाकर महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए साझा जिम्मेदारी को बढ़ावा देना और ये सुनिश्चित करना है कि विचार विमर्श से शासन और सेवा वितरण में सुधार हो सके। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर लोगों से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने

0: सोने की अनावश्यक खरीद और विदेशों में शादी ब्याह समारोह आयोजित करने से बचने का आह्वान किया है। एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि देश के युवा आज जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं उससे उनके सपने साकार होंगे।
1: स्वदेशी का मंत्र वोकल फॉर लोकल, विदेशों की यात्राएं अगर घूमने फिरने जाते हैं तो नहीं करना चाहिए, शादी ब्याह विदेशों में करते हैं नहीं करना चाहिए, मेड इन इंडिया के मंत्र को जीना चाहिए और जरूरत न हो तो सोना भी नहीं खरीदना चाहिए। हम जितना ज्यादा स्वदेशी पर बल देंगे, जितना आत्मनिर्भर पर बल देंगे, मुझे पक्का विश्वास है जब आजादी के 100 साल होंगे हम हमारी युवा पीढ़ी को विकसित भारत सुप्रत करेंगे।
0: प्रवर्तन निदेशालय भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के टोल प्लाजा पर कथित धोखाधड़ी के मामले में 14 परिसरों में छापेमारी कर रहा है। ये तलाशी धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA के तहत की जा रही है। ये परिसर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, जम्मू, मध्य प्रदेश, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR और कोलकाता में स्थित हैं। सरकार ने प्याज की कीमतों में मौसमी बढ़ोतरी को रोकने के लिए बफर स्टॉक से प्याज की आपूर्ति शुरू कर दी है। इसके लिए कांदा एक्सप्रेस और सड़क परिवहन का इस्तेमाल किया जा रहा है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया है कि 19 शहरों में खुदरा बिक्री के लिए 30 से अधिक ट्रकों को लगाया गया है। मंत्रालय के अनुसार नासिक से कांदा एक्सप्रेस से 450 मीट्रिक टन प्याज दिल्ली पहुँच गया है। इसे दिल्ली NCR क्षेत्र के अलावा वाराणसी, चंडीगढ़ और अमृतसर भेजा गया है। मंत्रालय ने बताया है कि 840 मीट्रिक टन प्याज चेन्नई पहुंच चुका है। इसे तमिलनाडु के विभिन्न जिलों में वितरित किया जाएगा। उधर सरकार ने चीनी व्यापारियों के लिए भंडार रखने की सीमा 4000 क्विंटल से घटाकर 2000 क्विंटल कर दी है। ये नियम इस महीने की 15 तारीख से इस वर्ष 30 नवंबर तक प्रभावी रहेगा। हालांकि कोलकाता और उसके आसपास के महानगरीय क्षेत्रों की विशिष्ट बाजार आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भंडार रखने की सीमा 4000 क्विंटल ही रहेगी। नेपाल में जारी बचाव और राहत कार्यों में भारत हर संभव मदद कर रहा है। आज नेपाल के लिए राहत और बचाव सामग्री लेकर 5वां भारतीय विमान रवाना हो गया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि विमान में 11 सदस्यीय बचाव दल और 5 टन से अधिक जरूरी दवाएं भेजी गई हैं। इस बीच नेपाल में आई त्रासदी के बाद बिहार के सीमावर्ती जिलों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। भागलपुर में नदी का जलस्तर बढ़ने और कटाव के कारण स्थिति गंभीर बनी हुई है। उधर नेपाल में बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 1000 से अधिक हो गई है। प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव अभियान जारी है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी आज तेज बारिश का अनुमान है। बैडमिंटन में भारत के किदाम्बी श्रीकांत आज चीन ओपन टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने पुरुष सिंगल्स के शुरुआती मैच में चीनी ताइपे के ची यू जिन को हराया। पुरुष सिंगल्स के एक अन्य मुकाबले में लक्ष्य सेन कनाडा के विक्टर लाई से 14-21-7-21 से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। भारत की मिक्स डबल्स जोड़ी ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो ने भी थाईलैंड के तोनाकोन साहेंग और तोनिचा साहेंग को हराकर अगले दौर में जगह बनाई। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अफगानिस्तान के साथ 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। 13 सितंबर को पहला मैच खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सबरस। सबरस कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुनते हैं लदित्ता मंशा की आवाज़ में ये गीत।

अब्दुल हमीद सावरी की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे ये गीत। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सबरस। सबरस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं अभिजीत सावंत की आवाज़ में एक और गीत।

अभिजीत सावंत की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे ये गीत। आप सुन रहे थे कार्यक्रम सबरस, और इसी के साथ ये कार्यक्रम इस गीत के साथ यहीं संपन्न होता है। और अब हम अपना अगला कार्यक्रम बता देते हैं, हम आपको सुनवाने वाले हैं वो है सुरमंदरी, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम, जिसमें आज आप सुनेंगे विदुषी शाश्वती मंडल का गायन, राग है जोगिया। तो आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सुरमंजरी के अंतर्गत आप सुन रहे थे विदुषी शाश्वती मंडल का गायन, राग था जोगिया। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। 12 बजने को हैं, अब से कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे। पहले हिंदी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे, ठीक उसके बाद होंगे अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने कहा है कि भारत में वर्तमान 7 से 8% की वृद्धि दर से आगे बढ़ने की क्षमता है। श्री बंगा ने वैश्विक ऊर्जा दबाव, व्यापार अनिश्चितता और अल नीनो के प्रभाव के बावजूद देश के मौजूदा आर्थिक प्रदर्शन को मजबूत बताया। अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों की बैठक के दौरान एक साक्षात्कार में श्री बंगा ने कहा कि नए विकास आंकड़े भारत की अर्थव्यवस्था की बुनियादी स्थिति की मजबूती को दर्शाते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक से अलग यूरोपीय अर्थव्यवस्था आयुक्त वाल्दिस द्रोम्बोस्किस से मुलाकात की। वित्त मंत्रालय के अनुसार दोनों पक्षों ने भारत यूरोपीय संघ आर्थिक और वित्तीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते और निवेश संरक्षण समझौते के लिए चल रही वार्ताओं पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में

0: केंद्र और राज्यों को एक साथ लाकर महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए साझा जिम्मेदारी को बढ़ावा देना और ये सुनिश्चित करना है कि विचार विमर्श से शासन और सेवा वितरण में सुधार हो सके। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर लोगों से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने, सोने की अनावश्यक खरीद और विदेशों में शादी ब्याह समारोह आयोजित करने से बचने का आह्वान किया है। एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि देश के युवा आज जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं उससे उनके सपने साकार होंगे।
1: स्वदेशी का मंत्र वोकल फॉर लोकल, विदेशों की यात्राएं अगर घूमने फिरने जाते हैं तो नहीं करना चाहिए, शादी ब्याह विदेशों में करते हैं नहीं करना चाहिए, मेड इन इंडिया के मंत्र को जीना चाहिए और जरूरत न हो तो सोना भी नहीं खरीदना चाहिए। हम जितना ज्यादा स्वदेशी पर बल देंगे, जितना आत्मनिर्भर पर बल देंगे, मुझे पक्का विश्वास है जब आजादी के 100 साल होंगे हम हमारी युवा पीढ़ी को विकसित भारत सुप्रत करेंगे।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कल से 3 दिन की यूक्रेन और पोलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री सिबिहा और पोलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री राडोस्लाव सिकोर्स्की के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना है, साथ ही क्षेत्रीय घटनाक्रमों और आपसी हित के मुद्दों पर भी चर्चा होगी। प्रवर्तन निदेशालय अवैध सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म पेरीमैच और अन्य के मामले में विभिन्न राज्यों में 12 स्थानों पर छापेमारी कर रहा है। धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत महाराष्ट्र में 5, दिल्ली NCR में 4, राजस्थान में 2 और गुजरात में 1 स्थान पर कुछ भुगतान कंपनियों के परिसरों में तलाशी ली जा रही है। इन कंपनियों ने नकद प्रबंधन व्यवस्था एजेंटों, चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सचिवों के माध्यम से सट्टेबाजी की रकम को नकदी में परिवर्तित किया। इन्होंने अवैध प्रेषण के माध्यम से देश से बाहर रकम भेजने में मदद की है। प्रवर्तन निदेशालय भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के टोल प्लाजा पर कथित धोखाधड़ी के मामले में 14 परिसरों में भी छापेमारी कर रहा है। ये तलाशी धनशोधन निवारण अधिनियम के तहत की जा रही है। ये परिसर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, जम्मू, मध्य प्रदेश, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR और कोलकाता में स्थित हैं। नेपाल में जारी बचाव और राहत कार्यों में भारत हर संभव सहायता कर रहा है। आज नेपाल के लिए राहत और बचाव सामग्री लेकर 5वां भारतीय विमान रवाना हो गया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि विमान में 11 सदस्यीय बचाव दल और 5 टन से अधिक जरूरी दवाएं भेजी गई हैं। इस बीच नेपाल में बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 11,000 से अधिक हो गई है। प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव अभियान जारी है। भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग मजबूत करने के उपायों की समीक्षा के लिए भारत अफगानिस्तान संयुक्त कार्य समूह की बैठक हुई। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार कल हुई इस वर्चुअल बैठक में व्यापार को सुगम बनाने पर चर्चा हुई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Anuja Kumar. India continues to extend all possible assistance to Nepal in the ongoing rescue and relief efforts. The 5th Indian aircraft carrying relief and rescue assistance has departed for Nepal today. In a social media post, External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar said that the aircraft is carrying an 11-member rescue team equipped with specialized equipment along with 5.5 tons of essential medicines. Meanwhile, a 19-member Indian forensic team has begun analyzing DNA samples alongside forensic experts to assist in identifying people affected by the recent flash floods in Nepal. The Indian embassy said that the team commenced the analysis at the Nepal Police Central Forensic Science Laboratory and the National Forensic Science Laboratory in the Kutmaltar area of Kathmandu Valley. According to the Nepal Police, 1,068 people have been recovered by yesterday evening, of which 400 had been only partial remains, complicating the identification process. The police said 4,606 people remain unaccounted for, including 583 foreigners, raising concerns that the death toll could increase further. Prime Minister Narendra Modi will address the valedictory session of Departmental Summit of Jal Shakti Ministry in New Delhi today. The two-day departmental summit commenced yesterday is the first in a series of departmental summits envisioned by the Prime Minister to strengthen the spirit of Team India and deepen cooperative federalism. The summit is bringing together centre and states to deliberate on critical sectoral priorities and evolve time-bound action plans. The government has reduced the stock holding limit for sugar dealers from 4,000 quintals to 2,000 quintals, effective from the 15th of this month till the 30th of November this year. The new stock limit is aimed to curb hoarding and speculative trading, protect consumer interest by ensuring adequate availability and price stability. At present, a stock holding limit of 4,000 quintals on sugar dealers across the country is effective from 1st of August this year. The Enforcement Directorate is conducting search operations at 14 premises in connection with the alleged fraud in toll collection at the National Highways Authority of India, NHAI plazas. The searches are being carried out under the Prevention of Money Laundering Act. The premises are located in Uttar Pradesh, Rajasthan, Maharashtra, Jammu, Madhya Pradesh and the National Capital Region and Kolkata. According to ED, there is an alleged use of unauthorized software applications for generating unauthorized toll receipts and diverting toll collections outside the official accounting mechanism. World Bank President Ajay Banga has said India has the potential to grow beyond its current 7-8% trajectory. Mr. Banga described the country's latest economic performance as robust, despite global energy pressures, trade uncertainty, and the impact of El Nino. In an interview on the sidelines of the G20 finance ministers' meeting in Asheville at North Carolina in US, Mr. Banga said the latest growth figures reflected the strength of India's underlying economy. The World Bank chief said he had discussed tourism and MSME opportunities with the finance minister Nirmala Sitharaman on the sidelines of the G20 finance ministers' meeting. Prime Minister of Belgium, Bart De Wever, will be on a three-day visit to India beginning today. During the visit, he will hold bilateral talks with Prime Minister Narendra Modi to discuss the entire spectrum of bilateral relations and regional and global issues of mutual interest. Prime Minister De Wever will also deliver a keynote address at a business event in the context of the India-EU Free Trade Agreement. He will also travel to Mumbai, where he will engage with various stakeholders, including from the diamonds, ports and logistics sectors. In badminton, India's Kidambi Srikanth progressed to the second round of the China Open tournament today. Srikanth defeated Chinese Taipei's Qi Yu Zhen in men's singles opener in Shenzhen. In another men's singles clash, Lakshya Sen was knocked out of the tournament after he lost against Canada's Victor Lai. And in squash, India's Anahat Singh stormed into the second round of the London Squash Classic. Reigning world junior champion Anahat eased past Egypt's Mariam Metwelli in a women's singles opening match. And that is the end of this news bulletin.

0: हर आंगन। घर आंगन कार्यक्रम के आज की खास प्रस्तुति में आप सबका स्वागत है। आज मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त मंजुला
1: और रश्मि कुकरेती। स्वीकार कीजिए
0: हमारा प्यार भरा
1: नमस्कार।
0: और अभी आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, साथ ही साथ आप हमें सुन सकते हैं इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 386.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्ज पर।
1: जी दोस्तों, जिस दिन को याद करके चेहरे पर मुस्कान आ जाए या किसी का कभी गहराई से महसूस होने लगे, उस दिन आप समझ लीजिए हमने अपना समय जो है व्यर्थ नहीं गवाया, क्योंकि वही पल सबसे अधिक याद आते हैं जिन्होंने हमें सच्ची खुशी दी होती है। और इस सुंदर विचार के साथ शुरुआत करते हैं मंजुला आज के कार्यक्रम की।
0: बिल्कुल, और आज का दिन आस्था, परंपरा और अपनत्व का सुंदर संगम है। आज मनाया जा रहा है पावन हल षष्ठी का व्रत, जिसमें माताएं अपनी संतान के सुख स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करती हैं। आज भगवान बलराम जी की जयंती भी है। इन दोनों पर्वों का संदेश हमें अपनी जड़ों, अपने परिवार और प्रकृति से जुड़े रहने की प्रेरणा देता है। और आज एक और खास दिन है जो रश्मि जी बताएंगी।
1: आज हम याद कर रहे हैं हिंदी सिनेमा की महान अदाकारा, सौम्य मुस्कान वाली अभिनेत्री साधना जी को, जिनकी आज जयंती है। उनकी सादगी, नजाकत और अभिनय, और मंजुला उनके जो साधना कट बाल,
0: क्या बात है, आज भी लोगों ने वो स्टाइल अपना रखा है
1: जी, वो आज भी लाखों दिलों में जिंदा है।
0: तो साधना जी की सुनहरी यादों को नमन करते हुए सुनते हैं उनका ये बेहद खूबसूरत सा गीत।

0: अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर को फिल्म मेरा साया। और अब आज का सवाल बता दीजिए रश्मि जी।
1: जी आज का सवाल है मंजुला भाई, आपको पहले ही जानकारी है पोषण सप्ताह चल रहा है और उसी से संबंधित है आज का सवाल भाई। बेस्ट हेल्थ टिप क्या देना चाहेंगे हमारे श्रोता स्वस्थ और ऊर्जावान रहने के लिए? वो कौन सा मंत्र है जो आपको सबसे ज्यादा प्रभावशाली लगता है? तो अपने मेल समय इस ईमेल आईडी पर भेज दीजिए fmgoalga@gmail.com और हमें आपके हेल्थ टिप्स का इंतजार रहेगा।
0: बिल्कुल, और आज है कोकोनट डे यानी नारियल दिवस, विश्व नारियल दिवस। एक ऐसा

0: फल जो पूजा में भी सबसे पहले चढ़ता है, रसोई का स्वाद भी बढ़ाता है, सेहत का भी ख्याल रखता है और धरती को हरा भरा रखने में भी अपना योगदान देता है। जी हाँ, बात करें नारियल की, और 2 सितंबर को पूरी दुनिया मनाती है विश्व नारियल दिवस।
1: भाई वाह, अगर मैं कहूँ कि नारियल का कौन सा ऐसा हिस्सा है जो बेकार जाता है? नहीं भाई, कोई भी हिस्सा बेकार नहीं
0: बिल्कुल
1: जाता।
0: सही।
1: नारियल का पानी हो, गिरी हो, दूध हो, तेल हो, छिल

0: और जो नारियल का जो कठोर शेल होता है, खोल होता है, वो पहले कूड़ा समझकर फेंक दिया जाता था। देश के कई हिस्सों में कलाकार और छोटे उद्योग इन शेल्स से बेहद खूबसूरत और उपयोगी वस्तुएं बना रहे हैं, जैसे रश्मि जी कॉफी या चाय के कप हो गए, कटोरियां, चम्मच, प्लांटर, की चेन और बहुत सारे सजावटी वस्तुएं, यहाँ तक कि इको फ्रेंडली गिफ्ट्स भी। जिस चीज को हम बेकार समझते थे, वही आज प्लास्टिक का बेहतरीन विकल्प बन रहा है।
1: क्या बात है। नारियल के रेशों से यानी कॉयर से दरवाजे की चटाइयाँ, रस्सियाँ, गद्दे, ब्रश, बागवानी के लिए ग्रो बैग और पौधों के लिए जो प्राकृतिक माध्यम से तैयार किए जाते हैं वो
0: भी बनते
1: बैग्स भी बनते हैं। इससे न केवल कचरा कम होता है बल्कि हजारों लोगों को रोजगार भी मिलता है। अब जरा एक और दिलचस्प बात बताते हैं मंजुला।
0: हाँ, कि क्यों आपने ध्यान दिया होगा रश्मि जी, कि नारियल को श्री फल भी कहा जाता है। भारतीय परंपरा में इसे शुभ, समृद्धि और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है, और शायद यही वजह है कि किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत नारियल को फोड़ कर की जाती है।
1: और अगली बार जब आपके हाथ में नारियल आए ना, तो सिर्फ उसका स्वाद ही नहीं चखिएगा, उसकी पूरी यात्रा के बारे में सोचिएगा। और क्योंकि ये हमें सिखाता है कि प्रकृति में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता, बस उसे सही नजर चाहिए और सही उपयोग की जरूरत होनी चाहिए।

0: अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर को फिल्म अपना देश, और अब एक ऐसी कहानी उस महान गायिका की जिनके सुर धरती की सीमाएं पार करके अंतरिक्ष तक पहुंच गए, केसर बाई केरकर की। गोवा के केरी गांव में जन्मी केसर बाई केरकर ने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की कठिन साधना की।
1: जी, और जयपुर अतरौली घराने के जो उस्ताद, उन्होंने वहाँ से संगीत सीखा और अपनी आवाज़ को ऐसी ऊंचाई दी कि आगे चलकर उनका नाम भारतीय शास्त्रीय संगीत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गया। और उनकी गायकी में जो सिर्फ सुर ही नहीं थे, वर्षों की तपस्या थी। उनकी
0: बिल्कुल।
1: आवाज़ में ऐसी गहराई थी श्रोताओं, जो सीधे मन को छूती थी। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने उनकी असाधारण गायकी से प्रभावित होकर उन्हें सुरश्री की उपाधि दी थी, यानी सुरों की रानी।
0: बिल्कुल रश्मि जी, और आगे चलकर उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण जैसे प्रतिष्ठित सम्मानों से सम्मानित किया गया। अब कहानी में आता है एक ट्विस्ट, जिसने केसर बाई केरकर को सिर्फ भारत नहीं बल्कि ब्रह्मांड की कहानी का हिस्सा बना दिया। साल 1977 में नासा ने वॉयजर 1 और वॉयजर 2 अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में भेजे, और इनके साथ एक विशेष गोल्डन रिकॉर्ड भी भेजा गया, जिसमें पृथ्वी की ध्वनियाँ, भाषाएं, संगीत और मानव सभ्यता की झलक सुरक्षित की गई थी। दुनिया भर के संगीत में से भारत की ओर से जिस आवाज को चुना गया वह थी केसर बाई केरकर की। उनकी राग भैरवी की बंदिश जात कहाँ हो, इसके गोल्डन रिकॉर्ड में स्थान मिला।
1: और जात कहाँ हो, अभी तो और भी बाकी है उनके बारे में जानकारी। सोचिए, जिस आवाज़ ने सिर्फ संगीत सभाओं को मंत्रमुग्ध किया था, वही आवाज़ अब पृथ्वी के बाहर तारों के बीच यात्रा कर रही थी। और इत्तेफाक देखिए, उसी वर्ष 1977 में केसरबाई केरकर ने दुनिया को अलविदा कह दिया। एक ऐसी कलाकार जिसका संसार संगीत की साधना तक सीमित था, लेकिन उनके सुरों ने उस संसार को
0: बहुत
1: ही
0: ही
1: अनंत कर दिया। केसरबाई केरकर सिर्फ एक महान गायिका नहीं थी, वो एक राग थी, एक साधना थी।
0: क्या बात है। और आज वो भारत की वो आवाज है जो धरती से निकलकर आसमान के पार अनंत यात्रा पर है। तो अगली बार जब कोई भारतीय शास्त्रीय राग सुने तो याद रखिएगा, हमारे सुर सिर्फ हमारे कानों तक सीमित नहीं है दोस्तों, हमारे सुरों में इतनी शक्ति है कि वो समय में अंतरिक्ष की सीमाएं भी पार कर जाते हैं। और केसर बाई केरकर इसकी सबसे खूबसूरत मिसाल है। सुर थम जाए तो गीत खत्म हो जाता है, लेकिन सच्ची साधना के सुर कभी खत्म नहीं होते।

0: अभी हम सुन रहे थे वाणी जयराम को फिल्म गुड्डी से, और लगता है कि आपके सामने कुछ मेल्स पड़े हुए हैं
1: जी, जो
0: जिसको आप पढ़ने
1: जवाब
0: जा रही हैं। हाँ
1: जी
0: हाँ
1: जो प्रश्न आपने पूछा था कि भाई आप थोड़े से हेल्थ टिप्स दीजिए, तो हमारे श्रोताओं ने लिख भेजे हैं। और हाँ, जो मेल आईडी है वो है fmgoldgia@gmail.com। तो नवीन भाटिया जी का ये मेल आया है, कहते हैं कि सुबह की सैर हो और सादा खान पान हो और योग का साथ रहे। तो
0: बहुत
1: मोतीनगर
0: बढ़िया।
1: से आप बता रहे हैं।
0: और शिपाल गोयल जी बहादुरगढ़ हरियाणा से लिखते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए हमको नियमित व्यायाम करना चाहिए, नियमित रूप से पर्याप्त पानी पीना चाहिए, शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए दिन भर में करीब 8-10 ग्लास पानी जरूर पिए, इससे शरीर में पानी की कमी नहीं होगी।
1: जी, अफरोज शेख नेमुआ सुपौल बिहार से हमारे साथ जुड़ गए हैं, कह रहे हैं पहले तो किसी बात की टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन सेहत को ख़राब कर देती है। खुश रहो और अच्छे खाने पीने पर ध्यान दो और खुश रहकर अच्छा जीवन जी सकते हैं।
0: और चरण दास जी लिखते हैं, रश्मि जी मंजुला जी नमस्कार, और इनका कहना है पैदल घूमना, साइकिल चलाना, पानी ज़्यादा पीना, खुश होकर रहना, भोजन करना, संगीत, रचनात्मक काम और FM गोल्ड को धन्यवाद करना।
1: जी, और सुदर्शन मुखी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से, कह रहे हैं कि सादा भोजन जो है वो सबका दादा भोजन है। भाई
0: क्या
1: सादा
0: बात।
1: खाओ और स्वस्थ हो जाओ, फास्ट फूड से रहो दूर और निरोगी रहो, रखो शरीर, और सीजनल फल सब्जी खाओ और सेहत बनाओ। भाई कुछ कुछ कविता लिख डाली है
0: क्या
1: और
0: बात,
1: कह रहे हैं कि आपका
0: जराइंस।
1: जीवन जो है वो शुभ हो, ऐसा भी लिख रहे
0: बहुत
1: हैं।
0: बहुत धन्यवाद आपके मेल्स के लिए। तो आगे भी आप लिखते रहें, हमारा मेल आईडी फिर से नोट कर लीजिए। और हमारा क्वेश्चन भी, हमारा सवाल ये है कि आपके अनुसार कौन सा बेस्ट हेल्थ टिप हो सकता है या फिर फिटनेस टिप्स। हमारा मेल आईडी है fmgoldgia@gmail.com।
1: जी, और एक और मेल हमारे पास आ गई है, दिलावर खान, वो कह रहे हैं नारियल प्रकृति का वो अनमोल उपहार है जिसमें कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। जो आपने जानकारी दी
0: जी
1: थी
0: जी
1: वो सारी जानकारी उन्होंने दी है, और वो कह रहे हैं रघुवीर नगर से हमारे साथ हैं जनाब दिलावर खान साहब, मोहतरमा हसीना बानो, एलिजा नायाब और प्यारे लड्डू। वाह क्या बात है, प्यारे

0: अभी हम सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले को प्रोफेसर प्यारेलाल फिल्म से।
1: और मंजुला, एक वादा FM गोल्ड का भी है अपने श्रोताओं के साथ
0: क्या
1: कि भाई वो उनका रहेगा और उनके लिए अच्छे अच्छे कार्यक्रम लाता रहेगा, इन्फोटेनमेंट लाता रहेगा।
0: क्या
1: और
0: बात,
1: ऐसी ही एक जो जानकारी है वो तुम लेकर आई हो।
0: बिल्कुल। और वो है सामाजिक शिष्टाचार। मेट्रो में, बस और जो भी सार्वजनिक जगह होते हैं, उन पर तेज आवाज में मोबाइल और रील देखने की आदत बदल दीजिए। कभी मेट्रो में सफर करते हुए अचानक किसी फोन की तेज घंटी गूंजने लगती है, कभी बस में कोई पूरी आवाज पर रील चला दे, या हॉस्पिटल में, प्रतीक्षालय, पार्क, रेलवे स्टेशन या बैंक की कतार में कोई बिना ईयरफोन के वीडियो देखने लगे, तो रश्मि जी कैसा लगता है?
1: ओ, मैं क्या ही बताऊं, हो सकता है वो हमें तो कुछ मिनट की बात लगी, लेकिन सोचिए वही कुछ मिनट किसी विद्यार्थी की पढ़ाई में बाधा बन सकते हैं, किसी बुजुर्ग के सरदर्द की वजह बन सकते हैं, किसी माँ की गोद में सो रहे बच्चे की नींद तोड़ सकते हैं, या किसी ऐसे व्यक्ति को परेशान कर सकते हैं जो पूरे दिन की थकान के बाद बस कुछ पल शांति के चाहता हो।
0: बिल्कुल, और यही तो है सामाजिक शिष्टाचार। ऐसी छोटी छोटी बातें जो हमें एक बेहतर नागरिक बनाती है। आज मोबाइल हमारे जीवन का हिस्सा है। रील देखना, गाने सुनना या वीडियो देखना बिल्कुल सामान्य सी बात है रश्मि जी, लेकिन सार्वजनिक स्थान केवल हमारे नहीं होते, वहाँ हर व्यक्ति का सम्मान जो अधिकार होता है। इसलिए यदि हमें कुछ सुनना है तो ईयरफोन का उपयोग करें। अगर ईयरफोन साथ नहीं है तो आवाज़ इतनी धीमी रखें कि हमें सुनाई न दे।
1: जी, और साथ में एक और अच्छी आदत ये है कि भाई यदि फ़ोन पर बात करना बहुत ज़रूरी हो तो थोड़ा धीरे बोलें या बातचीत को संक्षिप्त रखें। पूरी बोगी या बस को हमारी बातचीत सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है भाई। सभ्यता का अर्थ जो होता है वो केवल बड़े बड़े आदर्श नहीं होते। मंजुला, कई बार ऐसा होता है कि अगर आप जो चिप्स का पैकेट, पहली बात तो मेट्रो में खाना नहीं चाहिए,
0: बिल्कुल, क्योंकि
1: लेकिन
0: ऐसे भी फूड नहीं
1: जी
0: खाना, लिखा
1: नहीं
0: होता है
1: खाना
0: कि नहीं खाना
1: चाहिए,
0: है।
1: लेकिन सफाई का अगर हम ध्यान रखें, जो अपने पैकेट्स हैं वो वापस बैग्स में रखें, गंदगी ना फैलाएं, तो हम कहेंगे ये भी बहुत बड़ी देश सेवा है।
0: बिल्कुल। और याद रखिए, अच्छे संस्कार केवल घर तक नहीं सीमित रहते दोस्तों, वो सार्वजनिक जीवन में भी दिखाई देते हैं। हमारी एक छोटी सी सावधानी किसी दूसरे के लिए बहुत बड़ा सुकून बन सकती है।
1: तो फिर आज से एक छोटा सा संकल्प लें, रील देखेंगे लेकिन एयरफोन के साथ, अपनी मेट्रो को सफाई से इस्तेमाल करेंगे, साफ रखेंगे, फोन पर बात करेंगे लेकिन धीमी आवाज में, और सार्वजनिक स्थानों पर दूसरों की शांति का पूरा
0: सम्मान
1: सम्मान करेंगे,
0: करेंगे।
1: क्योंकि एक जागरूक समाज की पहचान केवल साफ सड़कें नहीं बल्कि एक साफ मेट्रो और संवेदनशील नागरिक भी होते हैं।
2: देखो, जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप पहले आप पहले आप पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम पहले तुम पहले तुम पहले तुम में ये मस्ती भरे रुक न चली जाए।
3: अच्छा, मैं कहती हूँ

0: अभी हम सुन रहे थे शैलेंद्र सिंह और लता मंगेशकर को फिल्म बॉबी से। और दोस्तों, एक ऐसा मंदिर जहां समय बताने के लिए घड़ी नहीं बल्कि सूरज की किरणें काम करती हों, कर्नाटक के चिकमंगलुरु में तुंगा नदी के तट पर 14वीं शताब्दी का श्री विद्याशंकर मंदिर प्राचीन भारतीय वास्तुकला और खगोल विज्ञान का एक ऐसा अद्भुत चमत्कार है जिसे बस आप देखते रह जाएंगे।
1: जी, और इस मंदिर के मुख्य

0: मंडप में बने जो 12 विशाल राशि स्तंभ हैं, वो केवल पत्थर के खंभे नहीं है दोस्तों, बल्कि ब्रह्मांड की गति से जुड़े हुए वैज्ञानिक चमत्कार हैं। हर सौर महीने की पहली सुबह सूरज की पहली किरण ठीक उसी राशि वाले स्तंभ पर जाकर पड़ती है जिसका महीना चल रहा होता
1: क्या
0: है।
1: बात है,
0: जी, यानी
1: हुँ.
0: सूर्य की चाल, राशियों का क्रम और मंदिर की संरचना, सब कुछ इतनी सटीक गणना के साथ बनाया गया है कि आज भी ये लोगों को आश्चर्यचकित कर देता है।
1: बिल्कुल सही। और मंदिर की पूरी संरचना में गणित, ज्यामिति और खगोल विज्ञान का ऐसा अद्भुत संगम दिखाई देता है जो ये साबित करता है कि हमारे पूर्वज केवल उत्कृष्ट शिल्पकार ही नहीं बल्कि प्रकृति और ब्रह्मांड के गहरे ज्ञाता भी थे।
0: बिल्कुल सही कहा मंजुला। और जिस एडवांस साइंस को आज दुनिया आधुनिक तकनीक का चमत्कार मानती है ना, हमारे पूर्वज सदियों पहले उन्हें पत्थरों पर उकेर चुके थे।
1: और क्या।
0: जी, इसीलिए अपने इस गौरवशाली इतिहास को जानिए, समझिए और दुनिया तक पहुंचाइए, क्योंकि जो सभ्यता अपने अतीत को पहचानती है ना, वही भविष्य का मार्ग भी सबसे बेहतर बनाती है।
1: और जिस धरती ने सूरज की चाल को पत्थरों में बांध दिया, उसकी विरासत पर हमें गर्व नहीं, उसे जानने और सहेजने का संकल्प भी होना चाहिए। इतिहास सिर्फ बीते पल की कहानी नहीं होता, वो आने वाली पीढ़ियों के आत्मविश्वास की नींव भी होता है।

0: अभी हम सुन रहे थे आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी को फिल्म दिल ने फिर याद किया। और रश्मि जी, अगर अपने शौक को एक लाइफ स्किल में बदल दिया जाए तो कैसा रहेगा?
1: बहुत
0: अपने
1: अच्छा
0: हुनर को
1: रहेगा।
0: अपनी ताकत में बनाइए। अक्सर हम अपने शौक को बस खाली समय बिताने का जरिया समझते हैं। किसी को लिखना पसंद है, किसी को गाना पसंद है, किसी को खाना बनाना पसंद है और किसी को तस्वीरें खींचना पसंद है, तो किसी को कैमरे के सामने बोलना पसंद है। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर यही शौक आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए तो, क्योंकि

0: विश्वास कोई ऐसी चीज नहीं है जो हर इंसान के भीतर जन्म से मौजूद हो। कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बनता है जब हम कुछ सीखते हैं, बार बार उसका अभ्यास करते हैं, गलतियां करते हैं और फिर भी कोशिश जारी रखते
1: तो
0: हैं।
1: आज बात करते हैं अपने शौक को जीवन कौशल में बदलने की। मान लीजिए आपको लिखने का शौक है, तो भाई डायरी लिखना शुरू कीजिए। रोज अपने विचार जो है वो शब्दों में उतारिए। धीरे धीरे आपकी भाषा, आपकी सोच और अपने विचार जो है वो व्यक्त करने की क्षमता आप देखेंगे कि बेहतर हो रही है, और
0: बिल्कुल,
1: यही शौक आगे चलकर संवाद कौशल भी बन सकता है।
0: कम्युनिकेशन स्किल। बिल्कुल, अगर आपको कैमरे के सामने बोलना अच्छा लगता है तो अपने छोटे छोटे वीडियो बनाइए। शुरुआत में अपनी आवाज और चेहरे को देखकर थोड़ी सी झिझक होगी, लेकिन धीरे धीरे वही कैमरा आपका डर कम करेगा और बोलने का आत्मविश्वास बढ़ाएगा। खाना बनाने का शौक है, कोई बात नहीं, नई विधियां सीखिए, अपने हाथों से कुछ नया बनाइए और परिवार या दोस्तों के लिए परोसिए।
1: और अगर तस्वीरें खींचने का शौक है तो केवल तस्वीरें मत खींचिए, उनकी कहानी भी समझिए। किसी जगह, किसी व्यक्ति या प्रकृति को एक अलग दृष्टि से देखना सीखिए। इससे आपकी रचनात्मक सोच भी मजबूत होगी। और अगर आपको कोई वाद्य यंत्र सीखने का मन है, नृत्य करने का मन है या कोई नई कला सीखने का शौक है, तो उसे मनोरंजन तक सीमित मत रखिए। नियमित अभ्यास आपको अनुशासन सिखाता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने शौक में हमेशा थोड़ी सी चुनौती जोड़िए। जो आज थोड़ा सा कठिन लगता है उसे ही अपना लक्ष्य बनाइए। जब तक आत्मविश्वास नहीं बनता ना, तब तक हमें थोड़ा सा डर लगता है। आत्मविश्वास तब बनता है जब हम डर के बावजूद कहते हैं, चलो
0: कोशिश
1: कोशिश करके
0: करके
1: देखते
0: देखते हैं।
1: हैं।
0: तो अगली बार जब कोई पूछे कि आपकी हॉबी क्या है, आपका शौक क्या है, तो सिर्फ ये मत बताइए कि आपको क्या करना पसंद है, ये भी सोचिए कि आपका शौक आपको क्या सिखा रहा है। और याद रखिए, छोटी छोटी सफलताएं ही बड़े आत्मविश्वास की नींव रखती है। हर बार जब आप कुछ नया सीखते हैं, किसी कठिन काम को पूरा करते हैं या असहज होने के बावजूद आगे बढ़ते हैं, तो आप खुद को एक संदेश देते हैं कि हाँ, यह मैं कर सकती हूँ।

0: अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को फिल्म कारवां से, और लगता है फिर से मेल्स पे नजर है रश्मि जी
1: जी, बहुत सारे
0: की।
1: श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश कुमार खयाला से, वो कह रहे हैं कि स्वस्थ रहने के लिए ताज़े फल और सब्जियां और पौष्टिक आहार और पर्याप्त नींद लेनी चाहिए, और साथ में कह रहे हैं हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। और साथ ही कह रहे हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं मनदीप भिवानी जिले हरियाणा से, वो कह रहे हैं मैं आपके हेल्थ शो के माध्यम से स्वस्थ जीवन शैली से जुड़े कुछ अच्छी सलाह और टिप्स जानना चाहता हूँ। वो जानना चाहते हैं हमसे, मेरा उद्देश्य सप्ताह में लगभग 5 दिन रनिंग और व्यायाम करना, स्वस्थ और संतुलित भोजन लेना, खुश रहना और अपने परिवार के साथ पर्याप्त समय बिताना है। वो चाह रहे हैं कि हेल्थ शो के माध्यम से हम बताएं उन्हें कि भाई सप्ताह में 5 दिन रनिंग करना क्या उचित है, और रनिंग के साथ किस प्रकार का स्वस्थ भोजन लेना चाहिए, और अन्य बातें जानना चाह रहे हैं। तो ज़रूर हम लोग कोशिश करेंगे
0: आगे
1: जो
0: के बिल्कुल
1: आपका, जी
0: प्रोग्राम्स में इसको
1: ये,
0: ऐड करें।
1: हाँ, कि इस तरह की जो कार्यक्रम है हेल्थ, ऐसा आपके लिए हेल्थ शो ज़रूर लेकर आएँ। जी
0: बिल्कुल, तो चलिए बात करते हैं कुछ ब्यूटी मिथ्स की। सुंदर दिखना किसे पसंद नहीं, लेकिन सुंदर दिखने की चाह में हम कई बार ऐसी बातों पर विश्वास कर लेते हैं जो सच नहीं, सिर्फ भ्रम होती है। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसी ही बातें, कुछ ऐसे जो मिथ्स हैं उसका सच।
1: भाई, ये सब लोग जानते हैं, सोचते हैं कि महंगे प्रसाधन ही अच्छे होते हैं। सच तो ये है कि किसी भी उत्पाद की गुणवत्ता उसकी कीमत से नहीं होती, बल्कि जो उसमें पदार्थ डाले
0: सामग्री
1: जाते हैं, सामग्री डाली जाती है, आपकी त्वचा की जो ज़रूरत है उससे तय होती है। कई बार ना साधारण और सही उत्पाद भी ना बहुत
0: कमाल।
1: कमाल कर जाते हैं दोस्तों।
0: और एक मिथ और है कि एंटी रिंकल क्रीम झुर्रियां मिटा देती है। सच तो ये है कि ऐसी क्रीम त्वचा को कुछ समय के लिए सॉफ्ट बना देती है, लेकिन बढ़ती उम्र को रोकना या रिंकल्स को पूरी तरह से मिटा देना संभव नहीं है। सफेद बाल फिर से हमेशा के लिए काले हो सकते हैं। जी हाँ, ये भी गलत है। अगर बाल उम्र, अनुवांशिक कारणों या मेलेनिन की वजह से सफेद हुए हैं, तो आज तक ऐसा कोई प्रामाणिक उपाय नहीं है जो उन्हें स्थायी रूप से फिर से काला कर सके। मिथ
1: हाँ, और एक और जो गलत
0: है।
1: फहमी है वो ये है कि त्वचा का रंग बदला जा सकता है। भाई, वास्तव में आपकी प्राकृतिक जो त्वचा है उसका रंग आपके जीन्स तय करते हैं। सही देखभाल से धूप के कारण आई जो लालिमा है, जो कालिमा है, वो कम हो जाती है। लालिमा तो भाई आपके
0: होना
1: जो
0: चाहिए।
1: हीमोग्लोबिन से आती है, और जो त्वचा स्वस्थ और दमकती दिखाई देती है, लेकिन उसका जो मूल रंग है ना दोस्तों, वो नहीं बदला जा सकता। बालों की जो बनावट है वो हमेशा के लिए बदली जा सकती है, ये भी
0: ये गलत
1: एक
0: है,
1: जो है
0: मिथ है,
1: गलत
0: मिथ
1: फहमी
0: मिथ
1: है। और घुंघराले बालों को हमेशा के लिए सीधे, या सीधे बालों को हमेशा के लिए घुंघराले बनाना बिल्कुल संभव नहीं है। और जो आप रासायनिक उपचार वगैरह कराते हैं ना, वो सिर्फ कुछ समय तक असर दिखाते हैं। नए उगने वाले जो बाल हैं वो अपनी प्राकृतिक बनावट के साथ ही आते हैं।
0: और इसीलिए किसी मैजिकल प्रोडक्ट के पीछे भागने से बेहतर है अपने शरीर को भीतर से मजबूत बनाइए, स्वस्थ बनाइए, क्योंकि असली सुंदरता वही है जो अच्छे स्वास्थ्य, आत्मविश्वास और मुस्कान से झलकती है।

0: अभी हम सुन रहे हैं लता मंगेशकर और येसुदास को फिल्म त्रिशूल से।
1: जी, और इस गीत के साथ ही आज के इस सफर को यहीं देते हैं विराम। फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए।
0: तो दीजिए मंजिला और
1: रश्मि कुकरेती को इजाजत।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।

अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा। आपका घर आंगन। घर आंगन।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने कहा है कि भारत में वर्तमान 7 से 8% की वृद्धि दर से आगे बढ़ने की क्षमता है। श्री बंगा ने वैश्विक ऊर्जा दबाव, व्यापार अनिश्चितता और अल नीनो के प्रभाव के बावजूद देश के मौजूदा आर्थिक प्रदर्शन को मजबूत बताया। अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों की बैठक के दौरान एक साक्षात्कार में श्री बंगा ने कहा कि नए आंकड़े भारत की अर्थव्यवस्था की बुनियादी स्थिति की मजबूती को दर्शाते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक से अलग यूरोपीय अर्थव्यवस्था आयुक्त वाल्देस दोम्ब्रोस्किस से मुलाकात की। वित्त मंत्रालय के अनुसार दोनों पक्षों ने भारत यूरोपीय संघ आर्थिक और वित्तीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। भारत का 5वां विमान आज राहत और बचाव सामग्री लेकर नेपाल पहुंचा। विमान में 11 सदस्यों के बचाव दल, विशेष उपकरणों और 5 टन से अधिक दवाएं हैं। नेपाल में भारत के राजदूत ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत नेपाल में जारी राहत और बचाव कार्य में हर संभव मदद कर रहा है। इस बीच नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या 1100 से अधिक हो गई है। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार अब तक 1114 शव बरामद हुए हैं। सबसे अधिक शव दक्षिणी चितवन जिले में बरामद किए गए। अधिकारियों ने बताया कि अब तक 95 मृतकों की पहचान के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। लगभग 4000 लोग अब भी लापता हैं। बाढ़ प्रभावित 11 पनबिजली परियोजनाओं से जुड़े 983 लापता लोगों की अभी तक कोई जानकारी नहीं।

0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर के तीसरे दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। समारोह को संबोधित करते हुए श्री राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करने का आह्वान किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से मुक्त राज्य बनाने के प्रयासों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राज्य के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में केंद्र और राज्यों को एक साथ लाकर महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर लोगों से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने, सोने की अनावश्यक खरीद और विदेशों में शादी ब्याह समारोह आयोजित करने से बचने का आह्वान किया है। एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि देश के युवा आज जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं उससे उनके सपने साकार होंगे।
1: स्वदेशी का मंत्र वोकल फॉर लोकल, विदेशों की यात्राएं अगर घूमने फिरने जाते हैं तो नहीं करना चाहिए, शादी ब्याह विदेशों में करते हैं नहीं करना चाहिए, मेड इन इंडिया के मंत्र को जीना चाहिए और जरूरत न हो तो सोना भी नहीं खरीदना चाहिए। हम जितना ज्यादा स्वदेशी पर बल देंगे, जितना आत्मनिर्भर पर बल देंगे, मुझे पक्का विश्वास है जब आजादी के 100 साल होंगे हम हमारी युवा पीढ़ी को विकसित भारत सुप्रत करेंगे।
0: प्रवर्तन निदेशालय अवैध सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म पेरीमैच और अन्य के मामले में विभिन्न राज्यों में 12 स्थानों पर छापेमारी कर रहा है। धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत महाराष्ट्र में 5, दिल्ली NCR में 4, राजस्थान में 2 और गुजरात में 1 स्थान पर कुछ भुगतान कंपनियों के परिसरों में तलाशी ली जा रही है। निदेशालय भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के टोल प्लाजा पर कथित धोखाधड़ी के मामले में 14 परिसरों में भी छापेमारी कर रहा है। ये तलाशी धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत की जा रही है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग 1% की गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 548 अंक गिरकर 76,396 पर, जबकि निफ्टी 203 अंक गिरकर 23,852 पर पहुंच गया। स्क्वाश में भारत की अनाहत सिंह ने लंदन स्क्वाश क्लासिक के दूसरे दौर में जगह बना ली है। उधर बैडमिंटन में भारत के किदांबी श्रीकांत आज चीन ओपन टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्र प्रेस चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर दिन के 1:10 हो रहे हैं और ये वक्त है कार्यक्रम एक ही फिल्म से का। तो स्वीकार कीजिए अपनी दोस्त राखी बैनर्जी का प्यार भरा नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आज के इस प्रोग्राम में। प्रिय श्रोताओं, आज हम बात करेंगे 1982 में रिलीज हुई एक बेहतरीन हिंदी फिल्म तेरी कसम की। इस फिल्म की कहानी रिश्तों में प्यार, अहंकार और आत्मसम्मान की गहराई को छूती है। इस फिल्म का निर्देशन किया था SC त्रिलोक चंदर ने और इस कहानी पर पहले ही तमिल, तेलुगु और कन्नड़ में फिल्म बन चुकी है। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं इसी फिल्म से एक प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और आज की जो फिल्म है वो है तेरी कसम, और मैं आपके साथ हूँ आपकी दोस्त राखी बैनर्जी। श्रोताओं, बात करते हैं फिल्म के कलाकारों की। इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई कुमार गौरव, पूनम ढिल्लो, गिरीश कनाड, निरूपा रॉय और रंजिता कौर ने। फिल्म में एक दिलचस्प बात ये भी थी कि पहले ये भूमिका के इस भूमिका के लिए रति अग्निहोत्री पर विचार किया गया था, लेकिन निर्माता टोनी जुनेजा को लगा कि वो कुमार गौरव से बड़ी दिखेंगी, इसलिए भूमिका पूनम ढिल्लो को मिली। हालांकि बाद में इस निर्णय को उन्हें थोड़ा अफसोस भी हुआ। वहीं तेरी कसम कुमार गौरव की दूसरी फिल्म थी। 1981 में उनकी पहली फिल्म लव स्टोरी के जबरदस्त सफलता के बाद दर्शकों को इस फिल्म की का बेसब्री से इंतज़ार था, लेकिन अफसोस की बात है कि यह फिल्म लव स्टोरी जैसी सफलता हासिल नहीं कर पाई। आगे हम फिल्म की कहानी के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं इसी फिल्म का एक और प्यारा सा गीत।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप जुड़े हुए हैं और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आज की जो फिल्म है वो है तेरी कसम, और मैं आपके साथ हूँ आपकी दोस्त होस्ट राखी बैनर्जी।

श्रोताओं, अब बात करते हैं फिल्म की कहानी की। डॉली यानी पूनम ढिल्लो और टोनी यानी कुमार गौरव की। डॉली एक अमीर घराने की एक बिगड़ैल अमीर लड़की है, जिसका पालन पोषण उसके बड़े भाई राकेश ने बड़े लाड़ प्यार से और ऐशो आराम से किया है। वहीं टोनी एक साधारण गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखता है और उसी कॉलेज में पढ़ाता है जहां डॉली पढ़ती है। टोनी दिल ही दिल में डॉली से प्यार करता है, लेकिन अपने हालातों के कारण ये बात कहने से झिझकता है। टोनी कॉलेज ख़त्म होने करने के बाद नौकरी की तलाश करता है। उधर डॉली का भाई इस बात से अनजान कि डॉली टोनी को पसंद करती है, वो टोनी की काबिलियत देखकर उसे अपनी कंपनी में मैनेजर की नौकरी दे देता है। कहानी तब दिलचस्प मोड़ लेती है जब डॉली को एक गायक की आवाज़ से प्यार हो जाता है, और जब उसे पता चलता है कि वो आवाज़ टोनी की है, तो ये जानने के बाद डॉली टोनी से शादी करने का फैसला करती है। लेकिन टोनी अपनी बहन शांति की शादी करने से इनकार कर देता है। शांति की शादी की समस्या को हल करने के लिए डॉली का भाई शांति यानी रंजीता कौर से शादी कर लेता है। हालांकि डॉली का अहंकार और उसके अमीर होने का घमंड टोनी के परिवार के साथ तनाव पैदा कर देता है। डॉली टोनी की माँ यानी निरूपा रॉय का अपमान करती है और टोनी के अनुपस्थिति में उन्हें एक अस्पताल के जनरल वार्ड में भर्ती करा देती है, यही कहकर कि वो बीमार हैं। जब टोनी को इस बात का पता चलता है तो वो बेहद आहत होता है और क्रोधित होता है। वो डॉली को अपनी माँ से माफ़ी मांगने को कहता है, लेकिन डॉली माफ़ी मांगने से इनकार कर देती है और अपने भाई के घर ये बोलकर चली जाती है कि जब तक टोनी खुद से लेने नहीं आएगा, वो वापस नहीं आएगी। टोनी गुस्से में आकर राकेश की कंपनी से अपनी नौकरी छोड़ देता है। उसके बाद टोनी कड़ी मेहनत करता है और एक मशहूर गायक बन जाता है। कहानी को आगे और जानने के लिए ये फिल्म आप ज़रूर देखिएगा, लेकिन आखिरकार कहानी अहंकार, प्यार और रिश्तों को समझने और उससे सबक लेने की है। टोनी और डॉली दोनों अपने अपने फैसलों पर पछताते हैं और एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्यों और प्यार को फिर से निभाने का वादा करते हैं। तेरी कसम सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि ये रिश्तों में ईमानदारी, समझदारी और त्याग की अहमियत को भी दर्शाती है। तो चलिए श्रोताओं, चलते हैं और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और फिल्म का नाम है तेरी कसम। और हमारे प्यारे श्रोताओं का भी मेल हमारे पास आ गया है, तो उन्हें भी हम देख लेंगे, पढ़ लेंगे, लेकिन एक छोटी सी बात के बाद। इस फिल्म की जो कहानी थी उसे S.C. त्रिलोक चंदर और ज्ञानदेव अग्निहोत्री ने लिखी थी, जिनकी रचनात्मक सोच ने फिल्म को एक मजबूत आधार दिया। लेकिन दोस्तों, सिर्फ एक अच्छी कहानी ही काफ़ी नहीं होती है, उसे पर्दे पर सही रूप में लाने का काम संपादकों का होता है। वामन बी भोसले और गुरुदत्त सिराली ने अपनी मेहनत और कुशलता से इस कहानी को एक बेहतरीन सिनेमाई अनुभव में बदल दिया। साथ ही सिनेमेटोग्राफर जल मिस्त्री ने अपने कैमरे के हुनर से फिल्म के हर फ्रेम को ऐसा सुंदर रूप दिया कि फिल्म का हर सीन सीधे दर्शकों के दिलों तक पहुंचा। उनके दृश्यात्मक योगदान ने फिल्म को और भी खास बना दिया। और वहीं इस फिल्म का संगीत आज भी संगीत प्रेमियों के दिलों में बसता है। R.D. बर्मन के सुरों और आनंद बख्शी के गीतों ने इस फिल्म को खास बना दिया। सभी गाने अमित कुमार की आवाज़ में गाए गए थे, जिनमें से एक गाना लता मंगेशकर के साथ युगल था। तो चलिए, अब हमारे श्रोताओं का जो मेल आ गया है वो भी हम पढ़ लेते हैं। ये मेल आया है पलियारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार, दुर्गा प्रसाद, पराग, पूना राम और कृष्णा देवगन का, मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गौड़। और आगे बढ़ते हैं, ये छत्तीसगढ़ से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा और अन्नपूर्णा वर्मा का, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, दिशानी और निमित आहूजा का। ये आया है हमारे पास गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन से हमें मेल कर रहे हैं, और वडिंगा खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा का आया है हमारे पास मेल। गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डुंडी, प्रमोद कुमार डुंडी ये लिखते हैं, एक ही फिल्म से आज आप फिल्म तेरी कसम की कहानी सुना रही हैं। बिल्कुल सही बात, बहुत बढ़िया लग रहा है, जो जानकारी आप दे रही हैं बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका। और ये है भंवरपुर बसाना से राधेश्याम और चंपा जी का, और ये है कमलकांत गुप्ता, श्रीमती रिमझिम गुप्ता पिपरिया से लिखती हैं ये हमें मेल। और भी हमारे श्रोता हैं, ये हैं मुकम्मा पोस्ट कालेगांव जाफराबाद से, ये हैं सुधाकर राजे, प्रशांत राजे, जगुताई जाधव और कुमार संचित, प्रथमेश सर्वद, कल्पना सनावी और प्रणाली और इनके परिवार के सभी सदस्य। और ये है पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन और टिल्लू नायक जी का, और ये है पोटली कला दुर्ग से संजय कुमार साहू का। तो आगे बढ़ते जनकपुरी सहारनपुर से जॉन रोजी और पर्ल विलिस डिकोस्टा का। श्रोताओं, अब जो हम आपको गीत सुनवाने जा रहे हैं उसके मुखड़े के लिए आनंद बख्शी ने प्रसिद्ध शायर खातिर गजनवी की गज़ल गो जरा सी बात पर बरसों के यार आने गए से प्रेरणा ली थी। तो चलिए सुनते हैं इसी खूबसूरत से गीत को।

हमारे पास कुछ श्रोताओं के और मेल आ गए हैं, उन्हें भी हम जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। ये हैं बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्कीन और मीना मस्कीन का, और ये हैं सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर, सोनीपत।

बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये है संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत भारत और कमल पिंगा वाला चौक जालंधर

हमारे साथ एक और श्रोता जुड़े हुए हैं, वो हैं भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान छिपा और पूजा परिहार। तो श्रोताओं, अब हम कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पे पहुंच चुके हैं। तेरी कसम फिल्म भले ही अपनी सफलता के मामले में कुछ पीछे रह गई, लेकिन इसके गाने, दिल को छू लेने वाले संवाद और अदाकारी आज भी दर्शकों के दिलों में जगह बनाए हुए हैं। तो श्रोताओं, अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो आज इसे

इसे देखने का समय ज़रूर निकालिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार एक और शानदार फिल्म की कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अपनी दोस्त राखी बैनर्जी को अनुमति दीजिए और चलते चलते सुनिए इसी फिल्म का ये आखिरी गीत।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर दिन के 1:40 होने वाले हैं। आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज नवी दिल्ली विच जल शक्ति मंत्रालय के विभागी सम्मेलन के समाप्ति समागम नूं संबोधन करनगे। विश्व बैंक के प्रधान अजय बंगा ने कहा है कि भारत विच मौजूदा 7-8% विकास दर तों अगे वधण दी समर्था है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर अज तो भारत के 3 दिन दौरे ते होंगे ते भारत के किदंबी श्रीकांत चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के दूजे गेड़ विच पहुंच गए ने। भारत का पनवा जहाज अज राहत ते बचाव समगरी लैके नेपाल पहुंचे है। इस विच 11 मैंबरी बचाव टीम, विशेष उपकरण ते 5 टन तो वध जरूरी दवाईयां शामिल ने। नेपाल विच भारतीय राजदूत ने सोशल मीडिया पोस्ट विच ऐलान किया कि भारत नेपाल विच चल रहे बचाव ते राहत कार्यां विच हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। इस दौरान नेपाल विच भयानक हड़ां कारण मरने वाले की गिणती 1100 तो वध हो गई है। नेपाल की राष्ट्रीय आफत जोखम प्रबंधन अथारिटी अनुसार हुण तक 1114 लाशां बरामद की गई ने। दक्षिणी चितवान जिले में सब तो वध लाशां बरामद की गई ने। अधिकारियों ने दस्सिया कि हुण तक 95 लाशां की पछाण हो चुकी है ते उन्हां दे परिवारों नूं सौंप दी गई ने। लगभग 4000 लोग हालां दे लापता ने। इस दौरान 11 हड़ प्रभावित पनबिजली प्रोजैक्टां नाल जुड़े 983 लापता लोगों बारे अजे तक कोई जानकारी नहीं है। नेपाल विच वापरे तूफान तो बाद बिहार के सरहदी जिले में हड़ां का खतरा मंडरा रहा है। बागलपुर में गंगा नदी के किनारे चिंतावां बढ़ गई ने। बागलपुर जिले के खारिक ब्लाक में नदी के पद्धर में वाधे और जमीन के कटा कारण स्थिति नाजुक बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज नवी दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागी सम्मेलन के समाप्ति समागम को संबोधन करेंगे। यह सम्मेलन केंद्र के राज्यों को मुख्य क्षेत्रीय तरजीहों पर विचार वटांदरा करने और समयबद्ध कार्य योजनाओं विकसित करने की एक थां इकट्ठा करेगा। यह सम्मेलन 4 मुख्य क्षेत्रों, पानी के बुनियादी ढांचे के प्रोजैक्टों को समय सिर लागू करना, पानी की संभाल च जन हिस्सेदारी कैच द रेन, पीने वाले पानी के वसीलों की स्थिरता और जल जीवन मिशन 2.0 से केंद्रित है। इस पहलकदमी का उद्देश्य राष्ट्र

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं नीतिका त्यागी। भारत ने सैलाब से मुतासिरा नेपाल की मदद की खातिर ज़रूरी दवाओं और तिब्बी आलात पर मुश्तमिल 5.5 टन इमदादी सामान ले जाने वाला 5वां तैयारा रवाना कर दिया है। नेपाल में सैलाब से हलाकतों की तादाद 1,100 से तजावुज़ कर गई है। आलमी बैंक के सरबराह अजय बंगा ने भारत की इकतसादी तरक्की की तारीफ़ की है और कहा है कि आलमी सतह पर इकतसादी मुश्किलात के बावजूद भारत में 8% से ज़्यादा शरह तरक्की हासिल करने की सलाहियत मौजूद है। भारत और अफगानिस्तान के दरमियान दो तरफ़ा तजारत और इकतसादी तआवुन को मजबूत बनाने के इकदाम का जायज़ा लेने के लिए तजारत से मुतालिक दोनों ममालिक के मुश्तरका वर्किंग ग्रुप की मीटिंग मुनक़िद हुई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में जल शक्ति की वजारत के महकमा जाती इजलास के इख्तितामी सेशन से खिताब करेंगे। और बैडमिंटन में किदाम्बी श्रीकांत चाइना ओपन बैडमिंटन के दूसरे राउंड में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। भारत नेपाल में जारी राहत और बचाव की कार्रवाइयों में तमाम मुमकिन मदद फराहम कर रहा है। आज राहत और बचाव की इमदाद लेकर 5वां भारतीय तैयारा नेपाल के लिए रवाना हुआ। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर एस जयशंकर ने बताया कि इस तैयारी में खसूसी साजो सामान से लैस 11 रुकनी बचाव टीम, नीस 5.5 टन इंतहाई ज़रूरी दवाएं भेजी गई हैं। 19 सरकार पर मुश्तमिल एक भारतीय फोरेंसिक टीम ने फोरेंसिक माहरीन के साथ नेपाल में हालिया अचानक सैलाब के महलुकीन की शिनाख्त में मदद की खातिर DNA सैंपल्स की जांच शुरू कर दी है। भारतीय सफारतखाने ने बताया है कि इस टीम ने काठमांडू वादी के खुमलटार इलाके में नेपाल पुलिस सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी और नेशनल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में तज़िये का काम शुरू किया है। नेपाल पुलिस के मुताबिक कल शाम तक 1,068 लाशें निकाली गईं, जिनमें से 400 लाशों की शिनाख्त में दुश्वारी पेश आ रही है। पुलिस का कहना है कि 4,606 अफराद का कुछ अता पता नहीं है, जिनमें 583 गैर मुल्की शहरी शामिल हैं। इससे तशवीश में इजाफा हो गया है कि मरने वालों की तादाद मज़ीद बढ़ सकती है। नेपाल में तबाहकुन सैलाब से हलाकतों की तादाद 1,100 से तजावज़ कर गई है। नेपाल की कुदरती आफात की रोकथाम और बंदोबस्त से मुतालिक कौमी अथॉरिटी के मुताबिक अब तक पिछले हफ्ते आने वाले तबाहकुन सैलाब में बह जाने वाले 1,114 अफराद की लाशें बरामद की जा चुकी हैं। सबसे ज़्यादा लाशें जनूबी ज़िला चितवन से बरामद हुई हैं, इसके बाद मशरकी नवालपरासी ज़िले से बरामद हुई हैं। हुकाम ने बताया कि अब तक 95 लाशों की शिनाख्त करके उन्हें उनके अहले खाना के सुपुर्द कर दिया गया है। तकरीबन 4,000 अफराद अब भी लापता हैं और उनसे कोई राबता कायम नहीं हो सका है। इनमें सरकारी मुलाजिमीन, सिक्योरिटी अहलकार, मुंतखब नुमाइंदे, गैर मुल्की शहरी, गैर मुल्की सयाहों के साथ मौजूद नेपाली अफराद, मकामी बाशिंदे और पनबिजली के प्रोजेक्टों में काम करने वाले वर्कर्स शामिल हैं। इस दौरान सैलाब से मुतासिरा 11 पनबिजली प्रोजेक्टों से लापता होने वाले बहुत से अफराद का अब भी कोई सुराग नहीं मिल सका है, क्योंकि बचाव की कार्रवाइयों से अब तक महदूद नतायज ही हासिल हुए हैं। नेपाल की आज़ाद पावर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के मुताबिक रसुवा और नुवलकोट के भोटेकोशी और त्रिशूली दरियाओं से मुत्तसिल इलाकों में वाक़ 11 पनबिजली प्रोजेक्टों से वाबस्ता 983 अफराद की मौजूदा सूरत हाल के बारे में अब भी कोई जानकारी नहीं मिली है। आलमी बैंक के सदर अजय बंगा ने कहा है कि भारत में अपनी मौजूदा 7 से 8% की शरह नमू से भी ज़्यादा तरक्की करने की सलाहियत मौजूद है। जनाब बंगा ने आलमी सतह पर तवानाई के दबाव, तजारत की गैर यकीनी सूरत हाल और एल नीनियो के असरात के बावजूद मुल्क की ताज़ा इकतसादी कारकर्दगी को मुस्तहकम करार दिया। अमरीका के शिमाली कैरोलिना के शहर एशविल में G20 के वज़राए ख़जाना के अजलास के मौके पर एक इंटरव्यू में जनाब बंगा ने कहा कि शरह नमू के ताज़ा आदाद व शुमार भारत की बुनियादी मईशत की मजबूती की अक्कासी करते हैं। आलमी बैंक के सरबराह ने कहा कि उन्होंने G20 वज़राए ख़जाना के अजलास के मौके पर वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन के साथ सियाहत और MSME के शोबों में मौक़े के बारे में भी तबादला ख्याल किया। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। भारत और अफगानिस्तान के दरमियान दोतरफा तजारत और इकतसादी तआवुन को मजबूत बनाने के इकदामात का जायजा लेने के लिए तजारत से मुतालिक दोनों ममालिक के मुश्तरका वर्किंग ग्रुप की मीटिंग मुनाकिद हुई। तजारत व सनत की वजारत ने कहा कि कल वर्चुअल तौर पर हुई बातचीत में कई अहम शोबों का इहाता किया गया, जिनमें तजारत को आसान बनाने और कस्टम्स तआवुन, अफगान ताजिरों के लिए वीज़ा की सहूलत, बैंकारी और माहौलियाती तआवुन, दवासाजी और ज़रई तजारत, तवानाई के शोबे में तआवुन, सरमायाकारी और तजारत का फ़रोग, महसूलात में रियायतें, माल बर्दारी रवाबित और बंदरगाहों से मुतालिक उमूर शामिल हैं। तरफ़ैन ने इदारा जाती तआवुन को मजबूत बनाने और शिनाख्त शुदा शोबों में मज़ीद इकदामात करने पर इत्तेफाक किया, जिनमें कस्टम्स और डेटा के तबादले के तआवुन में इजाफा, दवासाजी और ज़राअत में साबता जाती तआवुन, तजारती राबते में बेहतरी और सरमायाकारी के साथ साथ कारोबारी इदारों के दरमियान रवाबित को फ़रोग देना शामिल है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति की वजारत के महकमा जाती इजलास के अख्तितामी सेशन से खिताब करेंगे। कल शुरू हुआ दो रोज़ा महकमा जाती इजलास टीम इंडिया के जज्बे को मजबूत करने और इमदाद बाहमी पर मबनी विफाकियत को मुस्तहकम करने के वज़ीर आज़म के तसव्वुर करदा सिलसिलेवार महकमा जाती इजलास की पहली कड़ी है। ये इजलास मरकज़ और रियासतों को अहम शोबा जाती तरजीहात और मुकर्रा वक्त के अंदर एक्शन प्लान तैयार करने पर गौर व खौज करने के लिए मरकज़ और रियासतों को यकजा कर रहा है। इजलास में चार अहम शोबों पर तवज्जो मरकूज़ की गई है, जिनमें पानी से मुतालिक बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों पर बर वक्त अमल दरामद, जल संचय जन भागीदारी, कैच द रेन, पीने के पानी के ज़राए की पायदारी और जल जीवन मिशन 2.0 शामिल हैं। माहौलियात, जंगलात और आबो हवा की तब्दीली के मरकज़ी वज़ीर भूपेंद्र यादव ने आज कहा कि इंसान और फितरत को एक दूसरे के साथ तवाज़ुन और हम आहंगी के साथ रहना चाहिए और यही माहौलियाती तहफ़ुज़ की बुनियादी सोच होनी चाहिए। जनाब यादव ने ये बात नई दिल्ली में दो रोज़ा बैनुल अक़वामी वर्कशॉप का इफ्तिताह करने के बाद कही। इस वर्कशॉप का मौजू था शेरों के मस्कन, तहफ़ुज़ बायो मईशत और माहौलियाती सियाहत बतौर रोज़गार और आमदनी पैदा करने के सुतून। इफ्तिताही इजलास से खिताब करते हुए जनाब यादव ने प्रोजेक्ट टाइगर के तहत भारत के शेरों के तहफ्फुज़ के सफ़र को उजागर किया।
1: हम नेचर से सुपर नहीं है, हमारा नेचर के साथ को एग्जिस्टेंस होना चाहिए और इसलिए जो टाइगर रिजर्व्स उनका कंजर्वेशन का अर्थ है, कई बार

0: WWL में भी हमने कहा है कि भाई आप हर ट्रिब्यूटरी से पानी ले लोगे तो वाटर का जो अपना फ्लो है उसका क्या होगा। वाटर में घड़ियाल है, वाटर में मछलियाँ हैं, वाटर में केकड़े हैं, वाटर में फिशेज हैं। सो सर्वाइवल केवल आपका नहीं होना चाहिए। और इसलिए जो हमने बीच में NTCA ने भी हमने एक इक्वेशन करी थी कि टाइगर नॉट ओनली प्रोटेक्ट द टेरिटरी, दे प्रोटेक्ट द ट्रिब्यूटरी आल्सो, ये पूरा इकोसिस्टम का एक बैलेंस करने का विषय।
1: इस मौके पर IBCA और ADB ने भी शेरों के मस्कन के तहफ़ पायदार तरक्की, सलाहियत साजी, मालूमात के तबादले और फितरत के लिए मुस्बत माहौलियाती इकदामात के शोबों में तआवुन को मजबूत बनाने के लिए एक मुफाहमत नामे पर दस्तखत किए। बैडमिंटन में भारत के किदांबी श्रीकांत आज चाइना ओपन टूर्नामेंट के दूसरे राउंड में पहुंच गए। चीन के शहर शेनजेन में मर्दों के सिंगल्स के इफ्तिताही मुकाबले में श्रीकांत ने चीनी ताइपे के ची यूजेन को 21-16, 21-15 से शिकस्त दी। स्क्वॉश में भारत की अनाहत सिंह लंदन स्क्वॉश क्लासिक के दूसरे राउंड में पहुंच गई हैं। मौजूदा आलमी जूनियर चैंपियन अनाहत ने ख्वातीन सिंगल्स के इफ्तिताही मुकाबले में मिस्र की मरियम को 11-3, 11-2 से आसानी के साथ हरा दिया। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। भारत ने सैलाब से मुतासिरा नेपाल की मदद की खातिर ज़रूरी दवाओं और तिब्बी आलात पर मुश्तमिल 5.5 टन इमदादी सामान ले जाने वाला 5वां तैयारा रवाना कर दिया है। नेपाल में सैलाब से हलाकतों की तादाद 1,100 से तजावुज़ कर गई है। आलमी बैंक के सरबराह अजय बंगा ने भारत की इक्तसादी तरक्की की तारीफ़ की है और कहा है कि आलमी सतह पर इक्तसादी मुश्किलात के बावजूद भारत में 8% से ज़्यादा शरह तरक्की हासिल करने की सलाहियत मौजूद है। भारत और अफगानिस्तान के दरमियान दो तरफा तजारत और इक्तसादी तआवुन को मजबूत बनाने के इकदामात का जायज़ा लेने के लिए तजारत से मुतालिक दोनों ममालिक के मुश्तरका वर्किंग ग्रुप की मीटिंग मुनाकिद हुई। और बैडमिंटन में किदांबी श्रीकांत चाइना ओपन बैडमिंटन के दूसरे राउंड में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ।
2: Good afternoon. This is Akashwani and I am Anuja Kumar with the Midday News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to address valedictory session of Departmental Summit of Jal Shakti Ministry in New Delhi this evening. India sends 5th aircraft carrying 5.5 tons of essential medicines and equipments to assist flood-ravaged Nepal. Death toll crosses 1,100. World Bank Chief Ajay Banga praises India's economic growth, says it has potential to grow beyond 8% despite global economic headwinds. India-Afghanistan Joint Working Group holds review meeting to strengthen bilateral trade and economic cooperation between the two countries. And in badminton, India's Kidambi Srikanth and Tanvi Sharma advanced to the second round of China Open. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will address the valedictory session of the departmental summit of Jal Shakti Ministry in New Delhi this evening. The two-day departmental summit commenced yesterday is the first in a series of departmental summits envisioned by the Prime Minister to strengthen the spirit of Team India and deepen cooperative federalism. The summit is bringing together the centre and the states to deliberate on critical sectoral priorities and evolve time-bound action plans. The summit is focusing on 4 key areas covering timely implementation of water infrastructure projects, Jal Sanchay Jan Bhagidari, Catch the Rain, Drinking Water Source Sustainability and Jal Jeevan Mission 2.0. The initiative seeks to promote shared responsibility for national goals and ensure that deliberations translate into measurable improvements in governance and service delivery. India continues to extend all possible assistance to Nepal in the ongoing rescue and relief efforts. The 5th Indian aircraft carrying relief and rescue assistance has departed for Nepal today. In a social media post, External Affairs Ministry Dr. S. Jaishankar said the aircraft is carrying an 11-member rescue team equipped with specialized equipment along with 5.5 tons of essential medicines. Meanwhile, a 19-member Indian forensic team

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। भारत ने बाढ़ग्रस्त नेपाल की सहायता के लिए 5.5 टन दवाओं और उपकरणों के साथ 5वां विमान भेजा। मृतकों की संख्या 1100 से अधिक हुई। विश्व बैंक प्रमुख अजय बंगा ने भारत की आर्थिक वृद्धि की सराहना की। कहा, वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत में 8% की वृद्धि दर से आगे बढ़ने की क्षमता। भारत अफगानिस्तान संयुक्त कार्य समूह की बैठक में द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग मजबूत करने के उपायों की समीक्षा। और किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में केंद्र और राज्यों को एक साथ लाकर महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए साझा जिम्मेदारी को बढ़ावा देना और ये सुनिश्चित करना है कि विचार विमर्श से शासन और सेवा वितरण में सुधार हो सके। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर लोगों से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने, सोने की अनावश्यक खरीद और विदेशों में शादी ब्याह समारोह आयोजित करने से बचने का आह्वान किया है। एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि देश के युवा आज जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं उससे उनके सपने साकार होंगे।
1: स्वदेशी का मंत्र वोकल फॉर लोकल, विदेशों की यात्राएं अगर घूमने फिरने जाते हैं तो नहीं करना चाहिए। शादी ब्याह विदेशों में करते हैं, नहीं करना चाहिए। मेड इन इंडिया के मंत्र को जीना चाहिए और जरूरत न हो तो सोना भी नहीं खरीदना चाहिए। हम जितना ज्यादा स्वदेशी पर बल देंगे, जितना आत्मनिर्भर पर बल देंगे, मुझे पक्का विश्वास है जब आजादी के 100 साल होंगे, हम हमारी युवा पीढ़ी को विकसित भारत सुप्रत करेंगे।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर के तीसरे दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। समारोह को संबोधित करते हुए श्री राधाकृष्णन

0: मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत नेपाल में जारी राहत और बचाव कार्यों में हर संभव सहायता कर रहा है। इस बीच नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या 1100 से अधिक हो गई है। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार अब तक 1114 शव बरामद हुए हैं। सबसे अधिक शव दक्षिणी चितवन जिले में बरामद किए गए। अधिकारियों ने बताया कि अब तक 95 मृतकों की पहचान के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। लगभग 4000 लोग अब भी लापता हैं। बाढ़ प्रभावित 11 जल पनबिजली परियोजनाओं से जुड़े 983 लापता लोगों की अभी तक कोई जानकारी नहीं है। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने कहा है कि भारत में 7 से 8% की मौजूदा वृद्धि दर से आगे बढ़ने की क्षमता है। श्री बंगा ने वैश्विक ऊर्जा दबाव, व्यापार अनिश्चितता और अल नीनो के प्रभाव के बावजूद देश के मौजूदा आर्थिक प्रदर्शन को मजबूत बताया। अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों की बैठक के दौरान एक साक्षात्कार में श्री बंगा ने कहा कि नए आंकड़े भारत की अर्थव्यवस्था की बुनियादी स्थिति की मजबूती को दर्शाते हैं।
1: India has learnings that can be shared elsewhere.
2: भारत विकास के उस पड़ाव पर पहुंच गया है जहां से वो अपने अनुभव दूसरों के साथ साझा कर सकता है। भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आधार से लेकर बैंक खातों और अब खेती बाड़ी के क्षेत्र में हो रहे कार्यों से दूसरे देश भी सीख सकते हैं, और इसलिए 2047 तक भारत जिस बड़े आकार की अर्थव्यवस्था बनने की ओर आगे बढ़ रहा है वो न केवल अपनी वृद्धि दर से संभव होगा बल्कि विश्व अर्थव्यवस्था और विश्व राजनीति में भारत की जो अहमियत है उससे भी संभव होगा। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री भारत को अगले 15 वर्षों में जिस दिशा में ले जाना चाहते हैं उसके लिए ये दोनों ही बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं।
1: प्राइम मिनिस्टर वांट्स इंडिया टू गो इन द कमिंग 15 इयर्स।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक के दौरान विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत विश्व बैंक समूह साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। इस दौरान अवसंरचना क्षेत्र में ऋण सुविधा बढ़ाने के लिए कार्यक्रम आधारित दृष्टिकोण पर भी विचार किया गया। श्रीमती सीतारामन ने अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक से अलग अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की प्रबंध निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जीवा से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने वैश्विक आर्थिक स्थिति और भारत की बदलती विकास गति पर चर्चा की। वित्त मंत्री सीतारामन ने कल अमेरिका के एशविल में यूरोपीय अर्थव्यवस्था आयुक्त वाल्दिस दोम्ब्रोस्किस से भी मुलाकात की। वित्त मंत्रालय के अनुसार दोनों पक्षों ने भारत यूरोपीय संघ आर्थिक और वित्तीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: अपडेट रहे, आगे रहें। X@AIR News हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIR News अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग मजबूत करने के उपायों की समीक्षा के लिए भारत अफगानिस्तान संयुक्त कार्य समूह की बैठक हुई। दोनों देशों ने विभिन्न क्षेत्रों में संस्थागत सहयोग मजबूत करने और आगे की कार्रवाई करने पर सहमति व्यक्त की। इसमें सीमा शुल्क और संबंधित आंकड़ों के आदान प्रदान में सहयोग बढ़ाना, दवा और कृषि क्षेत्र में नियामकीय सहयोग, व्यापार संपर्क बेहतर करना तथा निवेश और व्यावसायिक संपर्क को बढ़ावा देना शामिल है। विदेश राज्य मंत्री पवित्र मार्गरेटा ने कहा है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर भारत का दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय कानून, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान पर आधारित है। उन्होंने कहा कि भारत समुद्री और हवाई मार्गों की स्वतंत्रता, वैध व्यापार तथा विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करता है। श्री मार्गरेटा ने कल पलाऊ के कोरोर में आयोजित 55वें प्रशांत द्वीप समूह फोरम नेताओं के सत्र को संबोधित किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर कल से 3 दिन की यूक्रेन और पोलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री सिबिहा और पोलैंड के उप प्रधानमंत्री तथा विदेश मंत्री रादोस्वाफ शियोर्स्की के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना है। संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज

0: मध्य प्रदेश के शिवपुरी में दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं की शुरुआत की। उन्होंने डाकघर आधुनिकीकरण योजना के तहत तैयार अत्याधुनिक प्रधान डाकघर का लोकार्पण किया। नए डाकघर में स्पीड पोस्ट, बचत बैंक, डाक जीवन बीमा, आधार, पार्सल और वित्तीय सेवाएं एक ही जगह मिलेंगी। विदेश और पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने आज लद्दाख के करगिल में डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। इस केंद्र का उद्घाटन करगिल के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है और इससे जिले तथा आसपास के क्षेत्रों के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हुई है। प्रवर्तन निदेशालय अवैध सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म पेरीमैच और अन्य के मामले में विभिन्न राज्यों में 12 स्थानों पर छापेमारी कर रहा है। धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत महाराष्ट्र में 5, दिल्ली NCR में 4, राजस्थान में 2 और गुजरात में 1 स्थान पर कुछ भुगतान कंपनियों के परिसरों में तलाशी ली जा रही है। निदेशालय भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के टोल प्लाजा पर कथित धोखाधड़ी के मामले में 14 परिसरों में भी छापेमारी कर रहा है। ये तलाशी धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: आपको हर खबर से रखें अपडेट, @AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। असम, मेघालय, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ जगहों पर तेज बारिश का अनुमान है। अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पंजाब, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी कुछ क्षेत्रों में तेज बारिश हो सकती है। बिहार के विभिन्न जिलों में बाढ़ का संकट गहराता जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि नेपाल और पड़ोसी राज्यों के साथ ही प्रदेश में हो रही लगातार बारिश से गंगा, गंडक, कोसी समेत प्रमुख नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है।
2: बिहार में प्रमुख नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी से वाल्मीकि नगर, कोसी, वीरपुर, सोन, इंद्रपुरी बराज से जलाश्रय में बढ़ोतरी से संबंधित जिलों में बाढ़ का संकट गहरा गया है। भागलपुर, औरंगाबाद, बेगूसराय, बक्सर, भोजपुर, मुंगेर, पटना, खगड़िया, वैशाली और जहानाबाद के बाद कैमूर जिले में भी बाढ़ के हालात उत्पन्न हो गए हैं। जिला प्रशासन ने लगातार हो रही बारिश और दुर्गावती जलाशय से पानी छोड़े जाने के बाद फ्लैश फ्लड का अलर्ट जारी किया है। प्रशासन की ओर से नदी किनारे बसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। सविता पारिक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: उधर झारखंड में पिछले 3 दिनों से हो रही तेज बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई हिस्सों में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है।
3: मौसम विभाग रांची के अनुसार पिछले 3 दिनों से झारखंड में हो रही भारी बारिश के कारण भैरवी, दामोदर, स्वर्णरेखा और खरकई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। रांची में लगातार बारिश के कारण काके और गेतलसू डैम के साथ साथ तेनू घाट और चांडिल डैम से पानी छोड़ा गया है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इस बीच पिछले 3 दिनों की बारिश में राज्य भर में कई पुल और सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के कई गांवों का प्रखंड और जिला मुख्यालय से संपर्क प्रभावित हुआ है। लोहरदगा जिला सबसे अधिक प्रभावित रहा है, जहां कई पुल क्षतिग्रस्त या बह गए हैं, जिससे बड़ी आबादी प्रभावित हुई है। मौसम विभाग ने आज सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पलामू और गढ़वा में रेड अलर्ट, जबकि लातेहार, लोहरदगा, गुमला, खूंटी, सरायकेला खरसावा और पूर्वी सिंहभूम में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बना सिस्टम अगले 36 घंटे में झारखंड के पश्चिमी हिस्सों से होकर आगे बढ़ेगा। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: पंजाब सरकार ने राज्य में धान की पराली जलाने पर सख्ती से रोक लगाने और पर्यावरण संरक्षण के लिए डिजिटल तथा मल्टीमीडिया माध्यमों से बहुस्तरीय सूचना और जागरूकता अभियान चलाने को कहा है। बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया के माध्यम से भी जागरूकता फैलाने की योजना है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पराली प्रबंधन रणनीति पर कल हुई बैठक में ये बात कही। बैडमिंटन में भारत के किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा आज चीन ओपन टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पहुंच गए। श्रीकांत ने पुरुष सिंगल्स के शुरुआती मैच में चीनी ताइपे के ची यूनजेन को हराया। पुरुष सिंगल्स के एक अन्य मुकाबले में लक्ष्य सेन कनाडा के विक्टर लाई से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। महिला सिंगल्स के पहले दौर के मुकाबले में भारत की तन्वी ने डेनमार्क की अमाली चूस को कड़े मुकाबले में लगातार सेटों से हराया। भारत की मिक्स डबल्स जोड़ी ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो ने भी थाईलैंड के तोन्नाकोन साहेंग और तोनिचा साहेंग को हराकर अगले दौर में जगह बनाई। स्क्वाश में भारत की अनाहत सिंह ने लंदन स्क्वाश क्लासिक के दूसरे दौर में जगह बना ली है। पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में भारत के रमित टंडन ने कतर के अब्दुल्ला अल तमीमी को हराया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.7% की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 516 अंक गिरकर 76,428 पर, जबकि निफ्टी 183 अंक गिरकर 23,873 पर पहुंच गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। भारत ने बाढ़ग्रस्त नेपाल की सहायता के लिए 5.5 टन दवाओं और उपकरणों के साथ 5वां विमान भेजा। मृतकों की संख्या 1100 से अधिक हुई। विश्व बैंक प्रमुख अजय बंगा ने भारत की आर्थिक वृद्धि की सराहना की। कहा, वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत में 8% की वृद्धि दर से आगे बढ़ने की क्षमता। भारत अफगानिस्तान संयुक्त कार्य समूह की बैठक में द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग मजबूत करने के उपायों की समीक्षा। और किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पहुंचे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मेरे वेट 366.3 मीटर्स अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, टीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। इस वक्त दिन के 2:30 हुए हैं और अब प्रस्तुत है आपका मन पसंदीदा सेगमेंट एक ही कलाकार। श्रोताओ, इस कार्यक्रम में मैं आपकी दोस्त और होस्ट दीक्षा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे कार्यक्रम एक ही कलाकार में। जो हमारे आज की कलाकार हैं वो एक ऐसी अभिनेत्री हैं जो हिंदी सिनेमा के इतिहास की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रियों में से मानी जाती हैं। अपने असाधारण सुंदरता, फैशन के नए रुझानों और सहज अभिनय शैली के लिए जानी जाती हैं। सन 1960 और 1970 के दशक की एक बेहद लोकप्रिय और प्रतिष्ठित हिंदी फिल्म अभिनेत्री थी, जिन्हें उनके आइकॉनिक हेयर स्टाइल साधना कट के लिए जाना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अभिनेत्री साधना शिव दासानी की, जिनका आज जन्मदिवस है। और इस अवसर पे हम लेकर आए हैं इस कार्यक्रम में और करेंगे उन्हीं से जुड़ी कई सारी रोचक बातें। फिलहाल सुनते हैं उनकी ही फिल्म से ये गीत।

श्रोताओं, अगर हम उनके प्रारंभिक जीवन की बात करें तो उनका जन्म 2 सितंबर 1941 को ब्रिटिश भारत के कराची में एक सिंधी हिंदू परिवार में शिवरान शिव तसानी और लाली देवी के घर हुआ था। उनकी एक बहन सरला थी। हालांकि उनके पिता बंगाली अभिनेत्री नर्तकी साधना बोस के बहुत बड़े प्रशंसक थे, इसलिए उन्होंने 5 साल की उम्र में अपनी बेटी का नाम साधना रख दिया।

श्वेता, भारत के विभाजन के दौरान उनका परिवार कराची से पलायन कर मुंबई में बस गया। उनकी माँ ने उन्हें 8 वर्ष की आयु तक घर पर ही पढ़ाया, जिसके बाद उन्होंने वडाला के ऑक्जिलियम कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई की। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने जय हिंद कॉलेज में कला स्नातक की डिग्री हासिल की। कॉलेज के दिनों में वह कई नाटकों में अभिनय करती थी, लेकिन जब परिवार का गुजारा मुश्किल होने लगा तो साधना ने परिवार का सहारा देने के लिए कोलाबा में टाइपिस्ट के रूप में काम करना शुरू कर दिया। वे सुबह कॉलेज जाती थी और दिन के दूसरे भाग में काम करती थी। हालांकि वे अपनी डिग्री पूरी नहीं कर पाई और बाद में फिल्मों में आ गई। बचपन से ही उनका फिल्मों में करियर बनाने का सपना था और अभिनेत्री नूतन उनकी प्रेरणा थी।

सन 1955 में एक संक्षिप्त भूमिका निभाने के बाद साधना निर्देशक सशाधर मुखर्जी की शिष्या बन गई। जी हाँ, सन 1955 में श्री 420 फिल्म में उन्होंने एक संक्षिप्त भूमिका निभाई, जिसके बाद वे सशाधर मुखर्जी की शिष्या बन गई, जिन्होंने उन्हें लव इन शिमला में कास्ट किया, जहाँ उनका विशिष्ट हेयर स्टाइल लोकप्रिय हो गया और साधना कट के नाम से जाने लगा। इस सफलता के बाद साधना ने परख, हम दोनों, असली नकली, एक मुसाफिर, एक हसीना, मेरे महबूब वो कौन थी, आरजू, वक्त और मेरा साया जैसी फिल्मों में प्रमुख भूमिका निभाई।

श्रोताओं, साधना ना सिर्फ एक बेहद लोकप्रिय अभिनेत्री थी बल्कि वो एक फैशन आइकॉन भी थी। उन्होंने अपनी पहली फिल्म लिव इन शिमला में भारतीय फिल्म उद्योग में फ्रिंज हेयर स्टाइल की शुरुआत की। फिल्म के निर्देशक और उनके भावी पति आर के नैयर ने उनके साथ उनके माथे को पतला दिखाने के लिए फ्रिंज हेयर स्टाइल का सुझाव दिया था। साधना कहती है उन्होंने हेयरलाइन के पास एक पट्टी लगाने की कोशिश की लेकिन ये कारगर नहीं हुआ। इसके बाद नैयर ने उन्हें हॉलीवुड अभिनेत्री ऑड्री हेपबर्न की फ्रिंज हेयर स्टाइल को अपनाने का सुझाव दिया। फ्रिंज जल्द ही लोकप्रिय हो गया और 1960 के दशक में एक फैशन बन गया।

भारत में लड़कियों ने इस स्टाइल को अपनाया और आज भी इसे इसी नाम से जाना जाता है। यह लुक उनके द्वारा निभाए गए शरारती, सुंदर और ग्लैमरस सोनिया के किरदार पर खूब जचता था। लेकिन जब साधना बिमल रॉय की फिल्म परख की शूटिंग के लिए गई थी तो रॉय उनका आधुनिक लुक देखकर निराश हो गए। यहाँ उन्होंने जिस सरल ग्रामीण लड़की का किरदार निभाया था उससे मेल खाने के लिए उन्हें अपनी लटों को पीछे की ओर मोड़ना पड़ा। फिल्म जब उन्होंने मेरे महबूब में अलीगढ़ की एक साधारण मुस्लिम लड़की की भूमिका निभाने के लिए अनुबंध किया तो साधना ने अपने प्रसिद्ध

तो साधना कट को बदल दिया। उन्होंने अपने बालों के बीच से बांटकर चोटी बनाई थी, जिसे निर्देशक H.S. रावल ने तुरंत अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि दर्शक उनका सिग्नेचर साधना कट देखना चाहते थे और इसकी मांग कर रहे थे। श्रोताओ, ये कट इतना फेमस हो गया कि कई साल बाद बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने अपनी फिल्म ओम शांति ओम और चांदनी चौक टू चाइना में इसी लट को अपनाया। साधना को चूड़ीदार कुर्ता का फैशन भी उन्होंने ही लाया और इस फैशन को लाने में उन्हीं को श्रेय दिया जाता है।

श्रोताओं, हमारे पास भर भर के संदेश आ रहे हैं और चलिए हम संदेशों को पढ़ते हैं। जो हमारे पास पहला संदेश है वो है मेरठ से दिग्दर्शन कौर और कविता गौर का, और इनके साथ हैं इनके अन्य सदस्य। जो अगला संदेश है वो है धर्मेंद्र छिपा का, इनके साथ है कपिल छिपा, ईशान छिपा, पूजा परिहार, भोपालगढ़ राजस्थान से। अगला संदेश आया गुरमीत सिंह का, और ये हमें लिखकर भेज रहे हैं साउथ एक्सटेंशन शालीमार बाग से अशोक कुमार सहगल। प्रकाश वर्मा ने हमें संदेश भेजा, इनके साथ है प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा, अन्नपूर्णा वर्मा, और ये हमें लिखकर भेज रहे हैं छत्तीसगढ़ पलारी से। तुलसी मस्कीन हमें संदेश भेज

रही हैं, और इनके साथ है वीना मस्कीन, डब्बू सम्राट चंडीगढ़ से, राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना। अगला संदेश है राधेश्याम देवांगन का, इनके साथ है चंपा देवांगन, और ये हमें लिख कर भेज रहे हैं भंवरपुर बसना से। वंडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा हमें संदेश लिख कर भेज रहे हैं। अमर राम रमेश कुमार खत्री हमें लिख कर भेज रहे हैं, और इनके साथ हैं मास्टर किशन लाल खत्री, शंकर गुल। अगला जो संदेश है वो है अनिल मोहन का, और इनके साथ है उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक, पहाड़गंज, मुल्तानी ढांडा से। श्रोता, जो अगला संदेश है देवशंकर टमुरिया का, और ये हमें लिखकर भेज रहे हैं छत्तीसगढ़ से, और इनके साथ हैं डॉली बेबी पूजा तामुरिया, राधिका और प्रभा देवी तामुरिया।

अगला संदेश आया सुदर्शन मुखी का और इनके साथ है अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से। संजय ढींगिया हमें संदेश भेज रहे हैं, इनके साथ है नमन ढींगिया, अपार ढींगिया, बागपत उत्तर प्रदेश से। संदीप मकर, ज्योति मकर, मन्नत मकर, भरत मकर, कमल साहनी, पिंगावाला चौक, बुराया, जालंधर से हमें संदेश भेजा है। फागुराम यादव ने हमें संदेश भेजा है, ये हमें लिख कर भेज रहे हैं संबलपुर कांकेर से। इनके साथ है ज्योति यादव, ओजस्वी यादव। जो अगला संदेश है वो है इशक मोहम्मद का और साथ ही योगेंद्र नायक हमें लिख कर भेज रहे हैं, गीता नायक, निहारिका नायक और सुशांत नायक, ये हमें लिख कर भेज रहे हैं जिला कासगंज उत्तर प्रदेश से।

तो श्रोताओं, इस गीत के साथ ही हमारा आज का ये एक ही कलाकार कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तब तक लिए मुझे यानी दीक्षा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, कल फिर हाजिर होंगे ये कार्यक्रम लेकर ठीक दिन के 2:30 पर।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार। ये आकाशवाणी दिल्ली का इन द प्रेस चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर दिन के 3 बज रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम मैटनी मेलोडीज़। और आज मैटनी मेलोडीज़ में मैं आपके साथ हूँ, आपकी दोस्त राखी बैनर्जी। दोस्तों, कभी कभी किसी इंसान को याद अचानक नहीं आती। कोई धुन बजती है, कोई पुरानी शाम याद आती है और दिल चुपचाप पूछ बैठता है, कहाँ हो तुम। 1950s का दौर था जब मोहब्बत को कहने के लिए बहुत ज़्यादा शब्दों की ज़रूरत नहीं होती थी। एक नज़र, एक इंतज़ार और एक गीत, बस इतना ही काफ़ी था। ऐसे ही एक बेहद खूबसूरत गीत है, याद किया दिल ने कहाँ हो तुम। इस गीत में एक तरफ इंतज़ार है तो दूसरी तरफ उस इंसान को पुकारने की मासूमियत, जिसकी कमी दिल को महसूस कर रहा है। फिल्म पतिता का यह गीत 1953 में आया था और गीत को अपनी खूबसूरत शायरी दीदी हजरत जयपुरी ने संगीत से सजाया शंकर जयकिशन ने, और इसे अपनी दिलकश आवाज़ों में गाया हेमंत कुमार और लता मंगेशकर ने। हेमंत कुमार की गहरी मखमली आवाज़ और लता जी की कोमल आवाज़ जब साथ आती है तो ये गीत सिर्फ एक डुएट गीत नहीं रह जाता है, ये बन जाता है दो दिलों के बीच की एक बातचीत। तो आइए कुछ पल के लिए आज से निकलकर उस सुनहरे दौर में चलते हैं जहां प्यार शायद थोड़ा धीमा था, इंतज़ार थोड़ा लंबा था, लेकिन एहसास बहुत गहरा था। तो चलिए सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, आकाश में दिल्ली के इंद्र प्रेस चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मैटिनी मेलोडीज। तो श्रोताओं, ये आप जो गीत सुनते हैं वो सुनते हैं 1950s 60s, यानी पुराने फिल्मी गीत। तो आपको ये गीत पसंद आते हैं, अच्छे लगते हैं कि नहीं, ये हमें मेल करके ज़रूर बताइएगा। और आगे बढ़ते हैं। कभी कभी आपने खुले आसमान को वो देख कर सोचा है कि अगर ज़िंदगी में कोई खूबसूरत पल हो तो उसे बस वहीं रोक लिया जाए, ना कोई जल्दी ना कोई चिंता, बस खुला आसमान, साथ चलता कोई अपना और एक प्यारी सी धुन। 1950s के सिनेमा ऐसे ही छोटे छोटे पलों को गीतों में बदल देता था। आज का गीत भी कुछ ऐसा ही है, जिसमें है खुला आसमान, प्यार की हल्की सी शरारत और ज़िंदगी की को बेफिक्र होकर जीने का एहसास। फिल्म मिस्टर एंड मिसेस 55 का ये गीत साल 1955 में आया था। इसके खूबसूरत बोल लिखे थे मजरूह सुल्तानपुरी ने, संगीत दिया था मशहूर संगीतकार ओपी नैयर ने और अपनी दिलकश आवाज़ दी थी गीता दत्त ने। तो आइए कुछ पल के लिए हम भी उस दौर में चलते हैं जहां आसमान नीला था, मौसम सुहाना था और मोहब्बत थोड़ी मासूम हुआ करती थी। तो सुनते हैं गीता दत्त की आवाज़ में ये गीत।

श्रोताओं, कहते हैं प्यार छुपाने से छुपता नहीं है, और जब प्यार थोड़ा नया नया हो तो फिर उसकी खबर सिर्फ दो लोगों को नहीं रहती, पूरी दुनिया को हो जाती है। ज़रा सोचिए वो दौर जब ना सोशल मीडिया था ना व्हाट्सअप, फिर भी मोहब्बत के चर्चे हर जुबान पर हुआ करते थे। 1960s का ये गीत प्यार की उस शरारत और बेफिक्री को बड़ी ही खूबसूरती से पेश करता है। फिल्म ब्रह्मचारी जो वर्ष 1968 में रिलीज हुई थी, उसमें शमी कपूर और मुमताज़ पर फिल्माया गया यह गीत आज भी सुनते ही माहौल को खुशगवार बना देता है। इस गीत के बोल लिखे थे हजरत जयपुरी ने, संगीत दिया था मशहूर जोड़ी शंकर जयकिशन ने और अपनी आवाज़ दी थी लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने। गीत की सबसे खास बात है कि इसकी एनर्जी, मोहब्बत को लेकर वो बेफिक्र अंदाज, वो मुस्कुराहट और वो चुलबुलापन जो 1960s के सिनेमा को अपनी एक पहचान थी। तो आइए उस सुनहरे दौर की इस शरारती मोहब्बत को महसूस करते हैं और सुनते हैं ये गीत।

जी हाँ दोस्तों, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर। पुराने जमाने के गीतों की बात ही कुछ और थी। कहते हैं प्यार करने से पहले दिल की सुननी चाहिए, लेकिन जरा ठहरिए, कभी कभी दिल से पहले दिमाग की भी सुन लेना जरूरी होता है, क्योंकि उस जमाने में भी मोहब्बत करने वालों को चेतावनी दी जाती थी कि सोच समझ कर दिल को लगाना, देखो बुरा है जमाना। कितनी प्यारी बात है ना, एक तरफ प्यार की मासूमियत और दूसरी तरफ जमाने का डर। और जब यही बात गीता रॉय यानी हमारी प्यारी गीता दत्त की आवाज़ में आती है तो उसमें एक अलग ही मिठास और शरारत महसूस होती है। तो आइए सुनते हैं गीता दत्त जी के दिलकश आवाज़ में ये खूबसूरत सा गीत, सोच समझ कर करना प्यार। और इस गीत का संगीत दिया था SD बर्मन साहब ने। तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओ, आकाश में दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं मैटिनी मेलोडीज़, और मैं आपके साथ हूँ आपकी दोस्त राखी बैनर्जी। श्रोताओ, कार्यक्रम आपको पसंद आ रहा है कि नहीं ये आप ज़रूर हमें मेल कीजिएगा, और हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मोहब्बत की। कुछ मोहब्बतें ऐसी होती है जिनका कोई हिसाब नहीं होता, बस दिल किसी को अपना मान लेता है और फिर हर धड़कन उसी के नाम हो जाती है। लेकिन जब कोई पूछे कि ये जो एहसास है ये प्यार है या सिर्फ एक खूबसूरत सा ख्वाब, तो शायद जवाब यही है कि ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का फसाना। 1950 के दशक की फिल्म यहूदी का ये बेहद खूबसूरत सा गीत मोहब्बत की उस उलझन को बयां करता है जहाँ दिल खुद नहीं समझ पाता कि उसे क्या होगा, उसका क्या हो गया है। इस गीत को अपनी दिलकश और भावपूर्ण आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी साहब ने, गीत के बोल लिखे हैं शैलेंद्र ने और संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने। तो आइए कुछ पल के लिए उसी दौर में लौटते हैं जहाँ मोहब्बत को कहने के लिए भी अल्फाज कम पड़ जाते थे। तो सुनते हैं यहूदी फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मैटिनी मेलोडीज। और कार्यक्रम का आखिरी पड़ाव आ चुका है, समय का इशारा भी हो चुका है। लेकिन जाते जाते एक और बात, कभी कभी कोई हमारे बहुत करीब भी होता है और हमारे लिए एक राज बना रहता है। नाम नहीं पता, चेहरा नहीं पता, बस एक एहसास है कि कोई है जो इस कहानी का हिस्सा है। और इसी राज को आवाज़ देता है 1960 के दशक का ये बेहद यादगार गीत, गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, किसको खबर कौन है वो। फिल्म गुमनाम का ये गीत अपनी धुन और बोलों के साथ आज भी एक रहस्यमयी माहौल बना देता है। इस खूबसूरत गीत को अपनी आवाज़ दी है लता मंगेशकर जी ने, गीतकार हैं हसरत जयपुरी और संगीत दिया है शंकर जय किशन का। तो आइए रोशनी थोड़ी धीमी करते हैं, रहस्य को थोड़ा और गहरा होने देते हैं और सुनते हैं इस कार्यक्रम का आखिरी गीत फिल्म गुमनाम से लता जी की आवाज़ में।

महसूस हुआ कि टेलीविजन सिर्फ तस्वीर और वीडियो नहीं दिखाता बल्कि आवाज को घर घर पहुंचाने वाला जरिया है। और हकीकत है कि आवाज के साथ जबान भी घर घर पहुंचती है। उन्होंने कहा कि हिंदी चैनलों में उर्दू अल्फाज का इस्तेमाल इस बात की मिसाल है कि उर्दू के अल्फाज आज सिर्फ उर्दू बोलने वालों तक महदूद नहीं है बल्कि वो टेलीविजन के जरिए एक वसीतर मुआशरे का हिस्सा बन रहे हैं। प्रोग्राम की निजामत मोहतरमा रेशमा फारूकी ने की।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उर्दू मजलिस। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। शाम के 4 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में केंद्र और राज्यों की महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए साझा दायित्व को बढ़ावा देना और विचार विमर्श से सुशासन और सेवा वितरण में सुधार लाना है। भारत से राहत सामग्री लेकर 5वां विमान आज नेपाल पहुंचा। इसमें 11 सदस्यीय बचाव दल, विशेष उपकरण और 5 टन से अधिक दवाएं हैं। नेपाल में भारत के राजदूत ने बताया कि भारत नेपाल में जारी राहत और बचाव कार्य में हर संभव सहायता कर रहा है। इस बीच नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या 1100 से अधिक हो गई है। अधिकारियों ने बताया कि अब तक 95 मृतकों की पहचान के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। लगभग 4000 लोग अब भी लापता हैं। बिहार के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बिगड़ रही है। नेपाल, पड़ोसी राज्यों और राज्य में लगातार वर्षा के कारण गंगा, गंडक और कोसी नदियों के जल स्तर में वृद्धि हो रही है। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बांगा ने कहा है कि भारत में 7 से 8% की मौजूदा वृद्धि दर से आगे बढ़ने की क्षमता है। श्री बांगा ने वैश्विक ऊर्जा दबाव, व्यापार अनिश्चितता और अलनीनो के प्रभाव के बावजूद देश के मौजूदा आर्थिक प्रदर्शन को मजबूत बताया। अमेरिका के एशुल में G20 वित्त मंत्रियों की बैठक के दौरान एक साक्षात्कार में श्री बांगा ने कहा कि नए आंकड़े भारत की अर्थव्यवस्था की बुनियादी स्थिति की मजबूती दर्शाते हैं।
2: Where India has learnings in भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आधार से लेकर बैंक खातों और अब खेती बाड़ी के क्षेत्र में हो रहे कार्यों से दूसरे देश भी सीख सकते हैं, और इसलिए 2047 तक भारत जिस बड़े आकार की अर्थव्यवस्था बनने की ओर आगे बढ़ रहा है, वो न केवल अपनी वृद्धि दर से संभव होगा बल्कि विश्व अर्थव्यवस्था और विश्व राजनीति में भारत की जो अहमियत है उससे भी संभव होगा। इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जीवा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने वैश्विक आर्थिक स्थिति और भारत की बदलती विकास गति पर चर्चा की। वित्त मंत्रालय ने कहा कि दोनों नेताओं ने विश्लेषण क्षमता मजबूत करने, सुदृढ़ व्यापक आर्थिक नीतियों को बढ़ावा देने और वैश्विक आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए भारत और IMF के बीच निरंतर सहयोग के महत्व पर बल दिया। भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग मजबूत करने के उपायों की समीक्षा के लिए भारत अफगानिस्तान संयुक्त कार्य समूह की बैठक हुई। दोनों देशों ने विभिन्न क्षेत्रों में संस्थागत सहयोग मजबूत करने और आगे की कार्रवाई पर सहमति जताई। इसमें सीमा शुल्क और इससे संबंधित आंकड़ों के आदान प्रदान में सहयोग बढ़ाना, दवा और कृषि क्षेत्र में सहयोग, व्यापार संपर्क बेहतर करना तथा निवेश और व्यावसायिक संपर्क को बढ़ावा देना शामिल है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने आज लद्दाख के करगिल में डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना भी उपस्थित थे। उपराज्यपाल ने कहा कि करगिल और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को कई वर्षों से पासपोर्ट संबंधी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। उन्होंने कहा कि अब करगिल और आसपास के लोगों को पासपोर्ट संबंधी सेवाओं के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी में अत्याधुनिक प्रधान डाकघर का लोकार्पण किया। नए डाकघर में स्पीड पोस्ट, बचत बैंक, डाक जीवन बीमा, आधार, पार्सल और वित्तीय सेवाएं मिलेंगी। यहाँ दिव्यांग

जनों के लिए सुगम प्रवेश और नागरिकों के लिए सुविधाजनक प्रतीक्षा कक्ष की व्यवस्था भी है। किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने पुरुष सिंगल्स में चीनी ताइपे के ची यू जेन को हराया। हालांकि लक्ष्य सेन को कनाडा के विक्टर लाई से हार का सामना करना पड़ा। महिला सिंगल्स में तन्वी ने डेनमार्क की अमाली शुल्ज को हराया, जबकि देविका सिहा को हार का सामना करना पड़ा। ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो की मिक्स डबल्स जोड़ी थाईलैंड के टोनाकोन साहेंग और टोनिचा साहेंग को हराकर दूसरे दौर में पहुंच गई। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। असम, मेघालय, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ जगहों पर तेज वर्षा का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: to a rise in the water levels of major rivers, including the Ganga, Gandak, and Koshi. Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC, has claimed that it carried out attacks on the U.S. Ali al-Salem base in Kuwait, a military camp housing U.S. Marines in Jordan, and destroyed a U.S. surveillance balloon control system at an American base in Iraq. In the statement, the IRGC said it successfully hit the living quarters and command post of the U.S. Ali al-Salem base's American commander in Kuwait. In badminton, Kidambi Srikant and Tanvi Sharma progressed to the second round of the China Open tournament in Shenzhen today. Srikant defeated Chinese Taipei Shi Yu Zhen in the men's singles opener, while Tanvi outclassed Emily Schultz of Denmark in a close straight games win. However, Lakshya Sen was knocked out of the tournament after losing his opener match to Canada's Victor Lai. And that is the end of this news bulletin.
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल। शाम के 4:10 हुए हैं। आइए अब आपको गुमशुदा व्यक्तियों से संबंधित जानकारी दे दे। थाना मंसूरपुर जनपद मुजफ्फरनगर से प्राप्त जानकारी के अनुसार खोई हुए व्यक्ति का नाम है अब्बास। उनकी उम्र 37 वर्ष है। नाक कान कद औसत है और इकहरा मजबूत शरीर है। इनका कद 5'7" है। किसी को भी इनके बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त हो तो वे थाना मंसूरपुर जनपद मुजफ्फरनगर में संपर्क करें। अगली जानकारी प्राप्त हुई है थाना चरथावल जनपद मुजफ्फरनगर। खोई हुई व्यक्ति का नाम है आयशा। इनकी उम्र 20 वर्ष है। कद 5 फिट है। घर से बिना बताए कहीं चली गई हैं। किसी को भी इनके बारे में कोई जानकारी प्राप्त हो या इन्हें कहीं देखा गया हो तो वे थाना चरथावल जनपद मुजफ्फरनगर में संपर्क करें। अगली जानकारी प्राप्त हुई है जनपद मुजफ्फरनगर से। खोए हुए व्यक्ति का नाम है अंजू। अंतिम बार इन्हें 19 जुलाई 2026 को देखा गया। इनका कद 5'2" है। तंदुरुस्त शरीर है। किसी को भी इनके बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त हो तो वे थाना मुजफ्फरनगर में संपर्क करें। थाना रामराज जनपद मुजफ्फरनगर से प्राप्त जानकारी के अनुसार खोई हुई व्यक्ति का नाम है श्री जयराम। इनकी आयु 60 वर्ष है। कद 5'6" है। इकहरा मजबूत शरीर है और रंग सांवला है। अगर इन्हें कहीं देखा गया हो या इनके बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त हो तो वे थाना रामराज जनपद मुजफ्फरनगर में संपर्क करें। थाना मंसूरपुर जनपद मुजफ्फरनगर से प्राप्त जानकारी के अनुसार खोए हुए व्यक्ति का नाम है सोनिया। इनकी आयु 28 वर्ष है। कद 5'4" है। कहा सुनी होने पर ये घर से कहीं चली गई हैं। इनके बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त हो तो वे थाना मंसूरपुर जनपद मुजफ्फरनगर में संपर्क करें। थाना नई मंडी जनपद मुजफ्फरनगर से प्राप्त जानकारी के अनुसार खोए हुए व्यक्ति का नाम है मोहित, जो देवीदास के पुत्र हैं। इनकी आयु 28 वर्ष है। शरीर की बनावट सामान्य है। कद 5'5" है। किसी को भी इनके बारे में कोई जानकारी प्राप्त हो या इन्हें कहीं देखा गया हो तो वे थाना नई मंडी जनपद मुजफ्फरनगर में संपर्क कर सकते हैं। अगली जानकारी प्राप्त हुई है थाना जानसठ जनपद मुजफ्फरनगर से। खोई हुई व्यक्ति का नाम है कामिनी। इनकी आयु 19 वर्ष है। कद 165 सेंटीमीटर है। किसी को भी इनके बारे में कोई जानकारी प्राप्त हो या इन्हें कहीं देखा गया हो तो वे थाना 64 जनपद मुजफ्फरनगर में संपर्क कर सकते हैं। अगली जानकारी प्राप्त हुई है थाना मानसरोवर पार्क से, जनपद शाहदरा। खोई हुई व्यक्ति का नाम है कनिका। इनकी आयु 15 वर्ष है। कद 5 फुट 2 इंच है। घर से बिना बताए कहीं चली गई हैं। किसी को भी इनके बारे में कोई जानकारी प्राप्त हो या इन्हें कहीं देखा गया हो तो वे थाना मानसरोवर पार्क जनपद शाहदरा में संपर्क कर सकते हैं। तो श्रोताओं, ये थी गुमशुदा व्यक्तियों से संबंधित जानकारी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल। शाम के 4:15 होने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी।

0: नमस्कार दोस्तों, युवाणी के सुनहरे समय पे आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त खुशी, और आज की इस खूबसूरत शाम को और खास बनाने के लिए एक बार फिर आपके साथ हूं।
1: और मैं हूँ कौशाम्बी। उम्मीद है आपका आज का दिन बेहद शानदार रहा होगा। तो दोस्तों, हो जाइए तैयार, क्योंकि आज हमारे पिटारे में है कुछ बेहद दिलचस्प कहानियाँ और इतिहास के पन्नों से जुड़ी खास बातें।
0: बिल्कुल कौशाम्बी, आज के प्रोग्राम में हम जानेंगे करियर से जुड़ी एक दिलचस्प बात, साथ ही आज के दिन के इतिहास से कुछ खास पलों पर नजर डालेंगे, और आजकल क्या नया चल रहा है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बात करेंगे एक ऐसे फल की जो हमारी पूजा की थाली से लेकर रसोई और हमारी सेहत तक हर जगह अपनी खास जगह बनाए हुए है।
1: जी हाँ, बात हो रही है प्रकृति के अनमोल तोहफे नारियल की, क्योंकि आज दुनिया भर में मनाया जा रहा है वर्ल्ड कोकोनट डे, यानी विश्व नारियल दिवस।
0: कौशाम्बी, अगर मैं तुमसे पूछूं कि नारियल शब्द सुनते ही सबसे पहले तुम्हारे मन में क्या आता है?
1: सच कहूँ तो सबसे पहले ठंडे ठंडे नारियल पानी का ख्याल आता है, खासकर धूप और गर्मी में तो ये तुरंत एनर्जी देने वाला सबसे सेहतमंद ड्रिंक है।
0: सही कहा, लेकिन नारियल की दुनिया सिर्फ पानी तक सीमित नहीं है। इससे कई संस्कृतियों में ट्री ऑफ लाइफ यानी जीवन का वृक्ष भी कहा जाता है। पता है क्यों? क्योंकि इसके पेड़ का हर एक हिस्सा, फिर चाहे वो फल, पानी, तेल, दूध या इसके छिलके के रेशे हों, ये किसी ना किसी काम आ ही जाता है।
1: बिल्कुल, नारियल के तेल से लेकर इसके रेशों से बनने वाली रस्सियां और गद्दे तक, ये पेड़ जीरो वेस्टेज का बेहतरीन उदाहरण है।
0: और सबसे खास बात ये है कौशाम्बी कि भारत में नारियल की खेती बड़े पैमाने पर होती है। हमारे समुद्र किनारे वाले राज्यों में लाखों किसान और छोटे कारीगर नारियल की खेती और उससे जुड़े कामों से अपना घर चलाते हैं। नारियल सिर्फ एक फल नहीं है, बल्कि कई लोगों की मेहनत और उनके परिवार की रोजी रोटी से जुड़ा है।
1: यानी विश्व नारियल दिवस केवल एक फल का उत्सव नहीं है, बल्कि ये उन लाखों मेहनती किसानों के प्रति सम्मान जताने का भी दिन है, जो दिन रात पसीना बहाकर इसे हम तक पहुंचाते हैं।
0: बिल्कुल सही बात, प्रकृति ने हमें ऐसी बहुत सी अनमोल चीज़ें दी हैं जिनका हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अक्सर हम एक पल रुककर ये नहीं सोचते कि इनके पीछे कितनी मेहनत है और हमारे जीवन में इनकी कितनी अहमियत है।
1: तो आज के बाद जब भी आपके साथ हाथ में नारियल आए, तो इसे सिर्फ एक फल मत मानिएगा। इसके पीछे छुपी किसान की मेहनत और प्रकृति के इस अद्भुत वरदान को भी एक पल के लिए याद जरूर कीजिएगा।
0: लेकिन कौशाम्बी, क्या आपको पता है नारियल से जुड़ी हमारे देश में एक बहुत ही प्यारी और खास परंपरा भी है?
1: अच्छा, कौन सी परंपरा?
0: अब ये तो मैं आपको एक प्यारे से गाने के बाद ही बताऊंगी, तो कहीं जाइएगा नहीं और सुने फूलों के रंग से।

0: तो खुशी, गाना तो हमने सुन लिया, अब बताइए नारियल से जुड़ी वो खास परंपरा क्या है?
1: अच्छा चलिए मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। दक्षिण भारत के कई गांवों में एक बहुत प्यारी परंपरा रही है। जब घर में किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसी दिन घर के आंगन या खेत में नारियल का एक पौधा भी लगा दिया जाता है।
0: अरे वाह! लेकिन खुशी, ऐसा करने के पीछे क्या सोच है?
1: देखिए इसके पीछे बहुत सुंदर सोच है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे वह पौधा भी बड़ा होता जाता है, और जब बच्चा बड़ा होकर अपने पैरों पर खड़ा होता है तब तक वह पेड़ भी फल देने लगता है।

0: यानी एक तरफ बच्चे की जिंदगी आगे बढ़ती है और दूसरी तरफ उसके साथ लगाया गया पेड़ भी बढ़ता रहता है। अगर हम ध्यान से देखें तो नारियल का ये पेड़ भी इंसान के जीवन के सफर से जुड़ जाता है।
1: वाह, कितनी प्यारी बात है। यानी बच्चे के साथ साथ एक पेड़ भी बड़ा होता है और दोनों की यादें एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं।
0: बिल्कुल, ये सिर्फ एक परंपरा नहीं है, बल्कि हमें ये याद दिलाती है कि पेड़ पौधे भी हमारे जीवन का हिस्सा हैं। जिस तरह हम अपने परिवार का ख्याल रखते हैं, उसी तरह हमें प्रकृति का भी ख्याल रखना चाहिए।
1: तो क्यों ना हम भी अपनी जिंदगी की हर छोटी बड़ी खुशी पर एक पौधा लगाएं, फिर चाहे जन्मदिन हो, कोई सफलता हो या कोई खास दिन।
0: बहुत सुंदर विचार कौशाम्बी, एक छोटी सी शुरुआत जो आने वाले समय में बहुत अच्छा बदलाव ला सकती है। और अब वक्त हो चला है एक प्यारे से गाने का, आई एम द बेस्ट।

0: अब वक्त हो चुका है हमारे सेगमेंट मन से माइक्रोफोन तक का। आज हम सुनेंगे एंटरप्रेन्योर नैंसी सिंगला को, जिनसे बात की है हमारी साथी श्रेया ने, जिनसे हम जानेंगे बिजनेस स्टार्टअप के बारे में। आइए सुनते हैं।
1: नमस्कार युवा साथियों, अक्सर हम युवा नए नए क्षेत्रों में करियर बनाने की संभावना ढूंढते रहते हैं। ऐसी ही युवाओं के लिए हम लाए हैं एक रोचक बातचीत नैंसी सिंगला के साथ। नमस्कार नैंसी
2: जी। नमस्कार, मैं पहले बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने मुझे यहाँ आने का अवसर दिया।
1: तो सबसे पहले आपने कैसे शुरुआत की इस जर्नी की, उसके बारे में जानना।

0: जाते कि आपका रुझान कैसे था और फिर आपकी प्रेरणा क्या थी।
1: तो ये बिजनेस मैंने कुल 9 से 10 साल पहले शुरू किया था, जब मैं 19 वर्ष की थी। कुछ छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स थी जो मैंने अपने इस बिजनेस में लगाई। बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन था, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी थी मुझे ये शुरू करने में।
0: जी, आपको बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले तो आपने 10 साल पूरे किए। आप हमें आर्टिफिशियल ज्वेलरी के बारे में बताइए नैन्सी, कि वो कैसे जो सोने और चांदी और अन्य धातुओं की जो ज्वेलरी होती है उनसे अलग होती है।
1: जी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी सबसे पहले तो गोल्ड और सिल्वर से बिल्कुल ही अलग है। ब्रास, कॉपर, एलॉय, जिंक, आयरन, इन सब मेटल से हमारे आर्टिफिशियल ज्वेलरी डेवलप होता है। उनमें कुछ अलग-अलग तरीके के स्टोन्स यूज़ होते हैं, जेम स्टोन्स, क्यूबिक जिरकोनिया, सीजेड्स, बहुत अलग-अलग तरीके को यूज़ करके अलग-अलग तरीके की ज्वेलरी बनाई जाती है।
0: नैन्सी, की जो जैसे जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है वो आजकल जैसे युवा हैं वो कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो सेफ्टी का भी इशू होता है।
1: जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। आर्टिफिशियल ज्वेलरी एक तो ऐसे धातुओं से हम बनाते हैं जिससे कि उनका जो प्राइस है वो एक तो चीपर हो जाता है। बहुत ही नियमित रूप से आप देखें तो आप रियल ज्वेलरी हर जगह कैरी नहीं कर सकते। आर्टिफिशियल ज्वेलरी में आप सेफ्टी के साथ अलग अलग डिजाइंस को कम प्राइस में कहीं पर भी बहुत बेझिझक पहन सकते हैं।
0: जैसे कि आपने बोला कम प्राइस में वो चीप भी होती हैं, तो क्या उनकी देखभाल के लिए हमें कोई अलग प्रोविजंस को देखना पड़ता है? क्या अलग होता है आर्टिफिशियल ज्वेलरी के
1: जी
0: लिए कुछ?
1: बिल्कुल भी नहीं, बल्कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी को संभालने का बहुत ही सिंपल तरीका है। आप उसको किसी भी कॉटन से या कॉटन के क्लोथ से वाइप ऑफ करके आप उसको एक बॉक्स में या एयर टाइट बैग में डाल दीजिए। कभी भी आपकी आर्टिफिशियल ज्वेलरी ख़राब नहीं होगी, और उसको पानी से, परफ्यूम से दूर रखिए ताकि वो मॉइस्चर में आकर ख़राब ना हो। इतने ही सिंपल तरीके से आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी को संभाल सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है, और आपकी लंबे समय तक आर्टिफिशियल ज्वेलरी चलेगी।
0: जी नैन्सी जी, हमारी श्रोताओं को ये भी बताइए कि क्या आर्टिफिशियल ज्वेलरी में भी अच्छी ज्वेलरी की पहचान के कुछ लक्षण होते हैं, कि ये अगर क्वालिटीज़ हैं तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी अच्छी होगी?
1: जी बिल्कुल, जब भी आप कहीं जाएं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी जब कहीं पर भी आपको खरीदना है तो आप सबसे पहले ये देखिए कि वो कौन से मटेरियल से बनी है। कोई ऐसा मटेरियल तो नहीं कि वो स्किन फ्रेंडली ना हो, जो आपकी स्किन से रिएक्ट कर जाए। सेकंड, आप उसके लॉकिंग देखिए, बैकिंग देखिए। अगर लॉकिंग ही कमज़ोर होगी तो वो पहली बार में ही पहनने से टूट जाएगी। थर्ड, आप उसके स्टोन्स देखिए। कई बार पेस्टिंग इतनी ख़राब होती है कि एक बार में गिरने से या एक बार पहनने से ही सारे स्टोन्स निकल जाते हैं। ये वाली सारी चीज़ें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी को खरीदने के लिए।
0: नैन्सी जी, हमारे श्रोताओं के मन में ये जिज्ञासा रहती है कि जैसे महिलाओं के लिए मार्केट में तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन क्या पुरुषों के लिए भी वो ज्वेलरीज अवेलेबल हैं? इसके बारे में भी बताइए।
1: जी बिल्कुल, महिलाओं के साथ साथ पुरुषों की भी ज्वेलरी मार्केट में इतनी ज्यादा डेवलप हो रही है कि आप देखने जाएंगे तो डिजाइन्स की कोई कमी नहीं होगी। आजकल बटन ब्रॉचेस बहुत ज्यादा चल गए हैं, सूट वॉचेस बहुत ज़्यादा चल गए हैं, ब्रेसलेट्स, इवन रिंग्स, ब्रेसलेट्स, नेकलेसेस, देर आर सो मेनी थिंग्स जो पुरुषों के लिए हैं मार्केट के अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी में। और बल्कि खाली आई ही नहीं है, उनकी डिमांड भी इक्वली पुरुषों से बहुत मिली है, कि उन बहुत अच्छे से लोग आजकल स्टाइल करने लगे हैं ज्वेलरी को।
0: जैसे जो युवा साथी हमारे साथ जुड़े हैं वो सुन रहे हैं इस बातचीत को, उनमें से कोई आर्टिफिशियल ज्वेलरी में अगर अपना करियर शुरू करना चाहते हैं या फिर वो व्यवसाय स्थापित करना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो शुरू कैसे करें उसे?
1: कोई भी बिजनेस है, मैं सिर्फ आर्टिफिशियल ज्वेलरी के बारे में बात नहीं करूंगी, आप कोई भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं अगर आपके अंदर वो हिम्मत है, पोटेंशियल है, अगर आप हार्डवर्किंग है तो आप कोई भी बिजनेस कर सकते हो। सेकंड, अगर हम सिर्फ आर्टिफिशियल ज्वेलरी की बात करते हैं तो ये बहुत कम इन्वेस्टमेंट से होता है, पहली बात। दूसरी बात, बहुत कम जगह से हो जाता है, और बाकी हिम्मत और मेहनत से तो कोई भी बिजनेस आप कर ही सकते हैं।
0: हमारे युवा साथी जिन्होंने बातचीत सुनी उनके लिए बिल्कुल एक नई ऊर्जा का स्रोत रहेगा कि हाँ, अगर वो कुछ शुरू करना चाहते हैं तो उनके पास बस इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद नैन्सी जी इस रोचक बातचीत के लिए। धन्यवाद।
1: जी धन्यवाद।
2: वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल इंटरव्यू। मुझे यकीन है कि ये एडवाइस सिर्फ आर्टिफिशियल ज्वेलरी नहीं बल्कि हर बिजनेस एस्पिरेंट के काम आएगी। अब सुनते हैं जुगनी।

0: हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता गीत नया गाता हूँ। कभी कभी जिंदगी में ऐसे पल भी आते हैं जब लगता है कि अब बस और नहीं, लेकिन शायद उसी पल हमें खुद से कहना चाहिए, अभी नहीं रुकना है, क्योंकि जो इंसान मुश्किल समय में भी अपने सपनों का हाथ नहीं छोड़ता, वही एक दिन अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंचता है। आज की दूसरी कहानी भी एक ऐसे ही इंसान की है जिसने मुश्किलों को देखा, कई बार ठोकरें खाई, लेकिन अपने सपनों को कभी खुद से दूर नहीं होने दिया। शायद उनकी कहानी में आपको अपने सपनों की भी थोड़ी सी झलक मिल जाए।
1: जी हाँ खुशी, आज हम बात करने जा रहे हैं कल्पना सरोज जी की, जो आज मुंबई की एक जानी मानी कंपनी की चेयरपर्सन है और जिन्हें साल 2013 में ट्रेड एंड इंडस्ट्री के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। पर दोस्तों, उनकी कहानी जितनी शानदार आज है, उतनी ही मुश्किल उनकी शुरुआत रही है।
0: महाराष्ट्र के ओखला जिले के एक छोटे से गांव में जन्मी कल्पना जी का बचपन एक साधारण परिवार में बीता। बहुत कम उम्र में ही उनकी शादी हो गई और वह अपने ससुराल बंबई की एक झुग्गी बस्ती में आ गई। वहाँ के हालात बहुत मुश्किल थे। कुछ समय बाद उन्होंने वापस अपने मायके लौटना पड़ा।
1: पर यहीं से शुरू होती है असली कहानी। कल्पना जी ने मुंबई में एक गारमेंट फैक्ट्री में बतौर हेल्पर काम करना शुरू किया, पर धीरे धीरे उन्होंने टेलरिंग सीखी, फिर एक फर्नीचर की छोटी सी दुकान खोली।
0: और दोस्तों, सिर्फ 22 साल की उम्र में कल्पना जी ने महाराष्ट्र सरकार की महात्मा ज्योतिबा फुले योजना के तहत 50,000 रुपये की 50,000 रुपये का कर्ज लिया और छोटी सी रकम से उन्हें अपना फर्नीचर का काम शुरू किया। शुरुआत छोटी थी, लेकिन आगे चलकर यही कदम उनकी ज़िंदगी बदलने वाला बना।
1: और फिर वहां से उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 2000 में जब एक बड़ी कंपनी भारी कर्जे में डूबकर बंद होने की कगार पर थी और उसके 3,000 से ज्यादा वर्कर्स को कई सालों से सैलरी तक नहीं मिली थी, तब कंपनी के मजदूर यूनियन ने खुद कल्पना जी से मदद मांगी।
0: सोचिए दोस्तों, जिस लड़की ने कभी एक हेल्पर के तौर पर अपना सफ़र शुरू किया था, एक दिन उसी के हाथों में एक बड़ी कंपनी को बचाने की जिम्मेदारी आ गई। कल्पना जी पीछे नहीं हटी, उन्होंने मेहनत की, हार नहीं मानी और उस डूबती हुई कंपनी को फिर से खड़ा कर दिया। आज वही कंपनी आगे बढ़ रही है और सैकड़ों लोगों के घर में रोज़गार पहुंचा रही है।
1: आज कल्पना सरोज जी सिर्फ उस कंपनी ही नहीं बल्कि कई और कंपनियों की भी कमान संभालती है, और उनका सफ़र उन्हें भारतीय महिला बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तक ले गया, वो भी बिना किसी फॉर्मल बैंकिंग बैकग्राउंड के।
0: कल्पना जी की बातों में एक बात बार बार सामने आती है। उनका मानना है कि जिंदगी में मुश्किलें आती रहेंगी, लेकिन हमें रुकना नहीं है। मेहनत करते रहिए, खुद पर भरोसा रखिए और अपने सपने के लिए आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि अगर हम हार नहीं मानते तो मंजिल तक पहुंचने का रास्ता ज़रूर मिल जाता है।
1: सच में खुशी, कल्पना सरोज जी की कहानी हमें सिखाती है कि करियर एंड एम्प्लॉयमेंट की राह में उम्र, हालात या शुरुआत छोटी हो सकती है, पर सपने कभी छोटे नहीं होने चाहिए। और साथियों, जो मिशन मोड उन्होंने अपनाया, वो आज भी हमारे बीच कई ऐसी योजनाओं के जरिए मुमकिन है। यानी दोस्तों, एक सरकारी योजना का सही इस्तेमाल किसी की पूरी ज़िंदगी बदल सकता है, बशर्ते इरादा मजबूत हो।
0: तो दोस्तों, मन से माइक्रोफोन में इतना ही। चलिए अब इसी जज्बे को सलाम करते हुए सुनते हैं ये गाना।

0: आज हम बात करेंगे करियर और एम्प्लॉयमेंट से जुड़ी एक ऐसे विषय की जो आजकल करियर की दुनिया में तेजी से उभर रहा है। तो तुम जानती हो?
1: जी हाँ खुशी, बात हो रही है ग्रीन इकोनॉमी की और इसमें सबसे दिलचस्प बात है इससे जुड़ी नौकरियाँ यानी ग्रीन जॉब्स।
0: अच्छा, तो कौशाम्बी, ये ग्रीन जॉब्स असल में होती क्या है?
1: देखिए, ग्रीन जॉब्स वो नौकरियां हैं जो सीधे तौर पर पर्यावरण को बचाने या प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने से जुड़ी होती हैं, जैसे सोलर एंड विंड एनर्जी में काम करने वाले टेक्नीशियन, वेस्ट मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल इंजीनियर, ऑर्गेनिक फार्मर या फिर वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी में काम करने वाले रिसर्चर।
0: अच्छा, यानी इन नौकरियों में प्रकृति को बचाने के साथ साथ काम करने का मौका भी मिलता है। लेकिन कौशाम्बी, क्या हमारे देश में युवाओं को इसके लिए कोई ट्रेनिंग भी दी जाती है?
1: जी हाँ, और सबसे खास बात यह है कि भारत सरकार ने भी इसे बहुत गंभीरता से लिया है। ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी GSDP जैसी योजना को इसी मकसद से शुरू किया है।
0: अरे वाह कौशाम्बी, इसके बारे में ज़रा और बताइए।
1: जी बिल्कुल, इस योजना के तहत देश भर के युवाओं को बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, वेस्ट मैनेजमेंट, नेचर गाइड, ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसे कई क्षेत्रों में मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है। इसके तहत अभी तक हजारों युवाओं को ट्रेनिंग दी जा चुकी है और धीरे धीरे इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल और बायोमेडिकल वेस्ट जैसे नए क्षेत्र भी जोड़े जा रहे हैं।
0: यानी अगर कोई युवा ऐसे करियर चुनना चाहता है जिससे उसके काम से धरती और हमारे आसपास की दुनिया को भी फायदा हो, तो आज उसके सामने कई नए रास्ते हैं।
1: बिल्कुल, और सबसे अच्छी बात यह है कि ग्रीन जॉब सिर्फ साइंस या इंजीनियरिंग तक सीमित नहीं है। इसमें पॉलिसी बनाने वाले, ग्रीन फाइनेंस में काम करने वाले, यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर एनवायरमेंटल अवेयरनेस क्रिएट करने वाले इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स भी शामिल हैं।
0: तो दोस्तों, अगर आप भी प्रकृति और करियर दोनों को साथ लेकर चलना चाहते हैं तो ग्रीन इकोनॉमी आपके लिए एक बेहतरीन रास्ता हो सकता है।
1: और शायद यही वजह है कि आज विश्व नारियल दिवस के साथ हमारी ये चर्चा भी एक तरह से प्रकृति को ही समर्पित हो गई। इसी बात पर सुनते हैं एक खूबसूरत गीत, छूकर मेरे मन को।

0: अब प्रकृति की इस खूबसूरत छांव से निकलकर चलते हैं इतिहास की राह पर, क्योंकि 2 सितंबर की तारीख अपने अंदर कई ऐसी कहानियां समेटे हुए है जो सुनने में जितनी दिलचस्प है उतनी ही खास भी।
1: बिल्कुल कौशाम्बी, और आज की पहली कहानी तो ऐसी है जिससे सुनकर शायद आपको अपने कैलेंडर पे ही एक बार शक हो जाए। सोचिए, अगर आप रात को सोएं और अगली सुबह उठें तो कैलेंडर से सीधे 11 दिन आगे की तारीख लिखी हो।
0: जी हाँ दोस्तों, साल 1752 में ब्रिटेन और उसके कॉलोनीज में कैलेंडर बदला गया। 2 सितंबर 1752 के बाद सीधा 14 सितंबर 1752 आ गया, यानी 3 सितंबर से 13 सितंबर तक की तारीखें कैलेंडर में थी ही नहीं।
1: तो सच में लोगों ने 2 सितंबर के दिन खत्म किया और अगली तारीख 14 सितंबर देखी।
0: हाँ, लेकिन यहाँ एक बात समझना ज़रूरी है। असल में लोगों की ज़िंदगी से 11 दिन गायब नहीं हुए थे, कैलेंडर में तारीखों को सही किया गया था।
1: और अब 2 सितंबर की एक ऐसी कहानी जो सीधे हमारे देश की आज़ादी से जुड़ी है।
0: बात है 2 सितंबर 1946 की। आज से ठीक 80 साल पहले भारत के अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। उस समय हमारा देश आज़ादी के बहुत करीब पहुंच चुका था। अंग्रेज़ों का शासन अभी ख़त्म नहीं हुआ था, लेकिन भारत के नेताओं को देश चलाने की बड़ी जिम्मेदारियां दी जाने लगी थी।
1: कौशाम्बी, आसान शब्दों में समझे तो यह अंतरिम सरकार आखिर थी क्या?
0: अंतरिम सरकार यानी ऐसी सरकार जो कुछ समय के लिए बनाई गई हो, जब तक आगे की पूरी व्यवस्था तैयार न हो जाए। इसी दौर में भारतीय नेताओं ने पहली बार अलग अलग मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली।
1: यानी देश अभी पूरी तरह आजाद नहीं हुआ था, लेकिन आजादी की तरफ कदम बहुत तेजी से बढ़ चुके थे। पर
0: बिल्कुल, और फिर आया वो दिन जिसे शायद ही कोई भारतीय कभी भूल सकता है।
1: 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ और जवाहरलाल नेहरू जी ने स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। तो 2 सितंबर की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि आज़ादी एक दिन में नहीं मिली थी, उसके पीछे कई सालों की मेहनत, संघर्ष और ऐसे कई कदम थे जिन्होंने भारत को अपने फैसले खुद लेने की ओर आगे बढ़ाया।
0: और अब इतिहास की एक ऐसी कहानी जहां बात हमारे देश की आज़ादी से निकलकर सीधे अंतरिक्ष तक पहुंचती है।
1: जी हाँ, बात हो रही है भारत के पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 की। 2 सितंबर 2023 को भारत ने आदित्य L1 की अंतरिक्ष में भेजा था।
0: इस मिशन का मकसद है हमारे सूर्य को करीब से समझना और उसकी गतिविधियों का अध्ययन करना।
1: और इसकी सबसे खास बात क्या है?
0: आदित्य L1 को सूर्य और पृथ्वी के बीच मौजूद एक खास जगह L1 पॉइंट के पास रखा गया है। ये जगह पृथ्वी से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर है।
1: यानी जिस सूरज को हम रोज़ अपनी आंखों के सामने देखते हैं, उसके बारे में जानने के लिए भारत ने इतनी दूर अंतरिक्ष तक अपना मिशन भेज दिया।
0: बिल्कुल, और शायद यही बात 2 सितंबर को इन तीनों कहानियों को एक दूसरे से जुड़ती है। एक तरफ 1752 में कैलेंडर की तारीखें बदली, फिर 1946 में भारत अपने फैसले खुद लेने की तरफ बढ़ा, और फिर 2023 में वही भारत सूर्य को समझने के लिए अंतरिक्ष तक पहुंच गया। समय बदलता गया और उसके साथ भारत का सफ़र भी आगे बढ़ता गया। कभी हम अपने देश की आज़ादी के लिए रास्ता बना रहे थे, और आज हम अंतरिक्ष में जाकर सूरज के रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहे हैं।
1: सच में तारीख बदलती रही, समय आगे बढ़ता रहा और भारत भी हर दौर के साथ एक कदम आगे बढ़ता गया। तो दोस्तों, टुडे इन हिस्ट्री में आज के लिए इतना ही। इतिहास से जुड़ी ऐसी ही छोटी और दिलचस्प कहानियों पर फिर आपके लिए लेकर आएंगे, लेकिन युवाणी का सफर अभी जारी है।
0: तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। और अब सुनते हैं एक खूबसूरत सा गीत।

0: तो साथियों, वक्त हो चला है आज के प्रोग्राम के आखिरी और सबसे स्पीडी सेगमेंट का, यानी क्विक बस का, जहां आज हम आपको बताएंगे करियर, एम्प्लॉयमेंट और रेलेवेंट स्कीम से जुड़ी कुछ ज़रूरी बातें। तो देखते हैं क्या है आज के हमारे क्विक बस के पिटारे में।
1: दोस्तों, अगर आप दिल्ली में हैं और नौकरी की तलाश कर रहे हैं या अपने करियर को लेकर सही रास्ता ढूंढ रहे हैं, तो ये जानकारी आपके काम आ सकती है। दिल्ली सरकार का डायरेक्टरेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार का ऑफिस अपना रोजगार बाजार पोर्टल चलाता है। इसके अलावा अलग अलग जगहों पर मॉडल करियर सेंटर्स यानी MCC भी है, जहाँ आपको मुफ्त में करियर से जुड़ी मदद और सही रास्ते से जानकारी मिलती है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप नौकरी ढूंढ रहे हों तो इन सुविधाओं के बारे में ज़रूर जानिए और इसका फ़ायदा उठाइए।
0: और साथियों, अगर आप अभी ग्रेजुएट हुए हैं या ITI डिप्लोमा कर चुके हैं, तो प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम यानी PMIS के तहत आप 18 से 25 साल की उम्र में टॉप 500 कंपनियों के साथ काम कर सकते हैं, जिसमें 9,000 रुपये प्रति महीने का स्टाइपेंड और जॉइनिंग पर 6,000 का ग्रांट भी मिलता है। रजिस्ट्रेशन के लिए विजिट करें pminternship.mca.gov.in।
1: हाल ही में दिल्ली सरकार के लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर श्री कपिल मिश्रा जी ने अधिकारियों से कहा है कि दिल्ली में हर 3 महीने में यानी क्वार्टरली जॉब्स फेयर लगाए जाएं। इसका मकसद है कि दिल्ली के युवाओं को कंपनियां, स्टार्टअप्स और नौकरी देने वाली कंपनियों से सीधा जुड़ने का मौका मिले, उन्हें नौकरी के लिए नोएडा या गुरुग्राम जाने की जरूरत ना पड़े। इसके साथ ही कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए स्किल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने के भी बात कही गई है।
0: तो दोस्तों, इतना ही आज के क्विक बज में। उम्मीद है ये सारी जानकारी आपके बहुत काम आएगी। आइए सुनते हैं एक बहुत प्यारा सा गाना, बावरामन।

0: इसी के साथ आज के युवाणी का प्रोग्राम भी हमारे आखिरी पड़ाव पे आ गया है। आज हमने साथ मिलकर कई दिलचस्प बातें की, प्रकृति के अनमोल तोहफे नारियल से लेकर इतिहास की पुरानी यादों तक, और साथ ही करियर से जुड़ी अहम जानकारियां भी साझा की।
1: तो दोस्तों, आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आपको कौन सा सेगमेंट सबसे अच्छा लगा? और अगली बार आप युवाणी में किस विषय के बारे में सुनना चाहते हैं? आप अपनी सभी सुझाव और फीडबैक हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारे ईमेल है yuvanifeedback@gmail.com yuvanifeedback@gmail.com।
0: तो इसी के साथ हमें दीजिए अनुमति, मैं कौशाम्बी
1: और मैं खुशी, नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे युवाणी कार्यक्रम। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। शाम के 5 बजने वाले हैं। आइए सुनते हैं समाचार, पहले हिंदी में और उसके तुरंत बाद अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में केंद्र और राज्यों की महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए साझा दायित्व को बढ़ावा देना और विचार विमर्श से सुशासन और सेवा वितरण में सुधार लाना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के महासागर दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में सेशल्स एक महत्वपूर्ण साझेदार है। नई दिल्ली में सेशल्स के संसद के अध्यक्ष अजरेल अनेस्टा के साथ बातचीत में श्री बिरला ने कहा कि भारत और सेशल्स वैश्विक दक्षिण की आवाज़ को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि निरंतर संसदीय संवाद से दोनों देशों की साझेदारी को नई गति मिलेगी तथा दीर्घकालिक संबंध और मजबूत होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जीवा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने वैश्विक आर्थिक स्थिति और भारत की बदलती विकास गति पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने विश्लेषण क्षमता मजबूत करने, सुदृढ़ व्यापक आर्थिक नीतियों को बढ़ावा देने और वैश्विक आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए भारत और IMF के बीच निरंतर सहयोग के महत्व पर बल दिया। भारत से राहत सामग्री लेकर 5वां विमान आज नेपाल पहुंचा। इसमें 11 सदस्यीय बचाव दल, विशेष उपकरण और 5 टन से अधिक दवाएं हैं। नेपाल में भारत के राजदूत ने बताया कि भारत नेपाल में जारी राहत और बचाव कार्य में हर संभव सहायता कर रहा है। इस बीच नेपाल में बाढ़ में मृतकों की संख्या 1100 से अधिक हो गई है। लगभग 4000 लोग अभी भी लापता हैं। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी में अत्याधुनिक प्रधान डाकघर का लोकार्पण किया। नए डाकघर में स्पीड पोस्ट, बचत बैंक, डाक जीवन बीमा, आधार, पार्सल और वित्तीय सेवाएं मिलेंगी। ये दिव्यांगजनों के लिए सुगम प्रवेश और नागरिकों के लिए सुविधाजनक प्रतीक्षा कक्ष की व्यवस्था भी है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने आज लद्दाख के करगिल में डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि अब करगिल और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को पासपोर्ट संबंधी सेवाओं के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी ने आज पंजाब में अधिकारियों के तबादले और तैनाती में कथित भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी सरकार की आलोचना की है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि इन दिनों वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले और तैनाती का एक नया रेट कार्ड तय आधार पर की जा रही है।
2: मुख्यमंत्री भगवंत मान को पंजाब की जनता को उत्तर देना पड़ेगा। आपके इशारों पर जब ये कैश फॉर ट्रांसफर घोटाला हो रहा है तो इसका किंग पिन अरविंद केजरीवाल है या नहीं, बताइए।
1: केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने अनिवार्य सुरक्षा उपायों के बिना विस्फोटक पदार्थों की ऑनलाइन लिस्टिंग और बिक्री के लिए एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। प्राधिकरण के अनुसार प्लेटफॉर्म पर लाइसेंस सत्यापन, खरीदार पात्रता जांच और अनिवार्य सुरक्षा संबंधी खुलासे के बिना अमोनियम नाइट्रेट की ऑनलाइन लिस्टिंग सुविधा दी जा रही थी। प्राधिकरण ने कंपनी को विस्फोटक के रूप में वर्गीकृत किसी भी अन्य पदार्थ की लिस्टिंग, होस्टिंग, विज्ञापन या बिक्री पर तुरंत रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। नौसेना का नौकायान प्रशिक्षण पोत INS सुदर्शनी अपने समुद्री अभियान लोकायान 26 के अंतर्गत स्पेन के बार्सिलोना पहुंचा। बार्सिलोना में पोत स्पेन की नौसेना के साथ पेशेवर और सांस्कृतिक गतिविधियों में शामिल आगंतुक शुक्रवार को पोत को देखने जा सकेंगे। ये भारत की समुद्री विरासत को देखने का अवसर प्रदान करेगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। असम, मेघालय, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज बारिश का अनुमान है। अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पंजाब, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी कुछ क्षेत्रों में तेज बारिश की संभावना है। किदाम्बी श्रीकांत और तन्वी शर्मा चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के दूसरे राउंड में पहुंच गए हैं। ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो मिक्स्ड डबल्स में और सात्विक साईराज

लोक रंजनी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि जन्माष्टमी का पर्व 2 दिन बाद आने वाला है, बिल्कुल करीब है। ऐसे में मिष्ठान बनाना लाजमी है और सभी कुछ न कुछ तो मिष्ठान बनाते हैं। खास करके अगर हम बात करें तो नारियल का प्रयोग जरूर करते हैं। आज हम इसलिए नारियल का जिक्र कर रहे हैं क्योंकि आज विश्व नारियल दिवस है। और ऐसे में अगर बात करें नारियल के स्वास्थ्य के प्रति की, नारियल का हमारे स्वास्थ्य से क्या लेना देना है, तो सच बात कहें तो बहुत ही खास है हम नारियल हमारे जीवन में, खास करके मिष्ठान से लेकर के किसी भी भोजन को भी बनाने में। और कृषि की हम बात करें तो कृषि और पर्यावरण संरक्षण में इसका बहुत बड़ा योगदान है। नारियल को जीवन वृक्ष भी कहा जाता है क्योंकि इसका हर भाग, चाहे पानी हो, तेल, गिरी, छिलका या पत्तियाँ, सब कुछ उपयोग में लाया जाता है और मानव जो जीवन है उसके लिए बहुत ही मूल्यवान है। तो ऐसे में यही कहेंगे कि खास करके अगर नारियल को देखा जाए तो इसकी खेती भी बहुत ही लाभप्रद है। और आजीविका की जब हम बात कर रहे हैं तो भारत के केरल और तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में लाखों किसान इसकी खेती करते हैं। जब मिष्ठान की हम बात किए, जन्माष्टमी की बात किए, तो इस समय भक्ति भाव में सराबोर होने का समय आ चुका है। तो सराबोर होते हैं और लोक रंजनी के कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। और जो आज हम आपको भजन सुनाने जा रहे हैं उसमें कुछ ऐसी बात है कि कृष्ण की बात है कि जो छलियाँ हैं वो कुछ न कुछ ऐसा कार्य करते हैं जिससे लोग उलाहना लेकर के आते हैं। और मटकी जब फोड़ते हैं तो जब उलाहना लेकर आते हैं तो यशोदा मैया क्या कहती हैं, चलिए सुनते हैं इस भजन के माध्यम से। आज के हमारे कलाकार हैं चंद्रपाल और उनकी साथी सखियाँ।

मटकी आप चटक गई होगी, कैसे उलहने का अंदाज, कैसे उन्होंने उसका जवाब दिया यशोदा जी ने। और सच कहें तो मोहन की जो मुरली बजती है तो उसकी धुन पे हर कोई पागल हो जाता है, और खास करके पागल होते हैं बबीता देवी के गाए इस गीत के साथ, इस भजन के साथ। तो चलिए सुनते हैं।

0: कृष्ण भजन की बात हो और रसिया के लिए रसिया ना हो तो ये बात कैसे बनती है। तो चलिए रसिया सुनवाते हैं आपको इस भजन के अंतर्गत तुही राम और उनके साथियों के द्वारा।
1: चढ़ियाई रसिया अचक चढ़िया

0: आपको इसी कार्यक्रम में ये बताते चलें कि अगला जो हमारा कार्यक्रम होगा 6:30 से 7:30 बजे तक का, जिसमें आप विशेष फोन कार्यक्रम सुन सकेंगे गन्ने की पाठशाला। इसके अंतर्गत जो आज का विषय होगा वो होगा शरदकालीन गन्ने की बिजाई हेतु तैयारी, और इसके लिए आप फ़ोन कर सकेंगे और इससे संबंधित जो भी जानकारी होगी आप प्राप्त कर सकेंगे। तो फ़ोन नंबर हमारा नोट कर लें, 011, कोड लगाना ना भूलें। फ़ोन नंबर है 2342108 2, 2342108 3, बाहर के लोग 011 कोड अवश्य लगाएं। इसी के साथ आज का हमारा लोकरंजनी कार्यक्रम समाप्त होता है। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता हैं तुषार पारा सर और संयोजक हैं शिव नंदन लाल। शाम के 5:30 होने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम खेल खिलाड़ी।
1: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना। नमस्कार, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों की खबरों का खास कार्यक्रम खेल खिलाड़ी लेकर आज आपके साथ मैं हूं अजय तोमर, और मेरे साथ है मेरी सहयोगी अमीषा पटेल।
2: नमस्कार।
1: और अमीषा, आज हम अपने श्रोताओं के लिए सबसे पहले शुरुआत करेंगे बैडमिंटन से, उसके बाद बात करेंगे क्रिकेट की, उसके बाद बात करेंगे महिला क्रिकेट की, उसके बाद बात करेंगे घरेलू क्रिकेट की, और उसके बाद बात करेंगे स्कूल क्रिकेट की भी, यानी कि क्रिकेट के हर सेगमेंट की हम बात करेंगे। उसके अलावा बात होगी स्क्वॉश की, टेनिस की और अन्य खेलों की भी। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं बैडमिंटन से, और चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट इस समय चल रहा है और कई अच्छी और बुरी दोनों तरह की खबरें भारतीय संदर्भ की अगर हम बात करें तो वो आ रही हैं। और ये एक ऐसा टूर्नामेंट है जो बहुत अच्छे प्लेयर्स यहाँ पर आते हैं, 750 रैंकिंग वाला ये टूर्नामेंट है, और इस टूर्नामेंट में जो भारतीय खिलाड़ी खेल रहे हैं उनके लिए एक मौका है अपने रैंकिंग पॉइंट्स इकट्ठे करने का। साथ ही ये टूर्नामेंट ऐसा टूर्नामेंट है जो अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए खिलाड़ी इसको जीतना चाहते हैं। तो क्या कुछ हुआ है अभी तक इसमें, क्या कुछ होने वाला है भारतीय संदर्भ में अगर हम बात करें तो कितना अच्छा है या कितना थोड़ा सा निराशाजनक है, तो ये सारी बातें, इन सारी बातों पर ढेर सारी अच्छी अच्छी जो खबरें हैं वो, और जो थोड़ी निराशा है उसके साथ एक अच्छी सी रिपोर्ट बनाई है अमीषा ने, तो हम आपको सुनाते हैं।
2: अब बात करते हैं बैडमिंटन की। तो शेंजन चीन में खेले जा रहे प्रतिष्ठित बैडमिंटन टूर्नामेंट चाइना मास्टर्स 2026 में शुरुआती दो दिनों के मुकाबले बेहद रोमांचक रहे हैं। यह एक BWF सुपर 750 श्रेणी का टूर्नामेंट है जिसमें 12.5 लाख अमेरिकी डॉलर की पुरस्कार राशि और महत्वपूर्ण रैंकिंग अंक दाव पर लगे हैं। आगामी एशियाई खेलों से ठीक पहले हो रहे इस आयोजन में दुनिया के शीर्ष खिलाड़ी अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। भारतीय खेमे के लिए टूर्नामेंट की शुरुआत मिलीजुली रही, जहां कुछ अनुभवी खिलाड़ियों ने शानदार जीत दर्ज की, वहीं कुछ बड़े झटके भी लगे हैं। पुरुष एकल वर्ग में भारत के अनुभवी शटलर और पूर्व विश्व नंबर एक खिलाड़ी किदंबी श्रीकांत ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अगले दौर में प्रवेश कर लिया है। उन्होंने पहले दौर के मुकाबले में चीनी ताइपे के विश्व के 21वें नंबर के खिलाड़ी ची यूजेने को सीधे गेमों में 21-16, 21-15 से पराजित किया। मिक्स डबल्स कोर्ट में भी भारत के लिए अच्छी खबर आई, जहां ध्रुव कपिला और तनीषा क्रास्टो की जोड़ी ने एक तरफा मुकाबले में थाईलैंड के टोनकिड और टोनरुक की जोड़ी को महज 2 गेमों में 21-8, 21-9 से मात देकर प्री क्वार्टर फाइनल का टिकट पक्का कर लिया। वहीं महिला एकल में भारत की 17 वर्षीय युवा सनसनी तन्वी शर्मा ने भी अपने अंतर्राष्ट्रीय कौशल का लोहा मनवाया। तन्वी ने डेनमार्क की अमाली शुल्स को सीधे गेमों में 21-16, 21-17 से हराकर मुख्य दौर में अपनी दावेदारी मजबूत की। भारतीय प्रशंसकों के लिए सबसे बड़ी और अच्छी खबर पुरुष युगल वर्ग से आई है, जहां भारत की स्टार और चौथी वरीयता प्राप्त जोड़ी सात्विक साईराज रणकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने अपने अभियान की धमाकेदार शुरुआत की है। कोर्ट पर बेहतरीन तालमेल दिखाते हुए इस भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के जुनैदी आरिफ और कांग खाई शिंग को सीधे गेमों में 21-11, 21-16 से हराकर शान से अगले दौर में प्रवेश कर लिया है। हालांकि एकल वर्ग में भारतीय प्रशंसकों को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब स्टार खिलाड़ी लक्ष्य सेन पुरुष एकल के पहले ही दौर में बाहर हो गए। लक्ष्य को कनाडा के विक्टर लाई के हाथों सीधे गेमों में 14-21, 7-21 से अप्रत्याशित हार का सामना करना पड़ा। इनके अलावा पुरुष एकल में ही दीपक सिहाग और मिक्स्ड डबल्स में रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी की भारतीय जोड़ी भी अपने अपने शुरुआती मुकाबले हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। वहीं कल पुरुष युगल के एक मुकाबले में भारत को उस समय करारा झटका लगा जब एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन की जोड़ी फिटनेस समस्याओं के चलते चीन के चेन वो यांग और ली यूई के खिलाफ पहले मैच में 8-11 से पिछड़ने के बाद मैच के बीच में ही रिटायर्ड होकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई। अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों की बात करें तो शेनजेन के कोर्ट पर कई बड़े उलटफेर देखने को मिले हैं। पुरुष युगल वर्ग में बड़ा धमाका करते हुए इंडोनेशिया के लियोरोली कार्नेंडो और डैनियल मार्टिन ने शीर्ष वरीयता प्राप्त और मौजूदा चैंपियन दक्षिण कोरिया के किम वोन हो और सियो सैंगजे की जोड़ी को सीधे गेमों में 21-19, 21-19 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। वहीं हाल ही में नई दिल्ली में विश्व चैंपियन बनी फ्रांस की मिक्स डबल्स जोड़ी थॉम गिकवेल और डेल्फिन डेल रू का सफर भी समाप्त हो गया है। उन्हें चीनी ताइपे की गैर वरीय जोड़ी ने महज 38 मिनट में 23-21, 21-10 से शिकस्त दी। पुरुष एकल में चीन के स्टार खिलाड़ी शी यू की और सिंगापुर के पूर्व विश्व चैंपियन लो की यू के बीच खेला गया मुकाबला भी दर्शकों के लिए बेहद रोमांचक रहा।
1: चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट यानी कि चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट की ये बेहतरीन रिपोर्ट आपने सुनी। और अब थोड़ी अपने दर्शकों को ले चलते हैं क्रिकेट की दुनिया में, जहां पर ढेर सारे क्रिकेट की गतिविधियां हो रही हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं वुमेन्स T20 एशिया कप, और उसके बाद फिर बात करेंगे दिलीप ट्रॉफी की, उसके बाद बात करेंगे DPL की, कई सारे क्रिकेट की बातें करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं महिला एशिया कप की, और महिला एशिया कप के कल खेले गए मुकाबले में पाकिस्तान और थाईलैंड की टीमें आमने सामने थीं। पाकिस्तान की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर्स में 119 रन बनाए 9 विकेट के नुकसान पर। उसके बाद थाईलैंड की टीम ने निर्धारित 20 ओवर्स में 84 रन बनाए 8 विकेट के नुकसान पर, और पाकिस्तान ये मुकाबला 35 रनों से जीत गया। वहीं श्रीलंका की टीम ने आज अपना मुकाबला खेलना है इंडोनेशिया की महिला टीम के सामने, और ये मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे से आरंभ होगा। तो अमीषा, किस तरह का अभी तक एशिया कप रहा है?
2: जी, तो कल विमेंस T20 एशिया कप में हमें पाकिस्तान का और थाईलैंड का मुकाबला देखने को मिला, जिसमें पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम ने थाईलैंड को 35 रनों से हराकर टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज कर ली थी। और दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस ग्रुप ए मैच में पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी। शुरुआत में पाकिस्तान ने सिर्फ 23 रनों पर 3 विकेट गवा दिए थे, जहां थाईलैंड की स्पिनर थिपाचा जिन्होंने 18 रन देकर 3 विकेट लिए और T20 फॉर्मेट में भारत की दीप्ति शर्मा को एक बार फिर पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज वह बन गई है। लेकिन पाकिस्तान की जो मनीबा अली है, उन्होंने 52 गेंदों में 54 रनों की अर्धशतकीय पारी खेलकर टीम को 20 ओवरों में 9 विकेट पर 119 रनों के सम्मानजनक स्कोर, कह सकते हैं सम्मानजनक, उस पर पहुंचाया। और जवाब में 120 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी थाईलैंड की टीम पाकिस्तान के बेहतरीन स्पिन आक्रमण के सामने टिक नहीं सकी। सादिया इकबाल ने घातक गेंदबाजी करके 4 ओवरों में मात्र 11 रन देकर 3 विकेट चटकाए, जबकि तूबा हसन ने 17 रन देकर 2 विकेट लिए। थाईलैंड की ओर से केवल जो चनेदा हैं वे सर्वाधिक 25 रन बना पाई हैं, और पूरी टीम 20 ओवरों में 8 विकेट खोकर केवल 84 रन ही बना सकी थी। वहीं मुनीबा अली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस जीत के बाद ग्रुप ए के सूरत हाल जो हैं पॉइंट्स टेबल के, वो कुछ ऐसे हैं कि जो इंडियन विमेंस टीम है वह 2 अंकों और +4.700 पॉइंट्स के साथ वह इस रन रेट के साथ वह पहले स्थान पर है और पाकिस्तान 2 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है। अब इंडिया का अगला मुकाबला 3 सितंबर को हांगकांग के खिलाफ होगा, जिसके ठीक बाद 5 सितंबर को इस एशिया कप का सबसे बड़ा हाई वोल्टेज ब्लॉकबस्टर देखने को मिल सकता है, जो कि होगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। जी, तो
1: बात आपने सही की कि हाई वोल्टेज ब्लॉकबस्टर हो सकता है, लेकिन अगर हम बात करें पाकिस्तान की टीम की, तो पिछले लंबे समय से पाकिस्तान की जो बल्लेबाजी है वो बहुत अच्छी नहीं चल रही है, और यही कारण है कि कल जो मुकाबला पाकिस्तान की टीम ने खेला उसमें भी उनकी बल्लेबाजी बहुत अच्छी नहीं रही, और थाईलैंड जैसी अपेक्षाकृत कमज़ोर टीम के सामने पाकिस्तान की टीम केवल 119 रन ही बना सकी निर्धारित 20 ओवर्स में। लेकिन भारत के साथ जब पाकिस्तान खेलेगा तो पाकिस्तान के लिए तो कड़ी परीक्षा होगी, क्योंकि भारतीय टीम बहुत मजबूत है, और जिस तरह से उन्होंने अपना पहला मुकाबला जीता है भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने, तो वो दर्शाता है कि भारतीय टीम पूरी तैयारी के साथ गई है, और आने वाले मुकाबलों में भी भारतीय टीम इसी तरह से अच्छा प्रदर्शन करेगी। और कहीं ना कहीं अगर हम पूरे एशिया कप की बात करें तो सबसे मजबूत दावेदार इस वर्ल्ड कप को जीतने की वो भारतीय महिला

0: टीम है, और पहले मुकाबले में उन्होंने दिखा भी दिया कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम कितनी सक्षम है इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए। और वहीं सक्षम तो टीमें दोनों हैं, ईस्ट जोन भी सक्षम है और साउथ जोन भी सक्षम है। अब ये मुकाबला होना है 6 सितंबर को। दो टीमें ऐसी हैं जो दिलीप ट्रॉफी के फाइनल तक पहुंची हैं, और सेंट्रल जोन और ईस्ट जोन के मुकाबले में ईस्ट जोन ने 4 विकेट से जीत दर्ज की, और नॉर्थ और साउथ के मुकाबले में साउथ जोन ने 7 विकेट से जीत दर्ज की। और अब इन दोनों महत्वपूर्ण टीमों का मुकाबला 6 तारीख को, 6 सितंबर को होगा, और ये एक ऐसा मुकाबला होगा जिसमें दिलीप ट्रॉफी के लिए जो हमारी टेस्ट टीम होती है, भारत की जो टेस्ट टीम होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दिलीप ट्रॉफी उसके लिए, इस दिलीप ट्रॉफी में जो प्रदर्शन होता है, इसी के आधार पर अक्सर बहुत सारे खिलाड़ियों का चयन भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम में किया जाता है। और अब ईस्ट और साउथ जोन की टीमें आमने सामने होंगी, और साउथ जोन की टीम में एक अहम भूमिका निभाई तिलक वर्मा ने, उनको जिताते हुए जिस तरह से आगे बढ़ाया। और अब देखना यही होगा कि क्या साउथ जोन की टीम अपना अच्छा परफॉर्मेंस जारी रखती है, या ईस्ट जोन जिस तरह से वो आए हैं, उन्होंने सेंटर को हराते हुए फाइनल में जगह बनाई है। तो अब हमेशा ये है कि साउथ और ईस्ट के बीच में जो मुकाबला होगा, उसमें कौन बाजी मारेगा, ये बड़ी बात है।
1: जी बिल्कुल। और इसके साथ साथ हम एक नज़र डाल लेते हैं इंडियन टीम स्क्वाड का, जो T20 सीरीज़ जो कि अफगानिस्तान के अगेंस्ट होगी उसके लिए चुनी गई है। ये 15 मेंबर स्क्वाड है जिसके जो कप्तान है वो श्रेयस अय्यर चुने गए हैं, और यहाँ पे वाइस कैप्टन तिलक वर्मा को बनाया गया है।
0: और कहीं ना कहीं तिलक वर्मा जिस तरह से अपने लय में हैं, तो अच्छी बात है कि तिलक वर्मा एक बहुत ही सधे हुए क्रिकेटर हैं, और उनको जिस तरह से उपकप्तान की जिम्मेदारी दी गई है, तो इससे उनका खेल और भी निखरेगा। तिलक वर्मा और उसके अलावा जो बाकी की टीम है, उसके बारे में भी हम बता देते हैं कि और कौन कौन से खिलाड़ी हैं इस टीम में। और जिस तरह से श्रेयस अय्यर पिछले कुछ समय से अच्छा प्रदर्शन करते आ रहे हैं, तो वो अपने आप में एक बड़ी बात है। और उसके साथ ही श्रेयस अय्यर तो कप्तान हैं, अभिषेक शर्मा हैं साथ में, वैभव सूर्यवंशी, जिनके लिए काफ़ी बातें हुई हैं कि वो बहुत ही बड़ा टैलेंट हैं, तो उनको भी टीम में स्थान मिला है। संजू सैमसन भी हैं, ईशान किशन है, तिलक वर्मा है, शिवम दुबे हैं, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा। ये टीम है जो 3 T20 मुकाबले खेलेगी अफगानिस्तान के खिलाफ, और ये सारे मुकाबले जो हैं दिल्ली के मैदान पर होने, और दिल्ली के मैदान पर आज एक बेहतरीन मुकाबला होने वाला है, और वो मुकाबला है DPL का फाइनल, महिला सेगमेंट का, महिला वर्ग का। आज DPL जो दिल्ली प्रीमियर लीग है, उसका फाइनल मुकाबला है। हालांकि ये मुकाबला आज फाइनल है, जिसमें नॉर्थ और साउथ दिल्ली की टीमें आमने सामने हैं, लेकिन उससे पहले कल भी ये दोनों टीमें आमने सामने थीं। अपने आखिरी लीग मैच में साउथ और नॉर्थ की टीमें आमने सामने थीं, और एक लो स्कोरिंग मुकाबला हुआ कल। आयुषी सोनी ने अर्धशतकीय पारी खेली, जो नॉर्थ की कप्तान है, और उस लो स्कोरिंग मुकाबले में बाजी मारी नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स की टीम ने। तो कहीं ना कहीं हमेशा ये बात तो कन्फर्म है कि आज जब वो ग्राउंड पर जाएंगे, तो नॉर्थ के हौसले तो बुलंद होंगे साउथ के खिलाफ, क्योंकि वो अपना मुकाबला जीत के आ रहे हैं।
1: जी बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात है कि विमेंस क्रिकेट के लिए काफ़ी एक पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे हमें देखने को मिलता है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जब इस तरह के टूर्नामेंट्स होते हैं, इतने अधिक मैचेस होते हैं, और एक्सपोजर लाइटों में अक्सर बॉयज़ को तो काफ़ी ऐसी फैसिलिटीज़ है जो मिल जाती हैं, लेकिन महिला क्रिकेट में बहुत कम मुकाबले लड़कियों को मिलते हैं कि वो लाइट्स, अंडर द लाइट्स वो मुकाबले खेलें। तो ये जो लाइट्स में खेलने का अनुभव है, ये जो एक्सपोजर यहाँ पर मिल रहा है, ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है, और इसी की वजह से फिर धीरे धीरे धीरे धीरे यही खिलाड़ी आगे बढ़ के भारतीय टीम में भी पहुँचते हैं। और पिछले कुछ समय से जिस तरह से दिल्ली से बहुत सारे, चाहे वो मैन हो या वुमेन हो, दोनों ही सेगमेंट में बहुत सारे खिलाड़ी भारतीय टीम तक पहुंचे हैं, और कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के पीछे एक चीज़ बहुत आवश्यक है, और हम अक्सर उस बारे में बात नहीं करते हैं, और वो है स्कूल गेम्स। स्कूल गेम्स वो वाला पार्ट है जिसमें सभी बड़े खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं, और धीरे धीरे वहाँ से वो अपने खेलों की शुरुआत करते हैं, और आगे बहुत ऊंचे लेवल तक, बल्कि देश का प्रतिनिधित्व भी करते हैं।

0: सारे ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने स्कूल गेम्स खेलकर ही आगे वो बढ़े हैं, और आजकल दिल्ली में स्कूल गेम्स की प्रतियोगिताएं जो हैं वो चल रही हैं, जिसको दिल्ली स्टेट का नाम दिया गया है। अलग अलग खेलों में ये सारी प्रतिस्पर्धाएँ हो रही हैं, दिल्ली सरकार ये सारे इस पूरे बड़े आयोजन को करवाती है। और किस तरह से इस समय स्कूल गेम्स चल रहे हैं, किस तरह से दिल्ली स्टेट स्कूल गेम्स में प्रतियोगिताएं हो रही हैं, इस पर हमने बात की दिल्ली सरकार के कोच विनोद कुमार माटा से, और उनसे पूछा कि पिछले साल में और इस साल में क्या बदलाव हुआ है, कितनी जो नई प्रतिभाएं हैं वो सामने आई हैं, किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी लाई गई है खिलाड़ियों के लिए, और इस बार क्या पिछले साल से अधिक कंपटीशन है। और साथ में हमने उनसे एक ये सवाल भी पूछा कि दिल्ली का जो प्रदर्शन है वो कैसा रहता है राष्ट्रीय स्तर पर। तो हमने ये ढेर सारे कड़े सवाल पूछे विनोद कुमार माटा से, जो दिल्ली सरकार के कोच हैं, उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
1: सर, ये हमारा दिल्ली स्टेट स्कूल गेम्स का टूर्नामेंट होता है जो हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा। छत्रसाल स्टेडियम मॉडल टाउन हमारा हेडक्वार्टर है, और इसमें लगभग 40-42 गेम है जो पार्टिसिपेशन होता है, और हर गेम में से पोजीशन जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पर आता है उसको गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल और मेडल्स दिए जाते हैं, और साथ में ट्रॉफियां भी दी जाती है। ये स्कूल वाले स्कूल के बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट है, और ये 29 तारीख से अब शुरू हो चुका है और कुछ गेम पहले खत्म भी हो चुके हैं। अगर मैं स्पेशली बात करूँ क्रिकेट की, तो क्रिकेट 29 से शुरू हुआ है और ये 14 सितंबर तक लगभग हर कैटेगरी के जो गर्ल्स अंडर 19-17, बॉयज अंडर 19-17 और 14 पूरी कैटेगरी कंप्लीट हो जाएगी।
0: इसमें अगर किसी को खेलना है तो उसका क्या क्राइटेरिया होता है, कौन कौन सी चीजें आवश्यक होती है इसमें भाग लेने के लिए?
1: सर देखे, हमारे दिल्ली में टोटल 29 जोन है, 29 जोन की टोटल 29 टीमें पार्टिसिपेट इसमें करती हैं, और उसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है कि अगर पहले जोन किया जाता है, जो जोन सुपरवाइजर की ड्यूटी होती है कि अपनी देख रेख में जोन कम्प्लीट करवाए, और इस पूरे जोन में से एक टीम तैयार की जाती है, वो इस दिल्ली स्टेट स्कूल गेम्स में पार्टिसिपेट करती है। एक नॉकआउट मुकाबले होते हैं जो चलता रहता है, जो टीम हार जाती है वो भाग जाती है, और जो आगे जाती है वो सेमीफाइनल फाइनल में जाके फिर फाइनल खेलती है। थर्ड पोजीशन का भी मैच इसमें होता है,
0: और उसके बाद जब ये सारे मुकाबले हो जाते हैं और फर्स्ट सेकंड थर्ड उनको प्राइज भी दिया जाता है, उसके बाद फिर आगे उनके लिए कौन से टूर्नामेंट्स होते हैं?
1: सर ये इसका मेन मकसद है, इसके बाद हमारा स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया टूर्नामेंट करवाता है जो स्कूल नेशनल के नाम से जाना जाता है, वो टूर्नामेंट इसके बाद होता है। इसमें जो हर गेम में अलग अलग क्राइटेरिया है, क्रिकेट में क्राइटेरिया है कि हम एक क्राइटेरिया शुरू में ही रख देते हैं कि एक बैटर इतने रन करेगा या बॉलर जो इतनी विकेट लेगा, ऑलराउंडर की परफॉर्मेंस जो भी है होनी चाहिए वो बता दी जाती है पहले ही सर्कुलर निकाल के, कि जो बच्चा पर हर मैच में ये परफॉर्मेंस देगा डायरेक्ट स्कूल कैंप में फिर उसको बुलाया जाएगा। उस इस तरह से कुल 90 या 100 अच्छे बच्चे हमें मिल जाते हैं, जिसमें से 16 की टीम स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया में स्कूल नेशनल के लिए बनाई जाती है।
0: तो इस साल पिछले साल के मुकाबले क्या कुछ इम्प्रूवमेंट आपको लग रही है खिलाड़ियों में? गर्ल्स और बॉयज दोनों आपके पास होते हैं, तो गर्ल्स में किस तरह का रुझान है, क्या कुछ इम्प्रूवमेंट आपको दिख रही है इस बार?
1: सर देखिए, क्रिकेट एक ऐसी गेम है जो दिन प्रतिदिन लोकप्रिय होती जा रही है, और खासकर गर्ल्स इसमें अच्छे बढ़ चढ़ कर भाग ले रही हैं। पहले हम गर्ल्स को रोक देते थे, पेरेंट्स उनके नहीं स्पोर्ट्स नहीं खेलना है, कुछ नहीं खेलना। अब क्रिकेट को देख देख के लड़के जैसे वर्ल्ड कप जीती लास्ट ईयर हमारी, तो उसके बाद ज्यादा ही रुझान क्रिकेट में भी गर्ल्स का हो गया, और अभी अभी डीपीएल दोनों ही बॉयज का भी और गर्ल्स का भी खत्म हुआ दिल्ली में, तो क्रिकेट का में रुझान बच्चों का बहुत ही ज्यादा, और हर साल हमें एक नया कॉम्पिटिशन देखने को मिलता है, अच्छे अच्छे बच्चे देखने को मिलते हैं जो अच्छा पार्टिसिपेशन करते हैं। अब एज इतना मैटर नहीं रखते जितना बच्चों की परफॉर्मेंस रखते हैं, और अच्छे अच्छे बच्चे अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं।
0: आपने बताया कि SGFI के लिए टीमें तैयार की जाती हैं, और दिल्ली की अगर हम बात करें SGFI में किस तरह का दिल्ली का प्रदर्शन रहा है, कौन कौन से खिलाड़ी ऐसे आपको याद आते हैं जो SGFI खेल के आगे बढ़े हैं?
1: मैं तो बहुत पुराने टाइम से गर्ल्स के साथ भी जा रहा था, 2008 से हमारी लड़कियां निकली है वहां से, प्रिया पुनिया इंडिया के लिए, प्रतिका रावल इंडिया के लिए, रीति तोमर लड़की है जो पिछले 10 साल से लगातार खेली जा रही है दिल्ली की सीनियर टीम में, 23 में उसका चैंपियन हुई, उस टीम का वो हिस्सा थी। तो लड़कियां बहुत अच्छे अच्छे टैलेंट निकल के आता है, और अब पिछले साल हमारी अंडर 17 की टीम जो गई थी SGFI में गोल्ड मेडल लेके आई है, गर्ल्स भी थर्ड पोजीशन में आई है, तो ये अच्छा परफॉर्मेंस दिल्ली की टीम कर रही है और बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस जारी रहेगा आगे।
0: ये थे दिल्ली सरकार के कोच विनोद कुमार माटा, जो बता रहे थे कि दिल्ली की टीमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रही हैं स्कूल नेशनल्स के कॉम्पिटिशन्स में, और इस समय जिस तरह से टूर्नामेंट चल रहे हैं तो वो दर्शाते हैं कि दिल्ली में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, और दिल्ली सरकार और भारत सरकार दोनों ही इस समय खेलों के लिए

0: जिस तरह से खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। और अब बात कर लेते हैं टेनिस की। और टेनिस में यूएस ओपन के मुकाबले चल रहे हैं, साल का आखिरी ग्रैंड स्लैम है और कई सारी बड़ी गतिविधियां हुई हैं हमेशा वहाँ पर। और सबसे बड़ी बात तो वहाँ पर यह है कि बहुत लंबे लंबे मुकाबले भी हुए हैं, चोट से उभर कर भी खिलाड़ी लौटे हैं और बारिश भी आ गई है और बारिश आने से कई मुकाबले सस्पेंड भी हो गए हैं। तो सब कुछ हुआ है यूएस ओपन में। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि किस तरह से यूएस ओपन में जो मुकाबले हुए हैं, सबसे बड़ा मुकाबला तो यही माना जाएगा कि अलेक्जेंडर जेवरेव को इटली के अनसीडेड खिलाड़ी लोरेंजो सोनेगो से मिली कड़ी चुनौती, और उस चुनौती में उन्होंने 5 घंटे लगातार टेनिस खेला है।
1: जी बिल्कुल, ये 5 घंटों तक चला जो महामुकाबला था, इसमें 6-4, 3-6, 6-7 और 7-5, 6-4 से ऐतिहासिक जीत दर्ज करी थी इसमें जेवरेव ने। और अब आगे देखा जाए तो अमेरिका के जो टॉप स्टार हैं टेलर फ्रिट्ज, उन्होंने डार्विन ब्लांच को सीधे सेटों में 6-3, 6-2, 6-4 से आसानी से हरा कर बाहर का रास्ता उन्हें दिखा दिया था। वहीं महिला सिंगल्स की बात करें तो 2023 की चैंपियन और नंबर 4 सीड घरेलू स्टार कोको गॉफ ने कोर्ट पर उतरते ही तुर्की की जेनेप को सीधे सेटों में 6-3, 6-4 से मात देकर दूसरे दौर में कदम रखा, जबकि अमेरिकी खिलाड़ी मेडिसन केज ने एलेना एलेना को हरा कर अपना अगला टिकट पक्का किया। और 40 साल के फ्रांस के दिग्गज मॉनफिल्स जो हैं, उन्होंने भी अपनी आखिरी चैंपियनशिप में पहला राउंड जीतने में वह कामयाब रहे हैं। और आज बात करें दूसरे आज के मुकाबलों की, तो टूर्नामेंट के दूसरे दौर में ब्लॉकबस्टर मुकाबले हमें देखने को मिल सकते हैं, जहां जो डे सेशन में नंबर 3 सीड जेसिका है, जेसिका पेगुला, उनका सामना पूर्व ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन सोफिया केनिन से हो रहा है। और अमरीकी जो सनसनी है बेन शेल्टन, उनका जो सामना है वह पोलैंड के ताकतवर सर्वर हुबर्ट से होने जा रहा है, जबकि इसी कोर्ट पर नाइट सेशन में दुनिया दुनिया के नंबर 2 सीड के और कलाई की चोट से उभर कर शानदार वापसी कर रहे कार्लोस अल्कराज पुर्तगाल के जाइमे फारिया के खिलाफ उतरेंगे। और महिला सिंगल्स की टॉप सीड आर्याना सबलंका रूसी खिलाड़ी पोलेना सेंको से भिड़कर लगातार तीसरा खिताब जीतने के इरादे से अपना अभियान की शुरुआत करने जा रही हैं।
0: और जब बड़े बड़े खिलाड़ी एक साथ खेलते हैं तो इसी तरह के रिजल्ट सामने आते हैं कि बड़े बड़े मुकाबले होते हैं, वहाँ पर विल पावर, वहाँ पे स्टैमिना, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, हर चीज़ की वहाँ पे परीक्षा होती है। और खिलाड़ी अपनी क्षमताओं से आगे निकलकर जब इन चीज़ों को परफॉर्म करते हैं, तभी वो बेहतरीन और वर्ल्ड लेवल के वर्ल्ड चैम्पियन खिलाड़ी बनते हैं। और वर्ल्ड चैम्पियन बनने के लिए और अपना नाम कमाने के लिए लगातार खिलाड़ी कोशिश करते रहते हैं, और वही कोशिश चल रही है पीएसए लंदन क्लासिक में भी, जहां पर ढेर सारे स्क्वॉश के खिलाड़ी अपनी प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं।
1: जी बिल्कुल, अब बात करते हैं स्क्वॉश जगत के सबसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में से एक, यानी लंदन स्क्वॉश क्लासिक्स 2026 की। तो लंदन के ऐतिहासिक एलेक्जेंड्रा पैलेस में इस साल के पीएसए स्क्वॉश टूर के पहले गोल्ड लेवल टूर्नामेंट का आगाज हो चुका है। वहीं यह मुकाबला जो है वह $1,44,000 की भारी भरकम प्राइज मनी वाले इस टूर्नामेंट जो है, इसमें 48 चुने हुए शीर्ष खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इंडियन स्क्वाश फैंस के लिए एक बहुत ही गर्व की बात है कि टूर्नामेंट के पहले ही दिन हमारे खिलाड़ियों ने बेहद ही शानदार शुरुआत की है। कल यानी 1 सितंबर को खेले गए राउंड 1 के मुकाबलों में भारत की राइजिंग स्टार और करंट वर्ल्ड जूनियर चैंपियन अनाहत सिंह ने कमाल का प्रदर्शन किया। उन्होंने इजिप्ट की अनुभवी खिलाड़ी मरियम मेटवेली को स्ट्रेट गेम्स में 11-3, 11-2 से मात देकर दूसरे राउंड में अपनी जगह पक्की की है। वहीं पुरुष वर्ग में इंडिया के रमित टंडन ने भी कतर के अब्दुल्ला अल्तमीमी को बड़े ही शानदार अंदाज में सीधे गेम्स में 11-6, 11-7 से हराकर अगले राउंड का टिकट कटा लिया है। हालांकि भारत के वीर चोटरानी को स्विट्जरलैंड के जो यानिक विलहेल्मी के से कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ा और उनसे वह हार गए। और पहले दिन खेले गए सभी 16 मैचेस में जबरदस्त हमें कंपटीशन देखने को मिला है। अब बात करते हैं आज यानी 2 सितंबर के लाइव एक्शन की। तो आज से टूर्नामेंट के टॉप सीड कोर्ट पर उतर रहे हैं और सभी मुकाबले अलेक्जेंड्रा पैलेस के मुख्य ग्लास कोर्ट पर खेले जाएंगे। आज राउंड 2 के टॉप हाफ मैचेस खेले जाएंगे जहां भारत के रमित टंडन का सामना टूर्नामेंट के 8वीं वरीयता प्राप्त और इंग्लैंड के शीर्ष खिलाड़ी मोहम्मद एल शोर बेगे से होगा, जो रमित के लिए एक बड़ा ही इम्तिहान होगा। और इसके अलावा डिफेंडिंग चैंपियन और टॉप सीड पॉल कॉल आज लोकल फेवरेट सैम टॉट के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेंगे। वहीं वेमेंस ड्रॉ में टॉप सीड हानिया एल हमा ने भी आज अपना पहला मैच खेलेंगी। और अब एक नज़र डालते हैं कल यानी 3 सितंबर को होने वाले मुकाबलों पर। तो कल 3 सितंबर को राउंड 2 का बॉटम हाफ खेला जाएगा जहां पूरे देश की नज़रें एक बार फिर भारत की बेटी अनाहत सिंह पर टिकने वाली हैं। अनाहत का सामना कल 8वीं वरीयता प्राप्त नेले गिलिस से होगा। अगर अनाहत इस मैच को जीतने में कामयाब रहती हैं तो यह इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा उलटफेर होगा। उनके अलावा कल पुरुष वर्ग में 3री वरीयता प्राप्त मरवान एल शोरबेगे और महिला वर्ग में 2री वरीयता प्राप्त अमीना औरफी भी अपने अपने मैचेस के लिए कोर्ट पर उतरेंगे।
0: और अब आपको लिए चलते हैं फुटबॉल के मैदान पर, जहां पर सुब्रतो कप के अंडर 15 बॉयज के मुकाबले खेले जा रहे हैं। और जो मुकाबले खेले गए हैं अभी तक, उसमें झलेली में सुब्रतो फुटबॉल ग्राउंड झलेली, ये क्योंकि ये जो टूर्नामेंट का सेगमेंट है ये बेंगलुरु में खेला जा रहा है, तो वहाँ पे झलेली के ग्राउंड पर वेस्ट बंगाल और एनसीसी के बीच मुकाबला था, जो 4-1 से वेस्ट बंगाल की टीम ने जीता। वहीं दूसरी तरफ एयरफोर्स स्कूल फुटबॉल ग्राउंड झलेली में जो दूसरा मुकाबला खेला गया, वहाँ पर चंडीगढ़ और हरियाणा की टीमें आमने सामने थीं, जिसमें 1-0 से जीत दर्ज की है चंडीगढ़ की टीम ने। वहीं तीसरा मुकाबला जो खेला गया था वो एसएस हाकिम फुटबॉल ग्राउंड यलहंका में खेला गया, जिसमें सीआईएससीई की टीम ने छत्तीसगढ़ के खिलाफ जीत दर्ज की है 4-1 से। तो कुल मिलाकर सुब्रतो कप फुटबॉल टूर्नामेंट अंडर 15 के ये मुकाबले इस समय चल रहे हैं। और सुब्रतो कप, अमीषा, मैं आपको बता दूं, ऐसा एक टूर्नामेंट है, फुटबॉल की नर्सरी है। इसमें कई सारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी अपने बिल्कुल शुरुआती समय में खेल कर आगे बढ़ चुके हैं और अपने अपने देशों की टीमों में भी खेल चुके हैं। तो उस फुटबॉल के लिए एक बहुत ही क्लासिक, या ये कहें कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूर्नामेंट है सुब्रतो कप।
1: जी बिल्कुल। और अपने श्रोताओं को ये भी अपडेट दे देते हैं कि फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने 20 मेंबर्स की जो एक स्ट्रॉन्ग स्क्वाड है उसको अनाउंस कर दिया है एशियन गेम्स के लिए। तो स्क्वाड कुछ इस तरह है कि फॉइल में मेंस में सचिन है, सनासम, हिमेश सिंह, आदित्य, तेजस, मनोज पाटिल हैं। और विमेंस में जॉयस, अशिता, स्टेलिन राज, नौरेम, मीना देवी, कनुप्रिया चावला, सोनिया देवी हैं। और एपे में विमेंस की बात करें तो तनिष्का खत्री, प्राची लोहान, मितवा चौधरी, यशकीरत कौर हायर हैं। सेबर की बात करें तो उसमें मेंस में करण सिंह, गीशो निधि के पी, लक्ष्य बातसेर, विशाल थापर हैं। और विमेन की बात करें तो भवानी देवी हैं, श्रेया गुप्ता हैं और जफरलीन जेएस हैं, श्रुति जोशी हैं इसमें। और वहीं एक अपडेट हम और दे देते हैं कि जो जूनियर एशिया कप हॉकी जो है 2026 जो है उसका जो चाइना में आयोजन होगा उसमें इंडिया के जो फिक्स्चर्स हैं ये भी अनाउंस कर दिए गए हैं। इंडिया का मुकाबला 5, 6, 8 और 9 सितंबर को होगा। 5 को इंडिया वर्सेस साउथ कोरिया है, 6 को इंडिया मलेशिया है, 8 को इंडिया जापान है और 9 को इंडिया चाइना होगा।
0: और दिल्ली के बिल्कुल नज़दीक मेरठ में इस समय इंडियन एथलेटिक सीरीज 15 चल रही है, जहां पर कई सारे बेहतरीन एथलेटिक खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। दोस्तों, स्टूडियो की घड़ी अब हमें बता रही है कि हमें आपसे विदा लेनी पड़ेगी। मैं अजय तोमर, मेरे सहयोगी अमीषा पटेल और कार्यक्रम के प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में केंद्र और राज्यों की महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए साझा दायित्व को बढ़ाना और विचार विमर्श से सुशासन और सेवा वितरण में सुधार लाना है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि ऊर्जा सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा, रणनीतिक स्वायत्तता और आर्थिक अनुकूलन से अलग नहीं किया जा सकता। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में डॉक्टर सिंह ने आत्मनिर्भर, स्वदेशी, किफायती और प्रौद्योगिकी आधारित ऊर्जा क्षेत्र के विकास का आह्वान किया। उन्होंने वर्तमान समय को स्वच्छ ऊर्जा सहित एक सुरक्षित और टिकाऊ ऊर्जा भविष्य की ओर आ रहे बदलाव का समय बताया। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज नई दिल्ली में नागर विमानन क्षेत्र में व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने के उपायों की समीक्षा की। श्री नायडू ने अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया आसान, पारदर्शी, स्वचालित और समयबद्ध बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री नायडू ने संबंधित अधिकारियों को इस प्रक्रिया को सरल और स्वचालित बनाने तथा 15 दिन के भीतर उनके कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी में अत्याधुनिक प्रधान डाकघर का लोकार्पण किया। नए डाकघर में स्पीड पोस्ट, बचत बैंक, डाक जीवन बीमा, आधार, पार्सल और वित्तीय सेवाएं मिलेंगी। यहां दिव्यांगजनों के लिए सुगम प्रवेश और नागरिकों के लिए सुविधाजनक प्रतीक्षा कक्ष की व्यवस्था भी है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने आज लद्दाख के करगिल में डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि अब करगिल और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को पासपोर्ट संबंधी सेवाओं के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में अधिकारियों के तबादले और तैनाती में कथित भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी सरकार की आलोचना की है। नई दिल्ली में आज पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि इन दिनों वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले और तैनाती रेड कार्ड के आधार पर की जा रही है।
1: मुख्यमंत्री भगवंत मान को पंजाब की जनता को उत्तर देना पड़ेगा। आपके इशारों पर जब ये कैश फॉर ट्रांसफर घोटाला हो रहा है तो इसका किंगपिन अरविंद केजरीवाल है या नहीं, बताइए।
0: एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद आज इसकी घोषणा की गई। साथ ही ट्रस्ट में 3 नए सदस्यों की नियुक्ति भी की गई है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने अनिवार्य सुरक्षा उपायों के बिना विस्फोटक पदार्थों की ऑनलाइन बिक्री के लिए एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। प्राधिकरण के अनुसार प्लेटफॉर्म पर लाइसेंस सत्यापन, खरीदार पात्रता जांच और अनिवार्य सुरक्षा संबंधी जानकारी के बिना अमोनियम नाइट्रेट की ऑनलाइन लिस्टिंग सुविधा दी जा रही थी। सरकार ने वर्ष 2024 के लिए तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। बलजीत कौर और स्काल जेंग रिगजिन को भू साहसिक अभियानों, रिमो साहा को जल साहसिक अभियान और शिव प्रसाद चमोली को आजीवन उपलब्धि के लिए ये पुरस्कार दिए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 के साथ ये पुरस्कार प्रदान करेंगी। पुरस्कार समारोह की तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी। भारत से राहत सामग्री लेकर 5वां विमान आज नेपाल पहुंचा। इसमें 11 सदस्यीय बचाव दल, विशेष उपकरण और 5 टन से अधिक दवाएं हैं। नेपाल में भारत के राजदूत ने बताया कि भारत नेपाल में जारी राहत और बचाव कार्य में हर संभव सहायता कर रहा है। इस बीच नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या 1100 से अधिक हो गई है। लगभग 4000 लोग अब भी लापता हैं। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 374 अंक गिरकर 76,570 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 141 अंक गिरकर 23,914 पर आ गया। किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के दूसरे राउंड में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने चीनी ताइपे के ची यू जेन और तन्वी ने डेनमार्क की अमाली शुल्ज को हराया। ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो मिक्स डबल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: हिंदी वार्ता कार्यक्रम के इस अंक में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है गुरु शिष्य परंपरा और शिक्षा के बदलते आयाम। वार्ताकार हैं डॉक्टर सौम्या त्रिपाठी, लाइफ कोच और मोटिवेशनल स्पीकर, भेंटकर्ता संतोष द्विवेदी मनुज। डॉक्टर सौम्या जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद संतोष जी।
0: सौम्या जी, हम जब भारत की बात करते हैं तो गुरु शिष्य परंपरा का आना स्वाभाविक है। आज के संदर्भ में आप इस परंपरा को कैसे देखते हैं, जब आप कैंपस टू कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के सेशंस लेते हैं या विजिटिंग फैकल्टी के तौर पर जाते हैं तो आपको क्या दिखता है कि ये परंपरा और आज का भारत कहाँ पर है?
1: संतोष जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये एक बहुत ही गौरवशाली परंपरा रही है। समय के साथ इसमें बदलाव जरूर आया है, लेकिन आज भी हम इसके कुछ अंश अपने भारतवर्ष में देखते हैं। आज के समय में भी ज्ञान की बहुत ज़्यादा इज्जत है। अगर आप किसी भी विषय में ज्ञानी हैं, अगर आप उसका अच्छा ज्ञान रखते हैं तो लोग आपको वो आदर सत्कार देंगे।
0: जी बिल्कुल, जैसे कहते हैं बदलाव प्रकृति का नियम है और शिक्षा का क्षेत्र भी उससे अछूता नहीं है। देखा जाए तो आजकल बहुत सारे बच्चे बड़े शहरों में जाने के बजाय अपने ही शहर में रहकर वहां से पढ़ाई कर पा रहे हैं। ये जो अब जो दौर चल रहा है, तकनीक का जो समावेश हुआ है, इसको आप कैसे देखते हैं?
1: आज के समय में एक स्टूडेंट के पास सिर्फ एक जरिया नहीं है सीखने का। पहले पुस्तकें हुआ करती थी, शिक्षक हुआ करते थे, आज उसके साथ गूगल भी है, यूट्यूब भी है। बहुत सारे टीचर्स हम देखते हैं आज ऑनलाइन माध्यम से बहुत पॉपुलर हो गए हैं, बच्चे बच्चे की जबान पे उनका नाम है। कई तरीके के माध्यम आ गए हैं बच्चों के पास सीखने के लिए। इससे अच्छी चीज़ ये है कि उनको अलग अलग पर्सपेक्टिव से, अलग अलग नज़रिए से चीज़ों को देखने का मौका मिलता है। ये पीढ़ी जो है वो बहुत शार्प है, इसकी सीखने की क्षमता बहुत तेज है, क्योंकि इनके पास हर तरह के आयाम हैं। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि हमने हर किसी तक शिक्षा को पहुंचाया है। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है, तकनीक की वजह से जो मानवीय हस्तक्षेप है, जो कि हमें एक शिक्षक के रूप में मिलता था, वो कम हो गया है। शिक्षा का काम केवल ज्ञान देना नहीं है, शिक्षा का काम व्यक्तित्व बनाना भी है।
0: सौम्या जी, सबसे बड़े बदलाव क्या नज़र आते हैं AI के आ जाने के बाद से?
1: AI के आ जाने से एक अच्छी चीज़ ये हुई है कि वो हमारे एक सहायक के रूप में काम करता है। AI जो है वो दोधारी तलवार है। हम देखते हैं बच्चों ने इसको अपना एक बहुत बड़ा असिस्टेंट बना लिया है। गृह कार्य से लेकर के कोई भी काम हो, आप AI को दीजिए और वो आपको सारा आंसर बता के दे देगा। इससे दुष्प्रभाव जो होता है वो ये है कि हमारे सोचने की क्षमता कम हो जाती है। टेक्नोलॉजी बहुत ही अच्छी चीज़ है, हमारे लिए बहुत ही सहायक सिद्ध हो सकती है, लेकिन हमें ये समझना है कि हम उसका सही इस्तेमाल कैसे करें। टेक्निक के साथ हमेशा पहले मानव आता है, मानवीय हस्तक्षेप, फिर तकनीक, और उसके बाद फिर मानवीय हस्तक्षेप। तो आप उसको अपना रिप्लेसमेंट ना बनने दें, अपना असिस्टेंट ही बना करके रखें।
0: जी बिल्कुल, आपने सही कहा, मानवीय हस्तक्षेप के कम होने से कई चीजें और भी उभर करके आई हैं। कहीं ना कहीं मनुष्य के सोचने समझने की शक्ति पर भी प्रभाव पड़ रहा है। तो शिक्षक हो या विद्यार्थी हो, उनके सोचने समझने की शक्ति को निगेटिवली प्रभावित किया है। इससे कैसे बचे? आज के दौर के जो हमारे शिक्षक हैं और जो विद्यार्थी हमें इस समय सुन रहे हैं, उनके लिए क्या सलाह होगी आपकी?
1: सलाह मैं देना चाहूँगी शिक्षकों को और विद्यार्थियों को, वो ये है कि अगर आप अपना सारा काम AI से करवा रहे हैं तो कल को AI आपकी जगह ले लेगा। अगर एक मशीन कर सकती है, आपके सोचने का काम मशीन कर सकती है, तो वो काम मशीन ही करेगी। और जैसे कि हम देखते हैं जितने भी एवरेज काम है वो सारा कुछ टेक्नोलॉजी रिप्लेस कर रही है। हमारे पास एक मनुष्य होने के नाते बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है जिसे हम कहते हैं ब्रेन, वो अभी तक टेक्नोलॉजी रिप्लेस नहीं कर पाई है। मैं ये कहना चाहूंगी कि आप उसे रिप्लेस ना करें, अपने इस ब्रेन का इस्तेमाल करें। सबसे पहले अपने सोचने की क्षमता को डेवलप करें, उसको उभारें, उसके बाद आप AI का रोल उसमें लाएं, फिर उसमें अपना जो आपका एक एलिमेंट है, हम लोगों में से हर किसी का व्यक्तित्व अलग होता है, हर कोई एक अलग सोचने का तरीका, अलग विचार लेकर के आता है, वो विचार आप AI के साथ मिलके, दोनों AI और आप कैसे नए आयाम बना सकते हैं, कैसे नई सोच ला सकते हैं, इस पे काम करें।
0: सौम्या जी, आप बहुत सारे लोगों को ट्रेन करती रही हैं, कई वर्षों से ट्रेन कर रही हैं। आपके जीवन का कोई ऐसा अनुभव जब आपने महसूस किया कि जो हमारी पुरातन परंपरा और जो आजकल AI टूल्स की जो नई एक दशा और दिशा बदल दिया, जिसने शिक्षा के पूरे स्वरूप को बदल करके रख दिया है, आपका कोई ऐसा अनुभव?
1: मैं कक्षा 8 में जब थी तो हमारी एक शिक्षक थी जिनका फेवरेट वर्ड था होपलेस। वो हर किसी से ये कह देती थी कि यू आर होपलेस, तुमसे तो कोई उम्मीद ही नहीं की जा सकती है। कक्षा 9 में मेरा स्कूल बदला, मैं दूसरे स्कूल में गई और वहाँ पे एक दूसरे टीचर थे जो मुझसे ये कहते थे, मुझे लगता है कि आप इससे बेहतर कर सकती हैं। सो मुझे ये समझ में आया कि यहाँ ये चीज़ ऐसी है जो संवेदनाएं हैं, ये कभी मुझे टेक्नोलॉजी नहीं दे सकती थी, कोई AI एजेंट, AI टूल नहीं दे सकता था। तो मुझे लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक का जो एक महत्व है, वो सिर्फ शिक्षा देना नहीं है, वो व्यक्तित्व का विकास करना है। जो उनका मानवीय हस्तक्षेप है, वही उनकी सबसे बड़ी पावर है। आज के इस दौर में टेक्नोलॉजी को हम अपने जीवन से हटा नहीं सकते हैं, लेकिन दोनों का समागम जो है वो हमारे लिए नए आयाम जरूर बना सकता है।
0: सौम्या जी, आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ पे हमारे पुराने मूल्य कहीं ना कहीं टूट रहे हैं, पर नए मूल्य नहीं बन रहे हैं। तो जो ये समागम है पुरानी परंपराओं का, पद्धतियों का, हमारी वैभवशाली परंपरा का, जहाँ पे हम संदीपनी जी, कृष्ण जी को देखते हैं, गुरु वशिष्ठ और श्री राम जी को देखते हैं, तो आज एक गुरु के तौर पर AI भी है, इसे हम नकार नहीं सकते। तो इन दोनों के बीच में जो पुरातन नूतन का जो समागम है, इसमें कैसे समावेश करे, इसमें एक जो व्यक्ति है आज की डेट में कैसे अपने आप को स्थित करे, समावेशित करे।
1: आज के समय में एक बहुत ही दिलचस्प समय चल रहा है, क्योंकि जहाँ पर हमारे जो शिक्षक हैं उनके पास अपने विषय का बहुत अच्छा ज्ञान है, उसके साथ साथ जो नई पीढ़ी आई है उसे टेक्नोलॉजी का, टूल्स का, नए सोशल मीडिया ट्रेंड्स का, इन सब चीज़ों का बहुत ज्ञान है। तो ये एक बहुत अच्छा समावेश बन रहा है। यहाँ पर हमें दोनों को अपना अपना रोल समय समय पर बदलने की जरूरत है। शिक्षक को भी विद्यार्थी बनना चाहिए, विद्यार्थी को भी शिक्षक बनना चाहिए। हम दोनों एक दूसरे से काफी कुछ सीख सकते हैं और साथ में मिलकर के हम कुछ नया बना सकते हैं।
0: जैसे हमने AI की बात की, सोशल मीडिया की बात की, तो कहीं ना कहीं ये भी एक तरीके से वर्चुअल शिक्षक का काम कर रहे हैं आज की डेट में। पर एक बड़ा बदलाव जो देखने को मिलता है कि जैसे मनुष्य का स्वभाव है, जो जल का स्वभाव है कि ऊपर से नीचे की ओर आना, मनुष्य का स्वभाव भी वैसे ही। अगर आज हम कंटेंट पे निगाह दौड़ाएं तो हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो कि कुछ भी जो समाज में स्वीकृति नहीं पाता है उस तरह से, पर उस तरह के कामों को कर करके आज इन्फ्लुएंसर बन जा रहे हैं, तो इससे कैसे बचे आज का युवा हमारा?
1: जी, ये एक बहुत बड़ा खतरा है जिसे हम देखते हैं कि आज कोई भी कुछ भी पोस्ट कर लेता है हर किसी को, क्योंकि आप सोशल मीडिया पे हैं तो एक वो अथॉरिटी भी आ जाती है। और यहीं पे जो है हमारा विवेक काम आता है, यहीं पे एक शिक्षक का भी रोल आता है जो कि एक स्टूडेंट का विवेक डेवलप करने में उसका काम करता है, जिसे हम विजडम भी कहते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग है जिससे हम सही और गलत में भेदभाव करना सीखते हैं। उसके साथ साथ हमें ये भी समझना चाहिए कि सब कुछ जो सोशल मीडिया पे है वो सही नहीं है। बहुत से देशों ने अब इसमें भी लाइसेंस लगा दिया है कि कुछ फील्ड हैं जैसे कि हेल्थ हुआ या एजुकेशन हुआ, जहाँ पे आप लाइसेंस लेकर के ही कंटेंट बना सकते हैं, ताकि कोई भी भ्रामक कंटेंट प्रोड्यूस करके लोगों को भ्रमित न कर सके।
0: जी बिल्कुल। चलते चलते बस मैं आपसे ये और जानना चाहूंगा कि अगर आपको बताना हो कि शिक्षक और जो हमारे आज के विद्यार्थी दोनों के लिए क्या करे क्या ना करे, अगर आपको ऐसे बांटना हो तो कौन सी कुछ महत्वपूर्ण बातें आप उनको सलाह के तौर पर देना चाहेंगे?
1: शिक्षक और विद्यार्थी के लिए मैं एक फॉर्मूला देना चाहूंगी जिसे मैं कहती हूँ 3 स। वो स होते हैं, पहला स है संबंध, मतलब जुड़ाव, एक दूसरे से जुड़ाव रखें। दूसरा है संवाद, बातचीत। शिक्षक और विद्यार्थी दोनों एक दूसरे से काफी कुछ सीख सकते हैं, टू वे कम्युनिकेशन जिसे हम कहते हैं, दोनों तरफ से संवाद बना रहना चाहिए। और तीसरा स है साख, साख मतलब विश्वसनीयता। जो विद्यार्थी हैं वो आपसे सवाल पूछेंगे, सवालों को आप एनकरेज करिए, उन्हें उन चीजों के लिए प्रोत्साहित करिए। सवाल होने का मतलब ये है कि अगले को चीजें समझ में आ रही हैं। तो इन 3 स से, संबंध, संवाद और साख बनाने से हम अपने संबंध को बेहतर कर सकते हैं और वो गुरु शिष्य परंपरा को आगे तक ले जा सकते।
0: डॉक्टर सौम्या त्रिपाठी जी, आप हमारे स्टूडियो आए और इस विषय पर अपने महत्वपूर्ण विचार साझा किए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद संतोष जी।
0: अभी आप सुन रहे थे हिंदी कार्यक्रम जिसका विषय था गुरु शिष्य परंपरा और शिक्षा के बदलते आयाम। वार्ताकार थी डॉक्टर सौम्या त्रिपाठी, लाइफ कोच और मोटिवेशनल स्पीकर, भेंटकर्ता और प्रस्तुतकर्ता संतोष द्विवेदी मनुज।

त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। आपद्ग्रस्त नेपालदेशाय साहाय्य सामग्रीमादाय भारतस्य पञ्चमं विमानं प्रस्थितम्। मृतानां संख्या प्रायः 11 शतं संजाता। उत्तरप्रदेशे वेस्टर्न एयर

ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी भाइयों बहनों को हमारा राम राम। आज की ग्राम संसार कार्यक्रम में आप सुन सकेंगे विशेष फोन इन कार्यक्रम गन्ने की पाठशाला। इस कार्यक्रम की प्रायोजक हैं इंडियन पोटाश लिमिटेड।

0: लाइट।
1: मिट्टी की उर्वरता एवं फसल उत्पादन में अद्भुत वृद्धि के लिए प्रसिद्ध बहुपोषक प्राकृतिक उर्वरक IPL की पॉलीहैलाइट, समझदार किसानों की पहली पसंद।
0: IPL की पॉलीहैलाइट।
2: आज की इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में गन्ने की पाठशाला के अंतर्गत जो आज का हमारा विषय है, शरद कालीन गन्ने की बिजाई हेतु तैयारी, और आज के हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अरविंद कुमार मिश्रा, जो कि प्रभारी हैं कृषि विज्ञान केंद्र अमरोहा से, और हमारे दूसरे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर सौहार्द दुबे, जो कि गन्ना वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र बदायूं में। शरद कालीन गन्ने की बिजाई हेतु तैयारी विषय से संबंधित आपकी कोई भी समस्या हो तो आप विशेषज्ञ से सीधे फ़ोन पर बात कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 011, जो कि कोड है, नंबर है 2342108, दूसरा नंबर है 2342108। दिल्ली से बाहर के लोग 011 कोड लगाना ना भूलें। और इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हमारे साथी नरेश पाराशर जी, तो बिना देर किए आपको ले चलते हैं स्टूडियो की ओर।
3: विशेष फोन इन कार्यक्रम में डॉक्टर मिश्रा जी, डॉक्टर दुबे, आप दोनों का हार्दिक स्वागत। डॉक्टर साहब, गन्ने पे हम बात करते रहते हैं, जो ये
4: मेरा भी सभी किसान भाइयों को राम राम
3: जी। तो गन्ना जो है नकदी फसल है, और गन्ना एक ऐसी फसल है जो किसान अगर आप लोगों द्वारा बताए गए मार्गदर्शन आपका रहे
4: जी,
3: तो उससे अच्छी पैदावार ले सकते हैं, स्वस्थ पैदावार ले सकते हैं। और जब स्वस्थ पैदावार वो मिल में ले जाते हैं या उसका कोल्हू में गुड़ बनाने के लिए ले जाते हैं, तो वहाँ रिजल्ट उसके अच्छे मिलते हैं
4: जी।
3: तो बात हम करेंगे आज डॉक्टर साहब, जैसे हमारा विषय है शरदकालीन गन्ने की बिजाई के बारे में, तो शरदकालीन की बिजाई की अगर बात करें तो उसका सही समय
4: जी,
3: मतलब कब से कब तक कर सकते हैं?
4: देखिए, बड़ा ही आज का विषय आपने रखा है पाराशर जी, कि शरदकालीन गन्ने का से अच्छा उत्पादन हमारे किसान भाई कैसे लें। देखिए, गन्ना जो हमारा तीन सीजन में, पूरे साल के अंदर तीन सीजन के अंदर बोया जाता है। पहला, हमारी गन्ने की बुवाई की जाती है बसंतकालीन की, जो हमारा मार्च से लेकर के अप्रैल तक चलता है, और इसके बाद में फिर हमारे किसान भाई विलम्ब से गन्ने की बुवाई करते हैं, इसको समर के रूप में जानते हैं, जो हमारी अप्रैल से लेकर के मई तक चलता है, जो आप गेहूं काटने के बाद किसान भाई बोते हैं
3: जी।
4: और इसके बाद में जो सबसे बढ़िया मेरा अपना मानना है कि जो शरदकालीन गन्ना है, इसकी बुवाई सामान्यतः हम लोग 15 सितंबर से लेकर के अक्टूबर के मध्य तक इसकी हम बुवाई करते हैं। इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे समय का हो सकता है, लेकिन सबसे बढ़िया जो पैदावार की दृष्टि से देखा जाए, चीनी के उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए, और किसान के आर्थिक फायदे के रूप में देखा जाए, तो शरदकालीन गन्ने की बुवाई का जो है समय सबसे बढ़िया माना जाता है।
3: तो आपने कहा 15 तारीख से शुरू होकर अगली 15 तारीख तक,
4: हाँ 15 मध्य अक्टूबर तक, 15 मध्य अक्टूबर से मतलब
3: दो चार दिन ऊपर नीचे तो चलेगा,
4: मध्य अक्टूबर से मतलब है 15-20 अक्टूबर तक भी किसान इसकी बुवाई बिजाई कर सकता है
3: जी। डॉक्टर साहब, अब डॉक्टर साहब कहते हैं कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे,
4: यस
3: है ना, तो किस्म जैसी अच्छी वाड़ी बोएंगे तो अच्छा पैदावार मिलेगी, और थोड़ी सी वैसी डामाडोल पौधी तो उसमें पैदावार में फर्क पड़ेगा। तो डॉक्टर दुबे जी, किस्में जो हैं शरदकालीन में जो किसान भाई हमारे किस्में का चुनाव करना चाहते हैं, कौन कौन सी किस्में हैं अच्छी?
5: देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। पहले तो हमको ये देखना है कि किस्में का चुनाव जो भी नई हो और रोगों

0: प्रति प्रतिरोधक क्षमता जिसमें डेवलप हुई हो वो लें, और ऐसा ही लोकल अपनी जो भी मिल है उनसे संपर्क साधते हुए ही बीज का चुनाव करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो प्रजाति हम लोग उनको बता रहे हैं वो उनके लोकल मिल पे उपलब्ध हो पाए। और
1: जी
0: गन्ने का बीज ऐसी चीज़ है कि अब ये इतना ट्रांसपोर्टेशन भी उसका संभव नहीं है कि बहुत दूर से किसान भाई उसको ले जा पाए,
1: जी
0: लेकिन फिर भी प्रयास करें कि कुछ किसान भाई FPOs के माध्यम से या समिति के माध्यम से किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से, जैसे गन्ना अनुसंधान केंद्र हमारा शाहजहांपुर में है, शोध केंद्र है, या फिर IISR शुगर केन है, वहाँ से निकली हुई जो भी विकसित वेरायटी हैं, जो टाइमली वेरायटी अच्छी चल रही है इस टाइम, वो कोयम्प्टू 0118 अच्छी प्रजाति चल रही है, कोसा 13231 है, कोसा 13235 है, कोसा 17231 ये अच्छी नई प्रजाति है, कोलक 14201 और कोयम्प्टूर 98014 करके प्रजाति हैं, ये समय से बोई जाने वाली अच्छी प्रजाति हैं, उच्चतम प्रजाति हैं, रोग से लड़ने की क्षमता है, बीमारी इसमें ना के बराबर है और रिकवरी भी बहुत अच्छी इसमें आती है।
1: डॉक्टर साहब, ये आपने बताई समय से।
0: जी
1: मान लो थोड़ा सा किसान कोई लेट हो गया किसी कारण से, तो उसके लिए भी है कोई प्रजाति आपके पास ऐसी किस्में?
0: लेट सोन वैरायटी में भी कोसक 14233 हम लोगों के पास है, लेट सोन में 10239 है और 08452 करके है, या फिर 13452 जो वैरायटी है कोसा, इनको भी हम लेट सोन में ले सकते हैं।
1: तो किसान बहनों भाइयों, डॉक्टर साहब दुबे जी ने बताया है कि ये किस्में हैं जिनको आप, जिनका चुनाव कर सकते हैं, जिनको ले सकते हैं। तो आप अपने, जैसे इन्होंने बताया है कि जो मिल है, मिल के आसपास उनसे मिल वालों से बात कर लें, जो वो आपको सुझाव दें उनको चुन लें। डॉक्टर साहब ने बहुत सारी किस्में बता दी हैं, इनमें से कोई उपलब्ध है तो वो लेके आप इसकी बुआई कर सकते हैं। बहनों भाइयों, जैसा आप जानते ही हैं, आज हमारा विशेष फोन इन कार्यक्रम गन्ने की पाठशाला चल रहा है, और आज के खास तौर पे कार्यक्रम की बात करें तो इसका विषय है शरदकालीन गन्ने की बिजाई हेतु तैयारी। यानी हम थोड़ा सा पहले इसलिए कार्यक्रम लेके आए हैं कि आप जो जो किस्में बताई जाएं, जो तैयारी बताई जाए, उसको आप आराम से कर पाएं।
0: वैसे भी अब पाराशर जी, क्योंकि लगभग अब सितंबर हमारा शुरू
1: शुरू ही हो
0: हो
1: गया तो
0: चुका
1: ज़्यादा
0: है,
1: टाइम है भी
0: तो
1: नहीं।
0: किसान अब अगर तैयारी शुरू करेगा तभी जा करके वो गन्ने की 15 सितंबर के आसपास तक बुवाई कर पाएगा। तो ये किसान के लिए बहुत ज़रूरी है कि किसान शरदकालीन गन्ने की बुवाई करें, और उससे क्या है कि उनको इसके लिए देखिए सबसे बड़ा का फायदा क्या होता है कि किसान को पैदावार भी मिलती है, और दूसरा सबसे बड़ा फायदा होता है कि जब हम पेड़ी की तरफ जाते हैं
1: जी
0: तो पेड़ी जो है जो हमारी फरवरी मार्च की अपेक्षाकृत इसकी पेड़ी जल्दी मेच्योरिटी पे आती है, उसकी ब्रिक्स रीडिंग है, उसमें शुगर रिकवरी है, वो अपेक्षाकृत जल्दी आपकी आ जाती है। तो दूसरा सबसे बड़ा फायदा होता है कि हमारी जो शुगर मिल है जो अक्टूबर के आखिर में जा करके या नवंबर में चलती हैं जा करके, तो उनको गन्ना जब पर्याप्त मात्रा में उस क्षेत्र से मिलेगा तो शुगर मिल को भी चलाने में आसानी होगी और टाइम से। और दूसरा फायदा, सबसे बड़ा तीसरा फायदा किसान को क्या होगा कि जब उसकी पेड़ी जल्दी टाइम से खेत में से हट जाएगी तो
1: जी
0: उसके बाद में उसके अंदर वो रबी की कोई दूसरी फसल, गेहूं ले सकता है, सरसों ले सकता है, चना बो सकता है, मटर बो सकता है, तो उसके पास में इन सब चीजों का ऑप्शन भी रहता है।
1: रहेगा
0: और सबसे अच्छी बात है सर, इस बार बारिश अच्छी है,
1: जी
0: मौसम खेत बिल्कुल तैयार हैं, जिन क्षेत्रों में बारिश ठीक ठाक हो रही है तो खेत ऑलमोस्ट तैयार हैं, आपको अलग से पलेवा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, गहरी जुताई के साथ आप खेत की तैयारी शुरू कर सकते हैं।
1: तो बहन भाइयों, जैसा मैं बता रहा था, डॉक्टर साहब हैं अरविंद कुमार मिश्रा जी, आप प्रभारी हैं कृषि विज्ञान केंद्र अमरोहा में, डॉक्टर सौहाद्र दुबे जी गन्ना वैज्ञानिक है कृषि विज्ञान केंद्र बदायूं में। ये दोनों गुणी वैज्ञानिक हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं, तो इनका आने का जो है, इनको हमारे साथ जुड़ने का लाभ आप ज़रूर उठाएं। जो भी समस्याएं हैं, जो भी जानकारी आप चाहते हों, शरदकालीन गन्ना बोना है, किस्मों के बारे में पूछना है, या खेत की तैयारी के बारे में पूछना है, या मिट्टी के शोधन के बारे में पूछना, या बीज शोधन के बारे में पूछना, किसी भी प्रकार की कैसी भी आपकी जिज्ञासा है, तुरंत हमें फ़ोन मिलाइए। हमारे फ़ोन नंबर जैसे यमुना ने अभी बताए थे, 23 42 10 82 2 3 4 2 1 0 8 2। दूसरा नंबर है 23 42 10 83 2 3 4 2 1 0 8 3। दिल्ली के स्टूडियो के नंबर हैं। आप दिल्ली के बाहर से बात कर रहे हैं, आप मोबाइल से बात कर रहे हैं, तो इन नंबरों से पहले दिल्ली का जो STD कोड है 011, वो लगाइए, फिर नंबर डायल कीजिए। तुरंत आप अपनी समस्या रखिए और हम यकीन दिलाते हैं आपकी समस्या का समाधान हाथ के हाथ हम करवा देंगे। धन्यवाद डॉक्टर साहब। किस्में डॉक्टर साहब ने बता दी है, अब क्योंकि तैयारी भी करनी होती है, खेत की तैयारी करनी है, तो खेत की तैयारी की अगर बात करें तो क्या तैयारी हमें इस समय करनी है किसानों को?
0: अभी समय से अगर हम खेत की तैयारी शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले ध्यान रखें कि हमें खेत की गहरी जुताई जुताई चाहिए। जो पलटा प्लाऊ होता था, एमबी प्लाऊ जिसे बोलते थे, वो गहरी जुताई नहीं हो पाती थी। तो उससे कारण क्या होता था, जब हम लोग जुताई आजकल खेत की तैयारी किसान भाई करते हैं तो मुख्य रूप से केवल रोटावेटर से कर देते हैं,
1: जी
0: जिसके कारण क्या होता है कि कॉम्पैक्ट लेयर बन जाती है और उसमें क्या होता है कि पानी के जो परकुलेशन है, नीचे जाने का जो वो है, वो कम हो जाता है और
1: जी
0: जड़ें भी गहरी नहीं जा पाती हैं। तो उससे
1: जी
0: क्या है कि पौधा की विकास उतना अच्छा नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले ध्यान रखें कि अभी सितंबर में शुरुआत करें, खेत की गहरी जुताई से करें। इसके बाद 2 से 3 बार, 2 बार उनका क्रॉस करके कल्टीवेटर से अच्छा खेत की तैयारी कर लें, जिससे जो भी घास होगी वो घास उनकी खत्म हो जाए। पहले वो हैरो से करेंगे जुताई तो वो घास कटेगी, कटने के बाद कल्टीवेटर जब उसे क्रॉस चलाएंगे तो घास की जड़ों सहित उखड़ जाएगी, थोड़ी धूप मिल जाएगी तो घास निश्चित रूप से सूखेगी। और उसके बाद 2 से 3 बार जो है, जब लास्ट में जब बुआई के 2 से 3 दिन पहले ही केवल वो रोटावेटर चला के और
1: जी
0: खेत की मिट्टी को पूरी अच्छी तरीके से भुरभुरा बना लें, और भुरभुरा बनाने के बाद अच्छे से जब खेत तैयार हो जाए तो
1: जी
0: उसमें अंतिम जुताई के समय 20 से 25 टन जो गोबर की सड़ी हुई खाद है उसको प्रति हेक्टेयर के हिसाब से वो मिला के और जुताई करके फिर 3-4 दिन के लिए उसे छोड़ेंगे।
1: और भी चर्चा करेंगे डॉक्टर साहब। एक फोन आ गया है। हेलो,
2: हेलो, नमस्कार जी सचिव भाई,
1: नमस्कार।
2: नमस्कार
1: नमस्कार
3: नमस्कार
1: जी,
3: जी नमस्कार जी,
1: कौन साहब
3: बताएं।
1: बोल रहे हैं?
2: जी मैं भूकंसरण ग्राम तरारा अमराह से बोल रहा हूँ जी, अमराह जिला अमराह।
3: हाँ जी बताएं
1: बताएं, सवाल बताएं
2: जी। मेरा सवाल ये है जी, आजकल तो ये पारीला लग रहा था, इसकी कोई दवाई पूछनी है।
1: क्या लग रहा है?
3: पारीला
2: पारीला लग रहा है जो बनने में, पारीला।
3: पारीला लगा हुआ।
2: हाँ, जो सफेद सफेद कीड़ा होता है वो उड़ने वाला।
1: हाँ जी,
3: आप जिसको आप लोग फड़का बोलते हैं,
2: हाँ
3: क्या आप ये बताएंगे पारेला का क्या पत्तियां ज्यादा नुकसान हुई हैं? अगर देखिए पारेला
2: ज्यादा नुकसान तो अभी नहीं कर रहा, लेकिन वो आया हुआ है, ज्यादा है
3: हाँ,
2: बहुत सारे, उसके
3: तो
2: छोटे छोटे जो
3: ऐसा
2: है ना वो जीवाणु बहुत हैं।
3: हाँ, पारेला को समझिएगा, पारेला का परजीवी अपने आप ऑटोमेटिकली अपने आप डेवलप होता है, इसलिए
2: अच्छा
3: हाँ पायरेला को मारने के लिए उसका परजीवी होता है, और वो परजीवी गन्ने के पत्तों पे या आपकी जो ज्वार वगैरह होती है आसपास कहीं होगी, ज्वार के पत्तों पे वो डेवलप तैयार होता है अपने आप में। और पायरेला के जहाँ पे उसने अंडे दिए होते हैं, लार्वा दिया हुआ है उसने अपने, उनको वो खाता है। तो इसलिए अगर आप उसमें कोई भी कीटनाशक का प्रयोग कर देंगे तो पायरेला के साथ साथ में वो परजीवी भी मर जाएगा। और उस दवा, क्योंकि गन्ना अभी इतना बड़ा हो चुका है कि उस पर आसानी से ड्रोन के माध्यम से ही आप केवल उस पर छिड़काव कर
2: हाँ,
3: सकते
2: गन्ना
3: हैं,
2: तो पूरा बड़ा हो गया,
3: बड़ा
2: हाथ
3: हो
2: उठाओ
3: गया।
2: गन्ना हो
3: हाँ,
2: गया।
3: अगर थोड़ा बहुत है तो आप उसका इंतजार करिएगा, और अभी किसी भी कीटनाशक का छिड़काव करना एक वैज्ञानिक होने के नाते मेरे हिसाब से अभी ठीक नहीं है। फिर भी अगर अमरोहा के आप किसान हैं हमारे, तो
2: हाँ,
3: अमरोहा
2: अमरोहा चीनी हसनपुर में, हसनपुर का है हमारा
3: हाँ,
2: ये।
3: आपके अमरोहा हसनपुर से नज़दीक ही गजरौला में आपका कृषि विज्ञान केंद्र है, जहाँ पे वैज्ञानिक बैठते हुए आप गन्ने की पत्तियों को ले जा करके उनसे डिस्कस से एक बार विचार करके दिखा लीजिएगा, और उसके हिसाब से ही आप दवा का, जब ज़्यादा ही प्रकोप होता है तब इस पे छिड़काव कीजिएगा, क्योंकि दवा का छिड़काव करने से पायरेला के साथ साथ में परजीवी को ज़्यादा नुकसान होगा, और वो फिर पायरेला कंट्रोल नहीं होगा, दूसरे खेतों पर भी फैलेगा। इसलिए इस समय कोई भी दवा का छिड़काव करना मेरे विचार से ठीक नहीं है। मैं भी अमरोहा में ही बैठता हूँ, आप किसी भी कार्य दिवस में आकर के 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक आप हमसे मुलाकात कर सकते हैं, मैं आपको दवा के उसका समाधान कर दूंगा।
1: ठीक है जी भाई साहब, जो डॉक्टर साहब ने
2: धन्यवाद
1: बताया
2: जी,
1: है,
2: धन्यवाद
1: धन्यवाद
2: धन्यवाद
1: आपका फोन करने
2: धन्यवाद।
1: के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कोई किसान हमारा किसी तरह की समस्या से पीड़ित है तो वो भी हमें तुरंत फोन कर दे, फोन नंबर वही है जो मैंने अभी बताया आपको, 23 42 10 82, 23 42 10 83। डॉक्टर साहब आपने बताया कि खेत की तैयारी के समय आपको गोबर की सड़ी हुई खाद डालनी है। अब बात आती है कि जैविक खाद, क्योंकि गोबर की खाद ये भी जैविक खाद में ही आती है, तो जैविक रासायनिक दो तरह की खाद है, तो कौन सी कितनी और कब कब डालनी है तैयारी की बात करें तो।
0: ठीक है, खेत की तैयारी में वही बता रहा था मैं, तो जब हम पहले खेत की तैयारी कर रहे हैं तो 20 से 25 टन हमें प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद लेनी है। और किसान भाई एक चीज़ का और ध्यान कर लें, जब गोबर की खाद लगाते हैं तो ट्राइकोडर्मा या बेवरिया वेसियाना जो हमारे जैव बायोजेंट हैं,
1: जी
0: बायोकंट्रोल एजेंट हैं, इनको आप मिला लीजिए। इसको मिलाने की विधि क्या है, जो सड़ी हुई गोबर की खाद है उसमें आप जो है 2 किलो प्रति एकड़ की जो है दर से, आप इसके पाउडर होता है, इसमें परजीवी होते हैं तो
1: जी
0: इनको ग्रो कराना होता है कल्चर में, तो
1: जी
0: इनको पहले आप जो है गोबर के साथ आप छिड़क दीजिए, इसके ऊपर आप जो है हल्के से टाट के बोरे डाल के उसको 7 से 8 दिन तक छाए में सुखाइए, ताकि जो बायो ट्राइकोडर्मा में जो जैव

0: सूक्ष्म जीव हैं वो
1: जी
0: मल्टीप्लाई करके उसके साथ मिल जाएं और वो गोबर की खाद में ही बढ़ के वो पूरा ट्राइकोडर्मा से युक्त खाऊबर की खाद बन जाएगी। तो ट्राइकोडर्मा और बेवेरिया जब आपके मिल जाते हैं तो दो चीज़ों का, एक तो ट्राइकोडर्मा फंजीसाइड है और दूसरा बवेरिया वेसियाना हमारा दीमक और जितने भी कीट हैं उन सब का इंतजाम करता है, और आपका भूमि शोधन, ओ मृदा परिशोधन इसमें से हो जाता है, भूमि
1: जी डॉक्टर
0: शोधन।
1: साहब, इस पे और भी चर्चा करेंगे। एक फोन आ गया किसान भाई का। हेलो हेलो, नमस्कार।
2: जी नमस्कार जी, परमाल सिंह तिलखनी, जिला मुजफ्फरनगर से बोल रहा हूँ जी।
1: जी परमाल भाई, बताएं क्या
2: बताएं
1: सवाल
2: परमाल
1: है।
2: जी। भाई साहब, आज पहले जो मैंने था ये ट्राइकोडर्मा काफी इस्तेमाल किया,
1: जी
2: लेकिन अब ज्यादा बारिश से या किसी कारण कोई वो जो लाल सड़न की बीमारी है, अब गन्ना पूरा हो रहा है और वो बीमारी कहीं कहीं दिखाई दे रही है,
1: अच्छा,
2: तो
1: देखिए परमाल
2: उसका फिर
1: जी
2: जी।
1: बताएं बताएं, पूरी बात बताएं आपने।
2: और जैसे गन्ना बड़ा हो चुका है, फिलहाल वो जमीन में जैसे डाल के उसका वो करेक्ट रहते शोधन भूमि का, वो तो भू नहीं पाने का,
0: नहीं जी, नहीं जी,
2: तो
0: नहीं
2: कोई
0: होगा।
2: अच्छा तरीका बताएं साहब, वरना नुकसान हो जाएगा फसल को।
1: देखिए परमाल जी, अब इस अवस्था पे आपकी बाबक फसल है, पेड़ी है।
2: पेड़ी है जी
1: देखिए परमाल जी, अब इस अवस्था पे और इस समय अब कोई
2: जी
1: भी दवा का उस पर प्रयोग करने से आपको आपकी बीमारी का लाल
0: रेड
1: सड़न का, रेड रॉट का कोई भी उपचार संभव नहीं है। पहली बात क्लियर है, आपको समझा दें। अगर किसी भी दुकानदार के पास जाकर के कहता है कि साहब ये ले जाके डाल दो, वो कर दीजिएगा, जो उसने जितने जो भी आपके थावले हैं जिनको प्रभावित कर दिया है, वो थावले
2: जी
1: आपके अब ठीक नहीं हो सकते हैं। पहली क्लियर बात देखिएगा, आप
2: जी
1: इतना
2: जी
1: कर सकते हैं कि अगर एक कोई थावला है उसमें अगर आपका ज़्यादा प्रभावित हो रहा है, उस पूरे के पूरे क्लम्प को यानी थावले को उखाड़िए, और उखाड़ने के बाद में उसमें थायोफिनेट मिथाइल एक दवा आती है या ब्लीचिंग आता है, ब्लीचिंग पाउडर, उसको लेकर के वहाँ पर डाल दीजिए, जिससे कि वो आपका और पेड़ों में और जो थावले हैं उनको प्रभावित ना कर सके। लेकिन इस खड़ी अवस्था में और इस समय पर अब लाल सड़न रोग का कोई भी उपचार संभव नहीं है।
0: और लाल सड़न जो है
2: जी
0: एक फफूंद है जिसका इलाज संभव नहीं है, केवल रोकथाम, प्रिवेंशन,
1: रोकथाम
0: जो
1: है,
0: टीका
1: प्रिकॉशन
0: लगता है
1: है।
0: ना हमें, वैसे उसका
2: हाँ
0: संभव है।
2: जी
0: जैसे
2: जी
0: पोलियो का हमें टीका बचपन में लग जाता है तो तभी वो आगे तक काम करता रहता है, उसी प्रकार से ये लाल सड़न रोग भी है। इसका केवल उपचार यही है कि आप जैसे अपना फसल चक्र का सही चुनाव करते रहें, कि आप लोगों क्या बार बार गन्ना जो एक ही खेत में बोया जाता है
1: जी
0: उससे इसके रोकथाम कर पाना बड़ा मुश्किल है। अगली बार से आप निश्चित, मैं तो ये कहूँगा कि 1-2 साल आप इसमें आप गन्ना
1: गन्ना
0: ना
1: ना
0: बोएं,
1: लें, उसमें गन्ना
0: आप
1: ही
0: कोई
1: ना लें।
0: अन्य फसल इसमें ले लें ताकि फसल चक्र छूटे, मिट्टी में आपके जो लाल सड़न के स्पोर्ट्स रह गए होंगे वो दोबारा जर्मिनेट ना कर पाए, 2 साल बाद आप
2: जी
0: इसमें दोबारा से गन्ने की फसल को चुनाएं।
1: तो
2: ठीक है सर,
1: परमाल
2: ठीक
1: भाई, अभी जैसे डॉक्टर साहब ने बताया है ना कि जितने हिस्से में, अगर थोड़े हिस्से में है तो फिर तो आसान है, आप उसको निकाल के नष्ट कर दीजिए जैसे दवाई डॉक्टर साहब ने बताई है उसके द्वारा, और जमीन में भी वो दवाई डाल दें। और डॉक्टर दुबे ने नहीं,
2: बताया
1: दूसरा ये भी है कि अगर आपका लगता है कि अभी जैसे चारे की शॉर्टेज चल रही है, उस क्लम को उखाड़िएगा, चारे में खिला दीजिए, अभी आप चारे में चल जाएगा आपका।
2: हाँ, लेकिन वो जमीन का उपचार तो अभी भी
1: हाँ,
2: करना ही
1: जमीन का
2: पड़ेगा,
1: उपचार तो करना होगा अगर आपको इसको, देखिए
2: रोकना
1: वैसे
2: है तो।
1: सामान्यतः ये होता है कि जुलाई अगस्त में ये बीमारी बहुत तेजी से फैलती है,
2: जी
1: जैसे
2: जी
1: पानी
2: जी
1: फ्लड होता है ना,
0: बरसात में जी
1: तो इसके
2: जी
1: इस जो फंगस है ये एकदम एक से दूसरे क्लम्प में चला,
2: जल्दी
1: थावले
2: जल्दी
1: में
2: जाता है
1: जाता है,
2: जी जी
1: तो ये बीमारी जिसको प्रभावित करनी थी वो कर चुकी है। अब इसका इंसिडेंस जो है वो आगे तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन जिनमें फैल चुका है उनको अब ठीक नहीं किया जा सकता है।
2: तो परमाल भाई, देख लीजिए आप जैसा आप कर पाए, वो जो डॉक्टर साहब ने तरीके बता दिए आपको, और आगे के लिए भी अगर ज़्यादा संख्या में पेड़ आपके पौधे प्रभावित है, तो डॉक्टर साहब ने बताया है कि 1-2 साल के लिए आप गन्ना मत
1: हाँ,
2: लीजिए इस
1: गन्ना
2: खेत
1: मत
2: में,
1: लीजिए उसमें।
2: दूसरी फसल लीजिए, उसके 2 साल के बाद फिर गन्ना दोबारा शुरू कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद फ़ोन करने के लिए। तो डॉक्टर साहब, रासायनिक खाद पे था चर्चा हमारी,
0: हाँ, तो हम लोग थे कि ट्राइकोडर्मा के
1: तो
0: माध्यम से हम भूमि
1: जी
0: शोधन शुरू करवा देते हैं।
1: जी
0: तो भूमि शोधन आप गोबर की खाद 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर की दर से लगा ही रहे हैं, साथ ही आप ट्राइकोडर्मा बेवेरिया लगा दीजिए, तो जिससे आपकी दीमक की समस्या, और भी जो किसान भाई बता रहे थे कि फंगस की, रेड रॉट की समस्या है,
1: जी
0: तो उसका भी एक ही इलाज है, भूमि शोधन, बीज शोधन, क्योंकि ये सब फंगस हैं। आप अगर एंटी और प्रतिरोधक प्रजातियाँ, जो भी रेड रॉट को प्रतिरोधक प्रजातियां हैं, वो अच्छी गुणवत्ता की प्रजातियां, और उसमें भी बीज हमारा कहीं अच्छी जगह से हो जहां से विश्वसनीय जगह से हो।
2: डॉक्टर साहब जो किस्में बताई हैं इसमें प्रतिरोधक प्रजातियां हैं क्या जो किस्म?
0: आज जो भी हमने प्रजातियां बताई हैं सभी प्रतिरोधक हैं, क्योंकि एक
2: अच्छा
0: बहुत बड़ा इंसिडेंस पैंडेमिक मान लीजिए आया था कि
2: हाँ
0: 235 जो प्रजाति सबसे कॉमन थी, 238 सबसे कॉमन थी,
2: जी जी
0: उसमें ही
2: जी
0: सबसे ज़्यादा ये हुआ कि रेड रॉट की समस्या आई। तो इसी सबसे का बीमारी को हटाने के लिए जितनी भी प्रजातियाँ डेवलप हो रही हैं वो उसमें सब जेनेटिकली मॉडिफाई करके रेड रॉट के प्रति प्रतिरोधक क्षमता डेवलप करने के लिए ही हो रही हैं। पर अभी समस्या क्या है कि भूमि में जिनके स्पोर्ट्स रह गए ट्राइकोड फंगस के,
2: जी,
0: वो
2: तो
0: वहां से डेवलप होके किसी नई प्रजाति में भी कभी कभी देखने को मिल रही हैं।
2: इसके लिए भी जो आपने ट्राइकोडर्मा का वो बताया वो
1: इसमें
2: करें।
1: कहने का मतलब यह है कि वैरायटी तो सारी रेजिस्टेंट है,
2: जी
1: लेकिन उसका एनवायरनमेंट और उसके ग्रो का सिचुएशन क्या है उसके ऊपर बहुत निर्भर करता है। वो आप कोई इन्फेक्टेड आपका एनवायरनमेंट हो चुका है, उसके वातावरण में स्पोर्ट्स उसके फंगस घूम रहा है, उसका सॉइल के अंदर जमीन के अंदर है, या उसके जब होता क्या है कि कभी कभी आप सीड कहीं से लेके आए, वो वहाँ का सीड जिससे आपने गड़ा से इसको काटा है उस वो प्रभावित है, तो वो उसमें फैलता चला जाएगा। तो इसको कैरी ऑन का जो कैरियर होता है ये इसके कई एक साधन है। लेकिन अब वो वैरायटी का क्या किया जाए जो पहले से ही, अब जैसे सपोज किए ये परमाल जी बता रहे थे कि
2: जी,
1: हमारी में है, अब इस खेत में कोई नई दूसरी वैरायटी भी आप उदाहरण के रूप में लेके आते
2: तो
1: हो
2: उसमें भी हो
1: तो
2: जाएगा।
1: निश्चित रूप से वो वैरायटी प्रभावित है। भाई 0238 वैरायटी क्यों फेल हुई?
2: जी,
1: 0238 वैरायटी फेल होने के पीछे मकसद एकमात्र केवल यही रहा कि पूरे आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश है या आपने देखिएगा इसमें के कारण ही ये वैरायटी फेल हो गई, क्योंकि वहां पे पहले से ही प्रभावित था। इसी तरह से पहले एक वैरायटी हुआ करती COJ64 हुआ करती थी, बहुत अच्छी वैरायटी थी, चीनी रिकवरी बहुत अच्छी आती थी, वो भी वैरायटी रेड रॉट की वजह से वैरायटी अपने किसानों के खेतों से गायब हो गई। और जो प्रोडक्शन आपने देखा होगा पिछले साल गन्ने का प्रोडक्शन काफी कम हुआ, उसके पीछे जो हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का उत्तर भारत है उसमें मैक्सिमम एरिया के अंदर COSA 0238 वेराइटी थी, और ये वेराइटी में बीमारी आने की वजह से किसानों का उत्पादन घटा और घटने की वजह से पैदावार कम
2: डॉक्टर साहब
1: हुई।
2: अभी इसी कार्यक्रम में थोड़े दिन पहले की बात है, वहाँ बात हुई तो एक किसान का फोन आया, तो उसने कहा कि मैंने लगा रखी है, तो अभी भी लगा रहे हैं
1: अभी भी
2: किसान,
1: लगा रहे हैं,
2: है
1: अभी
2: ना?
1: एक
2: तो
1: और
2: जहाँ
1: लेकिन
0: पे जिस क्षेत्र में अभी रेड रोड की समस्या नहीं आई है किसानों को, तो वो तो लगा ही रहे हैं
2: जी
0: 238।
2: जी जी
0: लेकिन जहाँ क्षेत्र में आ गई है तो वहाँ क्या है कि मिट्टी में जैसे आ जाती है ना फंगस, ही है तो मिट्टी से निकल पानी बड़ी संभव है जब तक हम फसल चक्र को चेंज नहीं करते। दूसरा, किसान भाई इसमें बीज शोधन जरूर करें। बीज शोधन में
1: गन्ने
0: भी
1: में नहीं होता है जो नहीं करते हैं ज्यादातर।
0: हाँ
2: तो
0: बीज,
2: बीज शोधन की बात डॉक्टर साहब आपने शुरू कर दी है, तो मेरे भी दिमाग में चल रहा था कि भूमि शोधन तो बता दिया है, अब भूमि शोधन के बाद बीज शोधन कैसे करें, क्या तरीका है, किस तरह से करें?
0: देखिए अभी हमने जैसे आपने गोबर की खाद अच्छे से मिला दी, उसके
2: जी
0: बाद आप खेत को बराबर लेवल कर लें, ये देखें पानी कहीं आपका रुकने ना पाए,
2: जी
0: और भारी एवं उपजाऊ मिट्टी अगर आपकी है तो ट्रेंच विधि से आप इसमें बुआई करें तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा।
2: जी
0: अब बात करते हैं बीज शोधन की। बीज शोधन के लिए कोई भी आप बेवस्टीन, थीरम, कार्बेंडाजीन, मैनकोजेब, कोई भी अच्छा फंजिसाइड लेके आप इसका बीज शोधन कर सकते हैं। 0.1% की मात्रा होती है उसमें, उस हिसाब से आपको करना है। विशेष बात ध्यान किसान भाई ये रखें कि जो भी आँख हैं वो निकाल के उसमें जब स्प्रे वाली मशीन होती है उससे टंकी से दूर से स्प्रे कर देते हैं और केवल उसको जाके बो देते हैं। तो उसमें एक बात ध्यान रखिए कि जरा सा पानी संपर्क में आपके बीज में आता है और ढंग से शोधित नहीं हो पाता,
2: जी
0: तो उसमें ध्यान रखिए या तो आप नालियों में बीज डाल के उसमें पानी चला दें, वहाँ पर आप दवाई लगाएं, ताकि कम से कम 20 से 25 मिनट आपका जो आँख है हमारी या
2: डूबा
0: बीज
2: रहे वो
0: है वो
2: उसमें।
0: डूबा रहे,
2: जी
0: वो दवाई को पी जाए, वो तभी उसका उसमें शोधन अच्छे से हो पाता है।
2: जी
0: तो पूर्ण तरीके से अच्छे से जो है शोधन इसका करने के लिए, या फिर आप कहीं कुंडी में या किसी भी अन्य स्थान पर
2: टैंक,
0: जैसे भी
2: बड़ा
0: आप टैंक
2: टैंक जो
0: बड़े
2: होता है
0: टैंक में
2: बना।
0: आप जो है शोधित करें, 25-30 मिनट उसको डुबो के रखें, अच्छे से दवाई उसमें अंदर चली जाए, उसके बाद ही उसको जो है बुआई करें।
2: तो इस तरह से आपको, हाँ डॉक्टर साहब,
1: इसमें एक किसान को किसानों को
2: डॉक्टर साहब एक फोन
1: जी
2: आ गया, पहले फोन
1: हाँ
2: लेते हैं फिर
1: फोन
2: चर्चा करेंगे।
1: फिर फोन
2: जी
1: लीजिए हमारे किसान
2: जी
1: को।
2: हेलो,
3: नमस्कार जी,
2: नमस्कार जी, कौन साहब बोल रहे हैं?
3: अशोक,
2: आवाज कट रही है जी आपकी, थोड़ा बदलो, थोड़ी साइड बदलो या बाहर आ जाओ।
3: हाँ बाहर बैठा हूँ। अशोक
2: हाँ बताइए बताइए, नाम बताइए।
3: कुमार सर,
2: हाँ जी अशोक भाई बताइए, क्या सवाल है?
3: सवाल मेरे ये लग चुका है, सितंबर
2: हाँ जी
3: लग चुका है,
2: हाँ
3: और जो ये सितंबर जाती है ये कालीन वाली, तो कब से बोल सकते,
2: कौन सी किस्म के बारे में पूछ
0: कब
2: रहे हो?
0: से बो सकते
2: कब
0: हैं,
2: से
0: कब
2: बो
0: सकते
2: सकते हो?
0: हैं?
2: अच्छा,
0: हाँ
2: तो ये डॉक्टर
3: जी,
2: साहब
0: हाँ अभी हमने आपको शुरू में ही बताया था, अभी
2: हो सकता लेट खोला
0: हाँ
2: रहे।
0: ये जो आपकी जो है शरतकालीन जो है हमारे पास

0: गन्ने की बुआई है, इसके बुआई का सही समय, बिल्कुल सही समय आ चुका है और हम सही समय पे ये प्रोग्राम कर रहे हैं। 1 तारीख से बुआई,
1: जी
0: 1 तारीख से हम लोग खेत की तैयारी शुरू कर देते हैं और बुआई का समय 15 सितंबर से लेके 15 अक्टूबर के बीच में
1: जी
0: सही
1: तो
0: समय है इसकी बुआई का।
1: अशोक भाई 15 तारीख से शुरू हो जाएगा टाइम, लेकिन जो हम पहले चर्चा करते आ रहे हैं उससे पहले आपको खेत तैयार करना है, बीज भी इकट्ठा करना है, कहाँ से लाना है वो
0: अशोक
1: भी
0: भाई,
1: देखना है।
0: एक आपसे मेरा एक ये भी अनुरोध रहेगा, जो भी हमारे किसान भाई गन्ना बुवाई करेंगे शरद काल में, कि एकल गन्ना नहीं बोना है। मतलब ये हमारे सभी जितने भी श्रोतागण इस बात को हमारे आज के कार्यक्रम सुन रहे हैं, वो ये ध्यान रखें कि शरद काल में अगर हमको गन्ना बोना है तो एकल गन्ने की खेती नहीं करनी है,
1: यानी
0: हमको
1: सहफसलीकरण
0: सह
1: करना
0: फसली
1: है,
0: खेती
1: दूसरी
0: करेंगे।
1: फसल
0: अगर
1: की तरह।
0: आप एकल गन्ना करते हैं तो आर्थिक नुकसान आपके साथ साथ पूरे देश का भी आर्थिक नुकसान है, क्योंकि वो इसके पीछे कारण है। गन्ना हमारी लगभग 10 से लेकर के 12 माह की फसल है और अपने नॉर्थ के अंदर, उत्तर भारत के अंदर, लगभग 2 महीने का से लेकर के 3 महीने का ऐसा समय होता है जिसमें गन्ना सुषुप्त अवस्था में रहता है, और उस सुषुप्त अवस्था में अगर आप कोई दूसरी उसके साथ में सह फसली खेती कर लेंगे तो वो आपके लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद होगी और आपके लिए आर्थिक रूप से आपको पैसा देके जाएगी। इसलिए
1: तो
0: गन्ने के साथ में सह फसली खेती अशोक भाई जरूर करें।
1: डॉक्टर साहब बात यह आती है कि कौन कौन सी फसल लगाएं।
0: देखिए, शरदकालीन गन्ने के साथ में बहुत सी खेती करने के वो हैं। आपको निर्धारित आपको ये करना है कि आपका एरिया कैसा है, वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के साधन कैसे हैं, आपकी मार्केट कैसी है, और साथ ही साथ में आपकी सप्लाई चेन कैसी है। आप मतलब वहाँ से अपने जो सह फसल जो उत्पाद है उसको कैसे हम बेच पाएंगे, मैं आज सबसे पहले कहना चाहूँगा, क्योंकि हमारा अभी इस समय देखेंगे तो फूलों का बहुत अच्छा चलन चल रहा है, फूलों की मार्केट इतना अच्छा डेवलप कर रही है। तो गन्ने के साथ में अगर सह फसली खेती करते हैं और ट्रेंच मेथड से अगर आप गन्ना बोते हैं तो उसके साथ में ग्लैडुलस हमारा बहुत अच्छा दे सकता है, उसके साथ में मैरीगोल्ड है, गेंदा है, बहुत अच्छी आपको उत्पादन दे सकता है। तो ये दो ऐसी फसलें हैं जो किसान के लिए आर्थिक रूप से बहुत अच्छा प्रॉफिट दे जाएगी। और कुछ किसान हमारे ऐसे जरूर हैं मेरी जानकारी में कि जो गन्ने से अच्छा उत्पादन इन सह फसली खेतों से ले लेते हैं।
1: तो जितने भी हमारे किसान भाई हैं जो शरदकालीन गन्ना लगाना चाहते हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि गन्ने के साथ साथ आप दूसरी कोई फसल लेके एक अतिरिक्त आमदनी का साधन जरूर बनाएं।
2: किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद, IPL की किसान मित्र जैविक खाद, मुख्य सूक्ष्म तत्वों से मिट्टी को जीवंत बनाए, ठोस हो या तरल रूप में इस खाद से फसलें लहराए, फसलें तुम भरपूर उगाओ, खूब कमाओ, मौज मनाओ। किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद, IPL की किसान मित्र जैविक खाद।
3: अपने खेतों में हरियाली और जीवन में खुशहाली के लिए हमेशा इस्तेमाल करें IPL की जैविक खाद किसान मित्र, जो कि उपलब्ध है रोहाना कला शुगर मिल पर, शीघ्र बुक करें।
4: हमारा विशेष फोन इन कार्यक्रम अगले कार्यक्रम तक जारी रहेगा, समाचार पश्चात भी आप फोन कर सकेंगे।
5: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार, यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए आपसे कुछ ही पलों में सुनेंगे हिंदी में समाचार।
6: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित किया। सम्मेलन में केंद्र और राज्यों की महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया गया। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए साझा दायित्व को बढ़ावा देना और विचार विमर्श से सुशासन और सेवा वितरण में सुधार लाना है। पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया गया है। ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के बाद इसकी घोषणा की गई। सीईओ ट्रस्ट के प्रशासनिक कार्यों की देखरेख और राम मंदिर परिसर से संबंधित मुख्य परिचालन जिम्मेदारियों को संभालेंगे। ट्रस्ट के अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन ने 3 नए सदस्यों की नियुक्ति की जानकारी दी है। इनमें अयोध्या के वरिष्ठ अधिवक्ता मदन मोहन पांडे, दिल्ली के महेश भगचंद का और शेखोहाबाद की सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य निर्मला यादव शामिल हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि ऊर्जा सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा, रणनीतिक स्वायत्तता और आर्थिक अनुकूलन से अलग नहीं किया जा सकता। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में डॉक्टर सिंह ने आत्मनिर्भर, स्वदेशी, किफायती और प्रौद्योगिकी आधारित ऊर्जा क्षेत्र के विकास का आह्वान किया। उन्होंने वर्तमान समय को स्वच्छ ऊर्जा सहित एक सुरक्षित और टिकाऊ ऊर्जा भविष्य की ओर आ रहे बदलाव का समय बताया। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज नई दिल्ली में नागर विमानन क्षेत्र में व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने के उपायों की समीक्षा की। श्री नायडू ने अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को आसान, पारदर्शी, स्वचालित और समयबद्ध बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री नायडू ने संबंधित अधिकारियों को इस प्रक्रिया को सरल और स्वचालित बनाने तथा 15 दिनों के भीतर उनके कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के महासागर दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में सेशल्स एक महत्वपूर्ण साझेदार है। नई दिल्ली में सेशल संसद के अध्यक्ष अजारेल अर्नेस्टा के साथ बातचीत में श्री बिरला ने कहा कि भारत और सेशल्स विकासशील देशों की आवाज को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारत से राहत सामग्री लेकर 5वां विमान दल आज नेपाल पहुंचा। इसमें 11 सदस्यीय बचाव दल, विशेष उपकरण और 5 टन से अधिक दवाएं हैं। नेपाल में भारत के राजदूत ने बताया कि भारत नेपाल में जारी राहत और बचाव कार्य में हर संभव सहायता कर रहा है। इस बीच नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या 1100 से अधिक हो गई है। लगभग 4000 लोग अब भी लापता हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में अधिकारियों के तबादले और तैनाती में कथित भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी सरकार की आलोचना की है। नई दिल्ली में आज पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि इन दिनों वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले और तैनाती रेट कार्ड के आधार पर किए जा रहे हैं।
7: मुख्यमंत्री भगवंत मान को पंजाब की जनता को उत्तर देना पड़ेगा। आपके इशारों पर जब ये कैश फॉर ट्रांसफर घोटाला हो रहा है तो इसका किंग पिन अरविंद केजरीवाल है या नहीं, बताइए।
6: सरकार ने वर्ष 2024 के लिए तेनजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कारों की घोषणा की है। बलजीत कौर और स्कालजेंग रिगजिन को भू साहसिक अभियानों, रिमो साह को जल साहसिक अभियान और शिव प्रसाद चमोली को आजीवन उपलब्धि के लिए ये पुरस्कार दिए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 के साथ ये पुरस्कार प्रदान करेंगी। पुरस्कार समारोह की तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी। किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के दूसरे राउंड में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने चीनी ताइपे के ची यू जेन को और तन्वी ने डेनमार्क की अमाली शुल्ज को हराया। ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो मिक्स डबल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। बंबई शेयर बाजार में आज लगातार तीसरे दिन गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 374 अंक फिसलकर 76,570 पर बंद हुआ। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
5: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब सुनते हैं फोन इन कार्यक्रम का शेष भाग।
4: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाइयों बहनों को हमारा राम राम। आज के कृषि जगत कार्यक्रम में आप सुन सकेंगे विशेष फोन इन कार्यक्रम गन्ने की पाठशाला, जैसा कि आपको पता है और अनवरत जारी है हमारा फोन इन कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है इंडियन पोटाश लिमिटेड।
2: किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद, IPL की किसान मित्र जैविक खाद, मुख्य सूक्ष्म तत्वों से मिट्टी

0: बंत बनाए घोष हो या तरल रूप में, इस खाद से फसलें लहराए। फसलें तुम भरपूर उगाओ, खूब कमाओ, मौज मनाओ। किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद। IPL की किसान मित्र जैविक खाद।
1: अपने खेतों में हरियाली और जीवन में खुशहाली के लिए हमेशा इस्तेमाल करें IPL की जैविक खाद किसान मित्र, जो कि उपलब्ध है रोहाना कला शुगर मिल पर। शीघ्र बुक करें।
2: आज की इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में गन्ने की पाठशाला के अंतर्गत जो आज का हमारा विषय है, आपको बता दें शरदकालीन गन्ने की बिजाई हेतु तैयारी। और आज के हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अरविंद कुमार मिश्रा, जो कि प्रभारी हैं कृषि विज्ञान केंद्र अमरोहा से। और हमारे दूसरे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर सौहार्द दुबे, जो कि गन्ना वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र बदायूं से। शरदकालीन गन्ने की बिजाई हेतु तैयारी विषय से संबंधित आपकी कोई भी समस्या है तो आप विशेषज्ञ से सीधे फ़ोन पर बात कर सकते हैं और समस्या का समाधान पा सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 2342-1082, दूसरा नंबर है 2342-1083। दिल्ली से बाहर के लोग कोड लगाना ना भूलें, कोड है 011। और कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हमारे साथी नरेश पाराशर जी। तो चलते हैं स्टूडियो की तरफ।
3: विशेष फोन इन कार्यक्रम में डॉक्टर मिश्रा जी, डॉक्टर दुबे जी, आप दोनों का पुनः हम स्वागत करते हैं। और बहनों भाइयों, जैसा यमुना बहन ने अभी बताया कि फ़ोन नंबर हैं, कोई गन्ने से संबंधित कोई भी समस्या हो, अभी जो फसल खड़ी है उसकी भी अगर कोई है तो भी पूछ लेना, कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी। बाकी शरदकालीन गन्ने की आप बिजाई करना चाहते हैं, उसके लिए कोई खास जानकारी चाहते हैं तो ज़रूर फ़ोन कीजिएगा। और मैं नंबर बताने वाला था डॉक्टर साहब, ये फोन आ ही गया है किसान भाई का, देखते हैं कौन है। हेलो।
4: हाँ
3: राम राम जी, नमस्कार जी, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
4: हाँ, मैं राम कुमार किसान बोल रहा जी, बागपत जिले का।
3: राम कुमार जी, गांव का नाम क्या हुआ?
4: गांव का नाम मोबीकला है जी।
3: अच्छा, मोबीकला जी, बताएं।
4: हाँ, पूछना ये है जी, जैसे बात इंटरक्रॉप की चली।
3: हाँ जी।
4: और हम आपका बोना चाह रहे यही शरदकालीन गन्ना।
3: जी जी।
4: तो हम ये पूछना चाहते हैं कि प्याली सरसों अगर बोते हैं वो ज्यादा नहीं बढ़ती और पौधों पे गिरेगी नहीं तो वो कैसी रहेगी?
5: सरसों, पीली सरसों कह रहे हैं क्या, कैसे सरसों कह रहे हैं? नहीं, सरसों तो देखो ऐसा है कि अगर आप टाइम से गन्ना बो रहे हैं, सितंबर के लास्ट तक भी बो रहे हैं और या अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक भी बो रहे हैं, तो सबसे आसान है कि अगर आप फूलों की खेती नहीं कर सकते, आलू नहीं कर सकते, मटर नहीं कर सकते हैं, तो सबसे साधारण तरीका है कि आप उसके अंदर सरसों बो दीजिएगा। हाँ, तो सरसों आप बो देंगे और सरसों कोशिश करिएगा कि गन्ने की दो लाइनों के बीच में एक लाइन सरसों की आप डालें उसके अंदर, ठीक है? हाँ, दूसरा एक ये भी ध्यान रखें कि बीज कम डालें और ज़्यादा घना बीज न बोएं। अगर ज़्यादा सरसों, क्योंकि सरसों का जमाव जल्दी होता है, अच्छा होता है, तो उसमें अगर ज़्यादा घनी सरसों हो जाए, घिनगी हो जाए आपकी भाषा में, बागपत की भाषा में, तो उनमें से बीच में से सरसों को निकाल करके पशुओं को खिला लीजिएगा और फासला कम से कम एक बिलस्त का पौधे से पौधे का जरूर रखें।
4: ठीक है जी, वो बिरली वो होंगे।
5: हाँ, और गन्ने के साथ में जो आप डालेंगे ही, लेकिन सरसों जब आप बो रहे हैं तो उसके साथ में सल्फर का प्रयोग जरूर करें आप। हाँ, एक किलो का बीघा आप सरसों, उसमें 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आप उसमें सल्फर डालते हैं, तो उस गन्ने के साथ साथ में सरसों की पैदावार भी आपको अच्छी मिलेगी और सरसों का दाना मोटा होगा, वजन बढ़ेगा आपका।
4: ये IPL वाले पोलियोलाइट का बहुत जिक्र कर रहे हैं जी, तब वाई में पोलियोलाइट भी बोल गए हम डाई के साथ।
3: हाँ जी,
5: पोलियोलाइट का हाँ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? आप एक तजुर्बे के रूप में थोड़े से खेत में करके आप प्रयोग करके देख सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं आप?
4: जी,
3: राम कुमार जी, बहुत बहुत बहुत धन्यवाद।
5: कोई शंका हो आप पूछ सकते
3: हैं, फोन कर सकते हैं, आप फिर दोबारा भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो
5: आप रामपाल जी, प्रजाति कौन सी बोना चाह रहे हैं?
3: कट गया जी, हेलो।
4: वैसे 15233 है जी मेरे पास, नया बीज।
5: 15233 है आपके पास में? कहाँ से? शुगर मिल से मिला है? तैयार है, ठीक है। लेकिन ध्यान ये रखें, तो ऊपर का 1/3 हिस्सा ही बुवाई में इस्तेमाल करें, नीचे का कोलू पे आप उसका वो बनवाएं, गोड़ बनवाएं।
4: ऐसे कर लेंगे। हाँ,
5: दो आंख का गन्ना बोएं और वो 1/3 हिस्सा बुवाई में इस्तेमाल करें। ठीक है रामपाल जी।
3: रामकुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद फोन करने के लिए। बहनों भाइयों, फोन नंबर एक बार फिर से बता रहा हूँ, अगर शरदकालीन गन्ने की बिजाई से संबंधित कोई आप बात पूछना चाहते हैं, कोई जानकारी चाहते हैं, तो आप हमें फ़ोन इन नंबरों पे कर सकते हैं, 23 42 10 82 23 42 1 0 8 2, 23 42 10 83 23 42 1 0 8 3। दिल्ली के नंबर हैं, स्टूडियो के लैंडलाइन हैं, तो दिल्ली के बाहर से आप बात कर रहे हैं या मोबाइल से आप बात करना चाह रहे हैं, तो इन दोनों नंबरों से पहले 011 जरूर लगाइएगा, उसके बाद ये नंबर डायल कीजिएगा, सीधे हमसे जुड़ेंगे और हम यकीन दिलाते हैं कि डॉक्टर मिश्रा, डॉक्टर दुबे जी, आपकी किसी भी प्रकार की समस्या हो डरिए मत, कीजिए फ़ोन। तो डॉक्टर साहब, खेत की तैयारी पर चर्चा थी, आपने बताया कि भाई गोबर की खाद में जो है ट्राइकोडर्मा मिलाना है, उससे आपका भूमि का शोधन हो जाएगा
6: जी।
3: इसके अलावा और कौन कौन सी खाद की आवश्यकता पड़ेगी डॉक्टर साहब?
6: आपने गोबर की खाद मिला ली, ये तो हो गया जैविक रूप से। अभी हम जो बात करते हैं वो INM पे करते हैं, वो इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, यानी पोषक तत्व हम जैविक और रासायनिक दोनों को आगे करते हैं, तो ये सबसे बेस्ट है। आजकल दोनों चीजों का मेंटेनेंस हमें करना है। अब उसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि हमें पहले तो मृदा परीक्षण करा के अपने जो मिट्टी है जिस खेत में हम बुआई करने जा रहे हैं उसके पोषक तत्वों की वर्तमान स्थिति की जाँच हमारी करा लेनी चाहिए, कितना इसमें नाइट्रोजन है, कितना फॉस्फोरस पोटेशियम है और हमें अगली फसल के लिए कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता है। वैसे अमूमन जो है, जो नॉर्मल रूप से हम लोग देखते हैं, तो गन्ने में एक हेक्टेयर के लिए 180 किलो से 200 किलो नाइट्रोजन की आवश्यकता है हमको, लगभग 80 किलो फास्फोरस की आवश्यकता है और 60 किलो या 70 किलो हमें पोटाश की आवश्यकता है।
3: ये तो आपने मोटा मोटी बता दिया कि इतनी की जरूरत पड़ेगी
6: जी,
3: लेकिन जैसा आपने डॉक्टर साहब पहले कहा था कि एक बार भूमि की जांच जरूर करा ले तो उससे सभी तत्वों के बारे में पता चल जाएगा, इस पर चर्चा करेंगे डॉक्टर साहब। एक फोन आ गया
6: जी। जी बिल्कुल।
3: हेलो हेलो
7: जी,
3: नमस्कार जी, नमस्कार जी, कौन सा बोल रहे हैं?
7: सर मोहर सिंह बोल रहा हूँ जी, बुलंद शहर।
3: मोहर सिंह जी बताइए क्या सवाल है?
7: सर गन्ना के बारे में मालूम है, कौन सी प्रजाति जिसमें शुगर भी ठीक हो और जो खाने में भी थोड़ा मुलायम हो, उस प्रजाति के बारे में बताओ।
5: देखिए मोहर सिंह जी, अभी हमारे ये मैं समझता हूँ शायद आपने कार्यक्रम देर से सुनना शुरू किया है, हमने सबसे कार्यक्रम के शुरुआत में ही गन्ने की काफ़ी प्रजातियों के बारे में चर्चा की थी, जिसमें हाँ कोयम्बटूर की एक प्रजाति 0118 के बारे में की थी, जो काफ़ी आप लोगों के एरिया में जरूर होगी। कोसा 13231 के बारे में चर्चा की थी, कोसा 13235 है और एक नई प्रजाति और आई है कोसा 17231, ये प्रजाति भी अच्छी है, आपके अगर मिल क्षेत्र में कहीं मिल जाती है तो इसकी बुवाई कर सकते हैं। और कोयम्बटूर लखनऊ की प्रजाति है 14201, जो पिछले 4-5 साल से अच्छी प्रजाति चल रही है। तो ये मतलब अगेती की प्रजातियां हैं, जिनमें अगेती से मतलब है जिसमें चीनी का परता ज़्यादा आता है, जिसको शुगर मिल आपका महंगे रेट में आपसे गवर्नमेंट इसका रेट ज़्यादा 10-15 रुपये ज़्यादा रखती है, तो इनमें से कोई सी प्रजाति देख सकते। देखिए अच्छी प्रजाति से मतलब ये होता है कि वो प्रजाति में 3-4 चीज़ें देखी जाती हैं, कि वो प्रजाति रोग प्रतिरोधक क्षमता हो उसके अंदर, उसमें कीड़े बीमारियों का प्रकोप कम होता हो, दूसरी बात है उसकी चीनी का रिकवरी है वो जल्दी आती हो, तीसरा मुख्य बिंदु है उसकी पेड़ी अच्छी होती हो, बाबक के साथ साथ उसकी पेड़ी भी अच्छी हो, फुटाप पेड़ी का अच्छा हो, पेड़ी मतलब आपने अगर नवंबर में काट रहे हैं या दिसंबर में काट रहे हैं उसके बावजूद भी पेड़ी का फुटाप अच्छा फूट जाए, केवल दिसंबर लास्ट में या जनवरी के महीने में हमारी गन्ना की पेड़ी नहीं फूटती है, तो ये अगर खासियत ये प्रजाति सरसों के साथ में बोते हैं, तो अक्टूबर मेरा आपको सुझाव है कि 15 अक्टूबर के आसपास तक जरूर बोलें, अगर आप लेट करते चलेंगे तो उससे होगा क्या कि हमारी सरसों भी लेट से कटेगी, और जब सरसों लेट से कटेगी तो गन्ना, क्योंकि गन्ना सर्दी में बढ़वार उसकी रुक जाती है, सुषुप्ता अवस्था में चला जाता है, और जैसे ही आप सर्दी शुरू होगी फरवरी 15-20 फरवरी मार्च के बाद में मार्च की शुरुआत में, वैसे ही गन्ना बढ़वार करेगा, और उस समय तक अगर आपकी सरसों नहीं कटी होगी तो गन्ने के ब्यांत पर प्रभाव बढ़वार पर और ब्यांत पर फर्क पड़ता है, इसलिए कोशिश करें कि 15 अक्टूबर के आसपास तक हम गन्ने के साथ में अगर सरसों बोनी है तो उस समय तक इससे बुवाई कर लें, क्यों गन्ना जो

0: वर्षों में हमारी सामान्यतः 120 दिन की 125 दिन की फसल है, उस समय तक वो हमारी फसल सरसों की कट जानी चाहिए।
1: सर आप अपने हिसाब से हमें खाद और दवाई के बारे में और बता दें थोड़ा सा।
0: देखिए खाद के बारे में अभी हमारे साथ में स्टूडियो में जो डॉक्टर अश्वहर थे उन्होंने बताया था कि सामान्यतः गन्ने के साथ में 150-180 किलोग्राम नत्रजन, 80 किलोग्राम 75 से 80 किलोग्राम फास्फोरस और लगभग 60 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर देने की आवश्यकता होती है तत्व के रूप में। अब इसको अगर DAP के रूप में दे रहे हैं या NPK 12-32 के रूप में दे रहे हैं तो उसके
1: DAP है हमारे पास में।
0: DAP अगर आपके पास में है तो लगभग आप मोटे मोटे तौर पर अगर आपकी की भाषा में हम एक बात करें तो लगभग 15 किलोग्राम तक एक बीघे में आप DAP दे सकते हैं। हाँ और इसके साथ में लगभग आप 5 किलोग्राम पोटास और इसके साथ में मिला लीजिएगा। ये सारी की सारी मात्रा गन्ने की बुवाई के समय पर ट्रेंच मेथड से बो रहे हैं या ओपन फरो से बो रहे हैं, ये गन्ने के खून में जो आपका कांची डालेंगे जहाँ गन्ने का टुकड़ा डालेंगे उसके नीचे डाल करके उसके बाद में गन्ने का टुकड़ा बुवाई करेंगे।
1: सल्फर भी ले लें कुछ साथ में क्या इस खाद?
0: अगर सल्फर देखिए सल्फर अगर आप ही ले लेते तब भी ठीक है, या सल्फर को गन्ने के इसलिए मैं ये कहूँगा कि जब आपके गन्ने का बढ़वार गन्ने का जमा पूरा हो जाता है लगभग 15 से 20 दिन के बाद में हो जाता है और जब पहली यूरिया की ट्रॉप ड्रेसिंग करते हैं उस समय भी आप सल्फर को मिला करके दे सकते हैं, और अगर आपको लगता है तो बिजाई के समय पर भी हम आप उसमें जिंक सल्फेट या सल्फर
1: अगर हम बाद में लगाएंगे तो सरसों में तो फायदा देगा वो हमें?
0: हाँ देखो अगर आप छिटक करके दे रहे हैं पूरे खेत में बिखेर करके, देखिए यूरिया के साथ में मिला के वो करके दे रहे हैं यूरिया की तरह से बिखेर के दे रहे हैं तो आप सरसों को भी अगर उसमें बो रहे हैं तो सरसों की भी उसमें सल्फर शामिल होगी, आप गन्ने के साथ साथ में सल्फर उसमें मात्रा बढ़ा करके देंगे, यानी कि आप 1 किलो का बीघा डाल दें या कम मात्रा दे दें तो सल्फर की भी पूर्ति हो जाएगी, इसलिए इसको भी ध्यान में रखें कि सल्फर की मात्रा को बढ़ा करके देंगे क्योंकि सल्फर जो है वो तेल वाली फसल ज़्यादा कंज्यूम करती है ज़्यादा मात्रा में लेती है। और दो आंख का टुकड़ा काटें गन्ने की जो बुवाई करें वो 3 आंख का टुकड़ा ना लें, 2 आंख का लें और 1/2
1: बड़ा टुकड़ा काटें मतलब
0: नहीं छोटा
2: दो आंख का
1: अच्छा अच्छा दो आंख
0: हाँ दो जो जो जिनसे गन्ने का जमाव होता है उनको आंख बोलते हैं तो दो आंख का टुकड़ा रखें। हाँ 2 आंख का टुकड़ा रखें और क्या कहते हैं कि ऊपर से 1/3 हिस्से का गन्ना काटें बुवाई बीज के लिए चयन करें। हाँ ठीक है
1: नीचे वाला न ले
0: उसको आप और गुड़ बनाने में या सोम मिल में इस्तेमाल हाँ क्रेशर वगैरह पे दीजिएगा, नीचे का जमाव नहीं होगा वो आपका नुकसान होता है उसमें।
3: बहुत बहुत धन्यवाद मोहर भाई आपका फोन करने के लिए। डॉक्टर साहब मोहर सिंह जी ने जो सवाल पूछे ना मेरे दिमाग में भी यही चल रहा था कि हम सह फसली की बात कर रहे हैं दूसरी फसल भी लगा रहे हैं, डॉक्टर दुबे ने बताया कि ये हमें गन्ने में खाद की रासायनिक खाद की जरूरत पड़ेगी, मान लो सह फसलीकरण कर रहे हैं जिसमें सब्जी वाली फसल लगा रखी है या आपने बताया कि तिलहनी में तो ज़्यादा सल्फर की भी जरूरत पड़ेगी तो जो दूसरी फसल लगाएंगे उसके लिए क्या अतिरिक्त रासायनिक खाद की जरूरत पड़ेगी?
2: बिल्कुल आवश्यकता है, पर अभी हम लोग जो रिकमेंड करते हैं ना अगर हम रोटावेटर की जुताई करने से पहले खेत में ब्लैंकेट एप्लीकेशन करते हैं खाद का तब तो हमें एडिशनल 10 से 15% खाद की आवश्यकता पड़ सकती है अगर हम दूसरी फसल ले रहे हैं, बाकी सरसों ऐसी फसल है चना ऐसी फसल है जिसको बहुत ज़्यादा खाद की आवश्यकता नहीं है, ये जितनी खाद हम दे रहे हैं गन्ने में उसी से हो जाती हैं। बाकी खाद के साथ अब जैसे सल्फरी किसान भाइयों को देनी है तो मुख्य रूप से क्या कर सकते हैं ये सरसों के बीज के साथ जो ग्रेन्यूलर सल्फर होती है वो बीज के साथ ही मिला के दे सकते हैं,
3: मतलब दाने वाली
2: जो 80% WG करके आती है वो आप बीज के साथ ही मिला के दे सकते हो तो सरसों के साथ साथ बीज चली जाएगी। और किसान भाई कोशिश करें कि अगर खाद लगा भी रहे हैं तो कूण में ही लगाएं उससे अधिक लाभ होगा और खाद की बचत होगी।
0: बेसल एप्लीकेशन कर रहे हैं ऐसा वो इसलिए कहा जाता है कि DAP जो है वो इसके अंदर DAP को रूप में दे रहे हैं या NPK 12-32 के रूप में दे रहे हैं, इसमें एक्चुअल में क्या होता है मोबिलिटी नहीं है गतिशीलता नहीं है जो हमारी नत्रजन है इसके अंदर गतिशीलता है, तो अगर आपने DAP है या NPK 12-32 का है अगर ऊपर आपने छिटक करके दे दिया तो वो ऊपर का ऊपर ही रह जाएगा और पौधे की जड़ें उसको नहीं ले पाएंगी, इसलिए कहा जाता है कि हमेशा DAP को या NPK 12-32 है या पोटास है ये आप नीचे में देंगे तभी

0: पौधे की
1: बीज
0: जड़ें
1: के साथ
0: उसको
1: देंगे।
0: बीज के साथ देंगे, खून में देंगे या खून के बराबर में देंगे, तभी उसको उपयोग कर पाएगी, अन्यथा उसका वो जो यूज है वो फास्फोरस का। वैसे भी एक किसानों को, हमारे किसानों को जानना चाहिए कि फास्फोरस की जो सॉल्युबिलिटी है वो 15 से लेकर के 18% 20% से ज़्यादा नहीं होती है। नत्रजन की लगभग 50 से लेकर के 60% सॉल्युबिलिटी होती है, तो इसके हिसाब से भी किसानों को सोच

0: सकते हैं। तो इसका अगर आप यूज ऑफ एफिशिएंसी, जिसको मतलब कहेंगे ना प्रयोग दक्षता, उसको नहीं बढ़ाएंगे तो हमारा खर्चा लागत जो है कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन हमारी बढ़ेगी। तो ये चीज़ को भी ध्यान में रखना चाहिए हमारे किसानों
1: और
0: को बिल्कुल।
1: ये डॉक्टर साहब ना अक्सर किसानों की शिकायत रहती है जी, मेहनत भी करी, हम खाद पानी पूरा दिया, बीज भी अच्छा लिया, लेकिन मुनाफा जो है वो नहीं
0: नहीं
1: हुआ।
0: हो पाया है
1: मुनाफा
0: बिल्कुल
1: होगा कैसे?
0: भाई।
1: डॉक्टर साहब एक भी है ना ये भी देखा है कि डॉक्टर आप जैसे अभी एक रोग की बात आई थी, मान लीजिए अभी तो वो ऐसी स्थिति में नहीं है कि उसका उपचार किया जाए, लेकिन मान लो कि अब आगे इस हम शरदकालीन की बात करेंगे, आगे भी करेंगे कौन कौन से इसमें रोग या कीट आ सकते हैं, तो थोड़ा सा देख के ही जो है ना पूरे खेत में छिड़काव मार देंगे।
2: सर एक चीज़ मैं बताऊंगा, इसमें हमें विशेष बात किसान भाइयों को ध्यान रखनी है। अगर आप मुनाफे की बात करते हो तो सबसे पहले आपको अपना हिसाब लगाना पड़ेगा और अपनी लागत पे ध्यान देने की आवश्यकता है। भाई ऐसा था, हमने डबलिंग किस फार्मर्स इनकम करी, किसान की आय दोगुनी होगी।
1: जी
2: पहले क्या था, आप गेहूं लें चाहे गन्ना लें, जो गन्ने में भी पैदावार जो प्रजाति डेवलप कर सकते थे वैज्ञानिक, पहले
1: जी
2: जो आपके 226 गेहूं था, 543 था, ये 1 बीघे में 2-2.5 क्विंटल निकलते थे।
1: जी
2: अब यदि हम बात करें तो 4 से 5 क्विंटल अमूमन निकल रहा है। तो प्रजाति तो हमने विकसित कर ली, 5 क्विंटल से मुकाबले 2 से 2.5 और 2.5 से 5 हमने कर लिया।
1: जी
2: अब 5 से 10 कर पाना बड़ा मुश्किल काम है। तो अब ऐसी स्थिति में हमें अपनी लागत पे भी ध्यान रखना है। जैसा कि सर ने बताया कि हम खाद की उपलब्धता अगर हमारे पास कम है, किसान भाई आजकल परेशान है कि डीएपी नहीं मिल पा रही है, डीएपी उनको जितनी आवश्यकता है उसी के हिसाब से अब सरकार ने नए नियमों के हिसाब से मिलेगी। तो वो इसी हिसाब से बताया कि आप वैज्ञानिक विधि से खेती करें, कूड़ में ही खाद दें, जिसकी जिससे कि 15 से 20% की आपकी खाद की आवश्यकता कम हो जाएगी। नाइट्रोजन की और फास्फोरस की दोनों की ही यूज़ एफिशिएंसी, यानी कि पौधा इस्तेमाल जो कर पाता है मुश्किल से 15 से 20%, 25% तक इस्तेमाल कर पाता है, इसको हम स्प्लिट डोजेज में देंगे। फास्फोरस और पोटाश तो हमको बुआई के समय में बेसल में ही ज़मीन में दे देनी है। नाइट्रोजन की जो हम यूरिया की जो पूर्ति देंगे वो 3 बार में देंगे, 1/3 हम बुआई के समय देंगे और बचे हुए 2 हिस्सों में हम इसको पहले दूसरे पानी पे और चौथे पानी के साथ या तीसरे पानी के साथ हम इसको आवश्यकता अनुसार 3 दिन बाद, 60 दिन बाद, 90 दिन बाद, जैसा भी आपका खेत चल रहा है उसके हिसाब से आप नाइट्रोजन की पूर्ति करेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि प्रयास ये करें कि ऊपर से हम जो भी पोषक तत्व देंगे वो स्प्रे के माध्यम से दिया जाए। जैसे नैनो डीएपी के माध्यम से हम स्प्रे कर सकते हैं, डीएपी ऊपर से हम एनपीके का स्प्रे कर देते हैं, या नैनो यूरिया हम लोग स्प्रे कर सकते हैं। अब आजकल नैनो जिंक और नैनो कॉपर भी हमारे पास बाजार में उपलब्ध हैं। तो ये भी सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जो कि जिनकी कमी हमको पता नहीं चलती है, लेकिन एक्चुअल में इनकी कमी आजकल खेतों में और फसलों में अमूमन पाई जा रही है, जो कि आपके पत्तियों पर सफ़ेद से निशान आने शुरू हो जाते हैं, कभी कभी जो है काले ब्राउन से स्पॉट्स आते हैं, तो वो सब माइक्रो न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी से होते हैं। उन पर हमें विशेष ध्यान रखना है, लागत पे हम लोग अपनी कम करें, लागत पे वर्कआउट करने की हमें आवश्यकता है। किसान केवल एक रैट रेस में या देखा देखी में डाई और यूरिया और अनावश्यक पोषक तत्व लगा देता है, नाइट्रोजन और फर्टिलाइजर ज्यादा लगा देता है, जिनको ज्यादा लगाने से भी रोग और कीट का जो अटैक वो कहीं बहुत ज्यादा अधिक होता है। तो 2 तरह से नुकसान होता है, ज़्यादा खाद लगाएंगे आपका आर्थिक नुकसान है, मिट्टी को भी नुकसान है, मिट्टी की उर्वरक क्षमता खत्म हो रही है ज़्यादा अधिक खाद लगाने से, और रोग और कीट का प्रकोप भी आपकी फसल पे बहुत अधिक होगा। तो हमें आवश्यकता है कि आजकल अपनी लागत पे ध्यान दें, लागत कम होगी तो निश्चित रूप से हमारा मुनाफा अधिक आएगा।
1: डॉक्टर दुबे आपने बहुत ही विस्तार से बताया है और हमें उम्मीद है कि जितने भी हमारे सुनने वाले किसान भाई हैं वो आपकी बात पे जरूर अमल करेंगे। और ये जो बात आपने कही है ना, ये हम कार्यक्रम में कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस विषय पे हम बात करें कि लागत किसान की कैसे कम होगी। अब जैसे आपने बता दिया कि जो खाद नीचे होनी चाहिए बीज के उसको नीचे डालिए, जो आपको ऊपर से छिड़कनी है उसको छिड़क के डालिए। अब बहुत सारी आपने सूक्ष्म पोषक तत्वों की बात की है जो न्यूट्रिएंट्स और जो उसमें आगे हैं, तो उनको आप छिड़काव करके डालिए। और सबसे पहली जो बात डॉक्टर साहब ने कहा था ना जी, किसान बहनों भाइयों, कि आप फसल लेने से पहले अपने खेत की जो मिट्टी है उसकी जाँच जरूर करा लें, क्योंकि उसमें जो मोटी मोटी खाद हम दे रहे हैं उसके अलावा भी सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। कितने डॉक्टर साहब, कितने, 16 कितने
2: लगभग
1: हैं?
2: 16-17 हो
1: सोलह
2: गए हैं, 16 हमारे मुख्य रूप से थे, बाद में एक ऐड हुआ था, निकल ऐड हो गया था, 17 हो गए थे। और आवश्यकता ये है कि हम CHO 3 तो हमें वायुमंडल से कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल जाता है,
1: जी
2: इसके बाद जो 3 हमें पोषक तत्व जरूरत होती है NPK होती है। हम या किसान भाई ज़्यादातर क्या करते हैं, NPK के माध्यम से ही खेती को पूरा करने की कोशिश करते हैं। NPK अगर आपको लगाना पड़ेगा 10 किलो, तो अगर पोषक तत्व आप 1 किलो ही लगा देंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। इसलिए आजकल किसान भाई जैव उत्तेजक ह्यूमिक के रूप में काला सोना जिसे बोलते हैं वो
1: जी
2: लगा रहे हैं कि जड़ विकास अच्छा होगा, टिलरिंग अच्छी होगी।

0: कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट का कट्टा लगा रहा है। पहले किसान भाई माइक्रो न्यूट्रिएंट केवल धान में जानते थे,
1: जी जी
0: जिंक की कमी के लिए लगाते। अब आजकल हम माइक्रो न्यूट्रिएंट गन्ने में भी, गेहूं में भी, सब जगह लगा रहे हैं। कुछ रीजेंट का हम प्रयोग कर रहे हैं जिसमें कि हम दवाई कीटनाशी के साथ साथ हम उस खाद का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे स्रोत अब हमारे पास IPL के भी और कंपनियों के भी, हमारे पास जैविक उत्पाद भी हैं जिनका हम इस्तेमाल बढ़ाकर कर सकते हैं, जिनसे रसायनों के पर हमारी निर्भरता कम होगी और हमें अच्छी उपज भी, यील्ड भी, पैदावार मिल जाएगी।
1: बहनों भाइयों, कार्यक्रम हमारा चल रहा है गन्ने की पाठशाला, और इसका आज का जो कार्यक्रम का विषय है वो है शरदकालीन गन्ने की बिजाई हेतु तैयारियां। यानी आप अगर शरदकालीन गन्ना लगाना चाहते हैं तो कौन कौन सी आप किस्में लेंगे, खेत की तैयारी कैसे करेंगे, भूमि जो आपकी है, खेत की जो भूमि है उसका शोधन कैसे करेंगे, उपचार कैसे करेंगे, या जो बीज आप कहाँ से ले सकते हैं, कौन सी अच्छी प्रजाति है, ये हमें डॉक्टर साहब ने शुरू में ही बताई, उसका बीज का शोधन करना है बिजाई से पहले, वो किस तरह से करना है वो भी बताया है। लेकिन आप नहीं सुन पाए तो दोबारा फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं, हम अभी समय है हमारे पास, तो आप हमें फ़ोन करके ज़रूर बताइएगा कि क्या समस्या है, और हम कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या का समाधान हम ज़रूर करें।
2: देखिए पाराशर जी, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, जैसे कि रासायनिक उर्वरकों की बात होती है,
1: जी
2: हमारे जब से ये आधुनिकता क्या हुआ है, या ये कह सकते हैं कि कॉमर्शलाइजेशन हुआ है और सघन खेती की तरफ हमारा किसान बढ़ा है,
1: जी
2: उसके साथ साथ में सॉयल हेल्थ की तरफ थोड़ा सा उसका दिमाग डाइवर्ट हुआ है, मतलब उसके
1: वो
2: प्रति
1: कहीं ना कहीं, हाँ कहीं ना,
2: केयरलेस हुआ
1: जी
2: है।
1: जी जी
2: और उसका परिणाम यह है कि आप ज़्यादातर का देखेंगे कि जमीन के अंदर ऑर्गेनिक लेवल, जिसको जीवांश कहते हैं, वो उसका स्तर काफ़ी नीचे गया है। और उसका स्तर नीचे जाने की वजह से ही आज ये परिणाम है कि हमको जिंक भी देनी पड़ रही है, हमको कॉपर भी देना पड़ रहा है, हमको फेरस सल्फेट भी देना पड़ रहा है, मॉलिब्डेनम और ह्यूमिक एसिड, इन सब चीज़ों का प्रयोग करना पड़ रहा है। तो कोशिश करें हमारे किसान भाई जो भी हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, सबसे ज़्यादा मजबूत जो आधार है, जिसे कहते हैं ना कि कोई बिल्डिंग बनानी है उसके लिए हमको नींव का मजबूत होना ज़रूरी है।
1: एक फोन आ
2: तो
1: गया डॉक्टर साहब, चर्चा आपको रोक रहा हूँ,
2: हाँ
1: माफी चाहता हूँ, एक फोन
2: जी
1: आ गया। हेलो,
2: नमस्कार सर।
1: नमस्कार जी, कौन सा बोल रहे हैं जी?
2: सर मैं बुलंदशहर से बोल रहा हूँ। सर
1: हाँ बताएं बताएं।
2: हमारा गन्ना बुआ खड़ा है 86032।
1: छियासी जीरो बत्तीस हाँ जी
2: 38 नहीं है वो, 86032 सर। तो
1: हाँ अच्छा बताएं।
2: सर वो बुआ हुआ है 4 सितंबर गन्ना बुआ हुआ सर हमारा वो।
0: कब का?
2: 24 शरदकालीन बोया हुआ है, 24 सितंबर
0: तो
2: दो
0: बैठा हुआ
2: हजार
0: है।
2: दो
0: तो उस
2: हजार
0: गन्ने को अब दोबारा बोना चाहते हैं, बेराइटी को अब किस समय में बो पाए उसे? हाँ
2: नहीं, अब आप उसके, यही तो आप उसका जो बाबक है, अब उसका बीज इस्तेमाल करना चाह रहे हैं ना उसमें?
0: जी जी जी जी
2: हाँ
0: जी
2: तो
0: साहब,
2: बिल्कुल, आप अक्टूबर में आप उसका वो एकदम मेज उस पर आया होगा, और आपकी फसल जो है, जो बीज लिया जाता है वो ज़्यादातर शरदकालीन का ही लिया जाता है। कारण क्या है कि आपकी फसल सितंबर से ली गई, और सितंबर लगभग 10 से 12 महीने की फसल आपकी फसल हो चुकी है।
0: जी
2: तो
0: साहब, जी
2: अब
0: साहब, जी
2: अक्टूबर में अब आप उसको बुझाई के लिए लेंगे तो उसका ही बीज लीजिएगा, और बीज कोशिश करिएगा कि 1/3 हिस्सा ही बीज में इस्तेमाल करें, और
0: सर,
2: बीज का शोधन जरूर करें। शोधन करना परम आवश्यक है। देसी खादों का जरूर प्रयोग करेंगे। आप देसी खाद नहीं मिल पाती है तो एक नया काम अभी सरकार ने चलाया है, सभी जगह पर CBG प्लांट लगे हुए हैं, जिसमें जिससे FOM, जिसको कहते हैं फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर, लिक्विड में भी आती है
0: जी सर,
2: और गोबर की खाद की तरह से आती है। इसका
0: जी
2: भी
0: सर,
2: अगर आप
0: हाँ
2: खेत में प्रयोग करेंगे तो
0: जी,
2: आपके खेत में जीवांश का स्तर बढ़ेगा, और आप बुझाई ट्रेंच मेथड से करें, और गन्ने के साथ में सह फसली खेती जरूर लें। देखिए मैं
0: सर,
2: अभी जी
0: हाँ जी जी
1: किसान भाई, अपना नाम और बताओ एक बार।
2: मेरा नाम, मतलब जिला बुलंद से बोल रहा हूँ, मैं बलबीर सिंह का पोता हूँ, गोलू।
1: अच्छा
2: अच्छा
1: अच्छा अच्छा
2: नहीं
1: ठीक है,
2: नहीं
1: हाँ
2: बलबीर सिंह जी,
1: जी जी जी
2: हाँ
1: ठीक
2: जी
1: है
2: मैं
1: जी।
2: कह रहा
1: बोल
2: था सर कि
1: हाँ।
2: 86032 गन्ना वैरायटी अच्छी है ना काफी?
0: अरे तो आपने कर ली तो आपको
2: देखिए
0: बेहतर पता
2: ऐसा है
0: होगा,
2: कि
0: अच्छी वैरायटी
2: आप,
0: है।
2: वैरायटी अच्छी है, आप वैरायटी को उसको देख लीजिए, और शुगर मिल आपका कौन जो लगता है उस शुगर मिल से देख लीजिए कि इसकी क्या जो उनकी सप्लाई चेन में है कि नहीं है
0: रिकवरी
2: वैरायटी।
0: कैसी है? नहीं हैगा सर, ये अर्ली ले रहा है,
2: हाँ
0: वो चल रहा है।
2: अरे
0: अच्छा
2: सप्लाई चेन में देखिए,
0: हाँ जी, हाँ
2: एक दो चीज़ें हैं, एक
0: जी
2: सप्लाई चेन देखनी है और दूसरी आपने खुद ही उसको 11 महीने से लगा रखा है तो आपको पता है उसकी ब्याथ कितना है, उसकी पेड़ी
0: नहीं,
2: कितनी है,
0: गन्ना
2: उसकी
0: कहाँ से
2: गन्ने की
0: अच्छा खड़ा
2: मोटाई
0: था जी
2: कैसी
0: खेत
2: है,
0: में?
2: गन्ने का की आंख कैसी है, ये सब आपके सामने देखा हुआ है तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है।
0: अच्छा
2: आप
0: खड़ा
2: उसके
0: गन्ना,
2: भी
0: काफी अच्छा खड़ा गन्ना खेत
2: हाँ,
0: में जी।
2: और बुवाई आप उसकी दो आंख का टुकड़ा काटिएगा, तीन आंख का
0: जी सर,
2: टुकड़ा न बुवाई करें, बीज का
0: जी सर,
2: शोधन अवश्य करें। ये ध्यान
3: सर
2: रखिएगा।
3: बुवाई में खेत में क्या क्या डालने में फायदा रहेगा, अच्छा मतलब अच्छे गन्ने उगाने के लिए?
2: देखिए अभी पीछे भी हम लोगों ने बताया था आपको कि डीएपी डालें, डीएपी नहीं अगर आपको मिल पा रही है तो मैं तो सबसे बेहतर ये सभी किसानों से कहता हूँ कि एनपीके 12:32:16 का आप प्रयोग ज़्यादा करें।
3: जी सर, जी सर।
2: हाँ 12:32:16 जो है वो आपके लिए ज़्यादा मैटर, क्योंकि इसके अंदर पोटाश की मात्रा, अगर आपको किसी कारणवश वो पोटाश नहीं मिल पा रही है तो पोटाश की पूर्ति आपके उसके से हो जाएगी खेत के अंदर, क्योंकि पोटाश देना बहुत ज़रूरी है कि ज़्यादातर हमारी खेत ज़मीनें हैं वो पोटाश के लिए अब की कमी देखी जा रही है,
3: जी
2: तो
3: सर, जी सर।
2: पोटाश की पूर्ति हो जाएगी। साथ ही साथ आप उसमें जिंक सल्फेट जरूर डालें बुवाई के
3: हाँ,
2: समय पर।
3: सर ज़्यादातर मैं लगाता हूँ पोटाश और मतलब DAP और रिजेंट।
2: हाँ
0: रीजेंट
2: को आप किस तरह से इस्तेमाल, अगर आपके इस समय गन्ना बो रहे हैं इस समय रीजेंट डालने की आवश्यकता इसलिए नहीं कि इसमें इस समय गन्ने में केवल टर्माइट, अगर दीमक की समस्या है तो मैं आपको मैं मान सकता हूँ, अगर दीमक की समस्या नहीं है तो इस समय आपके खेत में अर्ली शूट बोरर नहीं आएगा। अर्ली शूट बोरर जो है वो हमेशा फरवरी के बाद में यानी मार्च से लेकर के अप्रैल के बीच में आता है।
3: जी जी जी
2: तो इसलिए अभी रीजेंट डालने की आवश्यकता नहीं, रीजेंट आप डालिएगा फरवरी के बाद में, मार्च में डालिएगा।
1: तो किसान भाई फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अरविंद कुमार मिश्रा जी, डॉक्टर सौहार्द दुबे जी, आप कार्यक्रम में आए, किसानों की बहुत सारी समस्याओं की आपने उसका सुलझाया, साथ ही साथ जानकारी बहुत अच्छी थी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
2: सभी किसान भाइयों को राम राम, फिर मिलते हैं इसी कार्यक्रम में एक बार, धन्यवाद।
4: किसान भाइयों

0: मुख्य सूक्ष्म तत्वों से मिट्टी को जीवंत बनाए, ठोस हो या तरल रूप में, इस खाद से फसलें लहराए। फसलें तुम भरपूर उगाओ, खूब कमाओ, मौज मनाओ। किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद। IPL की किसान मित्र जैविक खाद।
1: अपने खेतों में हरियाली और जीवन में खुशहाली के लिए हमेशा इस्तेमाल करें IPL की जैविक खाद किसान मित्र, जो कि उपलब्ध है रोहाना कला शुगर मिल पर। शीघ्र बुक करें।
2: अभी हमारे किसान भाई बहन सुन रहे थे विशेष प्रायोजित फोन इन कार्यक्रम गन्ने की पाठशाला। आज का जो विषय था, शरदकालीन गन्ने की बिजाई हेतु तैयारी। डॉक्टर साहब थे डॉक्टर अरविंद कुमार मिश्रा और दूसरे हमारे विशेषज्ञ थे डॉक्टर सौहार्द दुबे, और कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे नरेश पाराशर। इसी के साथ हमारा कृषि जगत कार्यक्रम समाप्त होता है। सभी सुनने वालों का हमारा राम राम। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पाराशर, कार्यक्रम संयोजक थे शिव नंदन लाल।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब गजल और कवाली के कार्यक्रम के अंतर्गत आपको सुनवाते हैं चंद खूबसूरत सी गजलें।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गजल कवाली के अंतर्गत ये चंद खूबसूरत सी गजलें। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल। आइए अब से कुछ ही पलों में सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। दिल्ली सरकार ने दिल्ली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिल 2026 को मंजूरी दी। बिल का उद्देश्य राजधानी में कारोबार को आसान और पारदर्शी बनाना। दिल्ली मास्टर प्लान 2047 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर दिल्ली विकास प्राधिकरण ने परामर्श बैठक की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान कहा, समस्याओं का समयबद्ध समाधान करना दिल्ली सरकार की प्राथमिकता। दिल्ली के उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने राजौरी गार्डन में बाजार संगठनों के प्रतिनिधियों से विकास कार्यों को लेकर चर्चा की और दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने ऑपरेशन मिलाप के अंतर्गत 159 लापता लोगों

0: उनके परिजनों से मिलवाया। और अब समाचार विस्तार से। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में दिल्ली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिल 2026 को मंजूरी दे दी गई है। इस बिल का उद्देश्य राजधानी में कारोबार करने को आसान, तेज और पारदर्शी बनाना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इस विधेयक के अंतर्गत कारोबार से जुड़ी मंजूरियों, पंजीकरण, लाइसेंस और अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए सिंगल विंडो ऑनलाइन व्यवस्था की जाएगी। भवन योजना, अग्निशमन मंजूरी के साथ पानी, सीवर और बिजली कनेक्शन जैसी सेवाएं भी इसके दायरे में होंगी। साथ ही दिल्ली राज्य औद्योगिक और अवसंरचना विकास निगम को नोडल एजेंसी बनाया जाएगा। कम जोखिम वाली गतिविधियों के लिए स्व घोषणा की सुविधा होगी। वहीं निर्धारित समय सीमा में फैसला नहीं होने पर कुछ मामलों में मंजूरी स्वतः मानी जाएगी। नए पंजीकृत उद्यमों को 3 साल तक सामान्य निरीक्षण से भी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन उपायों से दिल्ली में कारोबार करने में लगने वाला समय, लागत और अनिश्चितता काफी कम होने की उम्मीद है। इससे नए निवेश को आकर्षित करने और बड़े स्तर पर रोजगार पैदा करने में भी मदद मिलेगी। प्रादेशिक समाचार के लिए मैं मनोज।
0: दिल्ली मास्टर प्लान 2047 के प्रभावी और सहभागी क्रियान्वयन को लेकर दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA ने निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ परामर्श बैठक की। बैठक में सांसद रामवीर सिंह भिदूरी, मनोज तिवारी और प्रवीण खंडेलवाल सहित दिल्ली के 33 विधायक शामिल हुए। एक रिपोर्ट।
2: इस दौरान DDA के उपाध्यक्ष N. सरवाना कुमार ने मास्टर प्लान के प्रमुख प्रावधानों की जानकारी दी। साथ ही जनप्रतिनिधियों ने अपने सुझाव लिखित रूप में देने के लिए 15 दिन का समय मांगा। बैठक में पारगमन उन्मुख विकास, लैंड पुलिंग, अनधिकृत कॉलोनियां, हाई डेंसिटी कॉरिडोर और लो डेंसिटी एरिया समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इस कड़ी में प्राधिकरण ने अगले 3 महीनों में लगभग 20 हितधारक बैठक करने का लक्ष्य रखा है। इनमें सरकारी एजेंसियों, उद्योग संगठनों, वास्तुकारों, निवासी और आवास समूहों, किसानों, व्यापारिक संगठनों तथा शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। आरजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए अक्षित वैद्यान।
0: दिल्ली के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह की अध्यक्षता में आज दिल्ली सचिवालय में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 पर कार्यशाला आयोजित की गई। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन और इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से इसका आयोजन किया। कार्यशाला में अधिकारियों को नागरिकों के निजी डेटा की सुरक्षित और जिम्मेदार हैंडलिंग के बारे में जागरूक किया गया। विभाग ने डेटा सुरक्षा मानकों के लिए दिशा निर्देश जारी करने और प्रत्येक विभाग में डेटा सुरक्षा नोडल अधिकारी नियुक्त करने की कार्यप्रणाली को भी साझा किया। दिल्ली सरकार में मंत्री परवेश साहिब सिंह ने आज दिल्ली सचिवालय में दिल्ली नगर निगम, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ नालों के रखरखाव के लिए समीक्षा बैठक की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने स्पष्ट किया कि नालों की सफाई और रखरखाव में अब कोई बहाना या जिम्मेदारी को टालना स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्राधिकार और आपसी समन्वय की समस्या के बीच नालों का रखरखाव रुकना नहीं चाहिए। उन्होंने निर्देश दिया कि हर एजेंसी को स्पष्ट जिम्मेदारी लेकर तय समय सीमा में अपना काम पूरा करना होगा और लापरवाही होने पर जवाबदेही तय की जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
3: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में भाग लिया। 2 दिवसीय विभागीय शिखर सम्मेलन प्रधानमंत्री द्वारा परिकल्पित विभागीय शिखर सम्मेलनों की श्रृंखला का पहला शिखर सम्मेलन था। इसका उद्देश्य भारत की टीम भावना को मजबूत करना, सहकारी संघवाद को प्रगाढ़ बनाना और केंद्र तथा राज्यों के बीच घनिष्ठ सहयोग के जरिए राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के सामूहिक स्वामित्व को बढ़ावा देना था। इस पहल ने महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर संयुक्त रूप से विचार विमर्श करने और कार्यान्वयन तथा परिणामों में तेजी लाने के लिए एक संरचित मंच प्रदान

0: किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा आयोजित छठे अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2026 में कहा कि ऊर्जा सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा, रणनीतिक स्वायत्तता और आर्थिक लचीलेपन से अलग नहीं किया जा सकता। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: छठे अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आत्मनिर्भर, स्वदेशी, किफायती और प्रौद्योगिकी उन्नत ऊर्जा क्षेत्र के विकास का आह्वान किया। उन्होंने वर्तमान समय को स्वच्छ ऊर्जा सहित एक सुरक्षित और टिकाऊ ऊर्जा भविष्य की ओर जा रहे बदलाव का समय बताया। डॉक्टर सिंह ने इस बात पर बल दिया कि भारत के ऊर्जा परिवर्तन को अलग करके नहीं देखा जा सकता। उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रौद्योगिकी, आत्मनिर्भरता, वहनीयता, स्वच्छ ऊर्जा, निजी भागीदारी और नवाचार में एक साथ प्रगति की आवश्यकता होगी। डॉक्टर सिंह ने कहा कि उद्योग और पेशेवर संगठन दोनों पक्षों को एक साथ लाने और वर्ष 2047 की ओर भारत की सामूहिक यात्रा में योगदान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज मुख्यमंत्री जन सेवा सदन में जन सुनवाई के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से आए नागरिकों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। एक रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता के लिए सरकार का दरवाजा खुला रखना, लोगों की बात सीधे और बिना किसी बाधा के सुनना तथा समस्याओं का समयबद्ध समाधान करना ही दिल्ली सरकार की प्राथमिकता है। जन सुनवाई के दौरान शिक्षा, लंबित पुरस्कार राशि, जलभराव, सीवर, विद्युत सुरक्षा, सफाई और अवैध निर्माण सहित विभिन्न समस्याएं मुख्यमंत्री के समक्ष रखी गयी। श्रीमती रेखा गुप्ता ने सभी मामलों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को जांच, आवश्यक कार्रवाई और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जन सुनवाई का उद्देश्य केवल नागरिकों की शिकायत सुनना नहीं बल्कि शिकायत का समाधान करना है। आरजू की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सरफिरोजी।
0: दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आज राष्ट्रीय राजधानी के 9 राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। बैठक में उच्च शिक्षा को युवाओं के लिए कौशल, रोजगार, आय और अवसर का मजबूत माध्यम बनाने पर बल दिया गया। उपराज्यपाल ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने, दिल्ली की स्थानीय चुनौतियों पर शोध को प्रोत्साहित करने और छात्रों को उद्योग के अनुरूप रोजगार परक कौशल देने की बात कही। उन्होंने छात्र मार्गदर्शन, सहभागिता, राष्ट्रीय कैडेट कोर और राष्ट्रीय सेवा योजना की नागरिक तथा आपातकालीन सेवाओं में भागीदारी और छात्र स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने पर भी बल दिया। दिल्ली के उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज राजौरी गार्डन में विभिन्न बाजार संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर सड़कों और बाजारों के विकास को लेकर चर्चा की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिरसा ने कहा कि लंबे समय तक राजौरी गार्डन के बाजारों और सड़कों को अनदेखी का सामना करना पड़ा, लेकिन पिछले 1.5 साल में क्षेत्र में विकास की रफ्तार तेज हुई है। उन्होंने कहा कि राजौरी गार्डन में सड़कें, पानी, सीवर और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कई विकास के काम शुरू किए गए हैं। श्री सिरसा ने कहा कि राजौरी गार्डन के विधायक के तौर पर उनका लक्ष्य क्षेत्र के हर बाजार, हर इलाके और हर नागरिक को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
3: अपडेट रहे, आगे रहें। expert@AIRNewsHindi और इंस्टाग्राम पर AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने ऑपरेशन मिलाप के अंतर्गत अगस्त महीने में 159 लापता लोगों को उनके परिजनों से मिलवाया है। इनमें 27 बच्चे और 132 वयस्क शामिल हैं। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, बस और रेलवे स्टेशनों की जांच, स्थानीय पूछताछ और मुखबिरों की मदद से इनका पता लगाया। पुलिस के अनुसार इस साल अब तक दक्षिण पश्चिमी जिला पुलिस ने 1149 लापता बच्चों और लोगों को उनके परिवारों को सुरक्षित सौंपा है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अवैध रूप से भारत में रह रहे 2 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों अवैध प्रवासियों को बाराखंबा क्षेत्र से पकड़ा है। जांच में सामने आया कि दोनों ने बगैर वैध वीजा के 26 और 27 अगस्त को भारत में प्रवेश किया। पहचान और जरूरी सत्यापन के बाद दोनों को विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय के सामने पेश किया गया।

0: इसके बाद दोनों को सराय रोहिल्ला स्थित बांग्लादेशी डिटेंशन सेंटर में भेज दिया गया। दिल्ली यातायात पुलिस ने बताया कि कल से सुबह 10 बजे से होने वाली श्री कृष्ण जन्माष्टमी शोभा यात्रा के कारण रानी झांसी रोड, देशबंधु गुप्ता रोड, चैम्सफोर्ड रोड, पंचकुइया रोड और आसपास के मार्गों पर भारी जाम के कारण यातायात धीमा रहने की संभावना है। पुलिस ने बताया कि इस यात्रा में रथों और झांकियों के साथ 2000 से अधिक श्रद्धालुओं के शामिल होने की भी उम्मीद है। यातायात पुलिस ने वाहन चालकों को यात्रा की योजना पहले से बनाने, यातायात नियमों का पालन करने और मौके पर तैनात यातायात पुलिस कर्मियों का सहयोग करने की अपील की है। सरकार ने वर्ष 2024 के लिए तेनजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कारों की घोषणा की है। ये पुरस्कार साहसिक क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों वाले व्यक्तियों को मान्यता देते हैं और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में सहन शक्ति, जोखिम लेने की क्षमता, टीम वर्क और त्वरित तथा प्रभावी निर्णय लेने की क्षमता को भी प्रोत्साहित करते हैं। ये पुरस्कार 4 श्रेणियों, स्थलीय साहसिक कार्य, जल साहसिक कार्य, वायु साहसिक कार्य और आजीवन उपलब्धि के क्षेत्र में दिए जाते हैं। एक रिपोर्ट।
1: प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक प्रतिमा, एक प्रमाण पत्र और 15 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्राप्त होगी। लैंड एडवेंचर श्रेणी में बलजीत कौर और स्लगजैन रिगजिंग, वाटर एडवेंचर श्रेणी में रिमो साहा और लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी में शिव प्रसाद चमोली को पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई। चयन राष्ट्रीय चयन समिति की अनुशंसाओं के आधार पर किया गया। समिति ने नामांकनों का मूल्यांकन किया और राष्ट्रीय सम्मान प्रदान करने के लिए पुरस्कार विजेताओं की अनुशंसा की। ये पुरस्कार युवाओं में साहस, सहन शक्ति, अनुशासन, जोखिम लेने की क्षमता और सहयोगात्मक टीम वर्ग की भावना को बढ़ावा देते हैं। साथ ही चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में तेजी और प्रभावशीलता के साथ प्रतिक्रिया करने की क्षमता को प्रोत्साहित करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 के साथ यह पुरस्कार प्रदान करेंगी। पुरस्कार समारोह की तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी। प्रादेशिक समाचार के लिए शक्ति सिंह।
0: राजधानी दिल्ली में आज दिन के समय कई जगहों पर तेज से हल्की वर्षा हुई, वहीं अन्य स्थानों पर मौसम सामान्य रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने बताया कि कल राजधानी में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ साथ कई जगहों पर सुबह से दोपहर के बीच हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली सरकार ने दिल्ली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिल 2026 को मंजूरी दी। बिल का उद्देश्य राजधानी में कारोबार को आसान और पारदर्शी बनाना। दिल्ली मास्टर प्लान 2047 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर दिल्ली विकास प्राधिकरण ने परामर्श बैठक की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान कहा, समस्याओं का समयबद्ध समाधान करना दिल्ली सरकार की प्राथमिकता है। और दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने ऑपरेशन मिलाप के अंतर्गत 159 लापता लोगों को उनके परिजनों से मिलवाया। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स पर, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। स्टूडियो की घड़ी में वक्त हुआ है 8:15। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गीत मालिका, जिसके अंतर्गत आज आनंद लेते हैं कुछ खूबसूरत से फिल्मी गीतों का। कार्यक्रम का आगाज करते हैं आशा जी की आवाज़ में गाई इस खूबसूरत सी पेशकश के साथ।

किसे नहीं मरने दोगी? ये क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों? किसकी मौत के बारे में सोच रही थी? मेरी? अरे मेरी जिंदगी और मौत तो अब तुम्हारे साथ है, और प्यार करने वाले मौत से डरा नहीं करते हैं।

0: गीत मालिका कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, जिसमें हम लेकर आए हैं खूबसूरत से ये फिल्मी गीत। आइए ऐसी ही एक और पेशकश सुनते हैं लता जी और किशोरदा की आवाज में।
1: बरसों बाद मुझे मिलती है, ऐसा लगता है कि वो किसी और सदी की बात थी।
2: शायद उन दिनों की बात होगी जब ये इमारत अभी उजड़ी नहीं थी।
1: पिछले किसी जन्म की बात ही तो लगती है।
2: एक काम करें, जब तक तुम यहां हो रोज घर पे खाने के लिए तो आया ही करोगी, खाने के बाद घूमने निकल आया करेंगे। कम से कम ये इमारत कुछ दिनों के लिए तो बस जाएगी। तुम्हारे शॉल कहाँ है?
1: भूल गई। ना ना,
2: तुम नहीं बदलोगी,

0: दिन के वक्त जब ये
1: फुहारे तुम कर रहे हो, कहाँ आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी

0: श्रोताओं, अभी आप आनंद ले रहे थे कार्यक्रम गीतमालिका का, जिसके अंतर्गत आपने सुने ये खूबसूरत से फिल्मी गीत। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स पर। आइए आपसे कुछ ही क्षणों में सुने समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत का पांचवां विमान राहत और बचाव सहायता के लिए नेपाल पहुंचा। मृतकों की संख्या बढ़कर 1100 से अधिक हुई। लगभग 5000 लोग अब भी लापता। रिजर्व बैंक ने कहा, अमरीकी डॉलर भारतीय रुपया विदेशी मुद्रा विनिमय सुविधा से 31 अगस्त तक 136 अरब डॉलर का प्रवाह हुआ। पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र न्यास का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और आवाजाही पर प्रमुख रूप से चर्चा होगी। पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, विदर्भ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। और श्रीलंका के हटने के बाद भारत 2027 में पहली बार महिला चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट की मेजबानी करेगा। भारत का पांचवां विमान राहत और बचाव सहायता लेकर आज नेपाल पहुंच गया। विमान में विशेष सुरंग बचाव उपकरणों से सुसज्जित 11 सदस्यीय बचाव दल और 5.5 टन आवश्यक दवाएं हैं। इस बीच नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1127 हो गई है, जबकि लगभग 4900 लोग अब भी लापता हैं। बचावकर्मी मूसलाधार वर्षा और मलबे से जूझ रहे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने आज संसद में बताया कि इस बाढ़ से हुई तबाही हिमालय क्षेत्र में बढ़ते जलवायु खतरों की एक गंभीर चेतावनी है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इसके प्रभावों को कम करने की जिम्मेदारी साझा करने का आह्वान किया। श्री शाह ने बताया कि नेपाल को भारत, चीन, अमरीका, जापान, एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक, यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र सहित कई स्रोतों और बहुपक्षीय

0: साझेदारों से सहायता प्राप्त हुई है। श्री शाह ने विनाशकारी बाढ़ के प्रति भारत की त्वरित प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद व्यक्त किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि उसकी विशेष अमरीकी डॉलर भारतीय रुपया विदेशी मुद्रा विनिमय सुविधा में इस वर्ष 31 अगस्त तक 136 अरब डॉलर से अधिक का विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है। रिजर्व बैंक ने 8 जून 2026 को FCNRB जमा ECB और OFCB के निवेश को सम्मिलित करने वाली विशेष विदेशी मुद्रा स्वैप सुविधा शुरू की थी। रुपए की कमजोरी के बीच डॉलर के प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए घोषित ये सुविधा मूल रूप से सितंबर के अंत तक उपलब्ध थी, लेकिन इसे सकारात्मक प्रतिक्रिया के कारण एक महीने के लिए कम कर दिया गया। अब FCNRB जमा के लिए ये योजना बंद कर दी गई है, जबकि ECB और OFCB के लिए ये सुविधा 31 दिसंबर 2026 तक उपलब्ध रहेगी। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बांगा ने कहा है कि भारत में 7 से 8% की मौजूदा वृद्धि दर से आगे बढ़ने की क्षमता है। श्री बांगा ने वैश्विक ऊर्जा दबाव, व्यापार अनिश्चितता और अलनीनो के प्रभाव के बावजूद देश के मौजूदा आर्थिक प्रदर्शन को मजबूत बताया। अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों की बैठक में श्री बांगा ने कहा कि नए आंकड़े भारत की अर्थव्यवस्था की बुनियादी स्थिति की मजबूती दर्शाते हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सकल घरेलू उत्पाद GDP आंकड़ों पर सवाल उठाने वालों की कड़ी आलोचना की है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% की GDP वृद्धि ऐतिहासिक रिकॉर्ड है।
1: जब आप सच्चाई को तोड़ मोड़ करके लोगों का हौसला तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो आप विश्वासघात कर रहे हैं जनता के साथ। आखिर ये जो 7.8% का पाथ ब्रेकिंग रिकॉर्ड ग्रोथ दुनिया में और कोई देश नहीं दिखा पा रहा है, ऐसा तेजी से आर्थिक प्रगति ये कोई सरकार नहीं कर रही है, ये कोई व्यक्ति विशेष नहीं, ये देश के 140 करोड़ भारतवासियों का सामर्थ्य है।
0: बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर आज रात 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। श्री वेवर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और आवाजाही पर प्रमुख रूप से चर्चा होगी। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर श्री वेवर भारतीय उद्योग परिसंघ के एक कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। एक रिपोर्ट।
2: यह किसी बेल्जियम प्रधानमंत्री की पिछले 2 दशकों में पहली भारत यात्रा है, जो भारत बेल्जियम संबंधों में एक महत्वपूर्ण नए चरण की शुरुआत का संकेत देती है। बेल्जियम यूरोप में भारत का एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार है। वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 13 अरब डॉलर से अधिक रहा। एंटवर्प के प्रमुख वैश्विक हीरा केंद्र होने के कारण हीरा व्यापार दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक संबंधों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री 4 सितंबर को मुंबई का दौरा भी करेंगे, जो दोनों देशों के बीच साझेदारी की मजबूत आर्थिक नींव को रेखांकित करता है। उनके भारत डायमंड बोर्स के प्रस्तावित दौरे से द्विपक्षीय संबंधों में हीरा व्यापार के महत्व और इस क्षेत्र में आगे सहयोग की संभावनाओं को बल मिलेगा। सुपर्णा सैकिया के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र न्यास का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के बाद आज इसकी घोषणा की गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 3 नए सदस्यों के नामों की भी घोषणा की, जिनमें अयोध्या के वरिष्ठ वकील मदन मोहन पांडे, दिल्ली के महेश भागचंद का और शिकोहाबाद की रिटायर्ड प्रिंसिपल डॉक्टर निर्मला यादव शामिल हैं। ट्रस्ट के अंतरिम जनरल सेक्रेटरी कृष्ण मोहन ने बताया कि ट्रस्ट के नए सीईओ एयर मार्शल सेवानिवृत्त जितेंद्र मिश्रा ने ऑपरेशन सिंदूर में भी अहम भूमिका निभाई थी। वे 30 अप्रैल 2026 को रिटायर हुए। उन्हें अति विशिष्ट सेवा मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया जा चुका है। श्री राम मंदिर में दान की चोरी के आरोपों के बाद सीईओ के चयन के लिए 6 जुलाई को 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई थी। सीईओ के पद के लिए 5,500 से ज्यादा आवेदन मिले थे। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल हुए। 2 दिन का ये सम्मेलन प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप विभागीय शिखर सम्मेलनों की श्रृंखला का पहला सम्मेलन था। इसका उद्देश्य देश की टीम भावना को मजबूत करना, सहकारी संघवाद को प्रगाढ़ बनाना और केंद्र तथा राज्यों के बीच घनिष्ठ सहयोग के माध्यम से राष्ट्रीय प्राथमिकताओं की सामूहिक स्वामित्व को बढ़ावा देना है। इस पहल ने महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर संयुक्त रूप से विचार विमर्श करने और कार्यान्वयन तथा परिणामों में तेजी लाने के लिए मंच प्रदान किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि ऊर्जा सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा, रणनीतिक स्वायत्तता और आर्थिक अनुकूलन से अलग नहीं किया जा सकता। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में डॉक्टर सिंह ने आत्मनिर्भर, स्वदेशी, किफायती और प्रौद्योगिकी आधारित ऊर्जा क्षेत्र के विकास का आह्वान किया। उन्होंने वर्तमान समय को स्वच्छ ऊर्जा सहित एक सुरक्षित और टिकाऊ ऊर्जा भविष्य की ओर आ रहे बदलाव का समय बताया। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज नई दिल्ली में नागर विमानन क्षेत्र में व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने के उपायों की समीक्षा की। श्री नायडू ने अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया आसान, पारदर्शी, स्वचालित और समयबद्ध बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री नायडू ने संबंधित अधिकारियों की इस प्रक्रिया को सरल और स्वचालित बनाने तथा 15 दिन के भीतर उनके कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में अधिकारियों के तबादले और तैनाती में कथित भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी सरकार की आलोचना की है। नई दिल्ली में आज पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि इन दिनों वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले और तैनाती रेट कार्ड के आधार पर की जा रही है।
5: मुख्यमंत्री भगवंत मान को पंजाब की जनता को उत्तर देना पड़ेगा। आपके इशारों पर जब ये कैश फॉर ट्रांसफर घोटाला हो रहा है तो इसका किंग पिन अरविंद केजरीवाल है या नहीं, बताइए।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, विदर्भ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कल तेज वर्षा होगी। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश में अगले 2 दिनों में तेज वर्षा की आशंका है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आंतरिक कर्नाटक में कल गरज चमक और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान है। बिहार के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बिगड़ रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि गंगा नदी के जल स्तर में वृद्धि हुई है।
6: बिहार में गंगा नदी का पानी भागलपुर, खगड़िया, समस्तीपुर, पटना, बक्सर, भोजपुर और वैशाली समेत कई जिलों में निचले इलाकों में फैल गया है। भागलपुर जिला बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित है। उप मुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि जिले में बाढ़ की स्थिति खतरनाक होने के बावजूद नियंत्रण में है। पटना के भद्रघाट, नौजर घाट और महावीर घाट पर गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर सड़कों पर बैरिकेडिंग कर आवागमन रोक दिया है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: झारखंड में H1N1 स्वाइन फ्लू संक्रमण के मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है। पिछले 30 दिन में राज्य भर में कुल 36 रोगी मिले हैं। इनमें 18 बच्चे और किशोर शामिल हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
7: झारखंड में स्वाइन फ्लू यानी H1N1 संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सभी प्रमुख अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रहने और संदिग्ध मरीजों की तत्काल जांच और उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। रांची के रिम्स और जमशेदपुर के MGM अस्पताल में H1N1 और H3N2 की जाँच की आधुनिक व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। रिम्स के क्रिटिकल केयर विभागीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप भट्टाचार्य ने बच्चों, बुजुर्गों और गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। महेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: बंबई उच्च न्यायालय ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI को सौंपने का आदेश दिया है। न्यायालय ने 6 वर्ष तक प्राथमिकी दर्ज न करने के लिए मुंबई पुलिस को

0: फटकार लगाई है। न्यायालय की पीठ ने आज कहा कि उचित और ठोस जांच के लिए मामला सीबीआई को सौंपना आवश्यक है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने अनिवार्य सुरक्षा उपायों के बिना विस्फोटक पदार्थों की ऑनलाइन बिक्री के लिए एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। प्राधिकरण के अनुसार प्लेटफॉर्म पर लाइसेंस सत्यापन, खरीदार पात्रता जांच और अनिवार्य सुरक्षा संबंधी जानकारी के बिना अमोनियम नाइट्रेट की ऑनलाइन लिस्टिंग सुविधा दी जा रही थी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 374 अंक फिसलकर 76,570 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 141 अंक फिसलकर 23,914 पर आ गया। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 3 पैसे कमजोर होकर 1 अमरीकी डॉलर के मुकाबले 94.98 रुपए पर बंद हुआ।
0: सरकार ने वर्ष 2024 के लिए तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। बलजीत कौर और स्काल जेंग रिगजिंग को भू साहसिक अभियानों, रेमो साहा को जल साहसिक अभियान और शिव प्रसाद चमोली को आजीवन उपलब्धि के लिए पुरस्कार दिए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 के साथ ही पुरस्कार प्रदान करेंगे। पुरस्कार समारोह की तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 2027 में होने वाली पहली महिला क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी श्रीलंका से हटाकर भारत में आयोजित करने का फैसला किया है। 6 टीम का ये टूर्नामेंट अगले वर्ष 14 से 28 फरवरी तक T20 प्रारूप में मुंबई और वडोदरा में खेला जाएगा। किदंबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के दूसरे राउंड में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने चीनी ताइपे के ची यू जेन को और तन्वी ने डेनमार्क की अमाली शुल्ज को हराया। ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो मिक्स डबल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत का 5वां विमान राहत और बचाव सहायता के लिए नेपाल पहुंचा। मृतकों की संख्या बढ़कर 1200 से अधिक हुई। लगभग 4000 से अधिक लोग अब भी लापता। रिजर्व बैंक ने कहा अमरीकी डॉलर भारतीय रुपया विदेशी मुद्रा विनिमय सुविधा से 31 अगस्त तक $136 अरब का प्रवाह हुआ। पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र न्यास का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, विदर्भ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। और श्रीलंका के हटने के बाद भारत 2027 में पहली बार महिला चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। New Delhi sends fifth tranche of emergency material to flood-hit Nepal. Death toll rises to over 1,200, with over 4,000 people still missing. RBI says special US dollar Indian rupee forex swap facility generated over $136 billion inflows till August 31st. Shri Ram Janmabhoomi Kshetra Trust appoints retired Air Marshal Jitendra Mishra as its first CEO. Belgian Prime Minister Mark de Wever to arrive in New Delhi tonight on a 3-day visit to India. Talks on trade, defence, technology, energy and connectivity high on agenda. Heavy to very heavy rainfall likely in East Madhya Pradesh, Sub-Himalayan West Bengal, Sikkim, Vidarbh and West Uttar Pradesh tomorrow. And India to stage inaugural Women's Champions Trophy in 2027 after Sri Lanka dropped as hosts. India has stepped up its relief operation in flood-hit Nepal, with New Delhi delivering the fifth tranche of emergency material. India's ambassador to Nepal in a social media post shared that the fifth Indian aircraft carrying relief and rescue assistance arrived in the Himalayan nation this afternoon. The aircraft carried an 11-member rescue team equipped with specialized tunnel rescue equipment, along with 5.5 tons of essential medicines. The flash floods triggered by the collapse or avalanche of ice and rock near the Nepal

0: witness heavy rainfall during the next 2 days. The flood situation in Bihar continues to remain serious. A report.
1: Floodwaters from the Ganga have spread into low-lying areas of several districts including Bhagalpur, Khagadia, Samastipur, Patna, Buxar, Bhojpur and Vaishali. Bhagalpur remains the worst affected district. Deputy Chief Minister and Water Resources Minister Vijay Kumar Chaudhary said that although the flood situation in the district is dangerous, it remains under control. In Aurangabad district, rising water levels in the Son, Batane, Punpun, Dhawa, Adari, Madar and Keshar rivers have affected several villages. In Jahanabad district, the Dardha river is in spate with floodwaters flowing over 3 bridges and culverts at Jafarganj, Shakurabad and Sai Mandir. Savita Parikh, Akashwani News, Patna.
0: On sports, the International Cricket Council today moved the inaugural Women's Champions Trophy 2027 to India from Sri Lanka. The six-team event will be played in Mumbai and Vadodara from the 14th to the 28th of February. Sri Lanka was dropped as host as the sport is grappling with governance issues in the island nation, with the ICC board approving India as the new host. The tournament will bring together 6 of the world's leading women's cricket teams: Australia, England, India, New Zealand, South Africa and Sri Lanka. In badminton, India's Kidambi Srikant and Tanvi Sharma advanced to the second round of the China Masters Super 750 tournament with straight game victories in respective singles events in Shenzhen, Guangdong province. Men's doubles duo Sattvik Sairaj Janki Reddy and Chirag Shetty and mixed doubles pair Dhruv Kapila and Tanisha Krasto also moved to the next round. The government has announced the Tenzing Norgay National Adventure Awards for the year 2024. The awardees are Waljeet Kaur and Skalzang Rigzin in Land Adventure category, Rimo Saha in Water Adventure category and Shiv Prasad Chamoli in the Lifetime Achievement category. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi calls for sensitizing urban local bodies to the challenges arising from urbanization and future water requirements, emphasizes greater adoption of water-saving technologies. New Delhi sends 5th tranche of emergency material to flood-hit Nepal. Death toll rises to over 1,200 with over 4,000 people still missing. Sri Ram Janmabhoomi Kshetra Trust appoints retired Air Marshal Jitendra Mishra as its first CEO. Belgian Prime Minister Bart De Wever to arrive in New Delhi tonight on a 3-day visit to India. And heavy to very heavy rainfall likely in East Madhya Pradesh, Sub-Himalayan West Bengal, Sikkim, Vidarbha and West Uttar Pradesh tomorrow. That is all in the news at 9. Good night.
2: Aadab, ye Akashwani hai. खबरों के साथ मैं शमीम अहमद। भारत ने सैलाब से मुतासरा नेपाल के लिए हंगामी सामान की 5वीं खेप भेजी है। मरने वालों की तादाद 1200 से ज़्यादा हो गई है, जबकि 4000 से ज़्यादा लोग अब भी लापता हैं। आरबीआई ने बताया कि खसूसी अमरीकी डॉलर भारत रुपए फॉरेक्स स्वैप सहूलत के तहत 31 अगस्त तक 136 अरब अमरीकी डॉलर नकद रकम के तौर पर मौसूल हुए हैं। श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट ने रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को अपना पहला सीईओ मुकर्रर किया है। बेल्जियम के वजीर आजम बार्ट डी वीवर भारत के 3 रोज़ा दौरे पर आज रात नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। मुजाकरात में तिजारत, दिफा, टेक्नोलॉजी, तवानाई और कनेक्टिविटी के मामलात को तरजीह दी जाएगी। मशरकी मध्य प्रदेश, जैली हिमालयाई मगरबी बंगाल, सिक्किम, विदर्भ और मगरबी उत्तर प्रदेश में कल तेज से बहुत तेज़ बारिश की पेशगोई की गई है और भारत अव्वलीन ख्वातीन चैम्पियन ट्रॉफी 2027 की मेज़बानी के लिए मुंतखब हुआ है। श्रीलंका को मेज़बानी से हटा दिया गया है। अब खबरें तफसील से। भारत ने सैलाब से मुतासरा नेपाल में अपनी राहती कार्रवाई को तेज़ कर दिया है और उसने इमरजेंसी साजो सामान की 5वीं खेप वहां पहुंचाई है। नेपाल में भारत के सफीर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा है कि राहत और इमदादी साजो सामान लेकर 5वां भारतीय तैयारा आज सुपहर नेपाल पहुँचा। तैयारे में 11 अफराद पर मुश्तमिल बचाव टीम भी है जो सुरंगों से बचाने वाले खसूसी आलात से लैस है और साथ ही 5.5 टन ज़रूरी दवाएं भी तैयारे में हैं। भारतीय फजाइया ने सैलाब से मुतासर इलाकों में ज़रूरी साजो सामान पहुंचाने के

0: चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है प्रधानमंत्री की उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य यात्रा से मध्य एशिया के साथ भारत के सुदृढ़ होते संबंधों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत अनिल त्रिगुणायत और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकार प्रोफेसर अंशु जोशी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: सदियों पुराना वो दौर जब रेशम के धागों और मसालों के काफिले मध्य एशिया के बीहड़ रास्तों से गुजरा करते थे। ताशकंद से बिश्केक तक फैली वो धरती जहां इतिहास के पन्नों ने न जाने कितने साम्राज्यों को बनते और मिटते देखा। लेकिन आज 21वीं सदी के नक्शे पर वही मध्य एशिया सिर्फ इतिहास की किताब नहीं बल्कि ग्लोबल पावर प्ले का सबसे बड़ा अखाड़ा बन चुका है। ऊर्जा का अकूत खजाना, यूरेनियम के भंडार और भू राजनीति का नया केंद्र, चीन की उठती इमारतें, रूस का पारंपरिक दबदबा और अफगानिस्तान के मुहाने पर सुलगती अशांति, इन तमाम चक्रव्यूहों के बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कदम रखा उज्बेकिस्तान और किर्गिज रिपब्लिक के सरजमी पर। 4 दिनों की यह महायात्रा सिर्फ 2 देशों का दौरा नहीं थी, ये ताशकंद में यूरेनियम की डील से भारत के भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा को लॉक करने की पटकथा थी। ये बिश्केक से पूरी दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का अल्टीमेटम था। ये कदम था नॉर्थ साउथ कॉरिडोर से व्यापार के नए रास्ते खोलने का। ये शंखनाद था मध्य एशिया के दिल में भारत की कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति को एक नए युग में ले जाने का। लेकिन इस पूरी कहानी के पीछे कुछ बड़े सवाल भी हैं। क्या भारत सेंट्रल एशिया में अपनी स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस का नया अध्याय लिख रहा है? क्या ये चीन के बढ़ते इन्फ्लुएंस के बीच भारत की अपनी जगह मजबूत करने की कोशिश है? इन बेहद महत्वपूर्ण सवालों का जवाब तलाशेंगे आज के चर्चा का विषय है कार्यक्रम में। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ रहे हैं, पूर्व राजदूत अनिल त्रिगुणायत जी और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ प्रोफेसर अंशु जोशी जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
3: धन्यवाद आनंद।
1: चर्चा की शुरुआत करने से पहले हम अपने श्रोताओं को बता दें कि प्रधानमंत्री के इस दौरे से उज्बेकिस्तान के साथ रिश्ते पहुंचे कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक 2030

0: तक व्यापार को 5 अरब डॉलर से ज्यादा ले जाने का लक्ष्य तय किया गया है। क्रिटिकल मिनरल्स, डिजिटल पेमेंट्स, डिफेंस, हेल्थ केयर, एजुकेशन और कनेक्टिविटी, यानी सहयोग का दायरा अब सिर्फ कूटनीति की मेज तक सीमित नहीं है। और फिर बिश्केक, एससीओ के मंच से भारत का स्पष्ट संदेश, सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और अपॉर्चुनिटी। त्रिगुणायत जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं कि भारत और उज्बेकिस्तान ने अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी में बदला है। चीन और रूस के पारंपरिक प्रभाव वाले इस क्षेत्र में भारत का ये कूटनीतिक कदम सेंट्रल एशिया में पावर बैलेंस के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए, क्या लगता है आपको?
1: देखिए आनंद जी, 2012 से हमने अपनी कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी को स्थापित किया है और उसके बाद जब प्रधानमंत्री मोदी एक ऐसे नेता थे जिन्होंने पांचों सेंट्रल एशियन कंट्रीज में विजिट किया और उनके साथ में हमारे जो C5+1 या दूसरे जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसके थ्रू हम सेंट्रल एशिया के साथ अपने रिश्ते बना पाए और प्रगाढ़ कर पाए, उसमें हमने देखा है कि बहुत ज्यादा तरक्की हुई है। लेकिन जैसा आपने कहा है कि सेंट्रल एशिया जो है इस वक्त ग्रेट गेम के अंदर में लगा हुआ है। आज की डेट में वहां पर जो स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस रूस का है वो पुराना है, क्योंकि ये सारे कंट्रीज रूस के रिपब्लिक्स थे 1991 से पहले, और उसके बाद से चाइना का बड़ा इन्फ्लुएंस वहां पर जियो इकोनॉमिक्स के रूप में उभरा है। और रूस और चीन ने बीच में ये एडजस्ट किया है कि जियो पोलिटिकली रशिया अपना स्थापित करता रहेगा लेकिन चीन को जियो इकोनॉमिक्स में या इकोनॉमिक एंगेजमेंट के साथ उनको बढ़ावा देते रहेंगे, तो वो दोनों के बीच हो रहा है। तो यूरेशियन कनेक्टिविटी की बात वहां पर चल रही है। उधर अमेरिका उनका एक थर्ड नेबर बन के उभरा है, पिछले कुछ दिनों में उन्होंने भी अपना C5+1 और ये इस तरह के काफी वहां पर कोशिश की है, इसी तरह अजरबैजान और आर्मेनिया में। क्योंकि आज की डेट में जब हम सेंट्रल एशिया को देखते हैं तो सेंट्रल एशिया को कॉकेशस के साथ मिलाकर के देखा जाता है, तो उस सब के अंदर में भी अमेरिका काफी वहां पर है। चौथा कंट्री जो है वो वहां पर है टर्की। टर्की ने अपना वहां पर काफी जो उनका टर्किक लैंग्वेजेस का एक ऑर्गेनाइजेशन भी है उसके चलते उन्होंने अपनी कनेक्टिविटी को वहां पर काफी बढ़ाया है। तो ये चारों कंट्रीज और गल्फ के कंट्रीज भी कुछ इन्वॉल्व हैं इस तरह से, मेनली यूरोपियन यूनियन भी काफी वहां पैसा लगा रहा है। आप विश्वास मानेंगे कि आर्मेनिया के अंदर जो अमेरिकन एम्बेसी है वो उस रीजन की सबसे बड़ी एम्बेसी है और आर्मेनिया के साथ हमारे रिश्ते भी काफी अच्छे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी की जो विजिट इस वक्त हुई है वो दो संदर्भ में हुई। एक तो ये कि बायलैटरल है हमारा उज्बेकिस्तान के साथ में, किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, जैसे आपने कहा कि उसको हमने कंप्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का रूप दिया है, जिसका मतलब सिक्योरिटी हो गया, क्रिटिकल मिनरल्स हो गया या न्यूक्लियर डोमेन के अंदर हो गया, डिफेंस में हो गया, ट्रेड को आगे बढ़ाने की बात है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो हमारी सेंट्रल एशिया के साथ रही है वो है कनेक्टिविटी, और कनेक्टिविटी के लिए हमने जो है जब डायरेक्ट हमारा पाकिस्तान के थ्रू नहीं हो पा रहा, अफगानिस्तान नहीं पहुंच पा रहे, सेंट्रल एशिया नहीं पहुंच पा रहे थे, तो भारत ने चबहार पोर्ट के जरिए जाना शुरू किया। लेकिन अभी चबहार पोर्ट भी जो है अमेरिका की काटसा सैंक्शंस और आजकल तो बमबारी चल रही वहां पर, तो ये सब करने की वजह से भारत को थोड़ा वहां चबहार पोर्ट में हमारे को कंट्रोल प्रॉब्लम हुई है। उसी के चलते वहां पर जो आपने नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का, उसमें भी चबहार पोर्ट का बहुत बड़ा हाथ है। तो ये सारी जो समस्याएं इस वक्त जियो पॉलिटिकल कॉन्टेस्टेशन की वजह से, खासतौर से अमेरिका और ईरान का जो युद्ध चल रहा है उसके चलते जो है बहुत सारी समस्याएं बढ़ गई हैं, और उसमें भारत ने कोशिश ये की है कि किस तरह से हम उनको इम्यूनाइज कर पाए उन प्रॉब्लम से, ताकि हमारे बायलैटरल रिलेशंस आगे बढ़ सके। तो किस तरह हो सकता है, एक तो एयर कनेक्टिविटी हो गया। अब आप ये देखिए कि अभी प्रधानमंत्री को हमारे जो जाना पड़ा 7.5 घंटे लग गए, जबकि ये 2.5 से 3 घंटे के बीच हमारे कंट्रीज हैं। लेकिन चूंकि पाकिस्तान जिस तरह का एक अपना नजरिया दिखाता है, हमारे जो दुश्मनी के ताल्लुकात उनके साथ हैं, उसके चलते ये समस्या सबसे बड़ी आई। तो मैं समझता हूँ कि काफी सारे एरियाज में बायलैटरल रिलेशनशिप बहुत बड़ी है। दूसरा, उज्बेकिस्तान भी जो है ब्रिक्स का पार्टनर कंट्री है, तो उनके जो लीडर हैं शवकत मिर्जियायेव वो भी भारत आएंगे, जब हम भारत इस बार जो है ब्रिक्स समिट होस्ट कर रहा है, तो वो सब उसके अंदर जो ऑल्टरनेटिव जो ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो एससीओ हो, नॉन वेस्टर्न ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो ब्रिक्स है, और बायलैटरली भारत ने पूरी कोशिश की है कि इन सब देशों के साथ मिलकर के किस तरह से हम और आगे बढ़ा सके अपने जो हमारे रिश्ते हैं, हिस्टोरिक और सिविलाइजेशनल टाइज है। आई मीन इसमें कोई शक की बात नहीं है कि वहां पर भारत के लिए बहुत ज्यादा प्रेम है। आप अगर जाकर देखें वहां पे कल्चरली लोग जो है वो काफी अलाइंड है भारत के साथ। लेकिन इस वक्त में प्रधानमंत्री की विजिट से काफी, मैं समझता हूँ, एक ये जो रिश्ते हैं और आगे बढ़ेंगे और प्रगाढ़ होंगे।
0: जी, प्रोफेसर जोशी, भारत और उज्बेकिस्तान ने 2030 तक आपसी व्यापार को 5 बिलियन डॉलर तक पहुंचा

0: करने का लक्ष्य रखा है। वर्तमान व्यापार
1: ओके
0: आंकड़ों को देखते हुए ये लक्ष्य
1: ओके
0: कितना व्यावहारिक है, और इसमें फार्मा, आईटी, माइनिंग और कृषि जैसे क्षेत्रों की क्या भूमिका रहने वाली है आपके नजरिए से?
1: देखिए, ये देखना इस बार बड़ा सुखद रहा कि जब हमारे प्रधानमंत्री ने उज्बेकिस्तान की यात्रा की तो उनको न सिर्फ वहां के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से नवाजा गया। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच जिस प्रकार के सिविलाइजेशनल कनेक्ट्स रहे हैं, बहुत लंबे पुराने घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध रहे हैं, उसको जब हम ट्रांसलेट करने के लिए आते हैं टेंजिबल आउटकम्स में, जब हम दो देशों के बीच के डिप्लोमेटिक रिलेशंस की बात करते हैं, तो उसमें व्यापार एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ है। तो उसमें एक जो अभी व्यापार का हम वॉल्यूम दोनों देशों के बीच में देखते हैं वो कम है, उसमें बहुत बड़ी संभावना है। और इसी को ध्यान में रखते हुए दोनों ही देशों ने 2030 तक अपने व्यापार को 5 बिलियन USD तक करने का लक्ष्य रखा है। और हम ये भी ध्यान में रखें कि जब हम उज्बेकिस्तान की ओर देखते हैं तो भारत को क्रिटिकल मिनरल्स और विशेषकर यूरेनियम सप्लाई करने वाला देश है। तो जब हम इस ट्रेड टारगेट को देखते हैं तो फिर इसमें एक प्रिफरेंशियल ट्रेड की बात भी आती है, ताकि कन्वेंशनल जो ट्रेड बैरियर्स हैं उनको कट किया जा सके और दोनों ही देशों के जो निवेशक हैं या जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको फायदा हो सके। तो एक टारगेट सेट किया गया 5 बिलियन USD का, प्रिफरेंशियल ट्रेड की बात दोनों देश कर रहे हैं, ताकि जितने भी टैरिफ से जुड़े हुए और नॉन टैरिफ से जुड़े हुए जो बैरियर्स हैं और जो निवेश में जिस प्रकार की समस्याएं आती हैं उनको दूर किया जा सके। तो जब हम भारत को देखते हैं तो भारत फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हुए, व्हीकल ऑटोमोबाइल्स हुआ, उसके पार्ट्स हुए, अलग अलग प्रकार के जो इक्विपमेंट होते हैं, उपकरण होते हैं, वो हुए, मोबाइल फोन्स हुए, ये तमाम, और कुछ खाद्य पदार्थ जो है उज्बेकिस्तान को भेजता है। वहीं जब हम उज्बेकिस्तान की ओर नजर डालते हैं तो फल और सब्जियां, फर्टिलाइजर्स, कुछ केमिकल्स और क्रिटिकल मिनरल्स जिसमें कि यूरेनियम शामिल है वो भारत को प्रोवाइड कराता है। तो जब हम स्ट्रेटेजिक दृष्टि से देखते हैं तो यहाँ पर एक क्रिटिकल मिनरल्स और तकनीक का ऐसा नया क्षेत्र उभर के आता है आनंद, जिसमें विशेषकर एक तो क्रिटिकल मिनरल्स के एरिया में सहयोग को आगे ले जाने की, कई गुना व्यापार बढ़ाने की बात की जा रही है, जो भारत और उज्बेकिस्तान दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन की तरह है। वहीं हम दूसरी तरफ देखें तो जो ये नोवीस टेक्नोलॉजी का क्षेत्र है, विशेषकर जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है और AI है, इसको लेकर के भी दोनों देश और दोनों देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो बात करते हुए नजर आए। और उज्बेकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष ने भारत के जो अलग अलग अकम्प्लिशमेंट्स हैं, चाहे व्यापार से संबंधित हो, कि आज भारत विश्व की सबसे बड़ी तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, इसको हमने कल प्रूफ भी किया, हमारी क्वार्टरली ग्रोथ 7.8% की रिकॉर्ड हुई है GDP की, जो कि अपने आप में एक बहुत ही हर्ष का विषय है। और वहीं दूसरी ओर भारत की जो तकनीकी ग्रोथ है उसकी भी उज्बेकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष ने तारीफ की थी जब ये बायलेटरल ऑफिशियल टॉक्स हुई। और इसमें फिर मैं कहती हूँ कि न सिर्फ हम सेंट्रल एशिया की ओर, भारत जब अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी को भी एग्जीक्यूट करता है दूसरी तरफ जाकर, तो वहां पर भी जो इंडोनेशिया जैसे देश हैं, फिलीपींस जैसे देश हैं, वो भारत की ओर देखते हैं व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए। तो इसमें व्यापार में फिर जो है एक पूरा सामरिक क्षेत्र आ जाता है, जिसमें डिफेंस से जुड़े उपकरण, जिसमें क्रिटिकल मिनरल्स, जिसमें ये तकनीक को लेकर के सहयोग, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो
0: जी
1: ये देखना सुखद रहा कि उज्बेकिस्तान के साथ भी जो व्यापार को 5 बिलियन करने की बात की गई है,
0: जी
1: उसमें जो ये तमाम जो नवाचारी क्षेत्र हैं इनका भी उल्लेख है। इसमें दोनों देश साथ में काम करेंगे, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्तर पर, दोनों स्तर पर, ये दोनों देशों के लिए और इस क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है।
0: जी त्रिगुणायत जी, जो ताशकंद वार्ता रही उसमें जो सबसे बड़ा टेकअवे रहा वो उज्बेकिस्तान से भारत के लिए दीर्घकालिक यूरेनियम आपूर्ति की रूपरेखा तय होना रहा। भारत की स्वच्छ ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा के भविष्य की जरूरतों को देखते हुए इस समझौते के रणनीतिक महत्व को आप कैसे आंकते हैं?
1: देखिए, भारत ने 2070 तक नेट जीरो एमिशंस का लक्ष्य रखा हुआ है क्लाइमेट चेंज के बारे में, और भारत एक लीडर के रूप में निकला है जहां तक कि क्लाइमेट चेंज या क्लाइमेट मिटिगेशन और अडेप्टेशन की बात है, या दूसरे जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको सपोर्ट करने की बात है। तो भारत ने अपना जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस का एक नया आयाम किया है, उसी तरह से ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के इस तरह के इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स लिए हैं। इसी तरह भारत ने अपना लक्ष्य जो है न्यूक्लियर एनर्जी का रखा है, लगभग 100 GW बाय 2047। तो ये एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, उसके लिए आपको जो है यूरेनियम की प्राप्ति, उसकी आपूर्ति, लॉन्ग टर्म सप्लाईज, उन सबको करना होता है। अभी हम सिर्फ कजाकिस्तान से खरीदते हैं यूरेनियम, और भारत चूंकि रेडी जैसे अमेरिका के साथ सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन किया था,
2: और इस वक्त में अपना इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के तहत काफी कुछ चीजों में हम इंपोर्ट कर सकते हैं। उसी के सिलसिले में

0: तो ये लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट हमने साइन किया है येलो केक जिसको बोलते हुए लेंगे वहां से। तो ये हमारी जो ऊर्जा के डाइवर्सिफिकेशन के लिए, देखिए इस वक्त हमने देखा है जो ईरान के साथ युद्ध हुआ है उसमें जिस तरह चोक पॉइंट्स हैं, चाहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो, बाबल मंदब हो, जब उनके बंद होने से एनर्जी सप्लाईज में बहुत बड़ा डिस्रप्शन आ गया, ट्रेड के अंदर बहुत बड़ा डिस्रप्शन आ गया, तो ऑल्टरनेटिव जो हमारे पास है जैसे INSTC है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, उस सब की वजह से क्या है आपको अपने एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन की भी बड़ी आवश्यकता है। तो भारत ने जो है फोकस किया है कि रिन्यूएबल एनर्जीज को हम कैसे और आगे बढ़ाएं।
1: जी बिल्कुल प्रोफेसर जोशी, भारत अपने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को दुनिया भर में एक्सपोर्ट कर रहा है। हम ये भी जान रहे हैं कि UPI 10 से ज़्यादा देशों में इस समय इस्तेमाल हो रहा है। उज्बेकिस्तान और किर्गिज रिपब्लिक में भारत के फिनटेक और IT सेक्टर के प्रवेश के जो अवसर बन रहे हैं, उसे आप किस तरीके से देखती हैं, और क्या ये भारत की सॉफ्ट पावर का नया हथियार बन रहा है?
2: आनंद, आपने ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न इस पूरी चर्चा में जोड़ दिया और मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं उसके पहले मैं आपको हमारे प्रधानमंत्री की पिछली इंडोनेशिया यात्रा की ओर ले जाना चाहूंगी, जहां पर इंडोनेशिया के राष्ट्राध्यक्ष ने भारत की डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की खुल के तारीफ की थी और विशेषकर भारत की इलेक्टोरल सिस्टम और जिस प्रकार से हमने EVMs के माध्यम से इस पूरी प्रक्रिया को सहज सरल ट्रांसपेरेंट बनाया, डिजिटाइज किया, उसकी तारीफ करते हुए एक महत्वपूर्ण MOU जो है वो भारत के साथ इंडोनेशिया ने साइन किया। तो इसी प्रकार से आप अपने आसपास के जब तमाम देशों को देखते हो, चाहे वो सेंट्रल एशिया के देश हो, साउथ एशिया के देश हो, ईस्ट एशिया के देश हो, साउथ ईस्ट एशिया के देश हो, आज भारत की जो DPI है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इसकी बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभरा है पूरे विश्व में। और 140 करोड़ की आबादी के घने देश को डिजिटाइज करना सरल काम नहीं था आनंद, लेकिन हमने ये करके दिखाया है। तो चाहे हमारा आधार हो जो हमारा बायोमेट्रिक और डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम है, चाहे अपना UPI हो जो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस है जिसकी वजह से इंस्टेंट जो पेमेंट्स हैं वो अलग अलग बैंक अकाउंट्स के बीच में और अलग अलग मुद्राओं के बीच में भी संभव है, आज 10 से अधिक देशों में अपना UPI स्वीकार्य है, चाहे अपना डेटा शेयरिंग का डेपा हो जिससे कि डेटा एम्पावरमेंट को और प्रोटेक्शन को बल मिलता है, या ONDC हो जो कि ओपन नेटवर्क है डिजिटल कॉमर्स के लिए जिसमें कि बायर्स और सेलर्स को ये एप्लीकेशन आपस में जोड़ती है और एक प्राइवेट मार्केट प्लेस प्रोवाइड करती है। तो हम फिर इससे जुड़ी हुई अलग अलग जो हमने योजनाएं चलाई, चाहे जनधन हो, आधार हो, मोबाइल फोन से जुड़ी हुई योजनाएं हो, तो इससे हमने दो प्रकार के अकम्पलिशमेंट्स अचीव किए। एक तो हमने अपना जो पूरा पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर था, पब्लिक सर्विसेज थी, उनको ट्रांसपेरेंट किया, इजी किया, सीमलेस किया और इनको हमने डेमोक्रेटाइज किया, ये जन जन तक हमारी योजनाएं और ये तमाम जो पूरा डिजिटाइजेशन था ये पहुंचा। और दूसरा, हमने तमाम इसके माध्यम से जो बेनिफिट हुए वो एक ग्रास रूट लेवल पर जो बैठा हुआ व्यक्ति है उस तक पहुंचाए। तो ये भारत की बहुत बड़ी शक्ति है और आज भारत अपना जो DPI का ब्लूप्रिंट है उसकी ग्लोबल शेयरिंग कर रहा है। अलग अलग जो देश हैं वो भारत के साथ में ऑफिशियल अग्रीमेंट्स के थ्रू ग्लोबल शेयरिंग कर रहे हैं भारत के DPI की। ये देखना सुखद रहा कि उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान जैसे देशों ने भी न सिर्फ फिनटेक को या व्यापार को बढ़ावा देने के लिए बल्कि अलग अलग जो तमाम क्षेत्र हैं जो लोगों की सिटीजन्स की आइडेंटिटी से जुड़े हुए हैं या जो पब्लिक सर्विसेज हैं उसको कैसे डिजिटाइज किया जाए, उससे जुड़े हुए, ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े हुए, लॉजिस्टिक्स से जुड़े हुए, मेडिकल सर्विसेज और शिक्षा से जुड़े हुए हैं। मैं यहाँ पे जोड़ना चाहूंगी कि जब हमारे प्रधानमंत्री ने अफ्रीका और लेटिन अमेरिका की यात्रा की थी तो घाना अफ्रीका में या अर्जेंटीना, ब्राजील को हम लेटिन अमेरिका में देखें, इनको हम अपनी जो हमारा जो ई मेडिसिन संजीवनी की जो सर्विसेज हैं वो
1: जी
2: प्रोवाइड कराते हैं और जो टेली मेडिसिनल सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कराते हैं और वहां पर उनकी सर्विसेज को हम ग्रो करा रहे हैं। तो इसी प्रकार के अग्रीमेंट्स हमने इन दो देशों के साथ भी किए हैं। क्षेत्रीय स्तर पर भी जब हम सेंट्रल एशिया की ओर देखते हैं तो उनकी जो डिजिटाइजेशन की यात्रा है इसका ये बड़ा माइलस्टोन है जिसमें भारत अपने ब्लूप्रिंट को शेयर करके तमाम ये जो अलग अलग प्रकार की सर्विसेज हैं इसमें इन दोनों देशों को आगे ले जाने का काम करने वाला है।
1: जी और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री ने दुनिया भर में चल रहे युद्धों पर भी अपने विचार रखे। प्रधानमंत्री ने दोहराया कि संघर्षों का समाधान बातचीत और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए। उन्होंने कहा कि दुनिया को एंडलेस वॉर्स से एंडिंग वॉर्स की दिशा में आगे बढ़ना होगा और भारत शांति के हर प्रयास का समर्थन करता रहेगा। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कहा।
3: हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है। द जल्द से जल्द

0: सभी विषयों का शांतिपूर्ण ढंग से समाधान हो, यही मानवता की पुकार है, यही भारत का संदेश है। गांधी की धरती का, बुद्ध की धरती का एक ही संदेश है, शांति का मार्ग। इन सभी विषयों पर कुछ दिनों बाद भारत ब्रिक्स समिट का आयोजन कर रहा है। सभी भारतवासी भारत में आपका और आपके डेलीगेशन का स्वागत करने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं।
1: त्रिगुणायन जी, इस चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाएं। जो प्रधानमंत्री ने युद्ध को लेकर अपनी बात कही, बिश्केक में एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के इकोसिस्टम और टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ बिना किसी डबल स्टैंडर्ड के सख्त संदेश दिया। अफगानिस्तान से सटने वाली मध्य एशियाई सीमाओं की सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता के संदर्भ में भारत का ये रुख कितना प्रासंगिक है, जब आप देख रहे हैं कि कई देशों की सीमाएं अस्थिर और अशांत बनी हुई हैं।
2: देखिए आनंद जी, बात ऐसी है कि जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो आज 25 साल मना चुका है अपनी एनिवर्सरी, उसका मेन जो उद्देश्य था वो था टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म, इन चीजों के लिए लड़ना और सिक्योरिटी को बढ़ाना किसी तरह से। उनके कुछ रेड्स टाइप के जो बने हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है उन्होंने। इस पूरे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य ही जो है टेररिज्म से, आतंकवाद से लड़ना है। भारत अपने आप लड़ रहा है, दुनिया भर में सबको कह रहा है कि डबल स्टैंडर्ड्स अगर आप रखेंगे तो इस बुराई, इस कुरीति और इस तरह के देशों के साथ में कोई भी पार्ट नहीं कर सकते, उसको सिचुएशन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो ये बात प्रधानमंत्री ने इस बार फिर कही, और अगले जब 25 साल की बात हो रही है तो उसमें ये बहुत आवश्यक है कि दुनिया जो है अपनी ये डबल स्टैंडर्ड्स, खासतौर से मेंबर कंट्रीज जो है वो ना रखें इसमें। तो भारत पूरी तरह से जब तक अपने आप तो लड़ता ही रहेगा टेररिज्म के खिलाफ, लेकिन दुनिया को ये सबक दे रहा है कि अगर आप इससे नहीं लड़ेंगे तो कल आप इसका शिकार बन सकते हैं। और दूसरी चीज यह है कि ईरान युद्ध जो हुआ है, देखिए जितने भी इस तरह के इन्वेजन होते हैं, हमने देखा है कि सबसे बड़ी जो मदर ऑफ ऑल इवल्स वॉज इन्वेजन ऑफ ईरान,
1: जी
2: कि इराक में जब अमेरिका ने अटैक किया था तो उस वक्त के बाद सारा टेररिज्म बढ़ा, आइसिस आया वहां पे, आइसिल आया। अब आप ईरान के अंदर भी उसी तरह का अटैक कर रहे हैं, तो ये जितने भी उनके ग्रुप्स हैं जिनको टेररिस्ट ग्रुप बोला जाता है, 4H, वो सब और ज्यादा बढ़ जाएंगे। उसके बाद में दोबारा से और ज्यादा इस तरह की बात होगी, तो ये जो सारी सीमाओं का बिल्कुल मतलब नहीं रह जाएगा जब नॉन स्टेट एक्टर्स को इतना बढ़ावा मिलेगा स्टेट्स की तरफ से। तो मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री का बड़ा सीधा भाषण था और राष्ट्रपति पुतिन को भी बड़ा सीधा, उन्होंने जब पहली बार वर्ड्स में ये कहा कि एंडलेस वॉर को एंड ऑफ वॉर होना चाहिए, और पहले उन्होंने कहा था दिस इज नॉट एन ईरा वॉर, तो मैं समझता हूँ कि ये बात और उनकी मुलाकात जो है ईरान के राष्ट्रपति से भी हुई, डॉक्टर परवेज कयान से, और तब भी वह बातें हुई हैं। देखिए जब तक ये युद्ध नहीं रुकेंगे, जब तक देश जो है इस तरह का ये दुभातिया व्यवहार जिसको कहते हैं या डबल स्टैंडर्ड वो इसमें नहीं छोड़ेंगे, तब तक इन सब लड़ाइयों से, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, चाहे वो टेररिज्म हो, इनसे लड़ पाना बड़ा मुश्किल है।
1: जी, प्रोफेसर जोशी, इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एससीओ के मंच पर भारत के प्रधानमंत्री ने सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और अपॉर्चुनिटी का 3 पिलर्स वाला विजन दिया। आपसे ये समझना चाहेंगे कि वैश्विक अनिश्चितता और युद्ध के इस दौर में मध्य एशियाई देशों के लिए भारत एक भरोसेमंद और संतुलित पार्टनर के रूप में खुद को कैसे स्थापित कर रहा है, क्योंकि ये रणनीतिक रूप से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण पहलू है।
3: हम लगातार इस बात की चर्चा करते हैं, जब हम दो देशों के या भारत और किसी संगठन की ये संबंधों की चर्चा करते हैं तो हम अक्सर इस बात पर ध्यान देते हैं कि भारत के लिए कोई भी वो देश या वो संगठन क्यों महत्वपूर्ण है। लेकिन आज इस बात की चर्चा भी अवश्य होनी चाहिए जो आप कर रहे हैं, और मुझे बहुत खुशी है इस प्रश्न का उत्तर देने में कि भारत किसी क्षेत्रीय संगठन के लिए, भारत किसी देश के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। जब हम सेंट्रल एशिया की ओर देखते हैं तो हम सभी जानते हैं कि अलग अलग संप्रभु देशों के रूप में 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद, तब जबकि शीत युद्ध समाप्त हुआ, ये तमाम देश अस्तित्व में आए और भारत के साथ बहुत लंबे समय से इनके घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार की प्राकृतिक इनके पास में तमाम रिसोर्सेज हैं, विशेषकर जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, और जिस तरह की इनकी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, उसको देखते हुए हमने वर्षों से देखा है कि न सिर्फ रशिया के लिए, चीन के लिए, अमेरिका के लिए ये देश जो है वो जियोपॉलिटिक्स का एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु रहे, और वही भारत के साथ भी स्थिति है। लेकिन जब इन देशों के, चाहे अमेरिका हो, चीन हो, रशिया हो, इन देशों के जब हम सेंट्रल एशिया में जा करके व्यवहार को या इन देशों के साथ के पारस्परिक संबंधों को देखते हैं तो ये स्पष्ट हो जाता है कि इन सभी का जो रुख है वो एक ट्रांजैक्शनल रुख है इन तमाम देशों के प्रति। और वहीं जब हम भारत को, भारत की कूटनीति

0: को देखते हैं तो भारत ने विगत 11 से 12 वर्षों में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स, विन विन रिलेशनशिप्स को कैसे आगे ले जाते हुए इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी देश की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है या किसी भी क्षेत्र की जो क्षेत्रीय अखंडता है, संप्रभुता है, उसको अक्षुण्ण रखते हुए आप चाहे कनेक्टिविटी की बात करें तो उसमें काम करें, या इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की बात करें तो उसमें काम करें, या जब आप स्ट्रेटेजिक रिलेशंस को आगे ले जाने की बात करें तो उसकी ओर देखें। तो इस बात का संदेश हमारे प्रधानमंत्री ने इस बार के SCO समिट में चीन की मौजूदगी में दिया कि कनेक्टिविटी पर काम करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी भी देश की जो संप्रभुता है, विशेषकर उसकी जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, उसका सम्मान करते हुए कनेक्टिविटी की दिशा में काम करना चाहिए। और ये अपने आप में चीन को एक बहुत बड़ा संदेश था। तो ये तमाम देश जानते हैं कि भारत की जो कूटनीति है वो बहुत सकारात्मक कूटनीति है। भारत न किसी प्रकार का डेट क्राइसिस या डेट डिप्लोमेसी खेलते हुए किसी देश के लिए इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न करता है कि उसके किसी भूभाग पर जाकर के कब्जा करे या वहां अपनी प्रेजेंस को असर्ट करे। न भारत इस प्रकार की कूटनीति करता है कि अपने फायदे की या अपने राष्ट्रीय हितों को सिक्योर करने की सोचता है जिसमें कि दूसरे देश का नुकसान हो जाए। न भारत इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न करता है कि किसी भी देश की सुरक्षा के लिए किसी प्रकार का कोई खतरा हो। और आज जो भारत की शक्ति की स्थिति है आनंद, वो हम सभी जानते हैं। कल अपनी आर्थिक शक्ति का तो भारत ने पूरे विश्व को परिचय दे ही दिया, तब जबकि अमेरिका के प्यूनिटिव मेजर्स और तमाम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने चोक कर रखा था, पश्चिम एशिया का संकट बहुत गहराया हुआ था, और बाकी के जो देश है, विशेषकर पश्चिम के जो शक्तिवान देश है, उनका जो GDP ग्रोथ है रेट रहा वो 0.5 से लेकर 2% तक का रहा। हमने अपना GDP इस क्वार्टर का जो रिकॉर्ड किया है वो 7.8% का रिकॉर्ड किया है। तो ये तमाम देश जानते हैं कि भारत ऐसा देश है, उसकी कूटनीति ऐसी, इस प्रकार की डायनेमिक कूटनीति है कि वो सभी मंचों पर एक सामंजस्य बना करके काम करता है, ग्लोबल साउथ की आवाज आगे लेकर के जाता है। ये देश जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसकी बात भारत करता है। भारत UNSC में तमाम जो ग्लोबल साउथ के देश है उनके नेतृत्व की बात करता है, और भारत आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर के लड़ाई की बात करता है। इसके साथ ही भारत अपॉर्चुनिटीज की बात करता है, कनेक्टिविटी को आगे ले जाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के क्षेत्र में साथ में काम करने के लिए, लेकिन अपनी अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमीज को इंटैक्ट रखते हुए। तो यहाँ पर भारत इन तमाम देशों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सहयोगी हो जाता है, क्योंकि भारत जैसे देश पर इस प्रकार का भरोसा इन देशों का है कि भारत किसी भी प्रकार की नकारात्मक कूटनीति में ना पड़ते हुए अपने द्विपक्षीय और क्षेत्रीय सहयोग पर काम करता है।
1: जी, विदेश मंत्रालय की तरफ से भी प्रधानमंत्री की इस यात्रा पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के बीच द्विपक्षीय वार्ता की जानकारी दी। आइए सुनते हैं विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने इस मुलाकात के बारे में क्या कहा।
2: The Prime Minister held a bilateral meeting also with the President of Iran, Dr. Pezeshkian. The two leaders dwelt on recent developments in West Asia and developments in the bilateral relationship. And the Prime Minister conveyed to President Pezeshkian how much he was looking forward to welcoming him in New Delhi for the BRICS summit in less than 2 weeks' time.
1: त्रिगुणायत जी, कार्यक्रम अब अपने समापन की तरफ आगे बढ़ रहा है। हमने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा था कि 2047 में विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं वहां से कुछ न कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं उस द्विपक्षीय संबंधों के माध्यम से कि भारत विकसित बनने की राह पर और आगे बढ़ सके। बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो प्रधानमंत्री की महायात्रा थी, इसमें कौन से ऐसे पहलू आपको नजर आते हैं जो भारत को विकसित बनाने की तरफ और आगे लेकर जाएंगे।
3: देखिए, भारत हमेशा से विश्वास ये करता है कि अगर हम विकसित हो रहे हैं तो हमारा विकास जो है वो दूसरे जो देश है उनके साथ भी उसको साझा किया जा सके। तो जैसा अंशु जी ने बताया कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कहें, क्योंकि दुनिया बिल्कुल अब नए ढंग से चल रही है। टेक्नोलॉजी जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, सो अफोर्डेबल एक्सेसिबल इस तरह की जो टेक्नोलॉजीज हैं उनको भारत प्रदान करता है, शेयर करता है दूसरे देशों के साथ में। तो जब हमारी ग्रोथ हो रही है, इस वक्त फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी 7.8% क्लॉक किया है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो रिश्ते हम बना रहे हैं वो तो एक तो एनर्जी सिक्योरिटी है, फूड सिक्योरिटी है, जनरल सिक्योरिटी है, और टेक्नोलॉजिकल सिक्योरिटी, इसमें साइबर सिक्योरिटी, न्यूक्लियर सिक्योरिटी, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा अहम होती है। या तो हम वहां पे टेक्नोलॉजी लेने की कोशिश करते हैं, उनके इन्वेस्टमेंट की कोशिश करते हैं, भारत में मेक इन इंडिया की बात करते हैं, किस तरह से विकसित भारत को आगे बढ़ाएं, कैसे वसुधैव कुटुंबकम के जरिए दूसरे देशों को जो ग्लोबल साउथ के हैं उनको फायदा पहुंचाएं, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, चाहे वो फूड सिक्योरिटी हो, एनर्जी सिक्योरिटी हो, किसी भी तरह

0: जैसे भारत हमेशा और सब देशों के साथ में उनके कैपेसिटी बिल्डिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स के लिए हमेशा साथ रहता है। तो मैं जब देखता हूँ कि जब हम विकसित 2047 की बात करते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि किस तरह से जो हमारे दूसरे पड़ोसी मुल्क हैं या दूसरे देश हैं जो ग्लोबल साउथ के डिसएडवांटेज कंट्रीज हैं वो भी हमारे जो ग्रोथ है उसका लाभ उठा सके। तो मैं समझता हूँ यही भारत की एक नीति है जिसकी वजह से भारत को लोग एक विश्व मित्र के रूप में देखते हैं।
1: जी, ताशकंद के ऐतिहासिक गलियारों से लेकर बिश्केक की चोटियों तक वक्त का पहिया एक बार फिर घूम चुका है। सदियों पहले जिस रेशम मार्ग पर भारत के ज्ञान, संस्कृति और मसालों की खुशबू महकती थी, आज 21वीं सदी का नया भारत उसी धरती पर अपनी ऊर्जा, सुरक्षा, आर्थिक आत्मनिर्भरता और अटूट सामरिक पहचान का परचम लहरा रहा है। उज्बेकिस्तान में मिला प्रधानमंत्री को सम्मान सिर्फ एक सम्मान नहीं है, बल्कि ये दर्शाता है कि एक कूटनीतिक जीत भी नहीं है, बल्कि मध्य एशिया के दिल में भारत के बढ़ते विश्वास की वो मुहर है जिसे मिटाना अब नामुमकिन है। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए त्रिगुणायत जी आपका, प्रोफेसर जोशी आपका और हमारे श्रोताओं के साथ विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
2: नमस्कार।
3: नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री की उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य यात्रा से मध्य एशिया के साथ भारत के सुदृढ़ होते संबंधों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत अनिल त्रिगुणायत और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकार प्रोफेसर अंशु जोशी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। चर्चा का विषय है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल हुए। 2 दिन का यह सम्मेलन प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप विभागीय शिखर सम्मेलन की श्रृंखला का पहला सम्मेलन था। इसका उद्देश्य देश की टीम भावना को मजबूत करना, सहकारी संघवाद को प्रगाढ़ बनाना और केंद्र तथा राज्यों के बीच घनिष्ठ सहयोग के माध्यम से राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के सामूहिक स्वामित्व को बढ़ावा देना था। इस पहल ने महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर संयुक्त रूप से विचार विमर्श करने और कार्यान्वयन तथा परिणामों में तेजी लाने के लिए मंच प्रदान किया। भारत का 5वां विमान राहत और बचाव सहायता लेकर आज नेपाल पहुंचा। विमान में विशेष सुरंग बचाव उपकरणों से सुसज्जित 11 सदस्यीय बचाव दल और 5.5 टन आवश्यक दवाएं हैं। इस बीच नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 1,200 से अधिक हो गई है, जबकि 4,000 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। बचाव कर्मी मूसलाधार बारिश और मलबे से जूझ रहे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने आज संसद में कहा कि इस बाढ़ से हुई तबाही हिमालय क्षेत्र में बढ़ते जलवायु जोखिमों की एक गंभीर चेतावनी है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इसके प्रभावों को कम करने की जिम्मेदारी साझा करने का आह्वान किया। श्री शाह ने बताया कि नेपाल को भारत, चीन, अमरीका, जापान, एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक, यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र सहित कई स्रोतों से बहुपक्षीय साझेदारों से सहायता प्राप्त हुई है। रिजर्व बैंक ने बताया है कि उसकी विशेष अमरीकी डॉलर भारतीय रुपया विदेशी मुद्रा विनिमय सुविधा में इस वर्ष 31 अगस्त तक 136 अरब डॉलर से अधिक की विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है। रिजर्व बैंक ने 8 जून 2026 को FCNRB जमा, ECB और OFCB के निवेश को सम्मिलित करने वाली विशेष विदेशी मुद्रा स्वैप सुविधा शुरू की। रुपए की कमजोरी के बीच डॉलर के प्रभाव को बढ़ावा देने के लिए घोषित यह सुविधा मूल रूप से सितंबर के अंत तक उपलब्ध थी, लेकिन इसे सकारात्मक प्रतिक्रिया के कारण 1 महीने के लिए कम कर दिया गया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सकल घरेलू उत्पाद GDP आंकड़ों पर सवाल उठाने वालों की कड़ी आलोचना की है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% की GDP वृद्धि ऐतिहासिक रिकॉर्ड है।
1: जब आप सच्चाई को तोड़ मोड़ करके लोगों का हौसला तोड़ने की कोशिश करते हैं तो आप विश्वासघात कर रहे हैं जनता के साथ।

0: आखिर ये जो 7.8% का पाथ ब्रेकिंग रिकॉर्ड ग्रोथ दुनिया में और कोई देश नहीं दिखा पा रहा है, ऐसा तेजी से आर्थिक प्रगति ये कोई सरकार नहीं कर रही है, ये कोई व्यक्ति विशेष नहीं, ये देश के 140 करोड़ भारतवासियों का सामर्थ्य है।
1: बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर आज रात 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। श्री वेवर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। साथ ही व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और आवाजाही पर प्रमुख रूप से चर्चा होगी। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर श्री वेवर भारतीय उद्योग परिसंघ के एक कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र न्यास का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के बाद आज इसकी घोषणा की गई। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 3 नए सदस्यों के नामों की भी घोषणा की, जिनमें अयोध्या के वरिष्ठ वकील मदन मोहन पांडे, दिल्ली के महेश भाकचंदका और शिकोहाबाद की रिटायर्ड प्रिंसिपल डॉक्टर निर्मला यादव शामिल हैं। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, विदर्भ और पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी कल तेज वर्षा होगी। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश में अगले 2 दिनों में तेज वर्षा होने की आशंका है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आंतरिक कर्नाटक में कल गरज और चमक के साथ तेज हवाएं और वर्षा का अनुमान है। खेलों में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने 2027 में होने वाली महिला क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी श्रीलंका से हटाकर भारत में आयोजित करने का फैसला किया है। 6 टीम का यह टूर्नामेंट अगले वर्ष 14 से 28 फरवरी तक T20 प्रारूप में मुंबई और वडोदरा में खेला जाएगा। श्रीलंका से मेजबानी वापस लेने का कारण वहां क्रिकेट से जुड़े प्रशासनिक विवादों को बताया जा रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. India has stepped up its relief operation in flood-hit Nepal, with New Delhi delivering the 5th tranche of emergency material. India's ambassador to Nepal in a social media post shared that the 5th Indian aircraft carrying relief and rescue assistance arrived in the Himalayan nation this afternoon. The aircraft carried an 11-member rescue team equipped with specialized tunnel rescue equipment along with 5.5 tons of essential medicines. The flash floods triggered by the collapse or avalanche of ice and rock near the Nepal-Tibet border devastated towns and villages in northern and central Nepal on the 26th of last month. The Indian Air Force has carried out several sorties to transport essential supplies to affected areas. India has also offered specialized search and rescue support. Indian teams have been involved in operations around hydropower tunnels and in forensic efforts to identify victims amid the high number of casualties and missing people. Meanwhile, Nepal Prime Minister Valendra Shah, while speaking in Parliament today, thanked India for its quick response to the devastating flash floods as rescue teams continue searching for survivors and missing people in some of the worst affected areas. The death toll from the devastating flash floods in the Himalayan nation has risen to 1,200, with over 4,000 people still missing as rescuers battled rain and debris. Addressing the House of Representatives, Mr. Shah acknowledged the emergency assistance provided by India and China, including relief supplies, technical support and rescue personnel. The Prime Minister said the devastation caused by the flash floods stands as a stark warning of escalating climate risks in the Himalayan region and called on the international community to share responsibility for mitigating its impacts. Prime Minister Narendra Modi has called for sensitizing urban local bodies to the challenges arising from urbanization, including population growth and future water requirements, and suggested organizing similar Chintan Shivirs for urban local bodies. Mr. Modi today chaired the valedictory session of the 2-day National Departmental Summit on Water, organized by the Ministry of Jal Shakti. He called for greater adoption of water-saving technologies. He also suggested dedicated exhibits.

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम माटी की रंग, जिसके अंतर्गत आज आपने सुने मुक्ता वार्ष्णेय की आवाज़ में ब्रज लोकगीत। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 10:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम राग रंजन। इसके अंतर्गत हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में आज आप सुनेंगे पंडित प्रशांत मलिक और पंडित निशांत मलिक का राग मेघ में युगल गायन।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम राग रंजन के अंतर्गत हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, जिसमें आज आपने पंडित प्रशांत मलिक और पंडित निशांत मलिक का राग मेघ में युगल गायन सुना। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। लीजिए अब सुनिए समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसंख्या वृद्धि और भविष्य में पानी की जरूरतों सहित शहरीकरण से उत्पन्न चुनौतियों के प्रति शहरी स्थानीय निकायों को संवेदनशील बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने आज जल शक्ति मंत्रालय की ओर से आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय विभागीय जल सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता करते हुए शहरी स्थानीय निकायों को भी इसी प्रकार के चिंतन शिविर आयोजित करने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने अधिक से अधिक जल बचत तकनीक अपनाने का भी आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने 2 दिवसीय गहन विचार विमर्श की सराहना की। उन्होंने सुझाव दिया कि ये सम्मेलन एक बार की कवायद नहीं रह जानी चाहिए, बल्कि निरंतर समीक्षा और आगे की भी कार्रवाई होनी चाहिए। श्री मोदी ने जनभागीदारी पर जोर देते हुए कहा कि लोगों में व्यापक जागरूकता उत्पन्न करने के लिए जल उत्सव आयोजन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। श्री मोदी ने बांध सुरक्षा के लिए प्रत्येक मानसून से पहले ठोस तैयारी, निर्धारित सावधानियों का पालन और शैक्षिक पाठ्यक्रमों में उपयुक्त रूप से शामिल स्कूली छात्रों के बीच जागरूकता पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थानों में जल प्रबंधन और इसकी प्रशासन से संबंधित ज्ञान और क्षमता मजबूत बनाने का आह्वान किया। भारत का 5वां विमान राहत और बचाव सहायता लेकर आज नेपाल पहुंचा। विमान में विशेष सुरंग बचाव उपकरणों से सुसज्जित 11 सदस्यीय बचाव दल और 5.5 टन आवश्यक दवाएं हैं। इस बीच नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,200 से अधिक हो गई है, जबकि 4,000 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। बचाव कर्मी मूसलाधार बारिश और मलबे से जूझ रहे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री बालन शाह ने आज संसद में कहा कि इस बाढ़ से हुई तबाही हिमालय क्षेत्र में बढ़ते जलवायु जोखिम की एक गंभीर चेतावनी है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इसके प्रभाव को कम करने की जिम्मेवारी साझा करने का आह्वान किया। श्री शाह ने बताया कि नेपाल को भारत, चीन, अमेरिका, जापान, एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक, यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र सहित कई स्रोतों और बहुपक्षीय साझेदारों से सहायता प्राप्त हुई है। रिजर्व बैंक ने बताया है कि उसकी विशेष अमरीकी डॉलर भारतीय रुपया विदेशी मुद्रा विनिमय सुविधा में इस वर्ष 31 अगस्त तक 136 अरब डॉलर से अधिक का विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है। रिजर्व बैंक ने 8 जून 2026 को FCNRB जमा ECB और OFCB के निवेश को सम्मिलित करने वाली विशेष विदेशी मुद्रा स्वैप सुविधा शुरू की। रुपये की कमजोरी के बीच डॉलर के प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए घोषित यह सुविधा मूल रूप से सितंबर के अंत तक उपलब्ध थी, लेकिन इसे सकारात्मक प्रतिक्रिया के

कार्यक्रम फिल्म संगीत सुन रहे हैं आप। ये गीत अभी आपने सुना फिल्म बेवफा से वफा का, और आवाज़ थी उदित नारायण की। कुछ ऐसे ही गीतों की सौगात लेकर आए हैं। और अगर बात करें इन गीतों की, तो ये वो दौर था जो 90 का दशक कहलाता था, और इस दौर में जितनी भी फिल्में आई, जितने भी गीत आए, वो लोगों ने बहुत पसंद किए। भले ही फिल्में इतनी ना चली हों, लेकिन गीत बहुत चर्चित रहे। कुछ ऐसे ही चर्चाओं से भरा हुआ अगला गीत है, अनुराधा पौडवाल और मंगल सिंह की आवाज़ों में है, बहुत ही खूबसूरत सा गीत, आइए सुनते हैं।

अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ों में ये गीत सुना आपने फिल्म दीवाना से। और बात करें 90 के दशक की, तो 90 के दशक में फिल्म दीवाना बहुत ही चर्चित रही और लोगों ने इसमें ऋषि कपूर और साथ में रहे नवोदित कलाकार के तौर पर शाहरुख खान, उनकी एक्टिंग को बहुत सराहाया और बहुत पसंद किया और इस वजह से ये फिल्म काफ़ी हिट भी रही। और रही बात फिल्म की अभिनेत्री की, तो दिव्या भारती इसमें मुख्य भूमिका में रही और दिव्या भारती की ये फिल्म काफ़ी हिट हुई और उसके बाद दिव्या भारती ने कभी मुड़कर नहीं देखा। फिलहाल हम मुड़कर चलते हैं उसी गीत की तरफ जो कुछ समय पहले बजा नहीं था, क्योंकि कोशिश की हमने उसे चलाने की, आप तक पहुंचाने की, लेकिन वो पहुंच नहीं पाया। लेकिन अब हमने उसका ढूंढ लिया है और आप तक पहुंचा रहे हैं बहुत ही खूबसूरत डर फिल्म का ये गीत दरवाज़ा बंद कर लो। लता मंगेशकर और अभिजीत

दरवाज़ा कैसे बंद कर लें, हमारे दिल तक दस्तक दे रहे हैं आपके वो सभी संदेश जो कार्यक्रम में अब शामिल करने का वक्त हो चला है। एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से हमारे पास खर्चे परिवार का संदेश मिला है, जिसमें नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश और कार्तिक खर्चे हमारे साथ हैं और हमारे साथ और भी बहुत सारे हमारे दोस्त जुड़े हुए हैं जो कि हमारे साथ कार्यक्रम में बने हुए हैं और हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं और बार बार कहते हैं कि हमारे जो है नाम को शामिल कर लीजिएगा। तो चलिए अगला नाम शामिल करते हैं। ये है हमारे पास संदेशा जो हमें मिला है, ये है सुदर्शन मुखी और अनीता मुखी और सिमरन मुखी का, जो कि शांतिनगर सोनीपत से संदेशा भेज रहे हैं। तो वहीं अगले संदेशे के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं ये हमारे दोस्त हैं किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया, साईराज और विशाल सपकाल, जो कि शास्त्री नगर बीड शहर से हमें संदेशा भेजते हैं। ये 16 नंबर वार्ड गरीब नवाज कॉलोनी इंदौर से संदेशा भेजा। कुमारी वंदना, मराठा भाऊ, पूजा, रेखा, रघुवंशी, ललिता, जगदीश चौहान, चंदा, युवराज वानखेड़े, लक्ष्मी नारायण और भाऊ खड़से, और कह रहे कि किसी भी गीत में बस हमें शामिल कर लीजिएगा। तो लीजिए, आपकी बात को हमने बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं किया और कार्यक्रम में आपको शामिल कर लिया। सतीश नेजा और हमारे साथ विमला नेजा जी भी जुड़ी हैं, जो कि चंडीगढ़ सिटी से हमें संदेशा भेज रही हैं। तो संदेशों के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं ये है पश्चिम सिंहभूम चाईबासा झारखंड से हमारे पास संदेश आया है, ये शिवा गोप और प्रेम गोप और पूरा गोप परिवार हमारे साथ जुड़ा हुआ है। टी डी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप, ये हमें संदेशा सेक्टर 67 मोहाली से भेज रहे हैं। तो कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल और बिट्टा का संदेशा हमें मिला है। तो वहीं संदेशे के साथ जुड़े हुए इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह और ऋषभ सिंह, ये हमें चिरमिरी कुरासिया कलारी से संदेशा भेज रहे हैं। संदेशे के साथ जुड़े हुए हैं ये कह रहे हैं हमें पाकिस्तान से हमें संदेशा आया है, जो कि दोस्त मोहम्मद साहब का संदेशा हमें मिला है और कह रहे हैं कि कार्यक्रम इन्हें पसंद आ रहा है, ये हमें पाकिस्तान से संदेशा भेज रहे हैं। संदेश के साथ श्री सुधाकर राजे जाधव देशमुख हमारे साथ जुड़े हैं, पूरा परिवार इनका हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहा है, जो कि जाफराबाद से हमें संदेशा भेज रहे हैं। तो ये अगला संदेशा हम तक पहुँचा है, ये पहुँचा है हमारे पास जाफराबाद से ही और इन्हीं का संदेशा एक बार फिर से मिल गया। रघुवीर नगर दिल्ली से हमें संदेशा मिला है जनाब दिलावर खान साहब और इनकी मोहतरमा का, हसीना बानो और इनके साथ और भी कई दोस्त इनके साथ जुड़े हुए हैं। संदेशे के साथ हमारे साथ ए के पांडे और ये नियमित श्रोता हैं, ये हमारे मध्य प्रदेश से संदेशा भेज रहे हैं। तो हमारे पास ये संदेशा हमें मिला है छाया कुल्हे और प्रियांश, और ये कह रहे हैं कि धन्यवाद आपका कि हमें कार्यक्रम में आपने शामिल कर लिया। उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, बोधराज खोरवाल, गीतिका और भानु प्रकाश का संदेशा मिला है। तो ये मिला है संदेशा हमें, ये कहाँ से है, ये सीतामढ़ी बिहार से हम तक संदेशा पहुंचा है। संदेशा भेजने वाले हैं मुसर्रत जहां नाज और इनका पूरा परिवार, ये सब संदेश हम कार्यक्रम में शामिल कर चुके हैं। अब कार्यक्रम में वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का और आपको अंतिम गीत की तरफ लेकर चलने का। आपको अंतिम गीत के साथ अब मुझे यानी सविता को लेनी होगी विदा। आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संकेत। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। इस समय रात्रि के 12 बजने को हैं। अब इन मीटरों पर हमारे प्रसारण यहीं संपन्न होते हैं। सुबह 4:50 पर आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, शुभ रात्रि। लेकिन AIR लाइव न्यूज 24x7 पर हमारे प्रसारण अब भी जारी हैं। रात्रि के 12 बजने को है, ठीक 12 बजे आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसंख्या वृद्धि और भविष्य में पानी की जरूरतों सहित शहरीकरण से उत्पन्न चुनौतियों के प्रति शहरी स्थानीय निकायों को संवेदनशील बनाने का आह्वान किया। उन्होंने जल शक्ति मंत्रालय की ओर से आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय विभागीय जल सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता करते हुए शहरी स्थानीय निकायों को भी इसी प्रकार के चिंतन शिविर आयोजित करने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने अधिक से अधिक जल बचत तकनीक अपनाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने 2 दिवसीय गहन विचार विमर्श की सराहना की। उन्होंने सुझाव दिया कि ये सम्मेलन एक बार की कवायद नहीं रह जानी चाहिए, बल्कि निरंतर समीक्षा और आगे की कार्रवाई होनी चाहिए। श्री मोदी ने जन भागीदारी पर जोर देते हुए लोगों में व्यापक जागरूकता उत्पन्न करने के लिए जल उत्सव आयोजन को बढ़ावा देने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने बांध सुरक्षा के लिए प्रत्येक मानसून से पहले ठोस तैयारी, निर्धारित सावधानियों का पालन और शैक्षिक पाठ्यक्रमों में उपयुक्त रूप से शामिल कर स्कूली छात्रों के बीच जागरूकता पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में जल प्रबंधन तथा इसके प्रशासन से संबंधित ज्ञान और क्षमता मजबूत बनाने का आह्वान किया। भारत का 5वां विमान कल राहत और बचाव सहायता लेकर नेपाल पहुंचा। विमान में विशेष सुरंग बचाव उपकरणों से सुसज्जित 11 सदस्यीय बचाव दल और 5.5 टन आवश्यक दवाएं हैं। इस बीच नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,200 से अधिक हो गई है, जबकि 4,000 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। बचावकर्मी मूसलाधार बारिश और मलबे से जूझ रहे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री बालन शाह ने कल संसद में कहा कि इस बाढ़ से हुई तबाही हिमालय क्षेत्र में बढ़ते जलवायु जोखिम की एक गंभीर चेतावनी है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इसके प्रभावों को कम करने की जिम्मेदारी साझा करने का आह्वान किया। श्री शाह ने बताया कि नेपाल को भारत, चीन, अमेरिका, जापान, एशिया विकास बैंक, विश्व बैंक, यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र सहित कई स्रोतों और बहुपक्षीय साझेदारों से सहायता प्राप्त हुई है। रिजर्व बैंक ने बताया है कि उसकी विशेष अमेरिकी डॉलर भारतीय रुपया विदेशी मुद्रा विनिमय सुविधा में इस वर्ष 31 अगस्त तक 136 अरब डॉलर से अधिक का विदेशी मुद्रा प्राप्त हुआ है। रिजर्व बैंक ने 8 जून 2026 को FCNRB जमा ECB और OFCB के निवेश को सम्मिलित करने वाली विशेष विदेशी मुद्रा स्वैप सुविधा शुरू की। रुपये की कमजोरी के बीच डॉलर के प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए घोषित यह सुविधा मूल रूप से सितंबर के अंत तक उपलब्ध थी, लेकिन इसे सकारात्मक प्रतिक्रिया के कारण 1 महीने के लिए कम कर दिया गया। अब FCNRB में जमा के लिए ये योजना बंद कर दी गई है, जबकि ECB और OFCB के लिए ये सुविधा 31 दिसंबर 2026 तक उपलब्ध रहेगी। बेल्जियम के प्रधानमंत्री वॉडी वेवर 3 दिनों की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचने वाले हैं। उनके साथ बेल्जियम की रक्षा मंत्री थियो फ्रांकेन भी आ रहे हैं। पिछले वर्ष फरवरी में पदभार संभालने के बाद प्रधानमंत्री डी वेवर की यह भारत की पहली यात्रा है। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, जिसमें क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों सहित द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी।

आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। साथियों, समय हुआ है 12:10 और ये समय होता है बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम का। जी हाँ दोस्तों, आज जो कार्यक्रम होने वाला है बहुत ही शानदार और बेहतरीन खूबसूरत कार्यक्रम होने वाला है और प्रोग्राम आकाशवाणी सुरों का सफरनामा एक विशेष प्रस्तुति है गीतकार रानी मलिक पर। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत अनमोल गीत रचनाओं के साथ बहुत ही प्यारा कार्यक्रम प्रस्तुति, यानी कि अपने दोस्त अपने होस्ट आरजे ललित कुमार। जी हाँ, आ गया हूँ मैं आपके पास सभी साथियों के साथ। सुरों का सफरनामा, गीतकार रानी मलिक। शब्दों की वह रानी जिसके गीत आज भी दिलों में धड़कते हैं। यहाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सभी? जी हाँ, आई होप, पूरा विश्वास है कि आप सभी साथी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे, बिल्कुल हमारी ही तरह, है ना? आकाशवाणी के सुरों के इस खूबसूरत सफर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं हूँ आपका अपना साथी ललित कुमार, और आज का सफर किसी गायक की आवाज़ का नहीं, किसी संगीतकार की धुन का नहीं, बल्कि उन शब्दों का सफर है जो जब धुन से मिले तो गीत बन गए, जो जब आवाज से मिले तो एहसास बन गए, और जब दिल तक पहुंचे तो याद बनकर हमेशा के लिए ठहर गए। कभी किसी ने लिखा है कि धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, तो कभी शब्दों ने शरारत से कहा चुरा के दिल मेरा गोरिया चली, तो कहीं प्रेम की मासूमियत, कहीं जुदाई की कसक, कहीं दिल की बेचैनी, तो कहीं खिलखिलाती मोहब्बत। इन तमाम रंगों को शब्द देने वाली कलम का नाम है रानी मलिक, एक ऐसी गीतकार जिन्होंने हिंदी फिल्म संगीत के उस दौर में अपनी पहचान बनाई जब 90 का दशक रोमांस, कैसेटों, रेडियो और सुरीले फिल्मी गीतों का सुनहरा दौर था। रानी मलिक के लिखे गीतों की संख्या तो बहुत ज़्यादा है। जी हाँ, अलग अलग विभिन्न संगीत संग्रहों में 200 से अधिक दर्ज किए गए हैं। तो आज हम याद करेंगे उस कलम को जिसके शब्द कभी कुमार सानू की आवाज़ बने, तो कभी अलका याग्निक की मिठास, तो कभी अनुराधा पौडवाल की संवेदना, तो कभी विनोद राठौड़ की आवाज़, और कभी दूसरे अनेक सुरीले गलों से होकर करोड़ों श्रोताओं के दिल तक पहुंचे। तो आइए मेरे साथ आज शब्दों के इस रानी के दरबार में चलते हैं, सुनवाते हैं एक बहुत ही सुंदर खूबसूरत गीत से शुरुआत कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, और बड़ी खुशी की बात है कि इतने दिग्गज गीतकार, तो वाकई हमारा मन भी खुश हो रहा है और शायद आप सभी साथियों का भी मन खुश हो रहा होगा, है ना? और मुझे नहीं पता कि कौन कौन सुन रहे हैं हमारे प्रोग्राम को, लेकिन हाँ, ज़रूर सुनिएगा, तभी तो पता चलेगा कि हाँ, आखिरकार रानी मलिक कौन है। बहुत कम लोगों को जानकारी है, लेकिन आज हम लेकर आए हैं उन्हीं को। तो सुनवाते हैं सबसे पहला सुंदर खूबसूरत गीत। जी हाँ दोस्तों।

आप सबके मिजाज कैसे हैं? जी हाँ, तभी तो हम बताएंगे कि कैसे मिजाज हैं आपके, तभी तो हम जानेंगे आप खुश हैं, स्वस्थ हैं या मस्त हैं या फिर बिल्कुल हमारी तरह हैं। तो बस कैसे मिजाज आपके हैं तो बस फरमाइए। दिल है कि मानता नहीं फिल्म से एक शानदार खूबसूरत रचना, आज के कार्यक्रम सुरों का सफरनामा की पहली सुंदर खूबसूरत पसंद सभी की बन रही है और आवाज कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की है। ये फिल्म दिल है कि मानता नहीं 2005 में प्रदर्शित हुई थी और गीत के बोल जैसे कि हमने बताए हैं, लेकिन म्यूजिक या फिर लिरिक्स वो हैं रानी मलिक के। तो आइए सुनते हैं ये सुंदर बेहद लाजवाब गीत, रोमांटिक खूबसूरत रचना।

जी हाँ श्रोताओं, वाकई बहुत ही सुंदर बेहतरीन खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे। जी हाँ दोस्तों, साथियों कार्यक्रम चल रहा है सुरों का सफ़रनामा, और इस कार्यक्रम में आज मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त आपका होस्ट आरजे ललित कुमार। तो साथियों, जैसे कि हम जिक्र कर रहे थे सुरों का सफ़रनामा, जी हाँ जिस प्रकार से हमने बताया, आज शब्दों का इस रानी के दरबार में चलते हैं ना। जी हाँ चलिए, तो बस कहते हैं ये जो परिचय, थोड़ा सा परिचय हम बताना चाहेंगे उनका। रानी मलिक भारतीय फिल्म जगत की संगीतकार होने के साथ साथ संवाद लेखन और गायन से भी जुड़ी रहीं। उनका नाम विशेष रूप से 1990 के दशक के हिंदी फिल्म संगीत में उभर कर सामने आया। उनके गीतों में एक खासियत थी, सरल शब्द, सहज भाव और सीधे दिल तक पहुंचने वाली भाषा। उनकी लेखनी बहुत कठिन अल्फाज का प्रदर्शन नहीं करती, बल्कि रोजमर्रा की भावनाओं को गीत में बदल देती है। इसलिए उनका लिखा हुआ गीत सुनते ही लगता है, अरे ये तो मेरे ही दिल की बात है ना, लगता है ना। जी हाँ, हमें भी लगता है। फिल्म आशिकी जो 1990 में प्रदर्शित हुई थी, आशिकी और एक यादगार शुरुआत की थी इस गीत ने। तो आइए सुनवाते हैं एक और खूबसूरत गीत फिल्म आशिकी से। जी हाँ दोस्तों, बड़ी प्यारी फिल्म रही है आशिकी। संगीत अदीम श्रवण का था और आवाज़ सानू कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में। और जैसे कि आपको पता ही है किस गीत किसने लिखे हैं, वो हैं आपकी रानी, जी हाँ रानी मलिक। तो सुनवाते हैं बहुत ही प्यारा खूबसूरत गीत फिल्म आशिकी से।

जी हाँ दोस्तों, हम जिक्र कर रहे थे सन 1990 के दशक के रोमांटिक संगीत की पहचान बन गया था। जी हाँ दोस्तों, रानी मलिक को इसी गीत के लिए फिल्म फेयर से सर्वश्रेष्ठ गीतकार वर्ग में नामांकन मिला था। गीत से अगर हम, जैसे कि हमें आदत है शेर व शायरी करने की, जैसे ये गीत अभी आपने सुना था, वाकई बहुत ही सुंदर, धीरे धीरे मेरे दिल में आना, जी हाँ मेरी ज़िंदगी में आना, माफ़ कीजिएगा। कहते हैं कि धीरे धीरे दिल में कोई ख्वाब उतर गया, धीरे धीरे दिल में कोई ख्वाब उतर आया, और धीरे धीरे किसी ने हमें अपना बनाया। लफ्ज़ कम थे मगर एहसास बहुत गहरा था, रानी की फिल्म, रानी की कलम ने जिसे गीत बनाकर सुनाया, है ना, तभी तो याद आया ये सुंदर बेहतरीन खूबसूरत गीत। आशिकी का एक और खूबसूरत रंग है रानी मलिक का नाम, आशिकी के गीत में दुनिया भुला दूंगा, तेरी चाहत में, ये भी जुड़ा हुआ है। विभिन्न संगीत सूचियों में इस गीत के साथ रानी मलिक और समीर के नाम दर्ज हैं। मोहब्बत जब हदों से गुजर जाती है तो दुनिया भी छोटी नजर आती है, किसी एक चेहरे में सिमट जाती है जिंदगी, और हर धड़कन बस उसी की हो जाती है ना। तो आइए सुनते हैं एक और खूबसूरत गीत।

जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही खूबसूरत गीत, एक कवर सॉन्ग था ये, और बहुत ही प्यारा खूबसूरत गीत। साथियों, जैसे हम जिक्र कर रहे थे, किनका? जी हाँ, रानी मलिक का। एक इतनी सुंदर जो गीत उन्होंने लिखे हैं, तो वाकई बहुत ही कमाल के, न्यू जनरेशन की तरीके से अगर सोचे तो वाकई, जैसे हमने बताया था, ऐसी इतनी बहुत सारी फिल्में हैं और मोहब्बत करना बड़ी अच्छी बात है। जिसके पास मोहब्बत नहीं है तो वो उसकी ज़िंदगी हमेशा नीरस ही रहती है। प्यार नहीं है तो कुछ भी नहीं है। 1991 के दशक में काफ़ी सारी फिल्में आई थी, जैसे कि फूल और कांटे, और फिल्म के संगीतकार थे नदीम श्रवण और गीतकार रानी मलिक, और साथ में समीर भी शामिल थे। इस फिल्म ने रानी मलिक के नाम की दर्ज गीतों में, विशेष रूप से तुमसे मिलने को दिल करता है, रुक जाना तुमसे मिलने को

जैसे गीत उल्लेखनीय शायरी और मुलाकात की चाहत वाकई बहुत ही खूबसूरत होती है। मुलाकात की चाहत क्या कमाल होती है। दूरी भी दिल के पास कोई खास होता है, कभी रास्ता रोक लेती है मोहब्बत की पुकार, तो कभी मुलाकात पूरी जिंदगी का सफल हो जाती है। तुमसे मिलने को दिल करता है, बहुत ही सुंदर और बेहद खूबसूरत गीत है। तो आइए सुनते हैं एक और खूबसूरत रचना।

जी हाँ दोस्तों, तुमसे मिलने का दिल करता है। दिल तो हर एक इंसान का करता है जो प्यार करता है ना। तुमसे मिलने का दिल करता है। साथियों, 1993 की जो फिल्म है बाजीगर, बड़ी खूबसूरत सुपर डुपर हिट फिल्म रही है। और अब आते हैं उस फिल्म पर जिसने रानी मलिक की कलम को एक और बड़ी पहचान दी, बाजीगर। जी हाँ दोस्तों, 1993 में आई इस फिल्म के संगीतकार थे अनु मलिक और गीतकारों में रानी मलिक भी शामिल थी। रानी मलिक के लिखे गीतों में छुपाना भी नहीं आता, तेरे चेहरे पे मुझे प्यार नजर आता है, विशेष रूप से याद किए जाते हैं ऐसे खूबसूरत गीत। चेहरा कोई किताब हो तो पढ़ना आसान नहीं, चेहरा कोई किताब हो तो पढ़ना आसान नहीं, आंखों में छुपे राज को समझाना आसान नहीं, मोहब्बत को मोहब्बत हो तो लफ्ज़ों की ज़रूरत कहाँ रहती है, मोहब्बत हो तो लफ्ज़ों की ज़रूरत कहाँ रहती है, कभी खामोशी भी कह देती है, प्यार छुपाना नहीं आता। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, इतना सुंदर खूबसूरत गीत है और जो अल्फाज हैं बहुत ही खूबसूरत लाजवाब है ना। तो आइए सुनते हैं कौन सा। जी हाँ, वही गीत की बात कर रहे हैं, छुपाना भी नहीं आता। जी हाँ, बताना भी नहीं आता। आइए सुनते हैं एक और सुंदर रचना।

जी हाँ दोस्तों, गीत तो बहुत ज़्यादा हैं और समय बहुत कम है। या दोस्तों क्या कहें हम, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी। जी हाँ दोस्तों, 1994 प्रदर्शित फिल्म, बहुत ही खूबसूरत अंदाज। साथियों, ऐसे बहुत सारे गाने हैं, तेरे चेहरे पे मुझे प्यार नज़र आता है, विशेष रूप से याद किए जाते हैं। और मोहब्बत तो क्या कहें, मोहब्बत ही मोहब्बत भरी है उनके गीतों में। छुपाना भी नहीं आता, बताना भी नहीं आता। 1994 की फिल्म मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, और फिर उसके बाद एक और फिल्म आई, यह गीत जिसने शादी ब्याह से लेकर पार्टियों तक अपनी हर जगह अपनी जगह बना ली। चुरा के दिल मेरा गोरिया चली, फिल्म मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी। संगीत अनु मलिक का, आवाज अलका याग्निक और कुमार सानू की, गीत रानी मलिक के। कहते हैं कि नजर मिली तो दिल ने इशारा कर दिया, एक मुस्कान ने मौसम दोबारा कर दिया। वो आए तो लगा जैसे बहार आ गई, और जाते जाते दिल भी हमारा बेकरार कर दिया। चुरा के दिल मेरा। जैसो दोस्तों, सुनवाई के तो जरूर, लेकिन उससे पहले और बहुत सारी फिल्में हैं। 1994 की फिल्म दुलारा, रानी मलिक की लेखनी का एक अलग रंग दुलारा में भी दिखाई दिया। गीतों में रोमांस के साथ चुलबुलापन और लोकप्रियता, फिल्मी भाषा दिखाई दी। उनसे जुड़े गीतों में एक है अनार यहाँ, एक है अनार यहाँ जैसा लोकप्रिय गीत भी दर्ज किया गया है। कभी इश्क शर्मा कर मुस्कुराता है, तो कभी छेड़ कर दिल को बहलाता है। मोहब्बत सिर्फ आंसू का नाम नहीं, कहीं हंसाती है तो कहीं गुदगुदाती है। 1995 की फिल्म हकीकत, जी हाँ दोस्तों, बहुत ही प्यारी फिल्म रही है। रानी मलिक के नाम से दर्ज गीत, मैं मेरे दिल में, धड़कन में, सांसों में बंद हूँ। कुमार सानू और अलका याग्निक की बेहतरीन आवाज़ यह संगीत प्रेम की गहराइयों को व्यक्त करता है। धड़कन में बसने का वादा कर लिया, सांसों को भी अपना आधा कर लिया। मोहब्बत की हद पूछते लोग, मगर हमने तो खुद से ही तुम्हारा कर लिया। 1995 प्रदर्शित फिल्म रही है कर्तव्य। अब वह पड़ाव आ रहा है जहां रानी मलिक की लेखनी को

बड़ा सम्मान मिला। फिल्म कर्तव्य गीत धड़कता था पहले दिल मेरा, और इसी गीत के लिए रानी मलिक ने 1996 के स्टार स्क्रीन अवार्ड फॉर बेस्ट लिरिक्स का सम्मान जीता। पुरस्कार सूचियों में ऐसे बहुत सारे पुरस्कार हैं, यह उपलब्धि स्पष्ट रूप से दर्ज है। विशेष प्रस्तुति से पहले, जैसे कि उनकी जो कलम है, जब कलम को सम्मान मिलता है तो सिर्फ गीतकार को नहीं जीतता, गीतकार नहीं जीतता, जीतते हैं वे सारे एहसास जिन्हें अपना कागज में उतारा, उन्होंने उसने कागज में उतारा था। और रानी मलिक के लिए यह सम्मान उनकी रचनात्मक यात्रा का एक महत्वपूर्ण मुकाम था। जी दोस्तों, वाकई बहुत ही कमाल, और बहुत ही कम साथी हैं जिन्होंने गीत तो सुने हैं लेकिन किसने लिखे हैं वो शायद बहुत ही कम लोगों को पता होता है ना। तो फिलहाल हम एक और गीत सुनवा रहे हैं, और समय तो ज़्यादा इजाज़त नहीं दे रहा है, बस केवल 9 मिनट बाकी हैं, और कोशिश करेंगे हम जितनी हम जानकारी बता सकते हैं और जितने हम गीत चला सकते हैं। तो बस फिलहाल हम सुनवा रहे हैं एक बहुत ही प्यारा खूबसूरत गीत, मैं दुनिया भुला दूंगा।

साथियों, ये गीत शायद हमने प्ले कर दिया है, लेकिन हम दूसरा गीत सुनवा रहे हैं और बड़ा ही प्यारा गीत है। और ये गीत वाकई बहुत ही रोमांटिक और खूबसूरत गीत है।

जी हाँ दोस्तों, रात का समय है तो नींदें उड़ाने लगे ज़रा ज़रा। साथियों, जानकारियाँ बहुत सारी हैं और गीत भी बहुत सारे हैं। जी हाँ दोस्तों, और 1996 में छोटे सरकार फिल्म आई थी। छोटे सरकार आनंद मिलिंद का संगीत और रानी मलिक की जोड़ी ने वाकई बहुत ही सुंदर सुंदर जो रचनाएं दी हैं वाकई बहुत ही कमाल की हैं, है ना। 1996 में एक और फिल्म थी, ये मोहब्बत। जी हाँ दोस्तों, और ऐसी तमाम फिल्में 1996-97 विविध रंग इस दौर में, या दरार, आतंक, छोटा सा घर, उफ, ये मोहब्बत जैसी फिल्मों में रानी मलिक के गीत दर्ज मिलते हैं। यह वह दौर था जब उनकी कलम प्रेम गीत, पारिवारिक गीत, दर्द और मस्ती हर रंग को छू रही थी। 1997 में फिल्म आई थी दावा। फिल्म दावा में रानी मलिक ने से जुड़े गीत हम सभी को दीवाना कर दिया था। जी हाँ, 1 for All दर्ज हैं। इतने अवार्ड मिले हैं उन्हें तो जिसमें काफ़ी सारे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जिंदगी में रंग बहुत हैं मगर नज़र चाहिए, गीत वही सुंदर हैं जिसमें दिल की खबर चाहिए। कभी इश्क, कभी दोस्ती, तो कभी मस्ती का रंग, हर एहसास को शब्द देने वाली कलम चाहिए। 1998 फिल्म मेहंदी। ऐसी तमाम फिल्में हैं जिसका जिक्र हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि समय बिल्कुल भी नहीं रहा है। 1999 की फिल्म सफ़र जारी रहा। 1999 में रानी मलिक का नाम सफारी फूल और आग, लाल बादशाह और होते होते प्यार हो गया जैसी फिल्मों के साथ भी दर्ज है। यानी 90 का दशक उनके लिए केवल 1-2 सुपरहिट गीतों का दौर नहीं था बल्कि लगातार काम करते रहने का दौर था। 2000 से लेकर 2001 तक नई सदी आई, संगीत का अंदाज बदला लेकिन रानी मलिक की लेखनी फिल्म संगीत में दिखाई देती रही। खौफ जो फिल्म रही थी 2000 में और अलबेला 2001 में जैसी फिल्मों में उनसे गीतकार के रूप में क्रेडिट दिया गया है और अलबेला में उनके नाम से दर्ज गीतों में दिल हमारा हुआ जैसे गीत शामिल हैं। 2003 में ताड़ा। 2003 में ही फिल्म ताड़ा में भी रानी मलिक के गीत के रूप में क्रेडिट दर्ज है। 90 के दशक में लोकप्रियता के बाद भी पूरी तरह से रुका नहीं और फिलहाल टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, हम गाना भी नहीं सुनवा पाएंगे लेकिन बस इतना कहेंगे, जाते जाते जी हाँ दोस्तों, आज के सुरों का सफरनामा में हमने सफ़र की एक ऐसी गीतकार की दुनिया का जिन्होंने शब्दों को धुन से साथ इस तरह मिलाया कि शब्द हमारी अपनी कहानी लगने लगे। रानी मलिक ने शायद हर गीत में यही कहा कि गीत सिर्फ गाया नहीं जाता, गीत महसूस किया जाता है। और जब कोई गीत दशकों बाद भी हमारे होठों पर आए तो समझ लीजिएगा गीतकार की कलम के साथ ही हमारा नाता है। आज रानी मलिक के हमारे बीच ना होने या होने, कलम के शब्द आज भी जिंदा हैं। बेशक नहीं है इस दुनिया में लेकिन जब कोई गुनगुनाता रहे धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, जब कोई मुस्कुराकर कहेगा दिल चुरा के दिल मेरा, तमाम ऐसी बातें हैं जो हम ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पाएंगे और सिर्फ 1 मिनट का गीत ही आपको सुनवाएंगे। छोड़े जा रहे हैं इस खूबसूरत गीत के साथ, आज मुझे यानी अपने दोस्त ललित कुमार को दीजिए इजाज़त। छोड़े जा रहा हूँ इस सुंदर खूबसूरत गीत के साथ। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जनसंख्या वृद्धि और भविष्य में जल की जरूरतों सहित शहरीकरण से उत्पन्न चुनौतियों के प्रति शहरी स्थानीय निकायों को संवेदनशील बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कल जल शक्ति मंत्रालय की ओर से जल पर आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता करते हुए शहरी स्थानीय निकायों को भी इसी प्रकार के चिंतन शिविर आयोजित करने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने अधिक से अधिक जल बचत तकनीक अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने भारतीय विनिर्माणकर्ताओं और हितधारकों को दुनिया के सर्वोत्तम तौर तरीकों से रूबरू कराने सहित उनके लिए समर्पित प्रदर्शनियां और कार्यशालाएं आयोजित करने का भी सुझाव दिया, ताकि वे कुशल समाधान विकसित कर सकें और उन्हें बड़े स्तर पर लागू करने में सक्षम हो सकें। प्रधानमंत्री ने दो दिवसीय गहन विचार विमर्श की सराहना की और जोर देकर कहा कि इस शिखर सम्मेलन से उपजे कार्रवाई योग्य और संबद्ध कार्य बिंदुओं को निरंतर समीक्षा और सीखने की प्रक्रिया द्वारा आगे बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि ये सम्मेलन एक बार की कवायद नहीं रह जानी चाहिए, बल्कि निरंतर समीक्षा और आगे की कार्रवाई जरूरी है। श्री मोदी ने जन भागीदारी पर जोर देते हुए लोगों में व्यापक जागरूकता उत्पन्न करने के लिए जल उत्सव आयोजन को बढ़ावा देने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने बांध सुरक्षा के लिए प्रत्येक मानसून से पहले ठोस तैयारी, निर्धारित सावधानियों का पालन और शैक्षिक पाठ्यक्रमों में उपयुक्त रूप से शामिल कर स्कूली छात्रों के बीच जागरूकता पर जोर दिया। भारत से नेपाल पहुंचे 11 बचाव विशेषज्ञों का दल विशेष उपकरणों के साथ कल त्रिशूली बाजार के पास पहुंच गया। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि वे नेपाली सेना के साथ मिलकर आज से काम शुरू करेंगे। भारत की ओर से नेपाल को बचाव और राहत सहायता जारी है। भारतीय वायुसेना की पांचवी उड़ान कल मानवीय सहायता लेकर काठमांडू पहुंची। इसमें एंटीबायोटिक्स, दर्द निवारक दवाएं, सर्जिकल साजो सामान और अन्य जरूरी दवाओं सहित लगभग 5.5 टन चिकित्सा सहायता शामिल है। उड़ान में 11 सदस्यों वाली विशेषज्ञ टीम और 6 टन से ज्यादा बचाव उपकरण भी भेजे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस नई सहायता खेप के साथ भारत ने नेपाल में अब तक लगभग 74 टन राहत सहायता भेजी है। विनाशकारी बाढ़ से 1200 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। रिजर्व बैंक ने बताया है कि उसकी विशेष अमरीकी डॉलर भारतीय रुपया विदेशी मुद्रा विनिमय सुविधा में इस वर्ष 31 अगस्त तक 136 अरब डॉलर से अधिक का विदेशी मुद्रा प्राप्त हुआ है। रिजर्व बैंक ने 8 जून 2026 को एफसीएनआरबी जमा ईसीबी और ओएफसीबी के निवेश को सम्मिलित करने वाली विशेष विदेशी मुद्रा स्वैप सुविधा शुरू की। रुपये की कमजोरी के बीच डॉलर के प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए घोषित यह सुविधा मूल रूप से सितंबर के अंत तक उपलब्ध थी, लेकिन इसे सकारात्मक प्रतिक्रिया के कारण 1 महीने के लिए कम कर दिया गया। पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र न्यास का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। न्यास के अध्यक्ष मंत्र नित्य गोपाल दास की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के बाद कल इसकी घोषणा की गई। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, विदर्भ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी तेज वर्षा होगी। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आंतरिक कर्नाटक में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 2027 में होने वाली पहली महिला क्रिकेट चैंपियंस

0: The match will begin at 8 p.m. Indian Standard Time. The women in blue opened their campaign with a convincing 94-run win over Thailand in Dubai on Sunday. A victory over Hong Kong will help the Harmanpreet Kaur-led side secure a place in the semi-finals of the ongoing 8-team tournament. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। साथियों, समय हुआ है 1:10 और ये समय होता है बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम का। जी हाँ, कार्यक्रम गीत सुनहरे। आज मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त ललित कुमार। तो आज सुनवा रहे हैं एक बहुत ही सुंदर खूबसूरत गीत। फिल्म कौन सी है तो हम बता देते हैं। बड़ा प्यारा गीत है, बहुत ही शानदार रचना है। ये गीत अपने आप में बहुत ही सुंदर है। गीता दत्त और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में सुंदर बेहतरीन रचना से शुरुआत कर रहे हैं हम आज। जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, मिस्टर एंड मिसेस 55 फिल्म से एक शानदार खूबसूरत रचना है। गीता दत्त और मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में 1955 प्रदर्शित फिल्म रही है और गीत मजरूह सुल्तानपुरी के हैं और संगीत ओपी नैयर का। तो आइए सुनते हैं आज के कार्यक्रम गीत सुनहरे की सुंदर खूबसूरत रचना, पहली रचना।

जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही सुंदर खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे। गीता दत्त और मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में सुंदर रचना। जी हाँ, छेड़छाड़ वाला ही समझ लीजिए, ये खूबसूरत गीत है और वाकई बहुत ही कमाल का है ना। तो आइए सुनते हैं एक और सुंदर खूबसूरत रचना, और ये रचना है ना तूफान से खेलो, उड़न खटोला फिल्म से, मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में। उड़न खटोला फिल्म 1955 प्रदर्शित फिल्म रही है और गीत शकील बदायूनी के हैं और संगीत नौशाद का। तो आइए सुनते हैं एक और बेहतरीन रचना।

जी हाँ दोस्तों, ना तूफ़ान से खेलो, वाकई बड़ा ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत गीत। साथियों, एक और गीत आ रहा है, बहुत ही सुंदर, बड़ी रंगीली जिंदगी। जी हाँ, फिल्म श्रीमती 420 फिल्म से, जो 1956 प्रदर्शित फिल्म रही है, आवाज़ गीता दत्त की और संगीत ओपी नैयर का। तो आइए सुनते हैं एक और सुंदर गीत।

0: मजा ये जिंदगी है, तू मुस्कुराए जा।
1: वाह क्या बात है, कितना बेहतरीन खूबसूरत गीत, मजा आ गया है ना हम सबको। बढ़ते हैं एक और सुंदर गीत की ओर। ये गीत है बड़ा ही मस्ती भरा लाजवाब गीत, सर पे टोपी लाल। जी हाँ, सर पे टोपी लाल, हाथ में रेशम का रुमाल, फिल्म तुमसा नहीं देखा, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में सुंदर रचना। संगीत ओपी नैयर साहब का ही है और फिल्म तुमसा नहीं देखा जो 1957 प्रदर्शित फिल्म रही है, इसी फिल्म का गीत बड़ा ही सुंदर है और मोहम्मद रफ़ी आशा भोसले की आवाज़ में बेहतरीन मस्ती भरा लाजवाब अनमोल गीत।

क्या मस्ती भरा लाजवाब खूबसूरत गीत, वाह छेड़छाड़ा भी, रोमांटिक भी, बहुत ही शानदार बेहतरीन रचना अभी आपने सुनी। जी हाँ, सर पे टोपी लाल, हाथ में रेशम का रुमाल। बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गीत की, और ये गीत भी बड़ा ही प्यारा है, बहुत ही सुंदर है। चांदी का बदन, जी हाँ फिल्म ताजमहल से, बहुत ही सुंदर खूबसूरत रचना है। मन्ना डे, रफ़ी साहब और आशा भोसले की आवाज़ में, यानी कि तीन गायक हैं जिन पर फिल्माया गया है। सुंदर खूबसूरत उनकी आवाज़ में 1963 प्रदर्शित फिल्म है। एक तरीके से देखा जाए तो ये बेसिकली एक कव्वाली है, बहुत ही प्यारी कव्वाली है। तो आइए सुनते हैं एक और खूबसूरत रचना कव्वाली के रूप में।

0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही सुंदर कव्वाली। आपस में बहस चल रही है। जी हाँ दोस्तों, तीन तीन गायकों के साथ साथियों एक और प्यारा सा गीत आ रहा है, गोरी जरा हंस के तो दू। असली नकली फिल्म से मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में सुंदर रचना, और ये फिल्म असली नकली 1962 प्रदर्शित फिल्म रही है, और गीत हसरत जयपुरी के हैं, संगीत से सजाया है शंकर जय किशन ने। तो आइए सुनते हैं एक और बेहतरीन रचना।
1: गोरी जरा हंस दे तू, हंस दे तू, हंस दे जरा, ओ छोरी जरा हंस दे।

जी हाँ जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही सुंदर। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल। साथ ही इस प्रोग्राम को आप इंद्रप्रस्थ चैनल पर भी सुन सकते हैं। साथियों, बड़ा ही सुंदर खूबसूरत गीत आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत है और ये रोमांटिक है लेकिन थोड़ा सा गमगीन भी है। तो ये गीत है मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, फिल्म मेरे महबूब से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में सुंदर रचना, जो 1963 प्रदर्शित फिल्म मेरे महबूब से था। गीत शकील बदायूं ने के और संगीत से सजाया है नौशाद ने। आइए सुनते हैं ये सुंदर और खूबसूरत अनमोल रचना।

जी हाँ दोस्तों, बहुत ही सुंदर खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म मेरे महबूब फिल्म से, मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में सुंदर रचना। एक बड़ा ही प्यारा खूबसूरत गीत आ रहा है। ये गीत वाकई मेरे दिल के बहुत करीब है और शायद शायद हमारे लिसनर्स हैं या श्रोता साथी हैं तो उनको भी शायद ये गीत बहुत ही सुंदर, बहुत ही पसंद आएगा। जी हाँ दोस्तों, कल भी हमने एक गीत गुनगुनाया था और वाकई वो गीत दोबारा से हम प्ले कर रहे हैं और ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में है, फिल्म वो कौन थी। जी हाँ दोस्तों, वो कौन थी 1964 प्रदर्शित फिल्म रही है वो कौन थी, और संगीत मदन मोहन का है। आइए सुनते हैं ये शानदार बेहतरीन रचना।

जी हाँ दोस्तों, बहुत ही सुंदर बेहतरीन खूबसूरत कव्वाली अभी आप सुन रहे थे। जी हाँ, जो कव्वाली वाकई मुझे भी पसंद है, लग जा गले से लग जा। जी हाँ, जब गले से लग जाते हैं तो जो हमारी जो वाइब्रेशंस होती हैं और जो ऑरा होती है, जी हाँ, दिल में दिल से दिल तक मिल जाती हैं, है ना साथियों। कार्यक्रम गीत सुनहरे की अंतिम प्रस्तुति आ रही है बहुत ही सुंदर गीत के साथ, और ये प्रस्तुति वाकई बहुत ही लाजवाब है। मेरा प्यार भी तू है, बहुत ही सुंदर लाजवाब रचना है, और मेरा प्यार रूप सुंदरी एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म है, सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में शानदार रचना है। रूप सुंदरी फिल्म 1964 प्रदर्शित फिल्म रही है, संगीत सरदार मलिक का है। तो आइए सुनते हैं आज के कार्यक्रम शुरू के गीत सुनहरे कार्यक्रम की अंतिम रचना। छोड़े जा रहा हूँ इस खूबसूरत गीत के साथ, मुझे दीजिए इस खूबसूरत कार्यक्रम गीत सुनहरे से इजाज़त। नमस्कार।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जनसंख्या वृद्धि और भविष्य में जल की जरूरतों सहित शहरीकरण से उत्पन्न चुनौतियों के प्रति शहरी स्थानीय निकायों को संवेदनशील बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने कल जल शक्ति मंत्रालय की ओर से जल पर आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता करते हुए शहरी स्थानीय निकायों को भी इसी प्रकार के चिंतन शिविर आयोजित करने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने अधिक से अधिक जल बचत तकनीक अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने भारतीय विनिर्माणकर्ताओं और हितधारकों को दुनिया के सर्वोत्तम तौर तरीकों से रूबरू कराने सहित उनके लिए समर्पित प्रदर्शनियां और कार्यशालाएं आयोजित करने का भी सुझाव दिया, ताकि वे कुशल समाधान विकसित कर सकें और उन्हें बड़े स्तर पर लागू करने में सक्षम हो सकें। प्रधानमंत्री ने 2 दिवसीय गहन विचार विमर्श की सराहना की और जोर देकर कहा कि शिखर सम्मेलन से उपजे कार्रवाई योग्य और समयबद्ध कार्य बिंदुओं को निरंतर समीक्षा और सीखने की प्रक्रिया द्वारा आगे बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि सम्मेलन एक बार की कवायद नहीं रह जानी चाहिए, बल्कि निरंतर समीक्षा और आगे की कार्रवाई जरूरी है। भारत से नेपाल पहुंची 11 बचाव विशेषज्ञों का दल विशेष उपकरणों के साथ कल त्रिशूली बाजार के पास पहुंच गया। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि वे नेपाली सेना के साथ मिलकर आज से काम शुरू करेंगे। भारत की ओर से नेपाल को बचाव और राहत सहायता जारी है। भारतीय वायुसेना की 5वीं उड़ान कल मानवीय सहायता लेकर काठमांडू पहुंची। इसमें एंटीबायोटिक्स, दर्द निवारक दवाएं, सर्जिकल साजो सामान और अन्य जरूरी दवाओं सहित लगभग 5.5 टन चिकित्सा सहायता शामिल है। उड़ान में 11 सदस्यों वाली विशेषज्ञ टीम और 6 टन से ज्यादा बचाव उपकरण भी भेजे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस नई सहायता खेप के साथ भारत ने नेपाल में अब तक लगभग 74 टन राहत सहायता भेजी है। बेल्जियम की प्रधानमंत्री वॉर्डी वेवर 3 दिनों की भारत यात्रा पर आज रात नई दिल्ली पहुंच गए हैं। उनके साथ बेल्जियम की रक्षा मंत्री थियो फ्रांकेन भी हैं। पिछले वर्ष फरवरी में पदभार संभालने के बाद प्रधानमंत्री डी वेवर की यह भारत की पहली यात्रा है। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आज द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, जिसमें क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों सहित द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री वेवर भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में भारतीय उद्योग परिसंघ के कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र न्यास का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। न्यास के अध्यक्ष महेंद्र नित गोपाल दास की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के बाद कल इसकी घोषणा की गई। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के 3 नए सदस्यों के नामों की भी घोषणा कर दी गई है। भारत ने यूरोपीय संघ, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और कई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ आर्थिक साझेदारी मजबूत बनाने की दिशा में कदम उठाए हैं। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना प्रांत के एशविली शहर में G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निवेश, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला और उन्नत प्रौद्योगिकी तक बेहतर पहुंच के प्रयास में अलग से कई द्विपक्षीय बैठकें की। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, विदर्भ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी तेज वर्षा होगी। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आंतरिक कर्नाटक में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान है। 2020 महिला एशिया कप क्रिकेट में ग्रुप बी में श्रीलंका ने इंडोनेशिया को 75 रन से हरा दिया। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में श्रीलंका ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 124 रन बनाए। महिला एशिया कप क्रिकेट में आज भारत का सामना हांगकांग से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

समय हुआ है 2:10। गीत बहार कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त ललित कुमार। ये कार्यक्रम होता है बहुत ही सुंदर खूबसूरत, जिसमें बार बार रुकने की आवश्यकता नहीं होती है। जी हाँ, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक होता है ये। जी हाँ, तो बस लगातार बिना किसी रुकावट के, अब बिना किसी आवाज के कंटिन्यू आप सुन सकते हैं बिल्कुल नॉन स्टॉप खूबसूरत गीत। तो शुरुआत करते हैं एक गीत से, उसके बाद नॉन स्टॉप गीत आपको सुनाई देंगे। जी हाँ, नॉन स्टॉप। तो सुनवाते हैं आज के कार्यक्रम गीत बहार की पहली सुंदर खूबसूरत रचना, उसके बाद लगातार नॉन स्टॉप प्ले होंगे अपने आप ऑटोमेटिकली सिस्टम गीत बहार में। सुनते हैं ये शानदार रचना, और ये रचना वाकई बड़ी ही प्यारी है, बहुत ही खूबसूरत है। वो इस मायने में है क्योंकि कन्हैया आने वाले हैं कल आपके पास, हम सबके पास। कन्हैया वो कहना कहना आन पड़ी मैं फिल्म शागिर्द से, लता मंगेशकर की बहुत ही सुंदर मधुर आवाज में शानदार रचना। फिल्म शागिर्द 1967 प्रदर्शित फिल्म रही है और गीत मजरूह सुल्तानपुरी के हैं और संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। तो आइए सुनते हैं गीत बहार कार्यक्रम की पहली सुंदर बेहतरीन रचना।

जी हाँ दोस्तों, बहुत ही सुंदर खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे। साथियों, दो गीत अब भी हम प्ले करेंगे और वाकई बहुत ही अच्छे अच्छे गीत अभी आप सुन रहे थे और हमें भी बेहद खुशी है कि आप सभी साथी भी सुन रहे हैं। और बड़ा अच्छा लगता है जब साथी सुन रहे होते हैं किसी भी कार्यक्रम को। साथियों, कार्यक्रम चल रहा है गीत बहार। गीत बहार में आज मैं हूँ आपके साथ, आपका दोस्त ललित कुमार। तो साथियों, एक और गीत आ रहा है, बहुत ही सुंदर, बड़ा ही प्यारा खूबसूरत गीत है और हमारी एक साथी हैं, सुनना चाहती हैं। बहुत ही प्यारा सा गीत है ये। जी हाँ, तो सुनवा रहे हैं उनको बहुत ही खूबसूरत गीत, ये रात फिर ना आएगी फिल्म से, महेंद्र कपूर की आवाज़ में शानदार रचना। ये फिल्म ये रात फिर ना आएगी 1965 प्रदर्शित फिल्म है और गीतकार हैं SH बिहारी और संगीत से सजाया है OP नय्यर साहब ने। तो आइए सुनते हैं ये गीत, हम मुझे भी बहुत ही पसंद है और हमारी सखी को भी शायद ज़रूर पसंद आएगी ये खूबसूरत रचना। तो आइए सुनवाते हैं ये शानदार बेहतरीन आज के कार्यक्रम गीत बहार की सेकंड लास्ट प्रस्तुति।

बोलूं क्या मैं? अरे बोल कन्हैया,

0: ভাবি
1: না ভাবি রুন কেন ছি জেশন
2: বলি সাবন কিরা
0: ও বড়ি পাবন হে বাত।
3: जी हाँ श्रोताओं, इन्हीं सभी गीतों के साथ आज का गीत बहार कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मुझे यानी अपने दोस्त ललित कुमार को दीजिए अनुमति। 3 बजने के हैं, अब हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनिए।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जनसंख्या वृद्धि और भविष्य में जल की जरूरतों सहित शहरीकरण से उत्पन्न चुनौतियों के प्रति शहरी स्थानीय निकायों को संवेदनशील बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कल जल शक्ति मंत्रालय की ओर से जल पर आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता करते हुए शहरी स्थानीय निकायों को भी इसी प्रकार के चिंतन शिविर आयोजित करने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने अधिक से अधिक जल बचत तकनीक अपनाने का आह्वान

0: किया। उन्होंने भारतीय विनिर्माणकर्ताओं और हितधारकों को दुनिया के सर्वोत्तम तौर तरीकों से रूबरू कराने सहित उनके लिए समर्पित प्रदर्शनियां और कार्यशालाएं आयोजित करने का भी सुझाव दिया, ताकि वे कुशल समाधान विकसित कर सकें और उन्हें बड़े स्तर पर लागू करने में सक्षम हो सकें। भारत से नेपाल पहुंचे 11 बचाव विशेषज्ञों का दल विशेष उपकरणों के साथ कल त्रिशूली बाजार के पास पहुंच गया। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि वे नेपाली सेना के साथ मिलकर आज से काम शुरू करेंगे। भारत की ओर से नेपाल को बचाव और राहत सहायता जारी है। भारतीय वायुसेना की 5वीं उड़ान कल मानवीय सहायता लेकर काठमांडू पहुंची। इसमें एंटीबायोटिक्स, दर्द निवारक दवाएं, सर्जिकल साजो सामान और अन्य जरूरी दवाओं सहित लगभग 5.5 टन चिकित्सा सहायता शामिल है। उड़ान में 11 सदस्यों वाली विशेषज्ञ टीम और 6 टन से ज्यादा बचाव उपकरण भी भेजे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस नई सहायता खेप के साथ भारत ने नेपाल में अब तक लगभग 74 टन राहत सहायता भेजी है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री वॉर्डी वेवर 3 दिनों की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। उनके साथ बेल्जियम की रक्षा मंत्री थियो फ्रांकिन भी हैं। पिछले वर्ष फरवरी में पदभार संभालने के बाद पहली बार भारत पहुंचे प्रधानमंत्री डी वेवर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, जिसमें क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों सहित द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री वेवर भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में भारतीय उद्योग परिसंघ के कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। भारत ने यूरोपीय संघ, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और कई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ आर्थिक साझेदारी मजबूत बनाने की दिशा में कदम उठाए हैं। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना प्रांत के एशविले शहर में G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निवेश, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला और उन्नत प्रौद्योगिकी तक बेहतर पहुँच के प्रयास में अलग से कई द्विपक्षीय बैठकें की। आर्थिक और वित्तीय मामलों के यूरोपीय आयुक्त वाल्डिस डोम्ब्रोस्किस के साथ बातचीत में दोनों पक्षों ने भारत यूरोपीय संघ आर्थिक और वित्तीय साझेदारी मजबूत बनाने पर चर्चा की। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा है कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का प्रक्षेपण 4 सितम्बर को किया जाएगा। उपग्रह को GSLV-F17 रॉकेट के जरिए 4 सितंबर की सुबह 2:55 पर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया जाएगा। श्री नारायण ने कहा कि EOS-05 अत्याधुनिक पृथ्वी अवलोकन अंतरिक्ष यान है और यह भू समकालिक कक्षा में स्थापित किए जाने वाला भारत का पहला इमेजिंग उपग्रह है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, विदर्भ और पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी तेज वर्षा होगी। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आंतरिक कर्नाटक में गरज, चमक और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान है। 2020 महिला एशिया कप क्रिकेट में ग्रुप बी में श्रीलंका ने इंडोनेशिया को 75 रन से हरा दिया है। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में श्रीलंका ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 124 रन बनाए। महिला एशिया कप क्रिकेट में आज भारत का सामना हांगकांग से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Akhila. India has stepped up its relief operation in flood-hit Nepal, with New Delhi delivering a 5th tranche of emergency material. India's ambassador to Nepal in a social media post shared that the 5th Indian aircraft carrying relief and rescue assistance arrived in the Himalayan nation yesterday. The aircraft carried an 11-member rescue team equipped with specialized tunnel rescue equipment, along with 5.5 tons of essential medicines. The flash floods triggered by the collapse or avalanche of ice and rock near the Nepal-Tibet border devastated towns and villages in northern and central Nepal on the 26th of last

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गजल और गीत। आइए कार्यक्रम में सबसे पहले सुनते हैं तलत अजीज की गाई हुई ये गजल।

ये गजल आप सुन रहे थे हरिहरन की आवाज में। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत और गजल। इस कार्यक्रम में हम आज आपको सुनवा रहे हैं गजलें। आइए सुनते हैं कार्यक्रम के में अगली गजल जगजीत सिंह की आवाज में।

ये गज़ल आप सुन रहे थे अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाज़ में। अब आपको सुनवाते हैं रूप कुमार राठौर की आवाज़ में ये खूबसूरत सी गज़ल।

ये गजल आप सुन रहे थे रूना लैला की आवाज में। अब आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम की आखिरी गजल सोनाली राठौर की आवाज में।

कार्यक्रम की ये आखिरी गज़ल आप सुन रहे थे सोनाली राठौर की आवाज़ में। इसी के साथ ही कार्यक्रम गीत और गज़ल अब यहीं समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल है। अब प्रस्तुत है कर्नाटक भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

नारायण तीर्थ की एक रचना सुनिए। कलाकार हैं नेदुनुरी कृष्णमूर्ति, एम जलजाक्षी, एम वी रमणम मूर्ति, पी सूर्या राव, एम एल नरसिम्हम, एस वसुंधरा देवी और एम जोगुलाम्बा।

0: इसके साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना अब समाप्त होता है।
1: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम नाद ब्रह्म।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। आज बृहस्पतिवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 12वीं तिथि। तदनुसार 3 सितंबर सन 2026। इस समय सुबह के 4:53 और 55 सेकंड हुए हैं। अब हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

अब प्रस्तुत है हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। अब से कुछ ही पलों में यानी 5 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, 5:05 पर होंगे अंग्रेजी में समाचार। आओ योग करें, ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे प्रातः 5:00।

10 मिनट पर। 5:30 पर आप सुनेंगे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर रंजनी। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुन सकेंगे प्रातः 6:10 पर।

जिन दिन ये कार्यक्रम होगा प्रातः 6:40 पर, 6:45 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस कांड से आज का प्रसंग अयोध्या कांड भाग 37।

संगीतिका ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे प्रातः 7:10 से। 7:30 पर होगा हमारा फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वरगंगा आप सुन सकेंगे प्रातः 8:45 पर।

प्रातः 9:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम उद्योग पत्रिका। पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक होगा प्रातः 9:30 से।

0: फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद आप सुन सकेंगे दिन में 10:10 से। 11:10 पर होगा कार्यक्रम स्वरांजलि। 11:10 कार्यक्रम विवरण अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 5 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में पहले आप हिंदी में समाचार, उसके बाद अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसंख्या वृद्धि और भविष्य में जल की जरूरतों सहित शहरीकरण से उत्पन्न चुनौतियों के प्रति शहरी स्थानीय निकायों को संवेदनशील बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कल जल शक्ति मंत्रालय की ओर से जल पर आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता करते हुए शहरी स्थानीय निकायों को भी इसी प्रकार के चिंतन शिविर आयोजित करने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने अधिक से अधिक जल बचत तकनीक अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने भारतीय विनिर्माणकर्ताओं और हितधारकों को दुनिया के सर्वोत्तम तौर तरीकों से रूबरू कराने सहित उनके लिए समर्पित प्रदर्शनियां और कार्यशालाएं आयोजित करने का भी सुझाव दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं के साथ साथ आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। बेल्जियम के प्रधानमंत्री भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंचे। प्रधानमंत्री डी वेवर के साथ बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रैंकन भी भारत दौरे पर हैं। हमारे संवाददाता के अनुसार ये यात्रा भारत बेल्जियम साझेदारी को और मजबूत करने तथा व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करेगी।
2: यह किसी बेल्जियम प्रधानमंत्री की पिछले 2 दशकों में पहली भारत यात्रा है, जो भारत बेल्जियम संबंधों में एक महत्वपूर्ण नए चरण की शुरुआत का संकेत देती है। साथ ही यह भारत यूरोपीय संघ संबंधों को मजबूत करने में बेल्जियम की महत्वपूर्ण भूमिका को और सुदृढ़ करेगी। बेल्जियम यूरोप में भारत का एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार है। वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार $13 अरब से अधिक रहा। एंटवर्प के प्रमुख वैश्विक हीरा केंद्र होने के कारण हीरा व्यापार दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक संबंध

0: हिंदों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री 4 सितंबर को मुंबई का दौरा भी करेंगे। सुपर्णा सैकिया के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: नेपाल और तिब्बत में बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 1,250 हो गई है। बचावकर्मी बारिश और मलबे के बीच लोगों का पता लगाने में जुटे हुए हैं। भोटेकोशी नदी के मार्ग में बनी सुरंगों और नेपाल के भूमिगत बिजली घरों में लोगों के फंसे होने की आशंका है। इस आपदा में 583 विदेशी नागरिक लापता है। नेपाली सेना और सुरक्षा बलों ने हेलीकॉप्टरों और जमीनी मार्गों से अब तक 11,993 लोगों को बचाया है। नेपाल सीमा के पास तिब्बत के ग्योरांग काउंटी में बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 21 हो गई है, जबकि 541 लोग लापता हैं। नेपाल को एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक, यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र सहित अंतर्राष्ट्रीय विकास साझेदारों ने सहायता का आश्वासन दिया है। भारत से नेपाल पहुंचे 11 बचाव विशेषज्ञों का दल विशेष उपकरणों के साथ कल त्रिशूली बाजार के पास पहुंच गया। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि वे नेपाली सेना के साथ मिलकर आज से काम शुरू करेंगे। भारत की ओर से नेपाल को बचाव और राहत सहायता जारी है। भारतीय वायुसेना की 5वीं उड़ान कल मानवीय सहायता लेकर काठमांडू पहुंची। इसमें एंटीबायोटिक्स, दर्द निवारक दवाएं, सर्जिकल साजो सामान और अन्य जरूरी दवाओं सहित लगभग 5.5 टन चिकित्सा सहायता शामिल है। 6 टन से ज्यादा बचाव उपकरण भी भेजे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस नई सहायता खेप के साथ भारत ने नेपाल में अब तक लगभग 74 टन राहत सामग्री भेजी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा है कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का प्रक्षेपण 4 सितंबर को किया जाएगा। उपग्रह को GSLV-F-17 रॉकेट के जरिए सुबह 2:55 पर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया जाएगा। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ एक और शिखर बैठक के लिए तैयार हैं, लेकिन ये तभी संभव होगा जब रूस यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के लिए शांति समझौते पर काम करने को तैयार हो। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वे चाहते हैं कि अमरीका का रूस और यूक्रेन दोनों के साथ अच्छे संबंध बने रहें। उन्होंने तर्क दिया कि बेहतर संबंध व्यापार के लिए भी लाभकारी होंगे। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, विदर्भ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी तेज वर्षा होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आंतरिक कर्नाटक में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। महिला एशिया कप 2020 में आज भारत का मुकाबला हांगकांग से होगा। यह मैच यूएई के दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। Prime Minister Narendra Modi has called for sensitizing urban local bodies to the challenges arising from urbanization, including population growth and future water requirements, and suggested organizing similar Chintan Shivers for urban local bodies. Mr. Modi yesterday chaired the valedictory session of the two-day National Departmental Summit on Water, organized by the Ministry of Jal Shakti. He called for greater adoption of water-saving technologies. He also suggested dedicated exhibitions and workshops, including exposure to global best practices, to enable Indian manufacturers and stakeholders to develop and scale efficient solutions. Prime Minister appreciated the intensive two-day deliberations and emphasized that the actionable and time-bound action points emerging from the summit should be pursued through a continuous process of review and learning. Prime Minister Narendra Modi and Prime Minister of Belgium, Bart De Wever, will hold bilateral talks in New Delhi today. Both leaders will discuss the entire spectrum of bilateral relations, as well as regional and global issues of mutual interest. The Belgian Prime Minister arrived in the national capital last night on a 3-day visit to India. Prime Minister De Wever is being accompanied by Belgian Minister of Defence, Theo Franken. This is his first visit to India since taking office in February last year. The visiting dignitary will also deliver a keynote address at a Confederation of Indian Industry business event in the context of the India-EU Free Trade Agreement. India has stepped up its relief operation in flood-hit Nepal, with New Delhi delivering a fifth tranche of emergency material. India's ambassador to Nepal in a social media post shared that the fifth Indian aircraft carrying relief and rescue assistance arrived in the Himalayan nation yesterday. The aircraft carried an 11-member rescue team equipped with specialized tunnel rescue equipment.

नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर हिमानी चौखन। मैं हूं आपकी योग विशेषज्ञ। बहुत बार देखा गया है कि प्रेगनेंसी यानी गर्भावस्था के समय प्रेग्नेंट लेडीज को कई सारी समस्याओं से गुजरना पड़ता है, जिसकी वजह से डिलीवरी के दौरान ऑपरेशन तक की भी नौबत आ जाती है। और आजकल तो देखते हैं कि सिजेरियन केसेस भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए मेरा सभी गर्भवती महिलाओं से यह निवेदन है कि वह गर्भावस्था के दौरान भी पौष्टिक आहार का सेवन तो करें ही, अच्छी नींद लें और साथ साथ कुछ योग अभ्यास भी जरूर करें। योग अभ्यास में जैसे प्राणायाम, ध्यान के साथ साथ कुछ आप सिलेक्टिव आसन भी कर सकते हैं। और यदि किसी भी प्रकार की कोई कॉम्प्लिकेशन प्रेगनेंसी के दौरान आती है तो आप योग विशेषज्ञ के निर्देशन में योग अभ्यास को पहले अच्छी तरह से सीखें, फिर घर पर उसका अभ्यास करें। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि प्रेगनेंसी के समय आप कौन कौन से आसन कर सकते हैं। तो आज हम करेंगे भद्रासन। आइए जानते हैं कि भद्रासन किस प्रकार प्रेगनेंसी के समय किया जा सकता है। दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा फैलाकर पीठ और कमर को सीधा रखते हुए बैठ जाएं। दोनों हाथों को अपने नितंब के पास रखें। हथेलियां जमीन पर टिकी होनी चाहिए। इस स्थिति को हम दंडासन कहते हैं। अब श्वास भरते हुए दोनों पैरों के तलवों को आपस में मिलाने का प्रयास करें। श्वास बाहर छोड़ते हुए पैरों की उंगलियों को हाथों से पकड़कर ढक लें। श्वास बाहर छोड़ते हुए पैरों की उंगलियों को हाथों से पकड़ लें। श्वास लेते हुए एड़ियों को अपने शरीर के बिल्कुल नजदीक लेकर आएं। जितना समीप हो सके उतना समीप लाने का प्रयास करें। यदि आपकी जंघाएं जमीन से टच नहीं हो रही हैं, जमीन से नहीं लग पा रही हैं, तो सहारे के लिए घुटनों के नीचे एक मुलायम तकिया आप रख सकते हैं। इस अवस्था में 10 से 30 सेकंड तक रुके तथा सामान्य रूप से श्वास पर श्वास लेते रहें। इस अवस्था में आप समय को भी बढ़ा सकते हैं। यह आसन गर्भावस्था में बहुत ही लाभकारी है तथा महिलाओं को मासिक धर्म के समय अक्सर होने वाले पेट दर्द से भी मुक्ति प्रदान करता है। इसके अन्य लाभ भी हो सकते हैं दोस्तों। यह आसन शरीर में दृढ़ता लाता है और मस्तिष्क को भी स्थिरता प्रदान करता है। तो आज हमने सीखा कि प्रेगनेंसी के समय आप भद्रासन किस प्रकार कर सकते हैं। पूरे दिन में कम से कम आप यह अभ्यास सुबह शाम के समय दोहरा सकते हैं। प्रतिदिन करें योग, रहें निरोग। नमस्कार।

नमस्कार, मैं योगाचार्य सुनील गौतम ऐसे आसन के बारे में बात करेंगे जिसको करने से हमारी कमर का दर्द दूर होता है। किसी भी प्रकार के कार्य को करते हुए, ऑफिस में बैठे हुए चेयर पर, पढ़ाई करते हुए, किचन में काम करते हुए हम थकान अनुभव करने लगते हैं, पीठ में अकड़न या जकड़न अनुभव करने लगते हैं, तो इस आसन का अभ्यास ऑफिस में भी किसी भी कार्य स्थिति में होते हुए थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाएं, एक दो लंबी गहरी श्वास भरें, दोनों हथेलियां थाइस के बराबर में रखें और श्वास भरते हुए धीरे धीरे बाएं हाथ को सीधा ऊपर उठाएं, कान के बराबर में ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए दाहिना हाथ 90 डिग्री पर अपने कंधे की सीध में लाएं, पुनः श्वास भरते हुए दाहिना पांव यानी कि जो पैर हम जो हाथ साइड में किया है उसी पांव को पीछे ले जाना है, धरती से ऊपर उठाना है बिना मोड़े यथासंभव, और तीन लंबी गहरी श्वास लें। चेस्ट ऊपर की ओर फूली हुई रहेगी, गर्दन हल्का सा पीछे की ओर, हाथ भी पीछे की ओर, और पूरे पीठ में तनाव अनुभव करें। अनुभव करेंगे लोअर बैक में इमीडिएटली हमको तनाव आता है, अर्थात लोअर बैक का पेन दर्द दूर करने में मदद मिलेगी। धीरे धीरे तीन श्वास पूरी होने के बाद वापस आएं और इसी आसन को दूसरी तरफ से दोहराएं, अर्थात श्वास भरते हुए दाहिना हाथ ऊपर की ओर सीधा ले जाएं, बायां हाथ 90 डिग्री कंधे के सीध में लाएं और बाएं पैर को पीछे की ओर ले जाएं, शरीर में तनाव देते हुए लंबी गहरी तीन श्वास का अभ्यास करें। और उसी अवस्था में अभ्यास के दौरान लंबी गहरी श्वास प्रभाव को अनुभव करते रहें, कहां शरीर के किस भाग पर इंपैक्ट है, प्रभाव है, और धीरे धीरे तीन श्वास के

बाद श्वास छोड़ते हुए वापस अपनी पुरानी स्थिति में आ जाए। यह हुई हमारी एक आवृत्ति। इसी आवृत्ति को 2-3 बार दोहरा लें तो देर तक बैठे रहने की थकान, कमर का दर्द दूर हो जाएगा। बल्कि मैं सबको सलाह देना चाहूंगा, जो विद्यार्थी हैं, पढ़ने लिखने का काम करते हैं, जो ऑफिस में बैठकर लिखाई, कंप्यूटर, कोई भी काम करते हैं, और मेरी माता बहनें जो किचन में काम करते करते कमर में दर्द कर लेती हैं, वो कभी भी इस आसन को अवश्य दोहराएं। आपका कमर का दर्द निश्चित रूप से दूर होगा और लंबी गहरी सांस से आपका शरीर और मन स्वस्थ व शांत रहेगा। धन्यवाद।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आओ योग करें। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है।
1: मैं हूं आपका जलदाता, ग्रैंड वॉटर। कैसे हैं आप सब? आपकी मशीनें यहां धरती में इतने नीचे भी मुझे चैन से नहीं रहने देते। हर साल मेरा ठिकाना धरती में और नीचे हो जाता है। इस वर्ष 2040 में धरती में कितना और नीचे आ गया हूं मैं? क्या लिखूं अपना दर्द? अब तो कलम में बस बूंदे ही बची हैं। अपनी फोटो भेज रहा हूं, खुद ही देख लीजिए मेरी सेहत। क्या पता अगली चिट्ठी लिख भी पाऊंगा या नहीं। आप कर सकते हैं मेरी सहायता। बस दो शब्द याद रखिए, कंट्रोल और सेव। और हाँ, अपना ख्याल रखिएगा।
2: ये आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी, कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।
0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब प्रस्तुत है देशभक्ति गीत।

0: जल दाता, ग्रैंड वाटर, कैसे हैं आप सब? आपकी मशीनें यहाँ धरती में इतने नीचे भी मुझे चैन से नहीं रहने देते। हर साल मेरा ठिकाना धरती में और नीचे हो जाता है। इस वर्ष 2040 में धरती में कितना और नीचे आ गया हूं मैं? क्या लिखूं अपना दर्द? अब तो कलम में बस बूंदे ही बची हैं। अपनी फोटो भेज रहा हूं, खुद ही देख लीजिए मेरी सेहत। क्या पता अगली चिट्ठी लिख भी पाऊंगा या नहीं। आप कर सकते हैं मेरी सहायता, बस दो शब्द याद रखिए, कंट्रोल और सेव। और हाँ, अपना ख्याल रखिएगा।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब प्रस्तुत है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर रंजनी। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं तरुण भट्टाचार्य का संतूर वादन, राग है नटभैरव।